एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशाद खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार।

0: को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिकराम, आज हम आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करेंगे जो शख्स इस पर गौर करे उस पर वाजे हो जाता है कि हमें अपने गुनाहों पर उज़्र तराशने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि बंदगी और आजिज़ी के साथ किसी उज़्र या तावील के बगैर हमें साफ यूं कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने खुद अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है। यानी बंदा अपने आमाल को बड़ा नहीं समझता बल्कि अपनी कोताहियों को पहचानता है, फिर कहता है वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, गुनाहों को माफ करने वाला सिर्फ तू ही है, फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिक, तू हमें माफ कर दे। कैसी माफी? जो तेरी खास बराह रास्त अता करता हो। यानी इसमें ये माना पोशीदा है कि अल्लाह ऐसी मग़फिरत अता फरमा जो मेरे आमाल के बदले तो हो ही नहीं सकती बल्कि तेरी रहमत के खजाने से ही होगी। वरहमनी, और फिर मग़फिरत के बाद रहमत का तलबगार हूँ, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। इमाम किरमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये दुआ जवामिउल कलिम में से है क्योंकि इसमें तकसीर का मुकम्मल एतराफ है, फिर अल्लाह के कमाल का इकरार है, मजीद आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी की तलब है। ऐ अल्लाह हमें भी वो दिल अता फरमा जो अपनी कोताहियों को पहचाने और तेरी मग़फ़िरत और रहमत का उम्मीदवार रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: उनके कामों को मुश्किल बनाने के बजाय आसान करने वाला ऐसा इंसान जो दूसरों के सहूलत का बायस बने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर वो करीब नरम खो और सहल मिजाज शख्स पर जहन्नम हराम है। इसी तरह सामीन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल न होगे जब तक ईमान न लाओ और ईमान मुकम्मल न होगा जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं कि अगर उसे करो तो आपस मोहब्बत करने लगो, सलाम को आम करो। तो ज़मीन कितनी हसीन तालीम है कि जन्नत का रास्ता ईमान से जुड़ा है और ईमान का दरवाजा मोहब्बत है और मोहब्बत का सबसे आसान जरिया सलाम को आम करना, खुश अखलाकी से पेश आना और लोगों के साथ नरमी इख्तियार करना। ये थी आज की सुन्नत मोहब्बत और उल्फत की। आइए हम भी अपनी जिंदगियों में खुश अखलाकी, नरमी और सलाम को आम करें। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा। Daily live with morning news bulletin only on FM 107. Dil se, dil se, desi, desi.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ एफएम 107 कतर। दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मैशाल बाशिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैशाल बाशिम नाम से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुमताज़ बाशिम का छोटा भाई, और मुमताज़ बाशिम जैसे नो हाई जम्प में वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड टाइटल या ओलंपिक टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं, वहीं मैशाल बाशिम भी कतरी फुटबॉल के साथ कई ऐसे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और गोलकीपिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स कतर हैज एवर प्रोड्यूस इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, और बेहतरीन गोलकीपिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो मैशाल ईसा बाशिम है, और वो कतर नेशनल फुटबॉल टीम के एक अहम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इसी महीने, और इसी महीने में कतर का अगर मैं नंबर वन गोलकीपर के तौर पे देखूं तो मैशाल का ही नाम आता है। मैशाल ने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत और लगन से प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र तय किया था। मैशाल ने कतर स्टार्स लीग में असद क्लब की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। गोलकीपिंग के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस, कॉन्फिडेंस और प्रेशर में बेहतरीन सेव्स करने की सलाहियत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, यानी दूसरे गोलकीपर से अलग बनाती है। दूसरे गोलकीपर्स की बात करूँ यहाँ पे, उनसे कई मुख्तलिफ इनके परफॉर्मेंसेस हैं, और लोग, एक्सपर्ट्स, फैंस और उनके चाहने वाले

0: ही कहते हैं कि डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कतरी फुटबॉल. उन्होंने एएफसी एशियन कप और कई इंटरनेशनल मैचेस में कतर की नुमाइंदगी की और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया. ये 2024 में जो एशिया कप हुआ था कतर में, उसमें मशाल ने काफ़ी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है. मशाल को डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मिसाल माना जाता है. फुटबॉल फील्ड में उनका काम, एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटीज टीम को मजबूत बनाती है. वो नौजवान फुटबॉलर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कतर में फुटबॉल को करियर बनाना चाहते हैं. आज मशाल बाशन कतर फुटबॉल का एक रोशन नाम है और उनकी परफॉर्मेंसेस मुल्क के फुटबॉल फ्यूचर के लिए उम्मीद की नई किरण समझी जाती है. इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है. अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: आप सुन रहे हैं Health Check.
4: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ फौजी शफीक. आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि जिस्मानी सेहत जितना ही अहम है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये है ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ. ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ सिर्फ ज़हनी बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी फलाह व बहबूद का एक अहम हिस्सा है. अच्छी ज़हनी सेहत हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने, बेहतर फैसले करने और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखने में मदद देती है. जिंदगी में किसी हद तक परेशानी या फिक्र महसूस करना मामूल की बात है, लेकिन जब फिक्र, खौफ या घबराहट मुसलसल रहने लगे और रोज़मर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने लगे, तो उसे एंजाइटी या बेचैनी की कैफियत कहा जाता है. इसकी अलामत में दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बेसुकूनी महसूस करना, नींद में खलल और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, या कंसंट्रेट करने में दुश्वारी महसूस हो, और हर वक्त फिक्रमंद रहना शामिल है. डिप्रेशन महज उदासी का नाम नहीं है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान मुसलसल उदास, मायूस या फिर बेदिल महसूस करता है. और इसकी अलामत ये है कि दिलचस्पी का कम हो जाना, थकन महसूस करना, नींद या भूख में तब्दीली, खुद एतमादी में कमी और रोज़मर्रा के कामों में दिल का ना लगना शामिल हैं. अगर ये अलामत दो हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहें, तो फिर आप डॉक्टर की मदद ज़रूर लीजिए. जिस तरह हम जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, इसी तरह जज्बाती मसाइल को भी संजीदगी से लेना चाहिए. अपने जज्बात को पहचानना, उसका इजहार करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करना ज़हनी मजबूती की अलामत है. ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ को बेहतर हम बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं कि रोज़ाना मुनासिब नींद लीजिए, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, बाकायदगी से वर्जिश और वॉक कीजिए, ख़ानदान और दूसरों के साथ वक्त गुजारिए, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एतदाल रखिए, दुआ, जिक्र और

0: Live updates, big matches, or non-stop excitement.
1: Game on.
0: Volume up.
1: Every Sunday or Tuesday, dopehar 1 baje se.
0: With our sports journalist, Mohammed Amin.
1: Suniye Summer Sports. Only on FM 107. Dil se Desi. दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी-छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: FM 107 टाइम चेक।

0: Assalamu alaikum and good morning Qatar. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mahavish Khan और मैं यहाँ पे आ गई हूँ. इस वक्त वक्त हुआ है 6:02. मैं और आप साथ रहेंगे 9 बजे तक. और 9 बजे तक क्या कुछ होगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों की सुबह का आगाज बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा हो गया होगा. सब कुछ एकदम से सेट. और जिन लोगों को सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है उन लोगों ने नाश्ता कर लिया होगा, या बहुत सारे लोगों का इस वक्त नाश्ता चल रहा होगा. खैर जी, जो कुछ भी है, मतलब आप अच्छे से नाश्ता करें और आराम से घर से निकलें. और आपको हम थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक अपडेट भी बताएंगे, बाकी सारी चीज़ों से भी अपडेट रखेंगे कि किस तरह का सिलसिला है आज. और आप लोग भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. और उसके लिए नंबर है हमारे 6622107 पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4434377 पे कॉल करके. तो जिसमें आपको आसानी हो आप उसी तरह से हमसे कनेक्ट हो जाएगा. और आज क्या क्या होने वाला है तो उसके हवाले से जो है ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या है खास, और उसके साथ ही आपसे वेदर अपडेट भी शेयर करेंगे. बहुत सारी चीज़ें होंगी तो बस आपने हमारे साथ रहना है. और जैसे मैं और नाजिया जब शो कर रहे थे उस वक्त आप लोग कॉल कर रहे थे, साथ थे, बिल्कुल उसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी सिलसिला आपका यही रहेगा. अच्छा जी, आज क्या बात करेंगे, किस टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आज हमने बात करनी है किस हवाले से. हमारा मेन टॉपिक है क्या, अच्छा तो आज हम आपसे पूछ लेते हैं कि सुबह की वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट आपको लगती है जो आपका दिन ख़राब कर देती है. मतलब सुबह सुबह कोई ऐसी बात हो जाए जो कि आपको बहुत नागवार गुजरती है, जिसकी वजह से आपका सुबह का आगाज़ बुरा होता है और आपको लगता हो कि बस अब जो है ना, मतलब आज के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, ये वाला सीन होता हो, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 4434377 पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि रुकावट है भाई, ये वाली जो चीज़ है ना ये सुबह सुबह नहीं होनी चाहिए. अगर ये होती है तो मेरा तो बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता या करती. ठीक है, तो ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको ऐसी लगती है जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ही पसंद नहीं है. ख़ासतौर पे अगर सुबह सुबह हो तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब जो ना आपका मूड ऑफ हो जाता है. तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें थोड़ी देर के बाद बताएंगे, कॉल भी करेंगे, मैसेजेस भी करेंगे और साथ में हमारे जुड़े रहेंगे. अच्छा, एक जो चीज़ है ना मैंने देखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और वो जो है थोड़ी देर के बाद हम अस्कार की तरफ जा रहे हैं. तो उससे पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों से एक ज़रा अच्छा मोटिवेशनल सी भी है. और वो होता ना बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी के ऐसे कुछ जवाब होते हैं जो कि नहीं मिल रहे होते, सवाल तो होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे होते, तो उसी हवाले से थी. तो मैंने कहा चलो एक मोटिवेशन मिलेगी चीज़ों का सामना करने का, क्योंकि होता यूँ है कि ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं होता जो हम लोग चाह रहे होते हैं. अमूमन मतलब अगर हम बचपन की अपनी ज़िंदगी देखें ना, तो उसमें हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं और हमें लग रहा होता है कि वो सब पूरे हो जाएंगे, और ज़िंदगी जिस तरह से हम प्लान करेंगे उसी तरह से चल पड़ेगी और वैसे ही मतलब जो है ना साबित होगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब ऐसा होता नहीं है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बर्दाश्त करना, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो वो इसी हवाले से एक बड़ी अच्छी तहरीर है, और ये कि इसमें मैंने मतलब तहरीर ही देखी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आज उस्ताद ने क्लास में एक ऐसा सवाल पूछा कि पूरी क्लास खामोश हो गई. उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी में आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो नेचुरली हम सब ने सोचा कि शायद जवाब इसका मूसा अलैहिस्सलाम होगा, लेकिन जवाब ये नहीं था. क्योंकि जब होता यह है कि हम जब भी वो किस्सा सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जहन में भी आता है कि हाँ ये क्यों हुआ. जब पहली दफ़ा आपने कभी ये वाकया सुना होगा तो आपने भी सोचा होगा कि हाँ मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मतलब क्यों किया इस तरह से. लेकिन जवाब ये नहीं था. जवाब क्या था, तो उस्ताद ने ये कहा कि सूरह कहफ़ के बारे में जो उन्होंने बात की उसके बाद, मतलब इनका ये कहना है कि इनका पूरा नुक्ता नज़र बदल गया. हम में से अक्सर लोग सूरह कहफ़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र से पढ़ते हैं, हम ख़ुद को हज़रत खिज़र के साथ खड़ा तसव्वुर करते हैं, कश्ती को नुकसान पहुँचते देखते हैं, एक बच्चे की मौत का वाक़या देखते हैं और एक गिरती हुई दीवार को दोबारा तामीर होते देखते हैं. हम ख़ुद को एक ऐसे ऑब्ज़र्वर की हैसियत से देखते हैं जो आखिर में तमाम राज खुलने और हिकमत समझ आने का इंतज़ार कर रहा होता है. लेकिन उस्ताद ने कहा कि शायद आप लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर अपने आप को नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गए थे, उन्हें वजाहतें मिल गई थीं, उन्हें हर वाक्य की हिकमत बता दी गई थी, लेकिन हमारी जिंदगियों में अक्सर नहीं होता ऐसा, फिर कौन हो सकते हैं हम? शायद हम उस कश्ती के मालिक हो सकते हैं जिनका रोजगार अचानक नुकसान का शिकार हो गया, जो साहिल पे खड़े अपनी टूटी हुई कश्ती को देखते रहे और कभी भी ये नहीं जान सके कि इस नुकसान के पीछे अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत छुपी हुई थी। या हम शायद वो वालदेन हैं जिन्होंने अपनी औलाद खो दी और जिन्हें कभी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह मुस्तकबिल का मंजर नहीं दिखाया गया, जो रातों की तन्हाई में अपने गम के साथ जीते और फिर भी अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखते रहे। हम शायद उस बस्ती के लोग हैं जो ये समझ ही नहीं सके कि एक बज़ाहिर बेमकसद काम के पीछे कितनी बड़ी हिकमत पोशीदा है। उन्हें मालूम ना था कि एक दीवार के नीचे ख़जाना महफूज किया जा रहा है। हम एक ऐसी अजीम कहानी का हिस्सा हैं जिसका अंजाम हम नहीं देख सकते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन हमें भी अपना खिज़र अलैहिस्सलाम वाला लम्हा मिलेगा, जब हमारी ज़िंदगी के तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तमाम दुखों की वजह समझ में आ जाएगी और हम कहेंगे अच्छा तो ऐसा इसलिए हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि शायद कश्ती वाले की तरह पूरी ज़िंदगी ये जाने बगैर मतलब जो है दुनिया से चले जाएं। शायद वो वालदेन भी कभी ना जान सके हों कि उनके बच्चे के साथ जो हुआ उसमें क्या हिकमत थी, मगर अल्लाह की तदबीर और हिकमत फिर भी मुकम्मल थी, चाहे वो उसे समझ सके या नहीं। और शायद यही इस वाक़े का सबसे गहरा सबक है। अल्लाह की हिकमत इस बात की मोहताज नहीं होती कि हम उसे समझ सकें। किसी चीज़ की वजह मौजूद हो सकती है, चाहे वो वजह हमसे हमेशा पोशीदा ही क्यों ना रहे। सुभान अल्लाह। सोचें आपकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं, वो रिश्ता जो नहीं हो सका, वो मुलाजमत जो अब तक आपको ना मिली हो, वो दोस्ती जो ख़त्म हो गई हो, वो मौका जो हाथ से निकल गया हो, वो दुआ जो बज़ाहिर कबूल होती नज़र ना आ रही हो, लेकिन फिर एहसास हुआ कि हर रोज़ अल्लाह ताला हमसे वही सवाल पूछते हैं जो बिलावास्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे गए थे कि क्या तुम मान सकते हो कि एक ऐसा इल्म भी है जो तुम्हारे इल्म से कहीं बुलंद है? क्या तुम ये कबूल कर सकते हो कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा नुक्ता नज़र पूरी हकीकत नहीं? क्या तुम ये यकीन रख सकते हो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए भी कर रहा है जो बज़ाहिर तुम्हें तकलीफ़ दे रही हो? पहले इनका कहना है कि मैं समझता था कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक दिन सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन अब लगता है कि असल सबक इससे कई ज़्यादा मुश्किल है। अगर ज़िंदगी भर भी वजह समझ में ना आए तो क्या फिर भी तुम अल्लाह पर भरोसा रख सकते हो? और ये यकीनन जो है अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। मुझे बहुत अच्छी लगी तहरीर, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने जो है असकार की जानिब। असकार सुनते हैं, असकार के बाद वापस आते हैं। सुनते रहें FM 107 तुलसी देसी।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशाद खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

जी राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावंश और इस वक्त हो गया 6:20 और आपसे थोड़ा सा मौसम का हालचाल बयान करते चले. तो आज मौसम जो है वो थोड़ा सा कुछ मुझे तो बेहतर लगा. वैसे मुझे लगा कि आज थोड़ी सी कम गर्मी है बनिस्बत अगर हम देखें थर्सडे के मुकाबले में. लेकिन ये कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है. कुछ जगहों पर 34 भी महसूस हो रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा. यानी मतलब मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा ठीक है, उस दिन तो 46 तक जा रहा था. आज निस्बतन थोड़ी सी जो गर्मी है वो कम होगी, ये अच्छी बात है. और इसके साथ ही भाई आज जो एयर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है. ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एयर क्वालिटी भी अच्छी है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि पिछले दिनों हमें थोड़ी सी मतलब जो है ना काफ़ी बल्कि कहना चाहिए ड्राइनेस का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन आज

36% है ह्यूमिडिटी, तो ये भी बेहतर हुई है। और इसके साथ ही साथ बस हवा थोड़ी सी जो है वो भी चल रही है, किसी हद तक तो चल रही है, उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं जितनी पिछले दिनों थी, लेकिन ये खैर अच्छा मौसम है इस वक्त, मतलब इतना बुरा नहीं है। खैर जी, और इसके साथ ही हम आ जाते हैं इस पे कि आज 7 जून इतवार का दिन, और 7 जून को क्या होता है खास। तो तकरीबन जैसे हमें नज़र आ रहा होता है कि दुनिया भर में हर दिन ही बहुत ही मतलब ना एक पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है। तो आज 7 जून को क्या होता है, अगर हम देखें तो ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस से लेके सेलिब्रेशन तक होती है, मतलब काइंडनेस, कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दिन मुख्तलिफ लोगों को दुनिया भर से करीब लेकर आता है, और उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो तो ये है कि आज का दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पे, और इसको यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट करती है, इसने रिकॉग्नाइज किया था, और ये दिन हाईलाइट करता है बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज कि सेफ फूड सेफ लाइफ। और इसमें फार्मर से लेके जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, घर पे सब लोगों का एक अपना अपना रोल होता है कि अपने फूड को सेफ रखें और हेल्दी रखें, और उसके लिए प्रिकॉशंस और कुछ टिप्स वगैरह भी जो है आज के दिन शेयर की जाती हैं। रेस्टोरेंट्स पे कुछ ऑफर्स वगैरह भी लगती हैं, और वो भी बतौर ख़ास इस बात का ख्याल रखते हैं, मिनिस्ट्री भी चेक रखती है कि हर जगह पे मतलब हिफ्जान सेहत के मुताबिक खाना बन रहा हो, बेहतियाती ना हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाए। तो आज का दिन भाई मतलब सबसे पहला रीज़न तो ये है आज का जो ख़ास वो है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। इसके साथ ही बहुत सारे मुल्कों में आज का दिन मनाया जाता है नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे के तौर पे, और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है करेज और रेजिलियंस के तौर पे जो कि कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, और ये दिन सेलिब्रेशन का भी है, सपोर्ट का भी है, और इंस्पिरेशन का भी है दुनिया के लाखों लोगों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए कि किस तरह से एक ऐसी बीमारी से भी मतलब लड़ा भी जा सकता है और उससे सर्वाइव करके दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना जा सकता है। आज का दिन एक और बड़े मज़ेदार सा दिन है, वो ये कि वर्ल्ड केयरिंग डे भी आज के दिन को कहा जाता है, इनकरेज करता है लोगों के अंदर कंपैशन। इसके साथ ही जो छोटे छोटे सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं, चाहे वो आप अपने नेबर को हेल्प करो, चाहे आप जो है अपने किसी दोस्त की खैर खैरियत दरियाफ़ कर लो, या फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव कोई ले लें आप उसमें सपोर्ट कर लें, और इसके साथ मतलब ये जो छोटे छोटे से केयरिंग एक्शंस हैं बड़ा सा एक डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो इस तौर पर भी आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बहुत कुछ हुआ था अगर हिस्ट्री के हवाले से देखें तो इसमें मुझे बहुत सारे दिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें इतना ज़्यादा हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन एक और जो फन डे होता है वो है आज का, कि आज का दिन 7 जून का दिन एसोसिएटेड है विद चॉकलेट आइसक्रीम डे, मतलब दुनिया भर में आज लोग चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आइसक्रीम को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ फ्रोजन योगर्ट डे भी है और जून बग डे भी है। बग डे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये है कि लोग अपनी आइसक्रीम को इंजॉय करते हैं योगर्ट ठंडा करके, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और ये सारी जो चीज़ें जो भी आप देख लें तो वो लोगों को दुनिया भर से इकट्ठी करती हैं, एक दूसरे के साथ लेकर आती हैं, और उसका बहुत ही अच्छा रीज़न भी होता है। खैर जी, ये थी कुछ आज के हवाले से अच्छी अच्छी चीज़ें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉल करेंगे 4434377 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं। और मेरे पास तौफीक का मैसेज है, सबसे पहले वो शामिल कर लेते हैं। श्री नाजिया जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक फ्रॉम अलवकरा। नाजिया जी चली गई हैं भाई वेकेशंस पे, नाजिया जो है ना आएंगी 19 जुलाई को। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम महवेश, हाउ आर यू। अलीना, अलीना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ कैसी हो। इसके साथ ही जी मेरे पास है मैसेज सुबल खैर का, सुबल खैर का मैसेज मुझे भेजा है शराज मलिक ने, तो शराज आपको भी सुबल खैर, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद है अच्छी आपकी सुबह का आगाज़ हो गया होगा। और मैंने आज सवाल पूछा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है सुबह सुबह जो कि आपका मूड ख़राब कर देती है, अगर वो सुबह हो जाए तो फिर आपको पूरा दिन मतलब आपको लगता है कि अब मज़ा नहीं आएगा, मतलब ये सुबह सुबह होने वाली चीज़ नहीं थी, ये क्यों हो गई। तो इस हवाले से आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, और आप कॉल कर लीजिए भाई, मैं कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ आपके। आप कॉल करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, मतलब पहला घंटा तो खासतौर पर हमें कॉल्स की बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कॉल्स कीजिए, शो में शामिल हुई है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

जी राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी शामिल हो जाएंगे जल्द से जल्द शो में। 4434377 हमारा नंबर है और 666221107 पे आप हमें लिख के भेज

0: बिल्कुल ठीक ठाक। और मोहम्मद आज हमने क्वेश्चन ये किया है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अगर सुबह सुबह आपके साथ हो जाए तो थोड़ा आपका मूड जो है वो बिगड़ जाता हो, थोड़ी नागवारी फील होती हो।
1: सुबह सुबह ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है।
0: किस चीज़ की वजह से?
1: ट्रैफिक की वजह से।
0: ट्रैफिक ट्रैफिक, अच्छा सही।
1: हम लोगों का काम ऐसा है कि जैसे डिलीवरी का काम है।
0: हाँ सही सही,
1: डिलीवरी का काम है, इधर कस्टमर फोन करता है, इधर मर्चेंट वाला फोन करता है, तो बस इसलिए हम लोग को बस भागना पड़ता है। फिर ट्रैफिक जाम होता है, जब ट्रैफिक जाम होता है तो हम लोग थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है।
0: सही सही, वो बुरा लगता है आपको कि ट्रैफिक ज्यादा जैम ना हुआ करे। सही सही सही, चलें ठीक है। तो फिर मतलब कोई टिप है आपके पास? आप इतनी गाड़ी चलाते हैं तो कुछ थोड़ा सा चलाते चलाते अंदाजा हुआ होगा कि क्या करना चाहिए ट्रैफिक से बचने के लिए।
1: बस हम क्या बताएंगे, बस इधर कस्टमर कॉल करेगा, इधर फिर फंक्शन वाला बोलता है, इधर ऑफिस वाला कॉल करता है कि जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी ये करो, जल्दी वो करो, क्या करेगा।
0: चले अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद भाई? नाजिया जो है ना वेकेशंस पे चली गई है, तो वो अब जरा थोड़ा सा घूम फिर के आएगी और उसके बाद फिर आगे ज्वाइन करेगी।
1: अच्छा जी, एक बात पूछूं?
0: जी जी पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, सीम जो है ना वो भी चली गई हैं और वो माशाल्लाह से मतलब उनकी शादी का सिलसिला है तो इसलिए वो अब यहाँ नहीं है, वो चली गई हैं। तो उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, उनके अच्छे नसीब के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूर आप दुआओं में याद रखिएगा। चले ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी जी, तो हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ मतलब कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हाँ मैं आपके साथ।
0: क्या हाल चाल है शहजादा सलीम आपके?
2: बेहतर है, लास्ट वीक में तो मैंने काफी ट्राई किया, फिर मैंने मैसेज भी डाला तो हो सकता है काफी कुछ बिजी चल रहा था।
0: हाँ वो बेसिकली दो दो, एक तो हम दोनों आपस में बातें करने के लिए काफी थे, फिर हमारे साथ लोग भी आ रहे थे आज थोड़ा सा। हाँ। मुझे लगा कि संडे मॉर्निंग है ना तो शायद कल रात में, मेरे साथ भी यही हुआ है, कल मैं सोई और फिर बीच में रात में उठ गई, फिर मुझे ये मैं फिक्र मतलब मुसलसल दुआ करती अल्लाह ताला 4 बजे उठा देना, 4 बजे उठा देना, अल्लाह का शुक्र आँख खुल गई
2: जी। हमारा ये इसी तरह से मामला रहा कि 1 तारीख से जो शेड्यूल चेंज हुआ है ना अपना ड्यूटी का, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, तो जो बंदे अपना जाते थे 6 बजे जाते थे, अब उनको 3 बजे सुबह जा रहे हैं और फिर उनको 10 बजे रिटर्न आना है, फिर अगेन फिर शाम को 3 बजे जाना है, फिर शाम को 6 बजे ऐसा आना है, तो इस तरह की शिफ्टिंग हो गई है। तो उसमें अब 3 बजे का पिकअप है तो 2:30 बजे मैं कभी 2 बजे कभी 1:30 बजे आँख खुल रही थी मेरी। अरे कहीं लेट ना हो जाओ जाके बंदा बेचारा खड़ा होगा।
0: हाँ।
2: फिर वो एक तो मोबाइल का भी अलार्म नहीं, ऐसा कुछ ये कर दिया कि अलार्म सेट किया एक किया वो बजा, कभी वो शाम वाले में बज गया। अरे
0: हाय हाय, ये तो बड़ा खौफनाक हो जाता है। मेरे साथ भी पता है दूसरे दिन ये हुआ था, दूसरे दिन मैंने देखा, पहले दिन का लगाया था वो वंस वाला लगाया था, तो वो दूसरे दिन मेरे जन में तो बच जाएगा, इत्तफाकन मैंने देख लिया, मैंने कहा बचत हो गई भाई, वरना तो फिर अलार्म बजता ही नहीं।
2: जी जी जी जी, और एक दिन तो ऐसा है ना एग्जैक्ट मतलब है ना ये 3:15 पे कुछ अजान हो रही है ना, तो कैंप के जो मस्जिद के अंदर ही कैंप के अंदर ही मस्जिद है, तो अजान की आवाज सुनाई देती है तो एकदम मतलब आग खुली जाती है ना, तो देखा तो 3:15 हो गए, मैं सिर्फ है ना मुंह पे पानी मारा, टी शर्ट पहना और जीन्स पहना ही था, मैं सीधा भागा नीचे गाड़ी सेल्फ मार के जो निकाला जल्दी से, वो बंदा वेट कर रहा था, वो बोला यार आओ आज आओ, पूछा नहीं मैं भी फोन ही करने वाला था, मैं बोला बस यार आपको ऐसा ऐसा हो गया, चलो ठीक है भाई। फिर बाद में बहरहाल ये कि जो चेंजिंग हो जाता है ना इस तरह से तो शेड्यूल का, तो उसमें जो है ना परेशानी और जो है ना थोड़ा सा मतलब सेटअप होने के लिए ना मतलब थोड़ा सा आदमी इरिटेट भी हो जाता है, थोड़ा सा इधर हो जाता है यार ये क्या जब से अच्छा चल रहा था ऐसा। हाँ। तो अपडेट थोड़ा सा अपने आपको यहाँ करने लगता है इस तरह से, बाकी जो रोजमर्रा का मामूल है जो सुबह का होता है। हाँ। सवाल भी इसी तरह से ना मेरा।
0: हाँ, सवाल यही है कि सुबह में कोई ऐसी चीज है जो थोड़ा सा मूड ऑफ कर देती हो एकदम से अगर हो जाए तो?
2: हाँ जहाँ तक तो है कि बस यही है कि बिस्तर से जब तक

0: ब्रश करके जब तक शावर नहीं ले लो ना, तो जब तक थोड़ा सा मतलब एक अजीब तरह का वो महसूस होता है, एक अजीब मतलब यानी पता नहीं कितना वजन कुछ है ना कंधे पे उठा के जा रहे हैं, आस्ते आस्ते ब्रश होता है और फिर ब्रश भी कभी भूल गए फिर कभी, और बाद में जब तक वॉशरूम से जब बाहर नहीं आ जाएगा पूरा फ्रेश होके ना, जब कपड़े पड़े जब घड़ी पे नजर पड़ने लगेगी ना अरे जाना है तब जाके फिर पीछे आ जाना ऑटोमेटिकली होते रहते, तो वो चीज है ना उस मोमेंट तक है ना थोड़ा सा ये करती है थोड़ा सा मतलब परेशान करती है, तो बस ये क्या आस्ते आस्ते मतलब हो जाता है मतलब
1: अगर आपकी अपनी रूटीन से थोड़ी सी देर से आंख खुली है तो मतलब मूड आपका थोड़ा सा हो जाता है कि भाई मतलब मौका नहीं मिलेगा सारे काम करने का, राइट?
0: हाँ हाँ ऐसा हो जाता है। मैंने ना पिछले मैं साल में कुछ भी नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं, चाय को सब छोड़ दिया उस दिन मैंने, यहाँ सूखा सूखा भागा, फिर मैंने वहाँ पे चलाना जाते रहे उधरी एक पंप पे रहे ना मेरे लास्ट में ना फंस गया वहीं पड़ा मैंने, मतलब टाइम था मतलब मतलब पढ़ मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह का मतलब यही है बाकी, और अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि आप जो अपना एक रोजमर्रा का जो एक है फिकर है और जो एक अपना एक तो टारगेट भी होता है ना हर एक का कि भाई मुझे तो ये करना ही है और फिर ये सैलरी उठाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा ऐसा सब है, तो उस पर आदमी है ना, और जैसे जैसे क्लोज महीना करीब होते जाता है ना तो सारे जो सुबह के कुछ जो डिफिकल्ट जो अपसेंट जो मोमेंट होता है ना सारे कुछ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, इतना मतलब वो नहीं बैठ जाता हर एक इंसान की जिंदगी में, कर नहीं यार रोजाना उठेगा रोजाना अपडेट होगा ऐसा कुछ नहीं है, तो खुशी भी है कभी खुशी कभी गम ऐसे ही कुछ है हर तरह से,
1: सही
0: तो बहरहाल हाँ बहुत जबरदस्त है मतलब ये आज की टॉपिक भी बड़ी जबरदस्त है।
1: चलो जी थैंक यू सलीम, थैंक यू आपकी कॉल करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह में वाकई मतलब कोई एकदम से आप आए ना और नई कॉल्स 10 मिनट लेट हो जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं क्या हो गया लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा लोगों को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही ये वाला सिलसिला हो जाता है, और होता है वो अभी तक हो रहा होता है, तो चलिए थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अच्छे से काम कीजिए
0: अपना, मैनेजमेंट ड्राइवर का कि अगर वो गाड़ी में बैठे गाड़ी के साथ होगी ना तो रेडियो उनके साथ होगा, अगर यहाँ वहाँ कहीं बैठ गए ना कभी ऑफिस में किसी
1: ऐसा तो है बिल्कुल सही बात,
0: जैसे मौका मिलता है किसी भी लिस्टनर को वो मौका काफी ज्यादा उठाता है, जैसा अभी मैं फ्री बैठा तो मैं बोला पहली फुर्सत में भी मैं कॉल करूंगा,
1: सही हो गया चले नहीं, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का और सपोर्ट करने का, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है अच्छा सा नाश्ता कीजिएगा, किया अभी तक या नहीं किया?
0: नहीं अभी तो कर लिया मैंने,
1: अभी तो कर लिया, चले गुड जबरदस्त, चले जी ख्याल रखिए अपना, सही है थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर उसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक पे,
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107, log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब, सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर न सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: रेडी राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजम अविश खान और मैं आपके साथ हूँ 9 बजे तक, और आप मेरे साथ रह सकते हैं 6622107 या फिर 4434377 पे कॉल करके। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं तो उनको मैं शामिल कर लेती हूँ। सलाम अविश, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक ये है कि सुबह सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो सुबह अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो आपके मूड को ख़राब कर देती हो, मतलब कोई रुकावट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब अच्छी ना लगती हो, आप कहते हो ये क्या हो गया। तो अभी कॉल आई थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आप कर लीजिए दोबारा, मैं ले लेती हूँ फ़ौरन से आपकी कॉल। अस्सलाम वालेकुम अविश मैडम, और ये मुझे कह रहे हैं कौन, थोड़ा सा नाम लिख दिया करें, ये क्या कर दिया मैंने, कॉल लेनी है, कॉल लेनी है। जी ना, कॉल की तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शाहिद, शाहिद बात कर रहे हैं, राइट जी? शाहिद फ्रॉम बांग्लादेश, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा था भाई अभी?
1: ड्राइव
0: पे हैं। गुड, जबरदस्त। और अच्छी चल रही है सुबह? नाश्ता कर लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी क्या वापसी हो रही है? नाइट ड्यूटी थी? हेलो, समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं ना रूम पे जाके नाश्ता कर लूंगा, तो मुझे लगा शायद आपकी नाइट ड्यूटी थी।
1: नहीं नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं है।
0: हाँ, सही सही। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा ये बताएं भाई, शाहिद भाई, कि सुबह ऐसी कोई चीज है जो आपका मूड ऑफ कर देती है, अगर वो आपके साथ हो जाए तो? हाँ,
1: मूड ऑफ करने के लिए,
0: मतलब कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो सुबह सुबह हो जाए तो आपको होता हो कि ये तो मतलब गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था सुबह सुबह, ऐसा कुछ है?
1: जी जी, ऐसा बहुत रीजन है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जब मेरा फजर का नमाज मिस हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है।
0: सही सही,
1: कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ज्यादातर जब मैं अलार्म लगाता हूँ सुबह उठने के लिए, अगर मिस हो जाएगा तो बहुत बुरा लगता है। जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ से, उस दिन बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये वाली तो ऐसी चीज है कि जिस पे आपको बुरा लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों के साथ यही मामला होना चाहिए कि फजर मिस हो जाए या कोई भी नमाज थोड़ी मतलब कजा हो रही हो, देर से हम पढ़ रहे हो, तो हमें बुरा लगना चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छा मतलब ना एक ऐसी चीज है जो अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपके दिन अच्छे ही गुजरेंगे, बरकत होगी इन दिनों में। सही हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें शाहिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, और अच्छा सा नाश्ता कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू जी जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही तो हमारे साथ हमारे कॉलर, बड़ा अच्छा है, इन्होंने तो बड़ा भाई ज़बरदस्त रीज़न बताया है कि अगर कभी ऐसा हो कि फजर में सो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: फौजिया बात कर रही हूँ मैं।
0: फौजिया बात कर रही हैं, कैसी हैं फौजिया?
2: मैंने कहा सारे जेंट्स आ रहे हैं, कोई एक लेडीज की भी एंट्री होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, होनी चाहिए, और आपने बहुत अच्छा किया कि कॉल कर दी। क्या हाल चाल है भाई आपके, और सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? क्योंकि खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये उठ के सो जाती है।
2: तीन बजे
0: उठ जाती है। सही है, गुड गुड,
2: कोशिश यही करती हूँ, मैक्सिमम यही होता है कि 3 बजे मैक्सिमम उठ जाऊँ, उसके बाद सारे अपना अपने आप को थोड़ा टाइम दूँ, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह जो होता है उसका देखूँ।
0: अच्छा, तो दोबारा सोती हैं या उठी रहती हैं?
2: हाँ, अभी मैं अभी जाके सोऊंगी, फिर अभी बच्चे के एग्जाम है तो फिर उसके लिए दोबारा 10 बजे उठना होगा।
0: अच्छा अच्छा, सही।
2: नींद आने आने तक दोबारा उठने का टाइम हो जाता है,
0: ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरे साथ भी ये सेम सीन है कि सुबह सुबह उठो, फिर आपको बच्चों को भेज के, फिर यही होता है, करो क्या, थोड़ा सो ही जाते हैं।
2: सही बात है, वही एक टाइम होता है जब आप रेस्ट कर सकते हो।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फौजी, कोई चीज आपके साथ ऐसी होती है सुबह सुबह हो, आपका मूड ऑफ हो जाता हो जिससे?
2: अगर आप मेरे हस्बैंड से सवाल पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इसका मूड हर वक्त ही खराब है। उसके लिए सुबह का वो नहीं है कि भाई सुबह में ही खराब रहेगा मेरा छोटा मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो भी यही कहता है हर वक्त मूड ऑफ रहता है आपका बस नहीं जोक से पार्ट लाइक हो जाता है कभी कुछ ऐसा कभी देर से आंख खुल जाए वो एक चीज ऐसी होती है कि वो सारी रूटीन को दरहम बरहम कर देती है तो थोड़ा सा इंसान अपसेट हो जाता है
0: सही से
2: सब कुछ भाग भाग के करना पड़ता है फिर
0: हाँ एग्जैक्टली मतलब फिर वो सारी चीजें मतलब पैनिक में भी बंदा आ जाता है ना एक टाइम कम है
2: जी एग्जैक्टली
0: सही अच्छा मतलब इसके अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं है
2: नहीं कुछ नहीं बस जब काम ज्यादा हो तब भी मूड ऑफ हो ये सबसे मजे वाला होता है मूड ऑफ करने का रीजन
0: सही अच्छा पॉज़ एक मिनट आप हमारे साथ ही रहिए बस हम जिंगल के बाद वापस आते हैं

0: FM 107, Time Check. Time Check.
1: जी 7:01 और हमारे साथ हैं फौजिया. हेलो.
2: हाँ जी मैम.
1: जी फौजिया, माजरत आपको इंतजार करवाने के लिए.

0: नो प्रॉब्लम. बस मैंने अभी लेटली ही आपका और नाजिया का प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया था, बिकॉज अभी लास्ट वीक से मैं अपने बेटे को सुबह में ड्रॉप करने आ रही हूँ. वैसे मेरे हस्बैंड करते हैं, ही इज आउट ऑफ स्टेशन, तो मेरी ये ड्यूटी स्टार्ट हुई है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है सुबह आप दोनों की बातें सुन के. तो उन्होंने सोचा मुझे आपसे बात करनी चाहिए. इट्स फन.
1: चलें, बहुत अच्छा किया फौजिया आपने कॉल की. और नाजिया जो है ना, बस अब 19 जुलाई को वापस आएगी. अभी जब तक मैं अकेली रहने वाली हूँ, तो ज़रूर आप कॉल करते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें. अभी गाड़ी चला रही हूँ तो केयरफुली, ठीक है?
0: बिल्कुल, डोंट वरी, आप भी अपना ख्याल रखें.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. और कॉल कीजिएगा आइंदा, भी इंतजार करूंगी आपकी कॉल. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ फौजिया और बहुत ही मज़ेदार सी कॉलर, और बड़े मज़े से इन्होंने जो है वो बताया कि किन किन बातों पे मूड जो है वो कभी कभी ऑफ हो जाता है. तो चले जी, आप लोग भी हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, गुड मॉर्निंग का जो मैसेज मैंने पढ़ा था सलाम वाला, वो कमालुद्दीन शेख हैं, उन्होंने मुझे सलाम कहा है. वालेकुम सलाम जी. और इसके साथ ही मेरे पास मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई. और ये सलमान का मैसेज है हमारे पास, सलमान बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं भाई आप कैसे. रमेश यादव क्या कहते हैं, रमेश यादव कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. और इन्होंने कुछ मतलब वो पूछा विनर वगैरह के हवाले से, तो ये ना आप ऑफिस से इन्फॉर्मेशन ले लें क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. इसके साथ ही सुरजीत हैं और ये कहते हैं सलाम माही मैम, हैप्पी संडे मॉर्निंग, वेरी नाइस योर शो एंड नाइस टॉपिक. मैम मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है. ये सही है, मतलब पहली चीज़ सही जो सुबह उठने के लिए उसी से मूड ऑफ हो जाता है. वैसे अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, लेकिन ये है कि मज़े का है. चले जी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. एक अच्छा सा आपको सॉन्ग सुनवाते हैं, वापस आते हैं, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोहा डायरी
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान, और मेरे पास मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए

एक न्यूज मैं आपको बताती चलूं कि कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वॉर्न किया है और ये इन्होंने वार्निंग क्या दी है, ये है टैनिंग की और समर हीट जो बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त बढ़ गई है उसके हवाले से। अच्छा, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने

मैंने लिटरली मतलब इस खबर के बाद फिर जाके देखा तो पता चला कि ये सन बैड्स आते हैं, मतलब जो ना सन बाद बैड्स अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में, जो कि लोग लेते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपने रंग को कम कर सकें। मतलब देखें सारा, मतलब दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात के ऊपर रो रहे होते हैं कि हमारा रंग कम है, हमारा रंग काला है, सांवला है, गंदुमी है, इतना ज़्यादा गोरा क्यों नहीं है। और मतलब एक तरफ जो ना लोग फेयरनेस क्रीम्स लगा रहे हैं और सब कुछ लोगों से पूछ रहे होते हैं कि रंग किस तरह से गोरा हो जाएगा, दूसरी तरफ ये लोग भी मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल टैनिंग डिवाइसेस लेके अपने रंग को खुद टैन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे असल जो चीज़ है वो ये कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये जो ना इसके मतलब सीरियस किस्म के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे एम्फसाइज किया इस बात के ऊपर कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हेल्दी टैन कह सकें, क्योंकि टैनिंग का जो मतलब ये जो एक स्किन बेसिकली डैमेज्ड होती है यूवी रेडिएशन की वजह से, तो हेल्दी टैन कोई चीज़ नहीं होती। ये सन बाद बैड वगैरह जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए। मिनिस्ट्री ने ये भी साथ में हाईलाइट किया है कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी रेज, ये जो है पेनफुल सनबर्न्स, आई डैमेज और प्रीमेच्योर स्किन एजिंग, और इसके साथ ही साथ इंक्रीज कर सकते हैं आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किन कैंसर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे बचने के लिए आपको ये है कि आपको एक्सपोजर से बचना पड़ेगा अगर आप परमानेंट डैमेज वगैरह से बचना चाहते हैं, खासतौर पर रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह, और साथ ही साथ आपकी जो स्किन है ना वो मतलब रिंकल्स भी आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप अभी जो पीक समर सीज़न शुरू हो गया है इसमें ये ख़ास तौर पे कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो प्रिकॉशंस लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें इंटेंस हीट से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, हाई टेम्परेचर में आप थोड़ा मतलब बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटी है, अभी देखें आपको काम के हवाले से जैसे हमारे कॉलर शहजादा सलीम भी बता रहे थे कि रात को अर्ली शुरू कर दिया है, और साथ ही मतलब कोशिश ही की जाती है जब बहुत ज़्यादा पीक पे सन हो उस वक्त आपको काम ना करने दिया जाए। और वो वजह उसकी यही है कि आपकी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाज़ात हमें जो लग रही होती हैं वो बहुत मतलब जो है ना बड़ा एक सबब बन सकती हैं आपकी डिजीज़ के लिए, इलनेस के लिए, अल्लाह ना करे कोई दूसरी चीज़ हो जाए। इसलिए अपना ख्याल रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे खुद भी फोकस करें कि आपको ना करना पड़े। अभी थर्सडे वाले दिन की बात है कि मुझे लगा नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मैं निकल विकल के गई हूँ गाड़ी से, तो फिर मतलब वाकई लग पता गया था। तो इसलिए ख्याल रखें भाई, मतलब पूरे जो समर मंथ्स हैं इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से यही कहा गया है आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट करना है ख़ासतौर पर दिन के वक्त में, और आपने जो है यूवी रेज से मतलब अपने आप को जितना हो सकता है बचाना है। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि लाइट कलर लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स पहने जो कि आपको मतलब बॉडी को आपके मतलब ना थोड़ा सा कूल रखने में मददगार साबित हो। इसके साथ ही आप जो यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस वगैरह का भी यूज़ कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एडिशनल एक प्रोटेक्शन मिल सके हार्मफुल सन एक्सपोजर से। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हाइड्रेशन अपनी बरकरार रखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी आपके पास होना चाहिए, पानी थोड़े थोड़े वक्फों से पीते रहें चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर उसके साथ ही मतलब जैसे जैसे एज कहते हैं बढ़ती जाती है, तो उस वक्त में ये होता है कि आपको पानी की जो एक वो है ना प्यास की शिद्दत का एहसास कम होने लगता है। तो थोड़े से ओल्डर एडल्ट्स इनको भी मतलब पानी चाहे प्यास लग रही है नहीं लग रही लेकिन पानी का ख्याल रखना है। इसके साथ आउटडोर वर्कर्स जो हैं और वो तमाम लोग जो कि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस वगैरह का शिकार हैं, इनको अपने आप को बिल्कुल डिहाइड्रेशन से और हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखना है। और मिनिस्ट्री ने फर्दर आपको ये एडवाइस किया है कि हो सके तो जहाँ पर भी आपको शेड वगैरह मिले तो आप वहाँ पर रहें, सनस्क्रीन का प्रॉपरली यूज़ कीजिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी SPF आप देख के आप जो है सनलाइट क्रीम अपनी लीजिए, सनस्क्रीन लीजिए और उसका इस्तेमाल करें और इस तरह अपने आप को बचा के रखें। तो ये पूरी तफसील के साथ मैंने आपको ये खबर बता दी, अपडेट जो है जो यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से इशू की गई है आपके लिए एडवाइस, तो जरूर अपना ख्याल रखिएगा। राइट, आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि कौन है भाई हमारे साथ। और सुबह सुबह बच्चे रोते रोते उठते हैं ना स्कूल के लिए, वो मूड ऑफ हो जाता है। और ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, आई थिंक खालिद नाम है इनका शायद, मुझे लग रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच खालिद आपके मैसेज के लिए। बच्चे रोते रोते उठते हैं स्कूल के लिए तो खालिद का मूड ऑफ हो जाता है। इसके साथ सैयद खादिम हुसैन और कहते हैं क्या, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मावश खान बहन, ढेर सारी दुआओं के साथ आता आप, और मैं कोशिश कर रहा था फ़ोन करने के लिए लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया। ओहो, अच्छा मुझे पता
नहीं लगा कि आपने कॉल किया है, और बस यही दुआ है अल्लाह पाक आपको हम सबको अपने

0: अच्छा लगा आपसे बात करके, ख्याल रखिए अपना। और
1: आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो शुरू में ही ट्राई कर लूं, बस नहीं
0: लगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और कॉल करते रहिएगा, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। रोहित जी तो हमारे साथ एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही हैं? पहचानू मैं? अच्छा मैं पहचानती हूँ, मुनीबा बात कर रही हैं, राइट? जी मुनीबा, क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बस समय की ईद की बात हो रही थी तो वाकई ईद तो आजकल काफी है, स्पेशली जब बच्चों को पिक करने जाते हैं दोपहर के वक्त, जो इंस्टॉल्स हैं उसमें हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी तो ऐसे जैसे बोनट से सच्ची बात है, वो जो सुनते थे ना बोनट पैक फ्राई कर लो।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, वो सही दिखा रहे होते हैं। बहुत सी मीम्स बनती है ना इस पे, वो सही होता है वाकई।
2: हाँ सही, बस यही दिनों एक कॉलेज से जिन्होंने ना बहुत प्रिकॉशन बताई थी, गाड़ी में कोई चीज नहीं रखे, आप डिओड्रेंट मत रखें और गाड़ी में पड़ा हुआ पानी बिल्कुल भी मत पिए।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
2: तो मेरी आदत है कि मैं डिस्पोजेबल ग्लास रखती हूँ, और वो जाहिर है कि प्लास्टिक के होते हैं, और मुझे लगता है ये भी सही नहीं है ना।
0: हाँ नहीं, ये भी मतलब सेफ नहीं है, नहीं रखना चाहिए।
2: हाँ,
0: क्योंकि प्लास्टिक हाँ, जब तो एक्सपोज हो जाता है ना हीट से या कुछ भी, तो आपको पता है उसकी वजह से। हाँ
2: बिल्कुल, हाँ बस वो। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने अपने बच्चों का जो ना एक क्वालिफाइंग किसी बच्चे थे खुल जाते हुए छोड़ दिया था, आप यकीन करें जब मैं दोपहर को आई हूँ गाड़ी में बैठी हूँ तो वो पूरा उसका पैकेट फूला हुआ।
0: हाँ बिल्कुल,
2: इसमें ना पूरा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है हीट की वजह से ना, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो गाड़ी में कोई चीज और मैं ये कहा करते थे कि आप कोशिश करें कि पेट्रोल की टैंकी भी फुल इस तरह से ना करवाए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात भी है, मतलब नहीं करवाना चाहिए। अभी मैं सुबह में भरवाती भी आई हूँ, मैंने फुल हस्बे आदत बोला, फिर मुझे बाद में यही ख्याल आ रहा था कि नहीं कहना चाहिए, मतलब इस वक्त गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि आपके फुल से ना थोड़ा सा कमी हो।
2: और दूसरा मैं एक और चीज यहाँ पे बहुत नोटिस करती हूँ, जो ब्लैक कलर होता है ना ये बहुत हीट अब्सॉर्बेंट होता है, तो लेडीज में तो चलो आया था ये ब्लैक कलर जो है ना, आपको पता है ट्रेडिशन है, लेकिन जो जेंट्स ब्लैक कलर की टी शर्ट लेके फिर रहे होते हैं ना, मैं तो खासकर जो फूड जो सर्व करते हैं ना
0: कोशिश करनी चाहिए जितने लाइट कलर हो वो इस्तेमाल करें, ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करें। लेकिन वही अबाया वाली जो चीज है ना, मतलब जब से मैं भी अबाया पहनने लगी हूँ तो वही मजा जो है ना आपको ब्लैक या फिर मतलब डार्क ब्लू टाइप इस तरह के कलर्स हो तो उसमें ही आता है अबाया, उसमें अच्छा लगता है ना। अबाया में अच्छे नहीं लगते लाइट कलर्स, मतलब मेरे पास है लाइट पिंक वगैरह लेकिन वो अच्छा नहीं लगता वो।
2: लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज जब मैं अपनी जो है ना वो यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, तो व्हाइट कलर था ना एक शिफॉन का स्कार्फ जब मैंने गर्मियों में लिया ना, दैट्स अ वेरी कूल थिंग।
0: हाँ ऐसा है बिल्कुल,
2: काफी फायदा हुआ।
0: हाँ आप मतलब जो साफ साफ हाँ लग रहा होता है आपको, सही से बिल्कुल सही,
2: क्योंकि व्हाइट कलर बहुत जो है ना वो कूल इफेक्ट देता है और वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है।
0: एग्जैक्टली, आप देख रही होंगी आजकल
2: करने के लिए थोड़ी एफर्ट रखनी पड़ती है।
0: हाँ वो है, लेकिन आजकल आप देख रही होंगी कि जिन बिल्डिंग्स के ऊपर ना आजकल बड़ा दिखाया जा रहा है कि अपनी गर्मी से बचना है, खासतौर पे हमारे मुल्कों में तो एसी के बिल आपको पता है इतने आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, तो ये कहा जा रहा है कि अपने घर की जो बाहर की जो मतलब वॉल्स हैं और सीलिंग है खासतौर पे उसको वाइट पेंट कर दें, क्योंकि वो फिर रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है तो उस तरह की हीट ना जो स्टोर हो जाती है जिसकी वजह से घर ज्यादा गर्म होते हैं वो नहीं हो पाता।
2: तो बस यही है कि वही खुद को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखें, और ये आजकल के तो जो गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं जैसे मेलन वाटरमेलन वगैरह हो गए, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत है ना आपको बड़ा मजे का मॉइस्चराइजिंग जो आपकी पूरी बॉडी को वो ना देते हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा रखें, सलाद और लीमू पानी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं मुनीबा कि कोई चीज ऐसी है जो सुबह सुबह अगर आपके साथ हो जाए तो आपका मूड ऑफ हो जाता हो?
2: ओके, आपका मदर मेरा ख्याल है कि सारी चीजें बच्चों के रिलेटेड है, मतलब सुबह मुझे अपने बच्चों से ये होता है कि भाई इतनी ज्यादा जो है ना आप उनको समझाते हैं मैनर्स बिहेव,
0: हाँ
2: उनके जो मतलब आपस में जो जो जिसे कहते हैं ना आपस में एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हैं, और जो आप जो उलझना सुबह सुबह गाड़ी में जो शुरू कर रहे होते हैं या रेडी होते हुए या लेट जो हो रहे होते हैं तो वो चीज़ दायरा मुझ पर आता है।
0: हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा खास तौर पे ना बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब मेरे साथ ये होने लगा था कि मैं एक वक्त में मैंने खुद रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि हर वक्त ना मतलब माथे पे बल पड़े रहते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम करना शुरू किया है। तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो समझ भी जाते हैं आपकी चीजों को।
2: हाँ समझ जाते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग ना जो मैं खुद को हमेशा ही रियलाइज कराने की कोशिश करती हूँ, सारे पेरेंट्स के लिए बड़ा ख्याल है कि यूजफुल बात होगी इसको अंडरस्टैंड करना कि जिस लेवल की परफेक्शन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ राइट रॉन्ग हम लोगों को जिंदगी की इतनी दवाइयां गुजारने के बाद मिली है, वो अपने बच्चों में वो अभी से सब कुछ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो उसी परफेक्ट रोबोट बन जाए, वो ही राइट एंड रॉन्ग की वो ही अवेयरनेस, वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनर्स और वो पर्सनैलिटी की बिल्डिंग की वो चीजें हम फॉलो बात दहाइयों बार सीख पाए। वो बेचारे अभी से हम तो सारी चीजें उनसे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनका बचपन आया वो तो सारा वक्त गुजार के अपने वो चीजें देख पा पाएंगे, चीजें की चीजें है ना वो नहीं होती। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये बात रियलाइज करनी चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल मतलब होती है नेचुरली। मतलब ये है कि एक तो ये ना कि मुनीबा हम अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि वो सब कुछ वो कर लें जो हम नहीं कर पाए, वो बहुत कम उम्र में कर लें।
2: हाँ जी वही ना।
0: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
2: ये है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत इनके अंदर पोटेंशियल है। अब आज जो अवेयरनेस थी, जो पेरेंट्स को जो अवेयरनेस है उनको तरबियत करते हुए जो सिखा पा रहे होते हैं एजुकेटेड पेरेंट्स, और जो जो आपको पता है कि जो हम अपने ब्लड से जो चीजें अवेयरनेस और सीखते हैं अपने आस पास से लर्निंग के चांसेस भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। तो जिस लेवल की जो है अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को है उस लिहाज से वो तरबियत भी उनकी बेहतर कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह की ये जनरेशन जो है ना वो ज्यादा बेहतर इंसान के तौर पर
0: इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, थैंक यू मुनीबा, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक्स अ लॉट कॉल करने के लिए, कॉल करती रहिएगा ठीक है। कोशिश पूरी पूरी कर रही हूँ, लेकिन वही है कि हम लोग क्योंकि अब चार दिन साथ कर चुके हैं ना माशाल्लाह से अच्छा गया है, तो लोग महसूस तो भी करेंगे डेफिनेटली। फिर उसके बाद वो आएगी मैं चली जाऊंगी तो लोगों को फिर ये होगा कि मैं थी, तो ये होगा।
2: मैंने तो ना नानी को जिस तरह से सर्वर भाई के साथ जिस तरह से जो है ना वो पास के पास सुना था ना, आपके तो बाकी फ्रेंड है, आप लोग की तो ऑनियर केमिस्ट्री से सुनते भी लगता है कि आप लोग फ्रेंड है। नादिया जो है ना वो मतलब बहुत स्पाइसी थी, उनकी कन्वर्सेशन रहती थी मतलब ऐसे खेड़ करते रहना मतलब इस तरह ही मतलब बहुत क्विकेड, और आपके साथ तो मतलब उसकी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, बहुत कूल इंसान रहती है वो।
0: बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारी शुरू से ही तकरीबन दोस्ती है जब से मतलब नाजिया ने ज्वाइन किया।
2: अगर आपको भी मौका मिला हो उनको
0: समझ सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन वो हम लोगों का थोड़ा सा ना एक तो दोस्ती है और दूसरा हम लोगों में दोस्ती के साथ लिहाज भी है, एक और चीज भी है, तो वो इस वजह से ये वाली चीज है, ये इसलिए आपको फील हो रहा है। जी जी चले मुनीबा, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। चले बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि अच्छा चलता रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा मतलब जब भी कोई नई चीज शुरू होती है मैं नर्वस होती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा ठीक है। चले जी मैं आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स आ रहे हैं, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ आप 6622107 पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वक्त इंजॉय करते हैं ये वाला अच्छा सा ट्रैक, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: FM 107 par apna business advertise karne ke liye, aaj hi raabta karein.
5: Aaj hi raabta karein.
4: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
7: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है. हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं. याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है. फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए. गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है. अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं. आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से. जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है. अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए. आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है. FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है.

Right, right, summer morning with RJ Mahvish Khan. और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ 9 बजे तक मैंने अपने साथ रहना है और आप जब तक हमें कॉल कर सकते हैं 6622107 पे नहीं व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है और नंबर हमारा जो कॉल का है वो 4434377 है. अच्छा जी आ जाते हैं एक और खबर की तरफ और अभी जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ ये काफ़ी अच्छी सी खबर है इंटरनेशनल न्यूज़ है मेरे पास और ये है कि यूरोप जो है वो शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट एक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नज़र आ रहा है. न्यू रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड पावर है इसने हेल्प किया है यूरोपियन यूनियन को कि वो तकरीबन 51 बिलियन यूरोज बचा सके हैं 2025 में और इसकी वजह ये रही कि इन्होंने जो इनका जो बिल्कुल जो एक तरह का रिलायंस था इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो ज़रा कम किया. एनर्जी एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि ये जो इंक्रीज है इनका रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर उसने बहुत ही इस रीजन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हेल्प आउट किया है और साथ ही साथ कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को

0: भी मतलब काफ़ी बचाया है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीम नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए। जबकि इसके साथ ही अगर हम ख़ास तौर पर बात करें स्कॉटलैंड की, तो इसकी जो ग्रीन इकॉनमी है वो कंटिन्यू कर रही है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी पता चलता है कि 1,05,000 तकरीबन जॉब्स मिली हैं मुल्क को, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही तकरीबन इस सेक्टर की वजह से 10 बिलियन पाउंड्स एनुअली स्कॉटलैंड का जो इकॉनमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो मज़ीद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होंगी, क्योंकि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काफ़ी मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये भी साथ में कहना है कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस चीज़ का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोंस्ट्रेट करती हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट अगर की जाए क्लीन एनर्जी की तरफ तो वो कैसे क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकती है, उसको एड्रेस कर सकती है, बूस्ट कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएट कर सकती है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस भी बरकरार रख सकती है। तो ये मेरे पास न्यूज़ थी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल कर रहे थे कुछ लोग, तो फिर आप अभी कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए दी, मैं आपकी कॉल ले लूँगी, उससे पहले कुछ मैसेजेस हैं तो उनको हम शामिल कर लेते हैं। और ये है मेरे पास मैसेज, कहते हैं नमाज कज़ा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, और ये कौन है इनका नाम भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, खैरियत से हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं भाई उज़ैर इकबाल का मैसेज था। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? अंशु, क्या हाल चाल है अंशु? ठीक ठाक है।
1: आज आप अकेली हो गए?
0: हाँ जी बिल्कुल अकेली हो गई आज मैं।
1: हम लोग साथ में हूँ ना सुनने वाले ऐसे के लिए।
0: चलें जी बिल्कुल, आप लोग रहेंगे तो फिर मुझे नहीं अकेला अकेला फील होगा। लेकिन ये शुरू में मतलब सुबह सुबह बिल्कुल जब मैं आई थी 15 मिनट के लिए सब लोग गायब थे, तो सब मुझे लग रहा था वाकई नाजिया चले गई, लोग भी चले गए, क्या हो गया ये?
1: नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है
0: जी। जी तो ये बताएं भाई अंशु के सुबह सुबह कोई चीज ऐसी है जो अगर हो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है आपका?
1: दिमाग में ऐसी कोई भी चीज नहीं।
0: कोई भी नहीं आ रही। नहीं, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी नहीं, मूड अच्छा ही रहता है हमेशा
1: एक जैसा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ये तो
1: उठो
0: बिल्कुल एक जैसा चल रहा है, बैलेंस्ड। सही है गुड इज गुड, अच्छी बात है ये भी। और नाश्ता वाश्ता हो गया अंशु?
1: अभी तो ड्यूटी पे हैं,
0: अभी ड्यूटी पे
1: रूम में बनाएंगे तब खाएंगे।
0: हाय हाय सही। कितने बजे ड्यूटी शुरू हुई थी आपकी?
1: मेरी 5 बजे से।
0: 5 बजे से शुरू हो गई थी। अच्छा 5 बजे से कब तक चलेगी, फिर आप कब जाके नाश्ता करेंगे?
1: 8:30 बजे तक।
0: 8:30 बजे तक, उसके बाद फिर ब्रेक है या फिर क्या ऑफ हो गया?
1: हम घर के ड्राइवर है ना, घर के ड्राइवर।
0: सही
1: तो हमारा जो है फिर ब्रेक है, अब छुट्टी के वक्त जो है।
0: लेकिन गुड, अभी मतलब थोड़ी देर के बाद आप पहुंच जाएंगे तो जाके मतलब अच्छा से नाश्ता वाश्ता कीजिएगा और रिलैक्स कीजिएगा। जी अंशु कुछ और कहना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: बहुत शुक्रिया अंशु, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाई जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे अंशु, और उन्होंने बताया कि भाई इनका नाश्ता जो है इनका भी काफ़ी लेट हो रहा है, मतलब वही वाला सीन अभी हमारा वाला चल रहा है कि अभी पहले तो ये था कि हम नाश्ता करके आते थे, लेकिन अभी ये कि नाश्ता जाके करते हैं, तो ये वाला सीन है। सलाम आरजे मावश, आमिर फ्रॉम कश्मीर, बिग फैन, थैंक्स अ लॉट। आमिर कश्मीर से सुन भी रहे हैं या फिर यहाँ पे होते हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है? यहाँ पे होते हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है। थैंक यू आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और के साथ ही जी मोस्ट वेलकम माही मैम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। नाइस प्रोग्राम, नाइस टॉपिक, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ये कहा है मुझे फिरोज खान चकवा ने, थैंक यू फिरोज खान चकवा, क्या हाल चाल है। अच्छा, जो लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिए। कॉलिंग नंबर है हमारा 4434377, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग, अगर आपकी सुबह 4 बजे पता चले मॉर्निंग शो कैंसिल है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, हैप्पी और सैड? ऐसा हो ही नहीं सकता था, मतलब चाहे कयामत आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा शो होता है, हमारा शो कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये तो कंफर्म है, बस अल्लाह से दुआ ही है कि आँख खुल जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं वैसे भी आम रूटीन में भी 4 बजे या इससे पहले भी उठ जाती हूँ, मतलब जैसे अभी ज़्यादा होगा तो फिर मतलब 3:30, 3:40 इतने बजे पे मैं उठती हूँ। लेकिन फिर भी जब आपका शो होता है ना, मतलब एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली आ जाती है कि अल्लाह ना करे आँख ना खुली तो क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ना, तो परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज मतलब ये तो रूटीन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब घबराहट सी हो जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनका अपना रेडियो चल रहा है, चलिए हम दूसरे कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम महवीर जी।
0: जी क्या हाल है भाई,
2: कैसा फील हो रहा है आपको अकेला अकेला?
0: अकेला अभी तो बस फील ये हो रहा है कि वो जरा थोड़ा मतलब 4 दिन चला है ना वो वाला सीन, तो अभी थोड़ा सा मतलब फील हो रहा है अकेला।
2: हमको तो, मेरे को तो फील हो रहा है कि महवीर जी आज लगता है इवनिंग में आ चुकी है।
0: मतलब वही वाला इवनिंग वाला सिलसिला लग रहा है आपको?
2: जी मैं वही सोचा था, मतलब यार लगता है इवनिंग में आ गई, देखिएगा टाइमिंग बात कितना हो रहा है। तो देखा सूरज तो सर के ऊपर आ गया है, टाइमिंग भी 7:30 बज गया है,
0: वक्त बदल गया। जी आसिफ क्या हाल है भाई, आपका क्या चल रहा है सिलसिला सुबह सुबह?
2: बढ़िया बढ़िया एकदम, वक्त बदल गया, अचानक से हालात बदल गए,
0: जज्बात बदल गए,
2: जज्बात बदल गए,
0: सुबह में शाम हो गई यहाँ पे। जी अच्छा आसिफ, कोई चीज ऐसी होती? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं भाई। मतलब छुट्टी तो नहीं मिली होगी इसलिए कहना, मतलब बिला वजह का ये कि छुट्टी कैसी गुजरी, लेकिन दिन कैसे गुजरे 2 दिन?
2: बहुत बढ़िया है, मेरी तो छुट्टी चल रही है।
0: अच्छा कैसे?
2: क्योंकि जाने का टाइमिंग है ना घर पे, तो मतलब मैडम अभी अपने मतलब अपनी लड़की को मतलब प्रैक्टिस करवा रही है, चल बेटा गाड़ी लेकर।
0: सही चल रहा।
2: मैं परसों बोला मेरी मैडम को, मैडम एनी प्रॉब्लम? बोलती नो। Why you not going with me? बोलती है मैं अभी तेरे साथ में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि तू घर जाएगा, मैं अपनी बेटी को थोड़ा प्रैक्टिस करा रही हूँ, चल यहाँ पर वहाँ, चल वहाँ, चल वहाँ।
0: सही भी चले, रिलैक्स करें आजकल, घूम मतलब अब जाना है तो आपने तैयारी भी करनी है। जनाब बता भी रहे थे कि खूब शॉपिंग वॉपिंग हो रही है आजकल।
2: अरे बहन बहुत दबा के हो गई, अब नहीं, अब उसके आगे नहीं कर सकता।
0: चले हाथ हो गई यानी। अच्छा ये बताएं भाई आसिफ कि कोई चीज ऐसी है जो कि सुबह हो जाए तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, ये क्यों हो गया? है कुछ ऐसा?
2: जी है।
0: अच्छा क्या है वो?
2: बेसुरों की आवाज सुन लेता तो मेरा मूड।
0: बेसुरे लोग? ये कौन से लोग हैं जो बेसुरे हैं, सुबह सुबह आपको आके आवाज भी सुना रहे
2: हैं? ऐसी मतलब जो चीज पसंद है उसके बीच में अगर कोई मतलब ऐसे लोग आ जाते ना कि मतलब सुनते ही दिमाग खराब, मतलब
0: कहीं मुझे तो बेसुरा नहीं कह रहे आप? कहीं मैं तो बेसुरी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आके आपको मूड खराब कर रही हूँ?
2: नहीं नहीं मैम, मजाक से हटके मजाक करो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अगर बोल दिया तो मालूम पड़ा एफएम वाले लोग मेरे को यहाँ से कतल।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम इतने बड़े को डॉन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
2: अरे बहन महवीर जी, मैं आपको बोल भी नहीं सकता क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है।
0: हाँ हाँ वो एक अलग बात है, मतलब लिहाज भी तो है ना।
2: लिहाज जी मतलब आप निकलवाना चाह रहे हो मेरे?
0: नहीं नहीं निकलवाना चाह रही, मैं वैसे ही कह रही।
2: डोंट वरी मैं निकालूंगा नहीं, मेरे को मालूम है।
0: मतलब ये बात मेरे ही बारे में हो रही है आसिफ, और मैं इतना खुश हो रही हूँ देखें। ये एक अजीब बात हो रही है, ये मेरे बारे में अगर बात हो रही है तो मैं उस पर इतना एंजॉय भी कर रही हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल, ये वैसे ही जोक जब बैठता। और दूसरी बात बहन, ये जो सवाल पूछे ना आपने, सुबह हो जाती तो मेरे को ना मतलब पहले आज से मतलब 2 महीना पहले की बात है, जब मेरे को जैसी मैडम का फोन आता था ना, यार सगल सयारा मेरा मूड खराब हो जाता था।
0: ओ ऐसा सीन है।
2: जी जी अभी भी है।
0: सही है। तो अभी मतलब जो है वो ये तो हो भाई, वो काम शाम जब चल रहा हो ना तो बंदे को मतलब थोड़ी कुर्बानियां तो देना पड़ती है। सुबह सुबह उठना अच्छा किसको लगता है?
2: जी मैम पूरा पूरे हफ्ते में नहीं होता है। हाँ। ये जो संडे का दिन आता है ना, संडे का दिन मॉर्निंग उसी दिन होता है बस, पहला दिन, बाकी दिन तो फिर एकदम फ्री माइंड।
0: हाँ सही सही सही है। संडे वाले दिन भाई मतलब अभी वो बता रही हूँ ना, मैं भी कल मतलब सोने के लिए डेढ़ गई थी, सो भी गई थी, लेकिन फिर बीच में आँख खुल गई। उसके बाद परेशानी भाई कि मतलब इतनी तो देर हो चुकी है, अब सुबह आँख कैसे खुलेगी, 2 घंटे रह गए। तो ये होता है संडे वाले दिन ना, क्योंकि आप थोड़ा सा रूटीन चेंज हुई भी होती है सैटरडे को फ्राइडे को, तो जरा मुश्किल से नींद आती है।
2: वही वही हाल है। रात में कल रात में मैं 2 बजे आया और 2 बजे में सोया और फिर उठ भी गया मैं 6 बजे आसिफ। फिर जैसे ही मेरे को एक फोन आया वैसे ही मेरा मूड खराब हो गया। मतलब क्या यार ये फोन क्यों बजता है, क्यों बनाया, किसने बनाया फोन वोन, छोड़ो यार।
0: सही बात है वैसे बाकी, मतलब पहले बंदा कहीं मतलब अगर कहीं चला जाता था तो सुकून से तो रहता था, बोल तो सकता था, घर पे नहीं था, फोन कैसे उठाता, लेकिन अब तो ये मुसीबत हो गई, फोन क्यों नहीं उठाया।
2: मुसीबत हो गई है, मैं सोचता हूँ कभी कभी ये फोन क्यों बनाया, किसने बनाया ये फोन, आखिर क्यों बनाया, क्या वजह थी उसको बनाने की।
0: ये तो है बात सही आपकी, ये बात है। मतलब अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना और आ रहे हो, और अगर आपको कोई फोन करे और आप ना उठा सको क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, तो अगले बंदे का मूड ऑफ हो जाता है। फोन कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठाया, भाई ड्राइव कर रहे थे, फाइन लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन अगले को नहीं समझ में आता।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही है। चले आसिफ, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपने टीम बना दी, टीम बना दिया, बाकी रस्ते में आपकी आवाज से वो कभी फील नहीं हो गया बेसुरे।
0: चले आसिफ थैंक यू सो मच, शुक्र है कि वो मैं नहीं हूँ।
2: दोबारा मत बोले बहन, ऐसा फील हो रहा है दूसरे इतना लोग बोलेंगे, बोले दिल में तो यही बात बोल रहा है
0: यार। नहीं भाई आसिफ के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है।
2: एक बार तुम चले जाते वहाँ भाई के पास, चले जाते बोलते महवीर जी आसिफ आप किसको बोल रहे, तो मैं अगर सोचते अगर हाँ आसिफ किसने अबीर भाई को बोल रहा होगा या तो सरवर भाई को बोल रहा होगा, अपने ऊपर मतलब
0: अपने ऊपर ना लू, मतलब किसी दूसरे पर डाल दू,
2: किसी
0: भी पे डाल देती हूँ। चलो ठीक है ठीक है, मैं सरवर भाई पे डाल देती हूँ। चले भाई थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय जी। तो हमारे साथ आसिफ थे और इसके साथ ही हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, अगले घंटे में आपकी लेते हैं कॉल।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. दिल से देसी.
2: क्रिकेट हो
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
5: की. हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए.
6: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
7: द रिक्वेस्ट शो
6: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ.
7: फजील के साथ
6: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
7: दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
7: FM 107.
0: दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम और मैं आपके साथ एक दफा फिर आ गई हूँ और मेरे पास मौजूद है एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ फ्रॉम कतर और वो ये कि विफाक फैमिली कंसल्टिंग सेंटर जो कि मेंबर है कतर फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क का, इन्होंने लॉन्च कर दिया है 46th एडिशन ऑफ इट्स प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रोग्राम जो कि 8 जून से लेकर 10 जून तक चलेगा लुसेल सिटी में। अच्छा, कि मैं आपको बताती चलूँगी कि ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं इनके साथ मौजूद है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ एंडोमेंट और इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली जो यंग कपल्स हैं ना उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी और स्टेबल मैरिज प्रैक्टिसेस मतलब जो है ना वो इन्हेंस करना है, उनको साथ ही साथ एजुकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो रिसीव करेंगे गाइडेंस कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कि मैरिड लाइफ को आप समझें, उसको जो उसकी लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए और जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप हों। और ये जो सेशंस हैं वो करवाए जाते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स इसमें साथ होते हैं और इसमें फैमिली साइकोलॉजिकल रिलेशंस के भी एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है उसका बेसिकली मकसद ये है कि इंगेज किया जाए न्यूली मैरिड कपल्स को, उनको ये नॉलेज दी जाए, कॉन्फिडेंस दी जाए कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ के जो मैरिड लाइफ है उसके चैलेंजेस को नेविगेट करना है और अपने रिलेशनशिप को एक अंडरस्टैंडिंग अफेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बनाए रखना है। और ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रोग्राम है ये बहुत ही मतलब विफाक का एक मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जिसको बहुत ही रिकग्निशन मिली है, इसमें रौदा अवार्ड भी इनको मिला है इनके सोशल वर्क के तहत और रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई भी कपल्स जो कि शादी करने वाले हैं या नए शादीशुदा हैं वो जाके विफाक का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जाके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रोग्राम का जो मैसेज है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है कि बिकॉज द बिगनिंग ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज स्टार्ट्स विद अवेयरनेस and readiness. Great. Zabardast, usi ke saath humare saath hain caller. Hello, assalamu alaikum.
3: Ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ji, good morning. Kya haal chaal hain? Asmat Afridi humare saath hain. Kaise hain?
3: Ji, ji. Ji, alhamdulillah. Allah ka shukar. Aap khairiyat se hain? Theek hai, mashallah.
2: Alhamdulillah, bilkul theek thaak. Aap bataein kaise hain? Theek thaak hain?
3: बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, लाख लाख शुक्र है और बस गुजर रही है।
2: जबरदस्त जबरदस्त
3: जी,
2: अच्छी गुजर रही होगी है ना?
3: बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी। आपकी कैसी गुजर रही है वीकेंड? अच्छा गया
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र
3: चले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर, नाजिया बहन चली गई और आपको अकेला छोड़ दिया, तो चलो मैंने कहा कि आज हम भी मौके का फायदा उठा लें।
2: सही है, ठीक है। नाजिया के साथ ही हो रहा था ना कि हम साथ में इतनी बातें कर रहे थे, दूसरों को मौका नहीं मिल रहा था।
3: जी, मैं सुबह भी खुद ही आज, क्योंकि सुबह सुबह 6 से 7 टाइम नहीं मिलता मुझे कॉल करने का,
2: लेकिन सुनते हैं
3: तो मुझे थोड़ा सा जी मैं सुन रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि पता नहीं ये अब घंटा गुजरेगा कैसे, लोग कॉल ही नहीं कर रहे हैं कोई।
2: हाँ, मुझे बड़ी एग्जैक्टली वो तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा मैं अपने साथ ना कुछ लेकर आ गई थी साजो सामान, तो उससे मैंने थोड़े 10 मिनट शुरू के निकाल लिए। अब मैं यही करूंगी आज से, मैंने यही सोचा कि स्टार्ट से पहले कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। ऐसा
3: अच्छा था, बहुत अच्छा था और उसमें एक पॉइंट बहुत जबरदस्त था, मेरे जहन से निकल चुका है, मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन मैं ड्राइव पे था, मैं कहा ये लिख लूं मैं, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था लेकिन मेरे जहन से स्किप हो गया।
2: बहुत अच्छी चीज ये है कि वाकई हमें ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के सवाल हमारे जहन में होते हैं, उनके जवाब चाहिए होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है आपको हर सवाल का जवाब मिले, लेकिन आपको हाँ भरोसा इस बात पे होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और ये आपको बाद में पता चलेगा कभी जाके, लेकिन अभी आपको तवक्कुल भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर करना है बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा था, कल ही सोचा मैंने कि ये शामिल करनी चाहिए, क्योंकि होता है ना कि हमारी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उस वक्त मायूस होते हैं, हमें नहीं आंसर्स मिल रहे होते, तो उसके लिए ज़रूरी है एक मोटिवेशन है, एक दूसरे को बतानी चाहिए चीज़ें।
3: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था,
2: बहुत बहुत।
3: और ये लेके आया करें सुबह सुबह ये इस तरह की चीज, अच्छा लगेगा।
2: बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी ताकि जब तक कॉलर्स ना आए मेरा टाइम भी कट जाए।
3: जी बिल्कुल। फिर टॉपिक पे आते हैं।
2: जी
3: तो आज आपका टॉपिक क्या है?
2: आज टॉपिक ये है कि कोई ऐसी चीज जो सुबह सुबह आपका मूड खराब कर देती हो, कुछ हो जाए ऐसा तो नागवारी होती हो कि ये क्यों हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छी शुरुआत नहीं हुई सुबह की।
3: जब काली बिल्ली रास्ता काटे तो।
2: सीरियसली? सच में?
3: नहीं, ये एक टिपिकल, वो एक क्लासिक, क्लासिकल जो हमारा एक है हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक है हमारे यहाँ अभी भी जो है वो हमारे बुजुर्ग लोग ये कहते हैं।
2: जब काली काली भी ऐसा लगता है क्या?
3: नहीं, ये तो खैर
2: मजाक था,
3: तफन्नुन मैंने कहा। जी
2: सही, मुझे भी
3: वाकई में आज तक भी है।
2: अच्छा,
3: आज तक ये चीजें हैं हमारे
2: भाई,
3: यहां।
2: मुझे ना बिल्ली काली हो, भूरी हो, सफेद हो, जैसी भी हो, अगर वो रास्ते में आ जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मूड ऑफ नहीं होता लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ कि मेरे पास ना है। और मजे की बात क्या है कि जितने भी मतलब इस तरह के जितने जानवर है ना, वो जितना मैं उनसे भागती हूँ उतना वो मेरी तरफ आते हैं।
3: नहीं, ये एक होती है अट्रैक्शन होती है ये। खैर, ये तो एक

0: मजाक था, लेकिन वाकई में ये है, ये आजकल भी लोगों के जहन में ये चीज है. लेकिन उसके अलावा जो मैं अपने आप को बताऊं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो पहली चीजें देखी, मुझे ना सबसे, मुझे नहीं बल्कि हर एक एज ए मुस्लिम हम सबको होना चाहिए जब हमारी फजर कजा हो, ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये टॉपिक है, ये उस दिन जो मोटिवेशन का टॉपिक था उसका जो है आज अपोजिट है, मुझे ऐसा लग रहा है.
1: कह सकते हैं आप
0: वो मोटिवेशन था और आज ये इनडायरेक्टली डीमोटिवेशन है, इस तरह कह सकते हैं आप.
1: तो मेरी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन ये कि कोई चीज ऐसी जिससे मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें होती है ना, मतलब एक तरफ आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो दूसरी तरफ किसी चीज को ना पसंद भी करते हैं.
0: जी जी बिल्कुल. तो मेरा अपना ये है कि जब मेरे लिए एक तरह से डीमोटिवेशन, या आपके यानी जो आपका टॉपिक है वो है कि जब मेरा बिस्तर जो है मकनातीस बन जाए और मेरी बॉडी उसके साथ मेरी बॉडी उसके साथ चिपक जाए और मैं उठ ही ना सकूं फिर, ठीक है, तो फिर क्या होता है उससे, ये होता है कि एक तो आपकी फजर गई, ठीक है, आपका एक्सरसाइज करना भी गया, फिर आप बस एक किस्म ऐसा समझे एक बेजान जिस्म है, बस पड़ा रहता है आपका जिस्म, ठीक है, जो फिर सारा दिन आपकी जो बॉडी है फिर सारा दिन वो कोई खैर का काम कर ही नहीं सकता. जब आप इस तरह की चीज कर ही नहीं, जब आप शुरू ही नहीं करेंगे ना,
1: शुरुआत फजर से
0: पड़े रहते हैं, जी जब आप पड़े रहते हैं बिस्तर पर अंगड़ाइयां लेते हुए, करवटे बदलते हुए, जमाइयां लेते हुए, और कोई काम नहीं होता, बस यही, और फिर यही तीनों चीजें जो पूरा दिन आपके साथ चलती है. ये आप कभी देख लें, जब आप सुबह एक्सरसाइज नहीं करते, फजर नहीं पड़ते, तो आप जमाइयां लेते हैं सारा सारा दिन और अंगड़ाइयां लेते हैं और थका थका अपने आप को फील करते हैं. तो ये एक चीज है, एक चीज जो बिल्कुल मैंने फील किया और मेरा भी यही है, जब ये नहीं होता नमाज कजा हो जाए तो ये होता है. अच्छा, उसके अलावा फजर के बाद जब आप एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है, तो आज ही जब मैं एक्सरसाइज पे गया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो डॉक्टर सुफियान है उसका मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने ये चीज बताई कि आप आपके सामने जो भी नेचर आ जाए आप उस पर गौर व फिक्र करें, ठीक है, और हम एज ए मुस्लिम कुरान हमें कहता है और हमें करना चाहिए. तो आज मैंने एक चीज नोट की, आज मैं जब एक्सरसाइज के लिए गया सुबह फजर के बाद, तो मैंने चिड़ियों की एक चहचहाहट सुनी है, आवाज सुनी उनकी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चिड़िया मुझसे कुछ कह रही है, मुझे कुछ बता रही है, कुछ बताना चाह रही है, ठीक है, एक नेचर. तो हर इंसान हमें, तो मैंने ये सोचा कि ये क्या कह रही है, मतलब ये आप देख लें हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के साथ परिंदे और चरिंद परिंद बातें करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के साथ कैसी बातें करती होंगी, ठीक है. तो ये चीज आज मैंने नोट की, मैंने कहा यार ये चरिंद पर, ये जो चिड़िया है और ये जो परिंदे हैं, ये हमसे ये कह रही हैं कि मेरे भाई आप उठें, आपकी वजह से ही हमें रिस्क मिलता है, ठीक है, आप पड़े पड़े ये इंसानों की वजह से, इंसान जो है इसकी वजह से तमाम मखलूकात को रिज़्क दिया जाता है, तो आप उठें सारे मुसलमान, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें और एक्सरसाइज करें और अपने रिज़्क के लिए निकलें, ठीक है, रिज़्क कमाएं क्योंकि आपकी बदौलत हमें रिज़्क मिलता है.
1: Exactly,
0: आप जब नेचर को जरूरी नहीं है कि आप उसकी वो चीज वैसे ही लें, आपको फीलिंग्स आती हैं,
1: असमत अफरीदी के ये एक साइंटिफिक रिसर्च है अभी लेटेस्ट, कि जो चिड़ियों की चहचहाट होती है ना, जो बर्ड सॉन्ग भी जिसको कहते हैं, ये एक तरह का बेहतरीन मेंटल हेल्थ बूस्टर है और स्ट्रेस रिलीवर है, स्ट्रेस बस्टर है. तो ये इसको मतलब अब ये माना गया है कि जो सुबह सुबह जो चिड़ियाँ होती थी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मतलब ना दरख्त बहुत कट गए हैं, अगर आप देखें मतलब शहरी इलाकों में खासतौर पर, मतलब जो ना कराची की मैं बात कर रही हूँ, तो वो चिड़ियाँ भी कम हो गई हैं क्योंकि उनका मतलब जो घोंसला वगैरह बनाती हैं वो उस पे ही बनाती हैं, दरख्तों पे बनाती हैं, तो अब वो आवाजें नहीं आ रही हैं लोगों को, तो एक हद तक मतलब जो है ना एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी आवाज में जहां वो अपनी जबान में इबादत करती हैं, अल्लाह ताला की हमदो सना करती हैं, वहां पे वो आवाज हमारे लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है.
0: Exactly, बिल्कुल ऐसा, ये सारी चीजें यार अब फील करें. अब मैं आपसे ये, मैं चूंकि मैंने फील किया है ये चीज, आप वॉक पे निकले, आप एक टॉपिक उठा के देख लें, एक टॉपिक, मैं क्योंकि रात को शाम को वॉक करता हूँ 6 से 8 घंटे, तो उसमें आप एक टॉपिक उठा के देख लें जो आपको समझ ना आ रहा हो कि यार ये टॉपिक किसी से मशवरा करें, कुछ भी आपकी जिंदगी में मुश्किल है कि यार ये मैंने आज हल करना है, उसको सोचें, मोबाइल साइड पे रखें, दुनिया से कॉन्टेक्ट खत्म, अपने आप पे फोकस करें. आप जब वापस आएंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ सबको कि आपका वो मसला आपको अल्लाह गायब से आपके दिमाग में कुछ डाल देगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है.
1: चलें, गुड, जबरदस्त.
0: तो मेरी टॉपिक, ये बात लंबी हो गई.

है, तो इसमें आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आप जो है पानी अगर बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता तो उसमें आप यूँ कर सकते हैं कि आप स्लाइस ऑफ लेमन ऐड कर लें, आप उसमें मिंट मिला लें, साथ में खीरा वगैरह बना लें, ताकि ये नेचुरल एक कूलिंग भी आपको देगा साथ में। इसके साथ ही भाई आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है फ्रिक्वेंटली। आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पिया, अगर ज़्यादा बड़ी मतलब नहीं पिया जा सकता पूरा ग्लास, तो आप छोटे छोटे सिप्स लेते रहें, वैसे भी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके साथ ही रीयूजेबल वाटर बॉटल आपने अपने साथ रखनी है, ताकि आपके पास हो बॉटल, जहाँ पे भी आपको पानी मिलता है आप रख लें। और आजकल के वेदर में ख़ास तौर पे कैफीन से जितना हो सके बचने की कोशिश करें, चाय कॉफ़ी कम से कम, और क्योंकि ये आपकी बॉडी को ज़्यादा तेज़ी से डिहाइड्रेट करती है, तो इसलिए आपने पानी पीते रहना है, ख्याल रखना है अपना। और अगर आप कॉफ़ी पीने भी वाले हैं तो उससे भी पहले एक ग्लास जो है ना पानी का आपने ज़रूर पीना है, उसके बाद चाय मतलब आप कॉफ़ी पी लें, लेकिन कम से कम रखें। अच्छा जी, हम आ जाते हैं, कहाँ एक कॉलर हैं हमारे साथ, बल्कि चले गए, तो चलें फिर हम म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलते हैं।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: हाय जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM. एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ और अभी मेरे पास मौजूद है हमारा सेगमेंट फिक्स इट. और आप अगर मॉर्निंग में फील करते हैं बहुत ज़्यादा रश, स्ट्रेसफुल या फिर आउट ऑफ कंट्रोल, तो मैं आपके मतलब जो हमने आज सवाल भी किया हुआ ना आपसे कि मूड किस बात पे ऑफ हो जाता है, तो अक्सर लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक यही था सिलसिला कि भाई मतलब अगर मतलब जल्दी आंख ना खुले, आंख देर से खुले तो फिर मूड ऑफ हो जाता है इस बात पे. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भाई मतलब अपना जो मॉर्निंग रूटीन है ना उसको थोड़ा एक दिन पहले से बनाना शुरू कर दें. मतलब वो कैसे, ये कि जैसे अभी मैं कल बता रही थी कि हम लोग करते क्या है, सैटरडे को भी देर से उठ रहे हैं फिर हमें रात में नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए सबसे बेहतर तो यह है कि आप सैटरडे मॉर्निंग को भी जरा जल्दी उठने की कोशिश करें ताकि आपको रात में आराम से नींद आ जाए. थोड़े थोड़े से सिंपल चेंजेस लाके ना आप अपनी सुबह का अच्छी तरीके से आगाज कर सकते हैं, मतलब जिसमें सुकून भी होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगी और उसके साथ ही आपको ज्यादा प्रोडक्टिव आप अपने आप को फील करेंगे. सबसे ईजी, जैसे एक दिन पहले आपने जो है वो उठना है, छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, फिर अपने जो भी जाने के कपड़े वगैरह हैं वो आप पहले से तैयार करके रखें, अपना बैग आपका पैक हो और जो सिंपली जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपके सामने सामने मौजूद हो ताकि आपको उनको ढूंढने में एक्स्ट्रा टाइम ना लगे और स्ट्रेस आपको मॉर्निंग में ना हो. इसके अलावा मतलब अभी जैसे असमत आफरीदी की कॉल थी और कह रहे थे कि मतलब वो वॉक करते हैं सुबह सुबह, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. और कोशिश करें कि अपना जो अलार्म है ना वो सुबह 15 मिनट पहले लगा लें. ये जो एक्स्ट्रा मिनट्स हैं ये थोड़ा सा आपको आराम से उठने में मदद देंगे. आप थोड़ा सा मतलब 5 मिनट अगर सुस्ता भी लें तो थोड़ा मसला इतना ज़्यादा नहीं होगा आपको, आप आराम से उठेंगे, तैयार शैयार होंगे और निकल जाएंगे. इसके साथ कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट अपना इंजॉय करें, नाश्ता करके ज़रूर निकलें घर से. इसके साथ ही अपनी नमाजों वगैरह का ख्याल रखें. सुबह की नमाज बाकी आपका पूरा दिन बनाए रखती है. अगर सुबह की नमाज आपने पढ़ ली है तो वो फिर पूरे दिन में ना एक बरकत भी आएगी, सुकून आएगा, आपको खुशी रहती है पूरे दिन कि आपने नमाज पढ़ ली. और कभी मिस हो जाती है जैसे अक्सर हमारे लिसनर्स कह रहे हैं तो फिर वाकई बहुत बुरा लगता है. इसके साथ ही अक्सर लोग जो है ना अपने फ़ौरन ही सुबह उठते अपने फ़ोन चेक करने लगते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही आपको एक स्ट्रेस देता है और साथ ही डिस्ट्रैक्शन देता है, उसकी वजह से आपके काम लेट होते हैं. तो कुछ देर के लिए मोबाइल को बिल्कुल देखना भी नहीं है, चार्जिंग वगैरह पे लगा दें, रात भर ना छोड़ा करें चार्ज पे, और बिल्कुल मेंटल पीस के साथ पहले अपना काम शाम कीजिए. उसके बाद फिर आप जब चीज़ों से फारिग हो जाएं तो फिर आप खोल के ये देख लीजिए कि आज का मतलब जो है ना ट्रैफिक रूट वगैरह का कुछ आप देख लीजिए. ज़्यादा सुबह सुबह मोबाइल का इस्तेमाल ना किया करें. और इसके साथ भाई मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी मॉर्निंग ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी. कॉलर है उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी मॉर्निंग रूटीन कैसी रहती है और कोई रुकावट उनको फील होती है क्या. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
0: जी समद, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक.
1: मतलब माशाल्लाह से जो है आजकल आप बहुत सुबह में बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हैं. मतलब पिछले आधे घंटे से मैं जो है कंटिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ.
0: पता है क्या, सुबह के आधे घंटे में ना बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान तो मुझे लग रहा था लोग गायब हो गए आज. मतलब नाजिया के वेकेशन पे गई, साथ में लोगों को भी ले गई.
1: नहीं नहीं, वो वक्त होता ही है कि सबके अपनी ड्यूटीज की जो है तैयारियों में जुड़े रहते हैं कि भाई कोई जो है नाश्ता बनाता होता है या फिर कोई आयरनिंग करते होता है या फिर कोई गाड़ी वॉश करते रहता है, तो वो वक्त जो है कुछ इस तरीके की मसरूफियात का होता है. सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात होती है, या कोई बिस्तर पकड़ा होता है तो सबका अपना एक है, समझिए.
0: जी जी, ये तो है, सही है. तो आप बताएं भाई, कोई मूड खराब होने वाली चीज है आपकी लाइफ में जो सुबह सुबह हो जाए तो जिससे थोड़ा सा मूड खराब हो जाता हो, नागवार गुजरता हो?
1: देखिए, अब ये पहली चीज तो ये डिपेंड करता है कि हम जो है एक तरीके से उस चीज के ऊपर में रिएक्ट करते हैं. तो मैंने पिछले वाले हमारे कॉल्स में शायद मैंने बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि हमको चाहिए कि कौन सी बात पे हम उसको कितना इम्पोर्टेंस दे, कैसा रिएक्ट करें, उस हिसाब से आपका मूड चलेगा, मेरा ये मानना है. अब हम छोटी छोटी चीजों को भी देखकर मूड खराब कर लेंगे तो ये तो फूफा वाली बात हो जाएगी.
0: सही सही,
1: जो है वो क्या कहते हैं वो घमंडी दामाद वाले टाइप हो जाते हैं ना कि हर छोटी बात में नाराज हो जाना. तो मेरा ये है कि कोई भी छोटी चीज हो जाती है तो उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज से आपका मूड खराब हो जाएगा. तो उस आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बेहतर है कि उस चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें. हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इंसान है, हो जाता है कभी कभी कोई चीज बात जो है एकदम से हमें पसंद नहीं आती है तो और हम उसके ऊपर में फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं और उसके चलते हमारे दिन की मम्मी सिस्टर हो जाती है.
0: हाँ, अच्छा पता है क्या, वाकई

0: मतलब अगर आप अपना मूड ऑफ करोगे ना तो उसमें आपकी अपनी सेहत को ज्यादा नुकसान है. अगर आपका फ्रिक्वेंटली मूड ऑफ रहना शुरू हो गया, जैसे मैं बोल रही थी ना मुनीबा से बात करते हुए कि एक वक्त था मतलब छोटे बच्चे छोटे होते हैं ना तो इतना बेचारे, खैर मेरे बच्चे बड़े मासूम से रहे बचपन से, लेकिन मेरा एक मूड पता नहीं बल पड़े रहते थे माथे पे ना. फिर मैंने खुद ही फील करना शुरू किया कि भाई मेरा किस बात पे इतना मूड ऑफ रहने लगा है. मतलब काम है, सही है, चीजें होती हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना शुरू करते हो ना तो बच्चे भी आपके साथ टेबल होते हैं, आपको खुद भी अच्छा लगता है. उससे पहले आप खुद भी चिड़चिड़े से हुए हुए होते हो जो कि सेहत के ऊपर अच्छा असर नहीं डाल रहा होता.
1: ये जो मूड्स का जो सीन है ये बड़ा डेंजरस है. आपने जैसा बताया है, क्योंकि इंसान का मूड जो है मतलब ब्लड प्रेशर से कनेक्ट हो जाता है बेसिकली. कि आप कोई भी चीज रहेगी छोटी छोटी चीज पे जो है वो
0: ट्रिगर हो जाएंगे
1: रहेंगे. और आपके साथ में भी ना जो लोग रहेंगे वो सब लोग भी जो है क्या कहते हैं अपने छिड़छिड़े होना शुरू हो जाएंगे. क्या है भाई, हमेशा नाराज रहते हैं.
0: हाँ.
1: कुछ ना कुछ गिला शिकवा इनके साथ लगे ही रहता है.
0: हाँ.
1: तो ऐसे चीजें मतलब सुबह उठो तो इनके इनको कुछ पसंद नहीं आता, बाद में कुछ पसंद नहीं आता. तो ये तरीके से जो है लोग भी आपकी जिंदगी से दूर होना शुरू हो जाते धीरे धीरे.
0: ऐसा है बिल्कुल.
1: बज़ाहिर तो सब मिलेंगे अच्छे से, लेकिन आपस में जो अपना होता है ग्रुप, जो ग्रुप में हुआ करते थे आप, वो ग्रुप में डिस्कस हो रहा है कि ये बंदा बदल गया है, ये बंदी बदल गई है, ऐसा वाला टाइप में. खैर, तो मूड को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अस्तगफार पढ़ें, ठंडा पानी पिएं और अपनी जगह बैठें आराम से. कुछ देर जो है जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ दें और लंबी सांस लें एकदम अच्छे से. उसके बाद में फिर जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपना काम करें.
0: सही हो गया, सही हो गया. चले जी समत, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बाकी सबने बहुत अच्छा कहा है. कुछ जो है अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली आज सबने जो है, बहुत अच्छी ज्ञान वाली बातें बेली आज माशाल्लाह से. मैंने कहा कि भाई चलो ये सही है, सबसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है.
0: हाँ.
1: और अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं समझता हूँ कि भाई अब कल जो है एक अच्छी पॉजिटिव वाली टॉपिक,
0: पॉजिटिव वाली इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अभी बेसिकली हम हफ्ते भर के बना के पहले से दे देते हैं, मुझे तो याद भी नहीं कल क्या होने वाला है. तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि कल सैटरडे को मैंने अगला हफ्ता मतलब जो अभी आएगा संडे से थर्सडे वो मैंने बना के भेजा, तो वो मुझे किसी हद तक फिर भी याद है, लेकिन इस हफ्ते का बिल्कुल ही कुछ याद नहीं है. तो कल देखते हैं क्या होने वाला है, सरप्राइज होगा. ठीक है, चले रही है. लेकिन अगले हफ्ते के ना टॉपिक कुछ बड़े मजे के हैं, तो अगले हफ्ते जरा ज्यादा जो है वो मजे के मतलब कुछ अलग से हैं, थोड़ा मजा आएगा.
1: सही है, आप सेम टाइमिंग पे हो?
0: हाँ, 6 से 9. हाँ, 6 से 9.
1: अच्छा चलें, ठीक है
0: चलेंगे समत, ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. राइट, तो हमारे साथ समत थे और आपके मैसेजेस भी हैं, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं. लेकिन ऐसा करते हैं अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम अपना कुछ गेम का भी आगाज़ करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मैं आपसे एक गाने गैस करवाऊंगी, बेसिकली थोड़ा सा म्यूजिक सुना के अपने गाना बता रहे हैं, सिंपल ही होगा, ये पता ही होते हैं गाने इतने सुने हुए होते हैं, वही वाले चलाऊंगी. ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद हम वापस आते हैं. सुनते रहे एफएम 107 धुलसे देसी.
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो. कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें. सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें. किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें. स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके. दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों. दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो. स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें. ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं. स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है. स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे. एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए. इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं. सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें. FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले.

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर। दिल से देसी
2: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और मेरे पास मैसेजेस हैं आपके, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ आप मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे। अच्छा जी, कैसे हैं, कैसे हो महविश बहन? और आज थोड़ा फील हो रहा है कि इवनिंग में आई हो, आसिफ किसी आसिफ का मैसेज होगा ये। इसके साथ ही भाई अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आ गया जासिम का। जासिम वालेकुम सलाम, आपके क्या हाल चाल हैं? अफरोज खान चकवा कहते हैं अल्लाह पाक का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, खैरियत से हैं और तू हुई है मेरी शब। अच्छा ये गाना सुनना चाहते हैं, मैं अभी देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो फिर बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, देखते हैं अभी थोड़ी देर के। और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा मूड ऑफ होता है जब कोई बगैर पूछे फ़ोन काट दे

0: कटता है तब मूड ऑफ हो जाता है. मैंने तो आपका कभी फोन नहीं काटा ना. नूर मोहम्मद है ये. नूर मोहम्मद के अलावा मेरे पास है मैसेज, गुड मॉर्निंग रविंदर सिंह सिद्धू यूएई, और ये कहते हैं वहां से मैसेज कर रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, आपको भी गुड मॉर्निंग. चलिए जी तो फिर कॉल लेते हैं आपकी और देखते हैं कि कॉल कौन करता है और वो हमारा गाना गेस कर सकता है कि नहीं कर सकता. तो मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ. आप 443-443-77 पे हमें कॉल कर सकते हैं. मैसेजेस भी हम आपके साथ साथ पढ़ते रहेंगे लेकिन कॉल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है. जो भी गेम खेलना चाहता है तो जल्दी से आ जाए. चलें आ गए हमारे कॉलर, देखते हैं कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बस नाजिया जी के ऊपर शायरी बोल रहे थे ना, तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम. पहले तो अकेले हम, आज भी अकेले हम.
0: हाय हाय हाय, मतलब इतना अकेला कर गई नाजिया आपको?
1: नहीं आपके लिए मैं बोल रहा
0: हूँ. अच्छा मेरे लिए था. अच्छा हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है. जी नाम बताएं भाई. नूर बात करें क्या?
1: नूर मोहम्मद.
0: नूर मोहम्मद बात कर रहे हैं, सही सही. तो कैसे हैं भाई, क्या चल रहा है, सब सेट है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी क्लास होने वाला है आपके साथ साथ मेरा भी.
0: हाँ सही है सही है. चले मतलब सही सेम सेम टाइम पर होगी ड्यूटी. खलास चले गुड जबरदस्त. अच्छा तो मैं आपको गाना सुनाऊं, मतलब थोड़ा सा मैं आपको म्यूजिक सुनाऊंगी, आपने गेस करना है फौरन से कि कौन सा है. चलाए चले कोशिश करिए कीजिए आप. हाँ पास हो गया. नहीं पास का सिलसिला नहीं, मैं एक ही सुनाऊंगी, आपने वही गैस करना होगा, बहुत सारे नहीं होंगे. हाँ कुछ आ रहा है जिन में, कुछ आ रहा है? एक दफा फिर सुनाओ.
1: नहीं नहीं बस हो गया, एक बार वो सब बहुत पुराना गाना है मुझे लग रहा है.
0: हाँ है तो पुराना, है तो पुराना. नहीं समझ में आया, चलें फिर हम दूसरे कॉलर को मौका देते हैं. चले थैंक यू नूर, थैंक यू जी, बाय बाय. राइट तो आप अगर कॉल करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपने समझ लिया है गाना तो जरूर कॉल कीजिए और बताइए हमें कि कौन सा सॉन्ग है. अच्छा तो एक और कॉलर आ गए, उनको देखते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, मैं खुश रहेंगे ही ना.
0: बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला.
2: गाना इतना फेमस गाना है, बड़ा ही अच्छा. लेकिन इस तरह के देखो आपने जो सॉन्ग लेकर आए ना, तो ये थोड़ा ना पार्टिसिपेट करने का मजा ही हो रहा था. और ये जो नए जमाने के सिंगर है ना, ये मतलब अभी जो रिसेंटली जो है ना, कौन सा कक्कड़ कौन सा पक्कड़ पता नहीं क्या जो है, वो सर पे से जाते हो तो पता नहीं. और मैं तो बोलता हूँ मैं तो कभी इनको कभी भी नहीं सुनू, कोई पैसे भी दूंगा तो नहीं सुनू मैं तो. हाँ हाँ, ये जो गाने हैं तो आदमी एंजॉय करते हैं ना, ये सब गाने गाने की मीनिंग होती थी. ये सब गाने रेडियो की रस्ता है, और ये जो सिंगर्स है लीजेंड जो सिंगर्स है, और उनके गाने तो आप आज भी ले लो, कोई भी म्यूजिक को आप ले लो तो आप इन्हें एंजॉय करते हो.
0: अच्छा चलो एक सुना के और देखू मैं आपको. आपने वो तो पिछले वाले का कर लिया, दूसरा एक और सुनाऊं, देखती हूँ कि वो आप गेस करते हैं कि नहीं करते.
2: जी जी जी
0: चलें

0: आया कुछ जहन में?
1: नाइन्टीज का है
0: तो नाइन्टीज का, लेकिन कौन सा गाना है ये बताएं?
1: ये नहीं नहीं यार, सर पे से जाए
0: नहीं, नहीं समझ में आ रहा।
1: शाहरुख खान हो मेरे ख्याल है।
0: हाँ नहीं, शाहरुख खान नहीं है, कोई और है। चलें कोई मसला नहीं सलीम, हम दूसरे को मौका देखते हैं देखते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा गेस किया वाला, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। रोहित जी तो हमारे साथ शहजादा सलीम थे, और अगर आपने ये वाला गाना मतलब अगर आपने कुछ महसूस हो, अगर आपको हो गया है कि कौन सा गाना, अगर नहीं समझ में आ रहा ना गाना, तो कम अज़ कम मूवी ही बता दें, एक्टर ही बता दें कि किसके ऊपर है ये, ठीक है? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो लोग कॉल कर रहे हैं 6622107 पे, नहीं भाई नंबर है हमारा 4434377, तो इस पर कॉल कीजिए। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग भाजी, कैसे हैं आप? होप वेल, और वेलकम टू समर मॉर्निंग, हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और नाजी जी खैर, इंशाल्लाह खैर से पहुंच गई होंगी, नहीं अभी पहुंची नहीं, आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है, जो मुझे बताया था रिता याद पड़ रहा है, आज शाम की फ्लाइट है, तो अभी पहुंची नहीं होंगी, लेकिन ये कि अभी तैयारियां शैयारियां चल रही होंगी, हो सकता है नींद पूरी कर रही हो, अभी सो रही हो,

और इंशाल्लाह हां तो प्लीज कन्वे माय विशेस टू हर बिल्कुल जी और सुबह-सुबह मेरा मूड तब खराब होता है जब कोई ऑफिशियल कॉल आती है ऑफिस स्टार्ट होने से पहले ही कॉल आ जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है सही मोहम्मद यूसुफ और इसके साथ ही री बाजी लक हो या बैड लक सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है बिल्ली काली हो या सफेद हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता हां वो भी तंजी कर रहे थे अच्छा जी इसके साथ ही मेरे पास है मैसेज ये किसका है ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल आजिज उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरा मूड खराब होता है जब किसी को नमाज के लिए उठाया हो वो ना उठे तो मेरा मूड खराब हो जाता है खूबसूरत सॉन्ग मेरे रक्षे कमर थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया और कॉल कर सकते हैं आप 4434377 पे जल्दी-जल्दी कॉल कीजिए वरना फिर हम सॉन्ग की तरफ बढ़ जाएंगे और गुड मॉर्निंग जी सुबह-सुबह वाइफ का फोन आ जाए तो मूड खराब हो जाता है ये कौन है जसविंदर सिंह मतलब आपने ये मैसेज जो है वो भेज दिया हमने ऑन ईयर पढ़ लिया आप सोचें कि अगर वाइफ ने सुन लिया तो फिर क्या होगा और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू का मैसेज मुझे किया है हिशाम ने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हिशाम क्या हाल चाल हैं आपके ठीक ठाक हैं अफरोज संतकवा कहते हैं ओके मतलब ठीक है चलाते हैं आपका गाना थोड़ी देर में कोशिश करते हैं अच्छा जी और मैम गाने के अलावा और कोई दूसरा गेम ले आओ ना हां आज गाना है कल गाना नहीं होगा कल हम आपसे कुछ और पूछेंगे ठीक है अच्छा जी तो इसके साथ ही हम चलते हैं ऐसा करते हैं कि म्यूजिकल ट्रैक की तरफ और तू है शब मैं ढूंढ लेती हूं अगर मुझे फौरन से मिलता है तो फिर मैं उनकी रिक्वेस्ट ही पूरी कर दूं इस दौरान ताकि वो भी सुन लें तो देख लेते हैं अगर मिल जाता है फटाफट हां तू है शिखर मिल रहा है कोई वो कहां है

राइट, और आई थिंक मुझे मिल गया यही वाला है ना. इंजॉय कीजिए फुरसान चकवा, और आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर चाहते हैं गेम में पार्टिसिपेट करना. देखते हैं कि कौन कितने गाने बूझ सकता है. अगर एक सही रहेगा तो फिर मैं दूसरा सुनाऊंगी.

0: जी राइट हमारे साथ हैं कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम गुड मॉर्निंग राज है
0: गुड मॉर्निंग राज क्या हाल चाल है ठीक ठाक है
1: बढ़िया एकदम बढ़िया
0: जबरदस्त अच्छा गाना गेस करने के लिए तैयार है आपको कुछ समझ में आया था अभी जो मैंने चलाया था सुना था आपने
1: आई थिंक इट इज वी आर मेड फॉर ईच अदर
0: राइट बिल्कुल बिल्कुल ये सही है लव मूवीज है

0: अच्छा अच्छा दूसरा मैं आपको सुनवाती हूँ, आपने गेस कर लिया सही। ओए होए होए ये तो मैंने असल गाना ही चला दिया, अब ये वाला नहीं चला सकते। अच्छा ये वाला सुने। सही होनी राइट, बिल्कुल राइट। और देखते हैं नेक्स्ट। कल होना हो, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर एक और
1: पहला नशा
0: राइट भाई, सभी आपने सही था, बिल्कुल गैस कर लिया सही, बिल्कुल यही थे। जबरदस्त भाई, आपने तकरीबन कितने गाने गैस किए? सयोनी, वी आर मेड फॉर ईच अदर, कल होना हो, पहला नशा, मतलब चार गाने मैंने यही रखे हुए थे। मुझे लग रहा था कि सब तो नहीं गैस कर सकेंगे लोग। लेकिन आपने सभी कर लिए, जबरदस्त रात,
1: जबरदस्त।
0: और आप बताएं कि अगर सुबह सुबह कोई चीज ऐसी हो जिससे मूड ऑफ हो जाता हो तो कौन सी होती है, कोई है?
1: मैं अपना अलार्म सेट करके सोता हूँ, तो उसके बीच में अगर कोई कॉल कर लिया तो डेफिनेटली वो स्लीप ब्रेक हो जाता है, तो अपसेट होता हूँ, अदरवाइज नथिंग।
0: सही सही, तो आप अपना फोन साइलेंट करके नहीं सोते?
1: कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, किसी की कुछ पता नहीं चलता ना, अभी फैमिली इंडिया में है और कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, तो फोन साइलेंट में नहीं रख सकता।
0: फोन साइलेंट पे नहीं रख सकते, सही सही। हाँ ये बात तो है बिल्कुल आपकी, कि थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है इस बात का कि फोन साइलेंट कर दो, लेकिन फिर भी मैं साइलेंट करती हूँ, क्योंकि बाकी मतलब बहुत एक ना इरिटेशन होती है अगर आपको कोई बिल, और लोग पता नहीं मतलब रॉन्ग नंबर आ जाते हैं आपके पास बाद अवकात जब आप सोने लेटे हो तो।
1: यस,
0: है ना ऐसे?
1: हाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंडिया में तो आपको हर 10 मिनट में बैंक का कॉल, आपको लोन चाहिए, ये चाहिए बोल के
0: हमारे साथ राज थे, मैंने थोड़े बहुत ही गाने निकाल के रखे थे, मुझे लगा था कि मतलब ये सब तो नहीं गैस कर सकेंगे, मैं थोड़े बहुत निकाले थे, लेकिन इन्होंने राज ने सारे के सारे ही बूझ लिए, इनको फौरन से समझ में आ गया, एक गाना तो मैंने वैसे ही चला के जाया कर दिया। अच्छा जी, तो आज का मतलब यही सिलसिला था, अभी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रिम में इम्प्रूव करूँगी थोड़ा बहुत जो है जो हो सकता है बेहतरी, बाकी मैंने सोचा है कि वो हालात थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जो ऑलरेडी हमारा चल रहा था, तो हम कोशिश करेंगे कुछ थोड़ा सा अलग अलग करवाएं। कल मैं आपसे कोई पर्सनैलिटी वगैरह गैस करवाऊँगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम पढ़ते हैं एक और म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, इंजॉय कीजिए, साथ रहिए, सुनते रहें FM 107। कॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अभी हम चलेंगे एक गाना सुनकर आते हैं।

40 दिन तो बनते हैं जिसमें हम और आप साथ रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सफर अच्छा गुजर जाएगा, रोजाना ही आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और आप लोग कॉल करते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल, अब थोड़ी देर के बाद आप न्यूज़ सुनेंगे 9 बजे वाली सुबह की खबरें, तो वो सुनिएगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मिलते हैं कल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक अगर नाश्ता नहीं किया है तो अच्छा सा एक नाश्ता कीजिए, और अगर आप मतलब कहीं बाहर से अभी ड्यूटी वगैरह अंजाम दे कर आ रहे हैं तो नाश्ता करने के बाद फिर आराम कीजिएगा आराम से, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। चले दी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.

0: चैंपियनशिप जो IHF मेंस सुपर ग्लोब के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है, कल से कुवैत में शुरू हुई और 17 जून तक जारी रहेगी। इस साल के टूर्नामेंट में 7 क्लब्स हिस्सा ले रहे हैं, कुवैत के कुवैत SC और बुरगान SC, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का अल शारजा, बहरीन का अल नजमा, सऊदी अरब का अल खलीज और कतर के नुमाइंदे अल दुहैल और अल अरबी क्लब्स। रशिया की मीरा आंद्रीवा ने, जो इस वक्त दुनिया की नंबर 8 खिलाड़ी हैं, रोला ग्रानो में सीजन के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का अपना पहला खिताब जीत लिया। उन्होंने हफ्ते को रोज फाइनल में पोलैंड की माया चोलिंस्का को सीधे सेट्स में शिकस्त दी। शुभमन गिल और KL राहुल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसकी बदौलत इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट के पहले दिन के खत्म होने तक 368 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन का स्कोर बना लिया है। और फ्रेंच ओपन के मेंस फाइनल में आज फ्लाबियो कोबोली का सामना अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही, आप सुन रहे हैं FM 107 अबव न्यूज़ हेडलाइंस, समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन समेख अलमर्री ने जनेवा में जारी बैन अल-अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस के मौके पर जमहूरिया कैमरून के वज़ीर मेहनत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ ग्रेगोर वाना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मेहनत के शोबे में बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने कल खलीज तआवुन कौंसल के रुकन ममालिक के वज़राए मेहनत के 64वें राबता इजलास में शिरकत की। ये इजलास मेहनत के शोबे से मुतालिक बैन अल-अक़वामी इजलासों में ज़ेर गौर आने वाले उमूर पर मशावरत और बाहमी राबते के लिए मुनाकिद किया गया। रियासत कतर ने ईरान की जानिब से रियासत कुवैत और ममलकत बहरीन पर बार बार किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की है और उन्हें दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। रियासत कतर ने लुबनान के शहर नबतिया जाने वाली खरदली नबतिया शाहरा पर लुबनानी फ़ौज की गश्ती दस्ते को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में 2 अफसरान और 1 फौजी जाँ बहक हो गए। और अमेरिकी फ़ौज ने आज ऐलान किया है कि उसने अबनाए हुरमुस की जानिब भेजे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है, जिन्हें बैन अल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए ख़तरा करार दिया गया था। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारे साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया टीम से मोहम्मद शान और न्यूज़ रूम से इस्माइल खान, मोहम्मद अमीन और मैं फरकान शाहिद, अगली मुलाकात तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मिशाल बाशिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिशाल बाशिम नाम से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुताज बाशिम का छोटा भाई। और मुताज बाशिम जैसे नो हाई जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड टाइटल या ओलंपिक टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं, वहीं मिशाल बाशिम भी कतरी फुटबॉल के साथ कई ऐसे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और गोलकीपिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स कतर हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, और बेहतरीन गोलकीपिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो मिशाल ईसा बाशिम है और वो कतर नेशनल फुटबॉल टीम के एक अहम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इसी महीने, और इसी महीने में कतर का अगर मैं नंबर वन गोलकीपर के तौर पे देखूं तो मिशाल का ही नाम आता है। मिशाल ने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत और लगन से प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र तय किया था। मिशाल ने कतर स्टार्स लीग में असद क्लब की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। गोलकीपिंग के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस, कॉन्फिडेंस और प्रेशर में बेहतरीन सेव्स करने की सलाहियत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, यानी दूसरे गोलकीपर से अलग बनाती है। दूसरे गोलकीपर्स की बात करूँ यहाँ पे, उनसे कई मुख्तलिफ इनके परफॉर्मेंसेस हैं और लोग, एक्सपर्ट्स, फैंस और उनके चाहने वाले भी कहते हैं कि डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कतरी फुटबॉल। उन्होंने AFC एशियन कप और कई इंटरनेशनल मैचेस में कतर की नुमाइंदगी की और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ये 2024 में जो एशिया कप हुआ था कतर में, उसमें मिशाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है। मिशाल को डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मिसाल माना जाता है। फुटबॉल फील्ड में उनका काम, एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटी टीम को मजबूत बनाती है। वो नौजवान फुटबॉलर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कतर में फुटबॉल को करियर बनाना चाहते हैं। आज मिशाल बाशिम कतर फुटबॉल का एक रोशन नाम है और उनकी परफॉर्मेंसेस मुल्क के फुटबॉल फ्यूचर के लिए उम्मीद की नई किरण समझी जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि जिस्मानी सेहत जितना ही अहम है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये है ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ सिर्फ ज़हनी बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी फलाह व बहबूद का एक अहम हिस्सा है। अच्छी ज़हनी सेहत हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने, बेहतर फैसले करने और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखने में मदद देती है। जिंदगी में किसी हद तक परेशानी या फिक्र महसूस करना मामूल की बात है, लेकिन जब फिक्र, खौफ या घबराहट मुसलसल रहने लगे और रोज़मर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने लगे तो उसे एंजाइटी या बेचैनी की कैफियत कहा जाता है। इसकी अलामत में दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बेसुकूनी महसूस करना, नींद में खलल और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, या कंसंट्रेट करने में दुश्वारी महसूस हो, और हर वक्त फिक्रमंद रहना शामिल है। डिप्रेशन

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन व हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्टों और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरब मुस्लिम स्कॉलर की जो इस्लामिक पॉलीमैथ, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर हैं, जिनको साइंटिफिक वर्ल्ड में उनके दिए हुए कंट्रीब्यूशन के चलते याद किया जाता है। एक ऐसे साइंटिस्ट जिसने अपनी काबिलियत और अपनी की गई इजादों से पूरी दुनिया को साइंस की एक नई राह दिखाई और जिसके बताए गए उसूलों को हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया को कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, चश्मा और यहां तक के आंख की सर्जरी में मदद मिली। जी हां दोस्तों, ये

साइंटिफिक हैं इब्न अल हेतम। दोस्तों इब्न अल हेतम की जिंदगी के कई तफासिल वक्त के साथ खो गए हैं। उनकी जिंदगी के हवाले से जो कहानियां पेश की जाती हैं वो अक्सर मुतनाजा होती हैं, जो हिस्टोरियन इन्हें बयान करते हैं उस पर मबनी होती हैं। इब्न अल हेतम के हवाले से जो ज्यादा मालूमात मिलती हैं वो तहरीर की गई हैं 13th सेंचुरी के मुस्लिम हिस्टोरियन इब्न अल किफ्ती के कामों में, जो 1772 से 1248 तक जिंदा रहे। दोस्तों शुरू में इब्न अल हेतम को सिविल सर्विसेज का काम सीखने को दिया गया था और इन्हें बसरा का काजी भी बनाया गया था। उस वक्त के मुख्तलिफ मजहबी हरकतें और इख्तलाफी नजरियात के बावजूद इन्होंने मजहबी तालीम से नफरत करते हुए अपना वक्त और मेहनत साइंस के इल्मों में लगा दी। उनकी मैथ और फिजिक्स में महारत मशहूर हुई और वो इराक, सीरिया और इजिप्ट में काफी मशहूर हो गए। दोस्तों इब्न अल हेतम को इजिप्ट के फैतमिद कैलिफ अल हाकिम बे अम्र अल्लाह ने नाइल के पानी की लहरों को रेगुलेट करने में मदद के लिए बुलाया था। अल हाकिम जो कि एक शिया और इस्लामी सेक्शन के थे, एक अजीब और गरीब हुक्मरान थे जिन्होंने कई महंगे हुकूमती इल्जामात जारी किए, जैसे कुछ खानों की खपत पर पाबंदियां लगा देना, औरतों को उनके घरों से निकलने से रोकना, कुत्तों को मार देना और लोगों को रात के वक्त काम करने और दिन के वक्त आराम करने की तकरीरें देना। वो काफी शदीद और परेशान थे और अपने उस्तादों और मिनिस्टर्स को भी कभी कभी बेसबब मार डालते थे। दोस्तों जब इब्न अल हेतम ने नाइल के पानी को रेगुलेट करने के लिए अपना तजजियात का काम किया और ये देखा कि उनका प्लान अस्वन के पास डैम बनाने का नामुमकिन था, तो उन्हें अपनी जान का खौफ हो गया। अपने टेम्परमेंटल और मेंटली अनस्टेबल मालिक के घर से बचने के लिए उन्होंने पागलपन का नकल किया। उनसे उनके सामान और किताबें छीन ली गईं और उन्हें 10 साल तक घर के अंदर कैद कर लिया गया और 1021 में अल हाकिम को कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मार दिया गया। उनकी घर अरेस्ट से रिहा होने के बाद वो कैरो के अजहर मॉस्क के करीब एक डोम शेप्ड बिल्डिंग कुब्बा में रहते थे, जहां वो रिहाई के बाद रियाजी और फिजिक्स की तालीम देते, साइंस पर किताबें लिखते और किताबें निकाल करके पैसे कमाते। अपनी कैद के दौरान उन्होंने अपनी असरदारी किताब किताब अल मनाजिर यानी बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी। इसके अलावा उन्होंने कई अहम किताबें और चैप्टर्स लिखे जो फिजिक्स, रियाजी, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, तिब, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, विजुअल प्रिसेप्शन और ऑप्थोमोलॉजी पर मबनी थे। उन्होंने साइंटिफिक तरीके का तारुफ भी दिया। इब्न अल हेतम एक मुफस्सिल मुसन्निफ थे। उन्होंने 200 से ज्यादा कामों पर लिखा जो मुख्तलिफ माज़ों पर मबनी थे, जिसमें कम से कम 96 उनके साइंटिफिक काम मालूम हुए हैं और इनमें तकरीबन 50 आज तक जिंदा हैं। उनके जिंदा काम का एक अहम हिस्सा रियाजियत पर था, 23 कामों का ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से था और 14 कामों का ताल्लुक ऑप्टिक्स से था और कुछ दूसरे साइंस के शोबों में भी काम किया था। उनके तमाम काम अभी तक तजावीज नहीं किए गए, मगर कुछ उनके सबसे अहम काम नीचे दिए गए हैं। आइए उनके कुछ सबसे अहम काम का जिक्र करते चलें। इनमें इनकी कुछ किताबें शामिल हैं: किताब अल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, रिसाला फी अल दावा, ट्रिटाइज ऑन लाइट, मीजान अल हिक्मा बैलेंस ऑफ विजडम, मकाला फी अल करास्तून ट्रिटाइज ऑन सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी, रिसाला फी अल मकान ट्रिटाइज ऑन द पैलेस,
الشكوك البتلان

Amius, doubt concerning Ptolemy on the configuration of the world, the model of the motion of the seven planets. दोस्तों मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के एलिमेंट्स अर्ली इस्लामिक फिलॉसफी में मिलते हैं, खासतौर पर एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करना मुख्तलिफ साइंटिफिक थ्योरीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए और एक जनरल यकीन के साथ के इल्म फितरत को सच्चाई के साथ दिखाता है। इस्लामिक फिलॉसफी ने मिडिल एजेस में तरक्की की और साइंटिफिक डिबेट्स में अहम किरदार अदा किया। इन डेटाबेस के लिए की फिगर्स साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स थे। इब्न अल हेतम का इस सिलसिले में काफी असर था। उनकी किताब किताब अल मनाजिर में एक अहम मुशाहिदे ने उन्हें ये तजवीज देने पर मजबूर किया कि आंखें रोशनी को चीजों से रिफ्लेक्ट करके रिसीव करती हैं, ना कि अपने आप रोशनी निकलती है, जो कि इस वक्त के मुमकिना अकीदा पिटोलमी और यूक्लिड के नजरियात के मुताबिक नहीं था। इब्न अल हेतम ने जो तरीका से मुशाहिदात और रैशनल आर्गुमेंट्स को मिलाकर अपना नजरिया पेश किया, उन्हें रॉजर बेकन और जोहन्स केपलर पर खास असर डाला। बेकन जो 1214 से 1296 तक जिंदा रहे, जो एक फ्रांसीसी फ्रेयर थे और ग्रोसेटेस्टे के अंडर तालीम ले रहे थे, इब्न अल हितम की किताबों से मुतासिर हुए, जो कि एरिस्टोल के इंट्रोडक्शन के तस्वीर को प्रिजर्व और डेवलप कर रहे थे। समयन इब्न अल हितम ने थ्योरिटी हिप्नोटाइसिस को वेरीफाई करने और इंडक्टिव कॉन्जेक्चर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए कंट्रोल्ड साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए रेगुलर एक्सपेरिमेंटल तरीके डेवलप किए। इब्न अल हितम का साइंटिफिक मेथड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के काफी करीब था और इसमें ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन का एक रिपीट होने वाला साइकिल शामिल था और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जरूरत थी। दोस्तों गुरोनी ने इब्न अल हितम के साइंटिफिक मेथड के तारुफ पर ये लिखा, तारीखी दौर में जिंदा तर हिस्टोरियंस के मुताबिक अल हितम मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के पायनियर थे। अपनी किताब के जरिए उन्होंने ऑप्टिक्स के लफ्ज का मतलब बदल दिया और इस फील्ड में तजुर्बात को सबूत के लिए स्टैंडर्ड बना दिया। उनकी तहकीकात एब्स्ट्रैक्ट नजरियात पर नहीं बल्कि तजुर्बी सबूतों पर मबनी थी। उनके तजुर्बात मुनज्जम और दोबारा होने वाले थे। दोस्तों इब्न अल हितम को थ्योरी और लाइट और विजन किसी भी एक पुरानी थ्योरी से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था और ना ही इस्लाम के पहले थ्योरी से डायरेक्टली आता है। लेंस के काम को समझने की असली पहचान खासतौर पर कॉन्वेक्स लेंस के इस किरदार को, जो किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड तस्वीर बनाता है, इब्न अल हितम को दी जाती है। ये तब तक नहीं हुआ था जब तक 13 सेंचुरी के आखिरी हिस्से में स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे का इजाद नहीं हो गया, जो मैग्निफिकेशन का पहला प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। इब्न अल हितम ने रोशनी के गुजरने का तजजिया किया और उसने रिफ्रैक्शन के क्वानीन दरियाफ्त किए। उन्होंने रोशनी की डिस्पर्शन के पहले तजुर्बात भी किए, जिसमें रोशनी को उसके अज्जा यानी कलर्स में बांटना शामिल था। इब्न अल हितम का 7 जुज का रिसाला किताब अल मंजर बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जो उन्होंने 1011वीं से 1021वीं सदी के दरमियान कैद में लिखा, को न्यूटन के फिलोसफिया न्यूट्रलाइज प्रिंसिपिया मैथमेटिका के साथ फिजिक्स के सबसे असरदार किताब के तौर पर रैंक किया गया है और इसने रोशनी और देखने की समझ बदल दी है। दोस्तों उन्होंने चंद फिजिकल फिनोमिना जैसे कि साय, एक्लिप्स, रेनबो पर लंबी मुद्दत तक तहकीकात की और रोशनी की फिजिकी फितरत पर भी तजवीज़

थी। उन्होंने बाइनोकुलर देखने का तरीका समझने की कोशिश की और सूरज और चांद के नजर में छोटी और बड़ी होने की सही वजाहत भी दी। जब वो हराइजन के करीब

के जरिए से देखी जाती हैं। उनके मुताबिक रोशनी के रे चीज के अंदर से निकलते हैं, ना कि आंख से। इन ऑप्टिक पर उनके वसी तहकीकात के लिए उन्हें मॉडर्न ऑप्टिक्स का बाप भी कहा जाता है। दोस्तों, इब्न अल हितम ने बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अलावा एक सप्लीमेंट लिखा जिसे रिसाला फी अल दौ ट्रीटाइज ऑन लाइट कहा जाता है। इस सप्लीमेंट में उन्होंने ल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टीज और उनकी रेडिएंट डिस्पर्जन को मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मीडिया के जरिए और तफसीली तौर पर तजजिया किया। अपने ट्रिटाइज मीजान अल हिकमा बैलेंस ऑफ विजडम में इब्न अल हितम ने एटमॉस्फेयर की डेंसिटी का मुतालिया किया और इसे एल्टीट्यूड से जोड़ा। उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी स्टडी की। उनकी ऑप्टिकल राइटिंग्स ने कई वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि रॉजर बेकन, जॉन पिकहम, विटेलो और जोहनस केपलर को मुतासिर किया। दोस्तों, इब्न अल हितम ने आंख के मुख्तलिफ हिस्सों को दुरुस्त तरीके से बयान किया और देखने के अमल की इमलियती वजाहत दी। तिब और ऑप्थोमोलॉजी में इब्न अल हितम ने आंखों की सर्जरी में अहम तरक्की की और देखने और नजरियात की अमल को पहली दफा सही तरीके से समझा और वाज़े किया। उन्होंने आंख के मुख्तलिफ हिस्सों को तफसील से बयान किया और ये ख्याल दिया कि चीजें रोशनी की किरणों के जरिए देखी जाती हैं, जो चीजों से निकलकर आंखों तक पहुंचती हैं, जबकि पहले ये माना जाता था कि रोशनी आंखों से निकलती है। देखना रोशनी और रंग को महसूस करता है जो मंजूराना चीज के सतह पर मौजूद होता है। नजर उस चीज को जरूरी तौर पर उन सीधी रास्तों के जरिए महसूस करती है जो मंजूराना चीज और नजर के मरकजी नुक्ते के बीच फैलती हैं। इब्न अल हितम को कुछ लोग साइकोफिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बुनियादी बनाने वाला समझते हैं, उनके देखने की इदराक पर शानदार काम की वजह से। दोस्तों, इब्न अल हितम ने आंख के मुख्तलिफ हिस्सों को दुरुस्त तरीके से बयान किया और देखने के अमल का इल्मियती वजाहत दी। तिब और ऑप्थोमोलॉजी में इब्न अल हितम ने आंखों की सर्जरी में अहम तरक्की की और देखने और नजरियात की अमल को पहली दफा सही तरीके से समझा और वाज़े किया। उन्होंने आंखों के मुख्तलिफ हिस्सों को तफसील से बयान किया और ये ख्याल दिया कि चीजें रोशनी के साथ साथ आंखों तक पहुंचती हैं। दोस्तों, ये शख्स अरब एस्ट्रोनॉमी के अजीम एस्ट्रोनॉमर्स में शुमार नहीं होता, लेकिन उसके काम से ये साबित होता है कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की टेक्निक्स में महारत हासिल की थी। इन कामों में से कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी सलाहियत को देखते हैं कि उन्होंने उन मसाइल का हल निकाला और जो अरब एस्ट्रोनॉमर्स के लिए वाज़े था, जैसे क़िबला, नमाज का रुख का तायुन। उन्होंने टोलेमैक प्लेनेटरी मॉडल्स पर तनकीद, जो कि एलमेगिस्ट और प्लेनेटरी हाइपोथेसिस में पेश की गई थी, ऐसा लगता है कि उन इल्म में तहकीकात को मुतासिर किया, जो कि 13वीं सदी मरागा और 14वीं सदी दमास्कस में टोलेमिक निजामों की जगह नई नजरियात के लिए रास्ता बना। ये एस्ट्रोनॉमिकल काम 1025 से 1028 के दरमियान लिखे गए। अलशुकूक अला बतलेमियस, जो बाद में डाउट कंसर्निंग टॉलेमी या एपोरियस अगेंस्ट टॉलेमी के नाम से तर्जुमा किए गए। उन्होंने ये समझा कि टॉलेमी के तरफ से एस्ट्रोनॉमी में लाए गए कुछ मैथमेटिकल डिवाइसेस, खास तौर पर इक्वेंट, फिजिकल जरूरत के मुताबिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पूरा नहीं करते। उन्होंने जिस्म की हरकत की मैकेनिक्स का मुतालिया किया और पहला शख्स था जिसने ये

कहा कि एक जिस्म तब तक हरकत करता रहेगा जब तक कोई बही फोर्स उसकी हरकत को रोक ना दे या उसका डायरेक्शन बदल ना दे। ये बात इसाक न्यूटन के पहले कानून हरकत से मिलती जुलती है जो कुछ सदियों बाद बयान की गई। दोस्तों, ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इब्न अल हितम ने एनालिटिकल ज्योमेट्री को डेवलप किया था बाय एस्टैब्लिशिंग द लिंकेज बिटवीन अलजेब्रा और ज्योमेट्री। इब्न अल हितम ने पहले 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला भी डिस्कवर किया था। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस नंबर थ्योरी में भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने परफेक्ट नंबर पर काम किया। अपनी एनालिसिस और सिंथेसिस में इब्न अल हितम पहली दफा समझे थे कि हर इवेंट परफेक्ट नंबर 2n-1 2n-1 की फॉर्म में होता है, जहां 2n-1 प्राइम होता है। लेकिन वो इस रिजल्ट को प्रूफ करने में सक्सेसफुल नहीं हो सके। ये रिजल्ट 18th सेंचुरी में यूलर ने प्रूफ किया था। दोस्तों, फिलॉसफी में इब्न अल हितम को फेनोमेनोलॉजी का पायनियर समझा जाता है। उन्होंने जिस तरीके से फिजिकी और मुशाहिदी की दुनिया का ताल्लुक फिजिकल और जहनी फंक्शंस के साथ बयान किया, वो काफी मकसद भरे थे। उनके इल्म और इशारात से मुतालिक नजरियात जो साइंस और मजहब के दरमियान ताल्लुक बनाते हैं, एक ऐसे फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाते हैं जो मुशाहिदे की असल हकीकत को देखने वाले की नजरियात से मुतालिक हैं। उनका फेनोमेनोलॉजी पर जो ख्याल था उसको 20th सेंचुरी तक ज्यादा तरक्की नहीं मिल सकी। असल में उन्हें इल्म का एक मुकम्मल नजरिया बयान करने वाले के तौर पर जाना जाता है। इब्न अल हितम को अशारी स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी का सपोर्टर कहा जाता है और वो मुताजली स्कूल के टीचिंग्स के खिलाफ थे, लेकिन मुमकिन है कि अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में वो मुताजली सपोर्टर्स भी रहे हों। आखिरकार इब्न अल हितम ने अपने अजीम दिमाग और नई और असल मुशाहिदात के जरिए कई इल्म मैदानों में अपना असर छोड़ा। बिना किसी शक के उन्हें मॉडर्न ऑप्टिक्स का पायनियर फादर समझा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इब्न अल हितम की जिंदगी और उसकी अचीवमेंट सिर्फ एक इल्म का सफर नहीं, बल्कि वो एक मिसाल

0: आर्टिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। सो दिस इज सर्वा मिर्जा साइनिंग ऑफ। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
4: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है ए यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है एस, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ki ghadi mein 11 baj ke sahi 2 minute.
3: Aap sun rahe hain Sun and Sound. RJ Sarwar Mirza ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
2: Welcome, ahlan wa sahlan.

0: खुश आमदीद, स्वागतम। बिल्कुल भाई, ये लीजिए साहब, नया नया एकदम गर्मा गर्म चूल्हे से उतारा हुआ आपके लिए ताजा ताजा हफ्ता आ गया है। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? उम्मीद करता हूं सब बहुत खुशहाल होंगे इंशाल्लाह ताला, और खुशी से भरा वीकेंड गुजारने के बाद अब बिल्कुल तैयार होंगे कि अब अगला हफ्ता किस तरीके से गुजारना है, कैसे गुजारना है। वैसे अब इस वक्त तक आते आते, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई सुबह से वो चेहरे जो देखने होते हैं और जो नहीं भी देखने होते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो भी सामने आ चुके होते हैं। और जब मेरा आगाज हो जाता है यहां पर प्रोग्राम का, तो फिर आपको तो पता ही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दोहा वालों के लिए तैयार हो जाता है एक बेहतरीन प्रोग्राम। और क्या होता है भाई, हवाएं जो हैं वो एकदम मजे में घुलने लगती हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है जब सरवर मिर्जा आप लोगों के पास आ जाता है। तो एला रंग ही अलग, म्यूजिक ही अलग, धमाल ही अलग, और बेहिसाब की जितनी भी तफरी है इंशाल्लाह ताला ये दो घंटे में होने वाली है। और ये दो घंटे कैसे गुजरने हैं, आपके साथ गुजरने हैं, और कैसे गुजरेंगे अच्छे होके वो जब आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके हैं, आप लोगों को पता है। फिर भी हस्बे रिवायत बताना तो पड़ता ही है भाई। है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, इसके जरिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ खासम खास दिन है तो वो भी बताइए भाई, बर्थडे वगैरह है, एनिवर्सरी वगैरह है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और वहीं व्हाट्सएप के अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहेंगे तो हमारा नंबर है 4434437 443-443-77 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अर्ज किया 666-22-107 पे आप मैसेजेस अपने भेज सकते हैं। तो भाई होगा बहुत कुछ, आज मुद्दा भी उठाया जाएगा, गरम गरम मुद्दा एकदम उठाएंगे, जहां आपसे बातचीत भी होगी और फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों के साथ गेम वगैरह, एंटरटेनमेंट, तीन का दम, कतर का सबसे बेहतरीन गेम इस वक्त आप मेरे साथ खेल रहे हैं आजकल, तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बात करेंगे, अपडेट्स आपको दी जाएंगी। खासम खास दिन भी है आज, और वो भी बताऊंगा मैं। और यहाँ पर मोहब्बत वाले मोहब्बत का शरबत लेकर आ गए हैं, तो कनेक्ट करना तो बनता ही है भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाला हाला, कैफल हाल, कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: रईस भाई?
1: हाँ मुज़क्किर भाई।
0: क्या हाल चाल है सर, कैसा गुजरा हफ्ता ये तो बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा,
0: माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे और इसी तरीके से अच्छी तरीके से आपके हफ्ते जितने भी हैं वो गुजरते चले जाएं। तो क्या खासम खास लाए आज, कुछ शायरी वगैरह लेके आए क्या?
1: आज मैं भूल गया, आते
0: आते भूल गया है।
1: खोसे में तो मैं बहुत शायर लेके निकला था, चार लेके निकला।
0: हाँ,
1: बहुत आसान लेके निकला था,
0: लेकिन आए ये भी शेर हो गया, क्या ही कह रहे। अभी अभी बना दिया देखिए साहब, ताजा ताजा। अच्छा नाम तो बता दिए अपना सबको।
1: हाँ, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
0: अरे ये कह के ही तो नहीं बताते हैं, अब फिर मुझे ही बताना पड़ता है। खैर भारल भाई, सभी सुनने वालों को बता दूं कि आज के प्रोग्राम का जो आगाज है वो नसीम भाई के साथ हुआ है, जो कुछ नहीं बोलते मगर बहुत कुछ कह जाते हैं बातों भी बातों में। और देखिए कैसे बैठे बैठे इन्होंने शेर भी बना दिया है। नसीम भाई अहलन व सहलन। तो भाई क्या कहते हैं, आज का मुद्दा भी छेड़ दिया जाए। चलिए अब नसीम भाई की आमद हो गई है तो प्रोग्राम का शुरुआत और बाकायदगी से आगाज कर दिया जाए। तो वैसे तो मैं समझ सकता हूँ कि नसीम भाई को क्या पसंद है, मगर फिर भी आप कौन से तरीके के शख्स हैं या कौन सी चीज ज्यादा पसंद करते हैं, बाइक की राइड या कार की ड्राइव? आज का ये मुद्दा हमने उठाना है क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो यहाँ पर गाड़ी में पूरे दिन मशगूल रहते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, जाहिर बात है जिम्मेदारियां, वर्क, जो भी उनको काम है वो भी, मगर एक दिल में अगर कहीं कोई खलिश है, जो जवानी गुजारी है, जो लड़कपन गुजारा है बाइक के ऊपर, तो उसके हवाले से भी हम बातचीत करेंगे और आपके किस्से भी सुनेंगे बाइक से मुतालिक। मुझे मालूम है सबके बड़े बड़े किस्से होंगे अपनी अपनी जिंदगी को लेके। तो नसीम भाई आप बताइए कि पहले तो ये बताइए कि बाइक कब से चलाना शुरू करी थी और गाड़ी कब से चला, इसमें कितना दरमियान में वक्त कितना गुजरा दोनों की ड्राइव में?
1: मैं बाइक तो पहले चला नहीं रहा था, मैं साइकिल, और सही सही बोलूं तो मैं साइकिल भी सही नहीं चला पा रहा था। मोटरसाइकिल थे जब मैं शुरू किया था तो
0: ऐसा क्यों भाई?
1: नहीं बोला मैं सही बोलूँ तकरीबन कतर आने तक 2016 में उससे पहले तक साइकिल उससे सही से नहीं चलाई जा रही।
0: अरे तो यार मैंने इसका मतलब सही मुद्दा उठाया, हमारे पास ऐसे भी भाई हैं जो साइकिल और बाइक से परे रहे।
1: उसके बाद फिर मैं बाइक लिया दोस्तों, कभी कभी इनका उनका मैं अपने मामू का कभी कभी बाइक ले सीखता था चलाता था।
0: ये मामू की जो बाइक है ना या स्कूटर है उसकी बड़ी रेड़ मारी जाती है भाई, सभी ने ऐसा किया, मैं रिलेट कर सकता हूँ।
1: नई बाइक लिया, नई बाइक पर कुछ दिन 2-4 महीना चढ़ा, 2 महीना मुश्किल से उसके रख के फिर इधर आ गया।
0: क्या
1: अब यहाँ से जाने के बाद जो है बाइक चलाने में बहुत ज्यादा डर लगता,
0: बाइक चलाने में डर लगता, मुझे तो बैठने में भी डर लगता भाई अब तो वहां पे अपने ममालिक में, जबकि मजा बहुत आता है मगर अपने जितने भी कोने हैं ना वो बचाने पड़ते हैं, कभी कोई इधर से गया कभी कोई, तो ऐसा लगता है सब मुझसे ही आज गले लगने आ रहे हैं।
1: यहाँ जिस तरह है एक लाइन है या टू वे लाइन है तो यहाँ आदमी अपने लाइन में आता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या,
0: हमारे यहाँ तो अपनी लाइन से मतलब ही नहीं है ना, दूसरे की लाइन ही पकड़नी हमारा फर्ज है भाई, ये तो हमेशा से रहा, खाली रोड से ही मतलब नहीं है।
1: कौन किधर सा पता नहीं, कभी बच्चे कभी गाय कभी भैंस कोई आदमी।
0: अच्छा फिर तो इसका मतलब आप गाड़ी वहां पे भी नहीं चला रहे थे तो गाड़ी यहीं पे आके चलाना सीखी? जाहिर बात है क्योंकि हमें
1: हमारे जो है ना क्रेडिट कंपनी भी जाता है हमारे कंपनी।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उसी पे आ रहा था कि भाई यहाँ तो आके एक तरीके से जो सीख लेनी है, जो ड्राइविंग स्कूल में दाखला लेना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ही हम पूरे तरीके से तैयार होते हैं और अच्छे तरीके से गाड़ियाँ चलाते भी हैं कतर की सड़कों पर। तो ये भी कतर को सलाम है इस चीज़ के लिए कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को दे रखी है कि भाई जाएं वहां पर अपने आप को सही से गाड़ी चलाना सीखें भी और दूसरों का ख्याल भी रखें। क्या बात है जी नसीम भाई, तो कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, कोई और याद ऐसी जो ताजा हो रही हो बातों में?
1: ताजा ना ये मैं अपने कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ,
0: कंपनी का शुक्रिया अदा करते हैं,
1: अल्लाह ताला कंपनी को तरक्की और दे।
0: आमीन आमीन, अल्लाह ताला हमारे कतर को तरक्की दे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई नसीम भाई आज के प्रोग्राम का आगाज करने के लिए मेरे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह 3 के दम में भी शिरकत करनी है, ठीक है?
1: 3 के दम में?
0: हाँ
1: ठीक है
0: जाकिर
1: भाई।
0: ओके। तो भाई ये थे हमारे साथ नसीम भाई जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉल ड्रॉप हो जाए पहले तो दूसरी लाइन कनेक्ट करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। शाहजी की हाल चाल टुडे, किधर थे यार? यार कितना इंतजार किया मैंने, मालूम है? नहीं पहले मैं बोलूंगा यार, कितना इंतजार किया मैंने, आपने मुझे बुलाया यार वीकेंड पे और गायब हो गए आप हैं, ये कौन सा तरीका यार? अरे इससे पहले आप कुछ कहें मैं ही कुछ कह देता हूँ, कैसे है गावा भाई और कैसा गुजरा वीकेंड?
2: वीकेंड मस्त था सर।
0: क्या कहने, घर पे सब ठीक है, फैमिली ठीक है, अच्छी है, क्या कहने भाई?
2: ऑल गुड।
0: तो गर्मी के मजे उठाए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल सरोज भाई, गर्मी के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि मैंगोज का सीजन है बहुत ज्यादा।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने, मैंगोज भी और जामुन भी।
2: जामुन भी, जामुन आ गए सर मार्केट में?
0: जामुन आ गए, फाल से आ गए सर मार्केट में।
2: जामुन तो मेरी जान है सरोज भाई। ये एक ऐसा फ्रूट है जो चंद दिनों का मेहमान होता है।
0: बिल्कुल, और कितना
2: मगर ये फायदेमंद, अच्छा है ना, इतना फायदेमंद है ना सर
0: जी,
2: बिल्कुल दवाई के मुकाबले ये चीज
0: बिल्कुल बहुत बहुत फायदे हैं भाई। अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई हैं सभी फायदेमंद हैं, अगर उनको सही तरीके से और एक हद में रह के कंज्यूम किया जाए तो। बहरहाल गर्मी के आते आते कुछ फल फ्रूट भी और गाबा भाई की भी एंट्री होती है, तो गाबा भाई आज पूछ ये रहे कि मोटरसाइकिल वाले हैं या गाड़ी वाले हैं, कौन सी
2: बात है? पहले मेरे को वो बात कंटिन्यू करने दो जो मैंने शुरू की।
0: ओके।
2: तो मैं ना सरवर भाई परसों ना एक मार्केट में जाना हुआ मेरा,
0: परसों
2: तो हाँ परसों तो मैं गया मैंगोज वाले सेक्शन में सर।
0: अच्छा ठीक है, समझ गया।
2: वहाँ पे गया, वहाँ पे एक मैंगो था जिसकी मैंने वैरायटी देखी सर, उसकी कीमत थी 795 रियाल पर केजी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बातचीत में काफी आ रहा है वो मैंगो, और वो इंडिया से है मैं आपको बता दूं।
3: इंडिया से है सर। मैंने सोचा अभी पता नहीं यार ऐसा क्या होगा इसमें, भाई पता नहीं ये क्या या क्या नहीं, तो मैंने सर रिसर्च की जाके अपनी।
0: ओके
3: तो सर्वर भाई मैंने रिसर्च की जाके अपनी, मैंने सच में देखा वो वाकई, वो नेशनल मीडिया पे भी उसका एक दो बार आर्टिकल आ चुका
0: है। बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल हॉट टॉपिक है भाई आजकल, वो डिस्कस हो रहा है चारों तरफ। सही
3: डिस्कस हो रहा है सर्वर भाई, यकीन मानिए जब मैं मार्केट में गया था ना तो गोरे गोरियां सभी एक एक मैंगो था जो पैक करके रखा हुआ था उन्होंने
0: जी,
3: बल्क में नहीं थे वो, सभी उसकी फोटो ले रहे थे, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था सर।
0: सही बात है भाई, बल्क में
3: पहली एक, बार देखा
0: यहाँ तो एक लेना क्या देखना मुश्किल हो रहा है, बल्क में लेना तो भूल ही जाओ, हमारे तो बस की है नहीं चाची है।
3: भाई सर्वर भाई एक आम की कीमत ही 200+।
0: मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी का छीन के खा ले हम तो वो अलग बात है, पता चल जाए कि ये वही वाला खा रहे हैं ना, हमारे पास की तो है नहीं भाई वो वाला, आप खाना देख ही सकते हैं। हाँ भारत इंडिया में शायद वहां पे भी कुछ ऐसी हरकत हो कि किसी के बाग में हो और उसमें हम घुस जाएं खामोशी से और खा ले तोड़ के।
3: भाई इंडिया में ना जो सबसे महंगी वाली ब्रीड है ना उस बाग में बंदे ने 5-6 तो कुत्ते रखे हुए हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
3: पूरी
0: और वो भी वो हूफर जो होते हैं बड़े वाले एकदम रीच जैसे जो होते हैं,
3: जर्मन शेफर्ड,
0: बिल्कुल जर्मन से भी ऊंचे ऊंचे भाई, ये बात तो सही है। खैर चलिए साहब, तो आपने एक किस्सा और आम किया, तो अब क्या बात है, देखी शायरी कर दी मैंने, आम का किस्सा आम किया, आय हाय हाय हाय हाय क्या बात गाँव भाई है। गाँव भाई अब आ जाते हैं अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल से गाड़ी की तरफ, तो कोई ऐसा किस्सा और क्या ज्यादा पसंद करते हैं, बाइक की राइड या कार की ड्राइव, कौन से किस तरीके की शख्सियत
3: करता हूँ, टू व्हीलर वो भी पहाड़ों पे लाहौल
0: है, है, है, है, नाम नहीं ले सकता मगर आवाज डुब डुब डुब डुब डुब डुब डुब डुब डुब
3: डुब, नाम नहीं लूंगा
0: अब, आवाज से रिलेट कर लेंगे जितने भाई हैं अपने, पहाड़ और ये वाली आवाज तो और कुछ हो ही नहीं सकता।
3: एक वो सर एक जो पुरानी मूवीज में आता था जिसके पीछे एमए होता था, वो समझ गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल डबल साइलेंसर भी होता था कभी कभार, तो
3: डबल साइलेंसर भी होता था वो उसकी पिकअप सर,
0: यार वो तो एक बात ही अलग है, वो एक मजा ही अलग है, और वो जो एक कहना चाहिए

0: बात कर रहा हूँ अभी भी उनको आदत है भाई, वही उनकी बाइक है ये जो अभी मैंने आवाज निकाल के दिखाई थी, और पहाड़ों का सफर करते हैं अपने, जाते हैं वहीं, अपने सेटअप करते हैं वहीं, वैसे ही गुजर रही है उनकी। तो ये अपना अपना शौक भी है, ऐसी बात नहीं। तो आपने किया है ये वाला सफर? किया है
1: जी, बिल्कुल किया है सर, बिल्कुल किया है। और
0: क्या कहने,
1: बहुत साल पहले किया है मगर अभी लेटेस्ट।
0: हाँ नहीं, ऑब्वियसली यार, जाहिर बात
1: है, पहले किया है यारों दोस्तों के साथ में।
0: यारों दोस्तों के साथ में यादगार रह जाते हैं वो लम्हे। और यहाँ आने के बाद तो फिर अब मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ आने के बाद भी मेरे करीबी दोस्त हैं जियाउद्दीन, और वो उन्होंने मेरे पास बाइक अभी भी रखी हुई है, गाड़ियां हैं माशाल्लाह से, मगर बाइक का शौक,
1: आप किन की बात कर रहे हो,
0: गाड़ियों का जो शौक है,
1: नाइस गाय,
0: गाड़ियों का जो शौक उनका अभी भी खत्म नहीं हुआ भाई। तो जिया भाई अपनी बाइक जो है वो अपने पास रखते हैं और जब दिल करता है चलाते हैं। तो इस तरीके से लोग हैं जो माशाल्लाह यहाँ पर अभी भी काम वगैरह तो ठीक है अपनी जगह, जैसे मैंने बताया हमारे जो डिलीवरी कर रहे हैं भाई हजरात, जो मोहब्बतें इधर से उधर बांट रहे हैं, उनका तो काम है ही है। खैर उनको शौक भी होता है क्योंकि काम कर रहे हैं अपना वैसे, बट खाली शौकिया यहाँ तक बाइक रखना ये अपने आप में एक तारीफ की बात है भाई।
1: जी बिल्कुल सरवर भाई, हमारे वहाँ पे आप यकीन मानिए जिस दुख दुख की आप बात कर रहे हो ना सर, उस दुख दुख के ऊपर इतने ज्यादा गाने बन चुके हैं, उसका इतना ट्रेंड है हमारे पंजाब में।
0: सही,
1: तो लोगों ने एज अ स्टेटस ऑफ सिंबल रखा हुआ है।
0: हाँ नहीं बिल्कुल यार, खाली पंजाब में नहीं, मैं अपनी हमारी यूपी की भी बात कर रहा हूँ भाई, उसका तो उसकी मसला ही अलग है, उसकी बात ही कुछ और है। वो नहीं है तो फिर लड़के में दम नहीं है भाई।
1: वो यूपी वाला जो है ना सर, वो मोस्टली आता है वेब सीरीज में, जो देसी वेब सीरीज है यूपी।
0: सही सही सही, उसमें भी दिखाई
1: भाई क्या है उसका, आप यकीन मानिए उसका जो पुराने का खर्चा है ना, नया तो वो भी चलो मॉडिफाई होता है, जो पुराना है ना उसका गाड़ी से भी ज्यादा खर्चा है।
0: सही, उसको मेंटेन करना पूरे तरीके से अच्छी तरह से रखना, और वही शौक का हिस्सा है भाई, वही शौक का हिस्सा
1: है। वही बंदा सर्वर भाई वैसा बंदा अफोर्ड कर सकता है उस चीज को, नॉट एज अ मनी, एज अ शौक,
0: जिसको शौक हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिसको शौक हो वो करता ही करता है भाई। जितना भी है अब हम लोग अपनी गाड़ी वगैरह भी मेंटेन करते हैं, अब यहीं की अगर हम बात करें तो जब शौक होता है तो आदमी करता ही करता है, और जिसमें जिस चीज की ललक हो तो फिर क्या ही कहने, क्या बात है भाई। गावा भाई,
1: भाई एक और शख्स है बहुत ही खास जिसको गाड़ियों का बहुत शौक है, आपने एक बार जिक्र किया था है ना,
0: गाड़ियों का शौक,
1: जिन्होंने अभी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी ली है, मैडम नाजिया जी।
0: अच्छा ओके,
1: सिंपल।
0: वो तो भाई हमेशा से बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके पास, तो उसमें नया क्या है, छोटी से बड़ी, क्या
1: उनका जिक्र
0: बड़ी,
1: करना
0: बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी,
1: जी सरवर भाई
0: क्या कह रहे हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया यार गावो भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिन हफ्ते का आगाज अच्छी तरह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: अब लास्ट में सरवर भाई आपने जो जामुन के बारे में बताया ना, मेरे अंदर ना एक आग सी लगा दिया, जरूर देखूंगा कौन सी मार्केट में आया
0: भाई जामुन।
1: सर ये एक ऐसा फ्रूट है ना, मेरे को लगता है जिसमें कोई वो नहीं होता, केमिकल वगैरह नहीं लगाया जाता,
0: बिल्कुल नहीं लगाया जाता, हम खुद ही नमक लगाते हैं, और उसके बाद उसको जो फेटना है ना, जामुन का फेटना, वो बहुत जरूरी होता है, हर कोई नहीं बताएगा।
1: ठीक है सर, ऑलराइट,
0: थैंक यू गावा भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय। तो भाई ये थे गावा भाई हमारे साथ, और गाड़ी से लेके बाइक से लेके जामुन और मैंगो सारी चीजें हो गई इनके साथ बातचीत। यहाँ पर एक और कॉलर और उनसे करते हैं बात, उसके बाद भाई आज का गाना भी सुन लेंगे। हेलो सलाम वालेकुम।
2: सलाम वालेकुम मेरा भाई, क्या हाल चाल?
0: अरे ये आसिम भाई,
2: क्या बोलती है पब्लिक?
0: क्या बोलती है पब्लिक? बोले तो तकलीफ
2: तकलीफ तो हो रही है।
0: अहलन वसहलन, कैसे हैं आसिम भाई, खैरियत से हैं
2: भाई? बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई, तुमने मेरा दिल की बात छेड़ दिया आज।
0: अजी हाँ, बाइक को लेके या जामुनों को लेके?
2: बाइक को लेके भाई, गावा भाई की बात सुनता हूँ मैं, गावा भाई की बात ना बहुत दिल से सुनता हूँ भाई, गौर से सुनता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आते गावा भाई।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: देखा नहीं अल्लाह पर, मेरे को मौका मिले तो उनको देखने का मौका मिलना चाहिए भाई।
0: अरे बहुत हैंडसम आदमी है, बहुत हैंडसम आदमी है भाई, एकदम झकास, बोले तो झकास।
2: वही बराबर भाई, इस्माइल भाई वही बोल रहे थे, बोले हाँ गावा भाई की बात बहुत पसंद आ रही है तुमको।
0: तो भाई क्या कहते हैं आसिफ भाई, क्या है किस्से कहानियां आपके पास? तो बहुत सारे होंगे जाहिर बात है, मगर बाइक
2: भाई मेरे पास अच्छी में दो दिन बहुत सुकून था, मैं नहीं ऐसा इस्माइल भाई बोल रहे, दो दिन बहुत सुकून था
0: यार। ये इस्माइल भाई को एक तो मेरे पास लाके बैठा लो, इनसे जरा मैं भी थोड़ी बहुत बात कर लूं, ताकि इनको भी काम धंधे से लगाया जा, खाली टहल ले तुम्हारे साथ।

0: हो सकता है सुनने वालों को समझ में ना रहा हो, लिसनर्स को मैं बता दूं आसिफ भाई के साथ। अच्छा आगे नहीं बताऊं? ओके चलिए मैं इस पे पर्दा डाल देता हूँ। ठीक है बाइक पे आ जाते
1: हैं भाई, इनके वाले में सीक्रेट है भाई, एक तुम जानते हो मैं जानता हूँ, बस कॉमेडी है भाई, एक मतलब एक तरीके की कॉमेडी है मेरे लिए।
0: चलिए ठीक है मैं समझ गया, तो हम बाइक पे आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं आसिफ भाई, बाइक की राइड या कार की ड्राइव क्या ज्यादा पसंद
1: भाई? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ना बाइक की ड्राइव पसंद है। आपको पता होगी भाई वो एक गाड़ी है जिसके नाम में 100 आता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: नाम तो,
0: अभी देखिए
1: एक नाम
0: क्योंकि एक की हमने आवाज निकाल के दिखाई थी, अब मैं उसकी आवाज निकाल के दिखाने वाला था, आपने पहले ही बता दिया।
1: जी वो गाड़ी मतलब उस टाइम की मतलब किंग बोलते हैं हम लोग वो गाड़ी को नाम
0: भाई। दोनों ही है, एक है सनी देओल जिसकी हमने अभी गाबा भाई के साथ बात करी, और जिससे आपसे बात कर रहे हैं ये है शाहरुख खान, तो दोनों अपनी अपनी जगह है।
1: वो बाइक मेरे को मेरे पापा ने मेरे को कॉलेज की एंट्री पे दिलाई थी, मेरे को कॉलेज की एंट्री पे।
0: ओए यादगार।
1: वो बाइक जैसी मैंने लिया उसके नेक्स्ट मंथ मेरे पापा ने उसको आग लगा दी।
0: हाँ नहीं भाई जाहिर बात है, फिर कॉलेज तो आप क्लास के अंदर नहीं गए होंगे ना, भारी बार से।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पापा ने आग लगा दी बाकायदा मैदान में खड़े रहकर।
0: ओह माय गॉड,
1: मैदान में मेरे सब दोस्त लोग मेरे को ऐसा देख रहे, बोले ये क्या हो गया। बस ये दो गलती हुई थी मेरे से, बड़ी बड़ी गलती।
0: माय गॉड, मगर यार ये भी
1: वो गाड़ी से मैं बिना बताए रात में चले गया और एक पुलिस वाली गाड़ी को ठोक दिया। ये गलती हो गई, और दूसरी गलती ये हो गई मैं अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के बाइक पे घूम रहा हूँ।
0: हाँ नहीं जाहिर बात है वो तो है ही, तो अब ये तो आग तो लगनी थी उसके बाद और कुछ नहीं।
1: और आज तक मेरे पापा ने मेरे को कभी बाइक नहीं दिलाई।
0: माय गॉड, और दिलाई भी थी इतने प्यार से।
1: जी मेरे पापा ने खुद एक्टिवा डीओ वगैरह चलाते हैं घर में लेके रखे, मगर मेरे को कभी नहीं।
0: यार ये तो एकदम फिल्मी सीन हो गया होगा, अखबार में आ गया होगा दूसरे दिन, फलाना बस्ती में वाले साहब ने लगाई लड़के की बाइक में आग, क्योंकि वो घूम रहा था और काम नहीं कर रहा था कुछ भी, पढ़ाई से दूर होने की वजह से। ये तो भाई बहुत बड़ी खबर होगी वाकई, और उस वक्त भी कितनी पब्लिक शोर मचा रही होगी कि साहब मत जलाओ मत जलाओ, समझाएंगे लड़के को।
1: ऐसा नहीं है भाई, नहीं मेरे एरिया वाले बोलते अच्छा जला दिया, बहुत सुकून हुआ बोले। सच्ची में मजाक से हटके भाई मैं इतना चिढ़ गया था मैं उस टाइम पे पापा के ऊपर, मगर पापा के दोस्त लोग बोलते हैं मतलब एरिया में जो है छोटा सा एरिया है, मतलब वो लोग क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा साउंड है, अच्छा क्या अनवर भाई आपने जला दिया इसको।
0: ओह माय गॉड, मैं बताऊं खैर मैं ये भी ऐड करूं यहाँ पर सभी लिसनर्स को कि अनवर साहब जो है इनके वालिद आसिफ साहब के साथ कतर में एक लंबा अरसा गुजारा है उन्होंने, तो जाहिर बात है फिर उनको एहतियात और हर चीज की सही चीज से जिंदगी गुजारना पसंद भी है, तो इसी के चलते उन्होंने ये जो स्टेप लिया है। तो भाई उसके बाद तो बस दोस्त रह गए, दोस्तों की बाइक रह गई जिंदगी में, और कुछ तो बचा नहीं आसिफ भाई।
1: तो मैं अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचता था क्योंकि मैं दोस्तों मेरी मजे बतलाते थे ले बाइक बाइक के बोल ऐसी नहीं हो अच्छी अच्छी बाइक भाई, डी से नाम आती, पी से नाम आती है, एम से नाम आती, सब अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके भाई मेरे को जलाने का लोग। अरे मैं बोला भाई बस कर दो भाई, हो गया काम मेरा।
0: क्या बात,
1: मगर आज भाई बहुत खुश हूँ मैं, जब मैं कार सीखा, मैं कार मैंने सीखा दुबई में, और इंशाल्लाह यहाँ मैंने दुबई में भी लाइसेंस बनाया, इधर भी लाइसेंस बनाया, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ दुबई में।
0: देखिए जाहिर बात है इसमें हंसी मजाक के साथ साथ वालदेन कभी कभार बहुत सख्त कदम उठाते हैं, बट हम जब उस वक्त उस एज से आगे निकलते हैं और यहाँ तक आते हैं तो समझ में आता है कि वाकई हमें इंसान बनाने के लिए उन्होंने ये बिल्कुल सही किया था, वरना शायद आज हम कुछ और होते।
1: सरवर भाई आप यकीन नहीं मानोगे, 15 साल की उम्र में आपके लिसनर में कोई होगा, अगर 100 लिसनर हो गए तो 1% लिसनर होगा वो भी मैं हूँ ऐसा। 15 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरे को नंगा करके मैदान में मारे थे, तुम यकीन मानोगे एक बार। इतने में पापा डेंजर आज भी।
0: और यही तरबियत इस तरीके से कर, क्योंकि शायद आपकी गलती उतनी ही बड़ी हो, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर जाहिर बात है उसके बाद आप इंसान बनने में वो चीज काफी कारगर साबित हुई होगी, ये बात का मैं दावा कर सकता हूँ।
1: आज भी भाई मैं अपने पापा का मतलब बोलते ना, इधर तो मैं पापा बोल रहा हूँ, हम लोग इंडिया में बोलते अब्बा
0: अब्बा
1: बोलते हम लोग,
0: अब्बा सही
1: अब्बा, जैसे हम लोग अपने अब्बा को देखते ना डब्बा हो जाते, हम लोग
0: गायब हो जाते,
1: डब्बा आवाज सुनते ही डब्बा हो जाते हम लोग, एकदम स्कोर में बन के बैठ जाते घर के अंदर।
0: भाई अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, उनको खुशहाल रखे, और इंशाल्लाह ताला आप भी ये सारी तरबियत जो वक्त उन्होंने लगाया है और जो सीख आपको दी है, आप उसका एक बहुत अच्छा नमूना है, और इसी तरीके से आप आगे भी इस चीज को कैरी ऑन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंशाल्लाह ताला
1: बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई, तुम आए बाहर आए, बाकी तो कुछ नहीं, दिन बदल जाएगा,
0: तीन के दम में आना है, ठीक है,
1: बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं आऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं, तीन का दम बोल के दो में दम निकाल लेते, तीसरे में दम निकाल,
0: आज बहुत आसान रखा है भाई, आज बहुत आसान रखा है, ठीक है, आज बहुत आसान,
1: ठीक है, मैं वो लिस्टर लोग को सुनूंगा पहले, बाद में कॉल करूंगा मैं।
0: ऑलराइट, नहीं आप आएंगे तो आपसे आसान पूछूंगा ना, दूसरों को चैलेंज थोड़ा दूंगा, आपको आसान दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है,
1: थैंक यू भाई, ना भाई कैसा, पैसा ही पैसा।
0: ओके आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये थे आसिफ मियां हमारे साथ, बताते हुए कि वालदेन की सख्ती जो है वो वाकई कारगर साबित भी होती है और हमारे काम में भी आती है। क्या कहते हैं कि गाना लगा लिया जाए या चलिए यार बात कर लेते हैं, इतनी मोहब्बत से लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, अच्छा नहीं लगता कि अरे नहीं ये तो गाना लग गया ये इधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
2: शोएब सर।
0: शोएब भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं शोएब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, कैसा गुजरा आपका वीकेंड?
2: वीकेंड का मसला ऐसा है,
0: क्या बात है यार, ये हुई ना बात, क्या बात है, वेरी गुड, इसी तरीके से होना चाहिए, यही जहनीत रहे तो काम भी आसान होता है, जिंदगी भी आसान हो जाती है, माशाल्लाह क्या बात है। तो शोएब भाई आज का मुद्दा हमारा छिड़ा हुआ है बाइक की राइड या कार की ड्राइव, और इससे मुतालिक कोई किस्सा शेयर, अभी तक तो सब बाइक वाले ही आए भाई, और
2: दोनों का टेस्ट अलग है, ऐसी
0: हाँ बिल्कुल, अपना अपना नजरिया है,
2: अभी जैसे कि हम लोग कतर में यहाँ पे तो बाइक बहुत, मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग शौक रखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है समटाइम, लेकिन यहाँ पे कार ज्यादा, लेकिन मेरी भी वैसे कुछ याद है, मतलब कुछ मेमोरीज है बाइक के साथ, काफी अटैच रहा हूँ अपने टीन एज तक, मतलब जवानी तक, अब भी काफी रहा हूँ।
0: ओके,
2: आपको याद है एक एलजी बाइक आती थी?
0: जी जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है,
2: डबल इंजन, डबल
0: जी जी डबल साइलेंसर,
2: मैं उस बाइक से मैं गाड़ी चलाना सीखा बाइक, क्योंकि वो मैं उस टाइम पर,
0: तो अब खैर मैंने आपको देखा तो नहीं, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी बाइक जो आप बता रहे हैं उसके लिए जरा डील डॉल भी वैसे ही चाहिए भाई, उसको संभालने
2: वाला, मैं बहुत पतला था, मैं हां मैं बहुत पतला हुआ करता था, वेट भी कम था, पैर भी नहीं आते थे, लेकिन
0: अरे भाई
2: कर लिया था मैंने किया था,
0: वो
2: मैंने बाइक चला ली,
0: खतरों का खिलाड़ी उस वक्त थे आप, इसका मतलब क्या बात है
2: भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तकरीबन उस टाइम पे मेरी एज होगी 7 से 8 साल या तकरीबन 9 साल, तो मैं अपने बजाज चेतक होता था ना अपना, तो पापा के साथ दिल्ली से उत्तराखंड वहां पे बाइक हो गई, बीच में जो स्पेस होता है आगे वहां पे खड़े खड़े में उत्तराखंड पहुंच गया था।
0: वाह क्या कह रहे हैं,
2: मतलब बीच का रेस्ट ले लेके दिल्ली से उत्तराखंड,
0: क्या बात है,
2: और बाइक दिल्ली से हूँ तो बाइक का क्रेज
0: नहीं, तो इसका मतलब पापा को भी शौक था और पापा भी उस सफर में परेशान नहीं होते थे, इसका मतलब है जाहिर,
2: नहीं पापा बहुत, उन्हें बहुत शौक था, हमारे घर में एकदम बताया ना जब आपको चेता
0: बिल्कुल बिल्कुल, खैर हम मैं नाम नहीं ले सकता हूँ तो इसलिए, मगर मुझे याद सारी चीजें है जाहिर है, क्योंकि हमें याद है कि हमारे चाचा जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे उस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारे नाम याद हैं, उस पर घूमना याद है, मैं तो नहीं चला पाता था जब तक, जो उस उम्र में जब तक था, बाद में तो खैर मैंने बहुत रेड़ मारी है बाइकों की, ऐसी बात नहीं है, बट बड़ी अच्छी बात है, क्या बात,
2: नहीं अभी भी मेरे पास बाइक है तकरीबन 2 साल,
0: नहीं बिल्कुल, लोगों के पास अपनी यादगार जो है बिल्कुल वो घर में खड़ी हुई है, और
2: कि मेरे घर वाले बोलते हैं उसको बेच दो, जब चलाता नहीं कोई, ये 3 साल तकरीबन सर्वसाथ 3 साल तो ज्यादा हो गए, वो ऐसे ही खड़ी है, और अच्छी खासी कंडीशन में, लेकिन अब वो गलने लगी है, कोई फायदा नहीं।
0: हाँ जाहिर बात है, बस यादगार के तौर

0: पे खड़ी हुई है। सही,
1: वो खड़ी हुई है क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको पता है पार्किंग का बहुत मसला होता है।
0: सही सही,
1: और खासकर हमारे शाहीनबाग जैसे इलाके में।
0: सही, क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन यादों के साथ बड़ी अच्छी बात रखी आपने। वक्त हुआ एक अब छोटा सा ब्रेक ले लें क्योंकि अजान भी आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए शुभ भाई, इंशाल्लाह ताला गेम के वक्त भी तशरीफ लाइएगा तो आपके साथ और बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। तो वही थे शुएब भाई और सब तमाम भाई लोग अपनी अपनी यादें ताजा करते हुए यहाँ मेरे साथ एफ एम 107 पे। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक के सेरा सेरा शंकर महादेवन कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में एफ एम 107 पे। सरोन मिर्जा आपके साथ दिल से।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आप बड़े भाई की बाइक लेके निकले थे एक्चुअली, इसलिए छुपाना जरूरी भी था।
1: बाइक मेरा था वो।
0: अच्छा, मगर फिर भी वो कब्जे में ले ली जाएगी क्योंकि आप को चोट लग सकती है या आप सही नहीं चला रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं।
1: जवान थे, अच्छे थे, हमारी तरफ वो ऐसा है ना, हमारी तरफ वो जब कार के एक्सीडेंट कार का होता है तो कोई मुश्किल नहीं है,
0: अल्लाह
1: माफ। बाइक का होता है, तुम जख्मी हो गए तो फिर भी तुम उसमें छुपाते रहोगे, कहा कि किसी को नहीं बोलना चाहिए।
0: ओके, समझा।
1: तो जब हम शाम को घर में पहुंच गए तो एक तो हमारे ऊपर पट्टी मट्टी भी लगी हुई थी, तो पट्टी के बावजूद हमको डंडे पड़े।
0: अरे माय गॉड, ओहो,
1: क्यों चलाते हो तुम लोग, मस्ती क्यों करते हो?
0: अरे भाई, पट्टी के ऊपर पिटाई
1: का पिटाई होती है हमारे ऊपर, ऐसे पिटाई होती है ना हमारे इलाके की। ये बाइक नहीं है, ये बाइक से जब गिरते हैं ना, वो घर में नहीं बताते हैं कि हम बाइक से गिर गया, ये वो है।
0: सही,
1: क्योंकि माँ को बताते हैं और बड़ी बहन को बताते।
0: मसला ये भी है ना कि वो खुदा ना खास्ता अगर किसी खाई वगैरह में भी गिर जाए, रोड वगैरह के भी मसला होता है आप लोगों की तरफ, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी तरफ के जो पहाड़ी इलाके हैं तो मैं समझ सकता हूँ। बहरहाल, मजाक को लाते हुए हमारे तो कहते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्यों अजय देवगन बनता फिर रहा भाई, यही खड़ी कर दे। अजय देवगन ने एक दो स्टंट ऐसे करे फूल और कांटे में, जो वो दो बाइक पे खड़े हुए थे, तो जब से वो बहुत ज्यादा बदनाम है हमारे यहाँ।
1: वो फिल्म देखा
0: है मैंने। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत खूब और बहुत ही बढ़िया। तो क्या कहते हैं मुदस्सर भाई, अब आप आ गए हैं तो तीन का दम भी शुरू कर दिया जाए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है,
2: चलो ठीक है।
0: चलिए, ये अभी इससे पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि याददाश्त कितनी बनती चली जा रही है तीन के दम की कतर में, तो इसलिए आपसे रिपीट करता हूँ वही सवाल। ठीक है, तो ये बताइए कि किताब पढ़ते हैं या पीते हैं?
2: किताब पढ़ते
0: हैं। ओके, पैरों से चलते हैं या लिखते हैं?
2: चलते।
0: ओके, ऐसी क्या चीज है जो आपकी है, खालिस आपकी है, लेकिन उसे आपसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं?
2: मेरा नाम।
0: आ, बेटे। चलिए, इसका मतलब यह है कि कनेक्टेड हैं आप पूरी तरीके से इस वक्त है
2: हमारे साथ।
0: चलिए साहब, चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एज यूजुअल मुदस्सर भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। तो भैया, ये थी हेलो टेस्टिंग हो गई यहाँ पर, कि लोग कितना सुन रहे हैं इस वक्त और तीन का दम कितना ज्यादा मशहूर होता चला जा रहा है। तो अब इसका मतलब मुझे नए सवाल ही मार्केट में लाने पड़ेंगे। ये तो बस मैं टेस्ट कर रहा था कि भैया पुराने चला सकता हूँ या नहीं, तो मैं पुराने सवाल नहीं चला पाऊंगा मुझे लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
3: मुदस्सर जी,
0: क्या बात है भाई, आज तो मुदस्सर टू द पावर टू हो गया हमारे साथ। क्या ही कहने। तो खैरियत से है
3: अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा आपसे पड़ोसन का भी रिश्ता है ना,
0: मंसूरा वाले मुदस्सर भाई।
3: यस,
0: आई रिमेम्बर, अब याद आ गए मुझे। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? कैसा गुजरा वीकेंड?
3: जी, सर भाई, वैसे तो आप अगर जानते भी है तो फिर भी आप नाम पूछते हैं, लेकिन मैं जब पड़ोसियों की बात करता तो आपको डायरेक्ट पता चलता है।
0: हाँ, मैं उससे जरा सा पहचान जाता हूँ ना, तो ये तो अच्छा ही है। अच्छा, तो मदन सर भाई, आपका ताल्लुक कहाँ है, मतलब कहाँ से है, ये खतर नहीं?
3: जी, अभी तो आपको कतर में रहते हैं, लेकिन सर भाई ताल्लुक मेरा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में पेशावर से हम लोग।
0: अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये मुदस्सर भाई भी तो पेशावर ही बताया ना इन्होंने, मेरे ख्याल में वो भी तो वहीं से ही है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, फिर बताइए।
3: मेरा कहने का मतलब है कि हम उसका और हमारा जो इलाका एक ही है, मतलब वो रास्ते में ज्यादा उसका पड़ता है, और मैं उसके गांव से सीधा जाता हूँ, मतलब एक ही इलाका है हमारा।
0: ओके। तो भैया, आप भी बाइक पे गिरफ्तारियां हो रही है घर के अंदर, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ?
3: क्या बताओ सर भाई, आपको पता है जब बंदा जवान और बाइक हो तो फिर
0: होय
3: पड़ती है।
0: क्या बात।

0: थे यार, तो कुछ ऐसा किस्सा जो शेयर करना चाहते हैं?
1: जरूर जरूर, किस्सा क्यों नहीं, जरूर भाई।
0: ओके।
1: एक किस्सा है, तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है।
0: हाँ,
1: तो मैं बाइक पे जा रहा था, लेकिन मैं बाइक जो था वो मैं बाइक लवर नहीं था ना, वो तेज चलाने वाला था, लेकिन जरूरत के मुताबिक मैं चला रहा था।
0: ओके, स्वाद अनुसार। हसबे जायका।
1: हसबे जायका चला रहा था। तो एक दिन मैं बाजार जा रहा था, ईद की दिन के तकरीबन, ईद करीब था, 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल में, या मुझे अभी वो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मतलब ईद वालों के दिन थी, मैं बाजार जा रहा था किसी काम के सिलसिले में।
0: ओके।
1: तो जब मैं घर से निकला तो रोड पहुंचा, तो रोड में मेरा एक्सीडेंट हुआ था।
0: ओके।
1: लेकिन मुझे सर भाई, मुझे आज भी वो मालूम नहीं, मुझे पता नहीं चलता कि मेरा कैसे हुआ, ना मैंने किसी गाड़ी को मारा था।
0: अरे?
1: ना मैंने किसी दीवार को मोटरसाइकिल लगाई थी, बस मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रोड पे पड़ा था।
0: अरे तो नहीं मेरे इसमें बहुत चीजें जहल में आ रही है मेरे, मगर ऐसा हुआ होगा कि आप जब टकराए हैं तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जहन से मतलब दिमाग क्योंकि माउफ हो जाता है ना, तो वो हिस्सा जो है वो मिट जाता है और पता नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या एक्चुअली।
1: नहीं, हाँ, एक इस सर भाई, जो बाइक मैं चला रहा था उसका जो ब्रेक था वो बहुत हार्ड था, वो बहुत सख्त था।
0: हाँ।
1: तो मुझे जो अंदाजा हो रहा है, तो मैंने अचानक एक्सीडेंट, वो मैंने ब्रेक लगाया है, वो हाथ का जो ब्रेक है वो बहुत सख्त था, टाइट था बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में मैंने वो ब्रेक लगाया और मैं बिल्कुल रोड पर गिरा था। तो मुझे बहुत चोट लगी थी, मैं बहुत मतलब जो सामने वाली जो दांत है, टीथ, तो बड़ी जो दांत है वो दोनों टूट गए।
0: अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खिड़कियां खुल गई बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खिड़कियां

0: Messi artificial
1: battery. Oh my god यार, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी बाइक ने ले ली आपसे।
0: जो मेन बात है, जो मेन चीज़ है, वो भी मैं आपसे शेयर करा रहा हूँ सर भाई। फिर मैं डेंटिस्ट के पास गया था, उसने मुझे पूरा ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर उन आर्टिफिशियल जो दांत थी प्लास्टिक भरे, वो दो लगाए थे, फिर वो ट्रिपरी वो लगा रहे थे, उसके ऊपर मैं मास्क लगा रहा था। फिर सर भाई क्या हुआ, जो बड़ा डॉक्टर था उसके पास मैं चला गया, मुझे पूरा ट्रीटमेंट किया उसके, उसको इसके लिए मैंने पूरा एक एक दांत होता है जिसको इम्प्लांट कहता है,
1: ओके,
0: मैंने फिर वो लगा दी इम्प्लांट।
1: ओके,
0: और जो ब्रेसिस है उसमें कीड़ा लगता होता है, फिर उसमें इम्प्लांट लगाया। तो वो जो दांत है तकरीबन उसका बहुत दो तीन साल मैंने वेट किया, टाइम लगाया उसमें, बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने इम्प्लांट लगाया, लेकिन अभी जो दांत है वो बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बेस्ट है। मैंने परमानेंट जो दांत है वो लगाए थे, लेकिन वो बाइक की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से मेरे जो सामने वाले जो दांत है वो टूट गए थे।
1: चलो भाई, अरे तो अब ये जो लगे हुए हैं ये तो अपने ही है, मतलब इंशाल्लाह ताला किसी से ले हुए के तो नहीं लगाए ना?
0: नहीं,
1: अरे यार मुझसे ले लेते यार, मैं मुदस्सर भाई, मैं अपने दांत ही देता इतने में, तो दोनों 2 लाख में तो आप मेरे ले लेते यार। मजाक अपट भाई, मजाक से हटके सभी को ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो तफरी और मोहब्बत और मस्करापन की बातें हैं, बट भाई आज भी और कल भी और परसों भी छोटों को भी बड़ों को भी अब इस उम्र पे आके समझ में आता है कि वाकई बड़े हम लोगों को क्यों समझाते थे या परेशान क्यों होते थे। आज अगर हम अपने छोटे भाई बच्चों को देखें,
0: जी जी जी जी जी जी जी जी यकीन से कहता हूँ, मैं हमारी 2-3 बल्कि नई सूट की बाइक की वजह से मेरे खराब हो गए। जब भी मैं रोड पे गिरता तो मेरा पूरा जो कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल
1: कपड़े भी फट गए।
0: हाँ फटते हैं ना, रोड की वजह से, रोड जब
1: हाँ, बिल्कुल गिरता
0: सही
1: है, तो
0: सही बात, कपड़े वगैरह ये सारे मतलब खराब हो जाते हैं।
1: सही बात,
0: तो मतलब ये होता रहता है, ये जो कहता था मैंने।
1: नहीं, और देखिए इसमें हमारे मजाक से हटके हमारे चेहरे पे भी नुकसान है, खुदा ना खास्ता बॉडी में कहीं और भी कोई परेशानी हो सकती है, और कुछ लोगों ने परेशानी उठाई है, शायद हमें जो सुन रहे हैं वो रिलेट कर सकें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहरहाल भाई मुदस्सर भाई, बड़ा ही अच्छा किस्सा आपने शेयर किया, लोग सीखेंगे भी समझेंगे भी। आइए अब जरा 3 का दम हो जाए आपके साथ, दम कर दूं थोड़ा सा आपको। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप तैयार हैं खेलने के लिए हमारे साथ?
0: जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह मैं हार जाता हूँ, मुश्किल नहीं है।
1: क्या बात है भाई, चलिए ठीक है। आसमान का रंग दिन में आमतौर पर क्या होता है?
0: ब्लू।
1: ओके, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? ओके, आप एक बॉल को किस तरफ फेंकेंगे कि वो 20 मीटर जाकर आपके पास वापस आ जाए?
0: सॉरी सर,
1: इस सवाल का बिल्कुल मुझे समझ नहीं। अरे बहुत आसान है यार, एक बॉल को किस तरीके से फेंकेंगे कि आपके पास वापस आ जाए 20 मीटर जाने के बाद भी? अच्छा, तो चलिए दूसरा पूछता हूँ आपसे, ठीक है। एक टेबल पर 5 मक्खियाँ बैठी हैं, एक को आपने मार दिया, कितनी बची?
0: एक साइकिल पर।
1: हाँ साइकिल पर नहीं, टेबल पर।
0: दोबारा
1: एक टेबल पर 5 मक्खियां बैठी हैं, आपने एक को मार दिया, कितनी बची?
0: एक टेबल पर 5 मक्खियां बैठी हैं।
1: हाँ आपने एक को मार दिया, कितनी बची?
0: एक टेबल पर 5।
1: अब पहले एक काम ये करो मुदस्सर भाई, 5 मक्खियां बैठा लो टेबल पे और इसका प्रैक्टिकल करके मुझे कल बताना, ठीक है? मेरा भाई कैसा, पैसा ही पैसा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। तो ये थे भाई हमारे साथ मुदस्सर भाई मंसूरा वाले। तो भैया ना बॉल आई वापस और

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: लीजिए साहब, बज गए 12, बल्कि 12:03 और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल, क्योंकि आज मौसम बड़ा बेईमान है।
3: वेदर का हाल 107 दिनाल
2: भाई हो रखा है 42 degrees इस वक्त और फील्स लाइक है जी 33 degrees। लीजिए साहब आपके लिए गर्मा गर्म, और हवाएं जो हैं इस वक्त 23 kilometers per hour के हिसाब से चल रही हैं। ह्यूमिडिटी 20% पे है, अल्लाह का शुक्र एहसान यही बहुत बड़ा है, अभी तक ह्यूमिडिटी ने जोर नहीं पकड़ा है। और वहीं अगर बात करें हम QMD की, तो कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जल्दी में बोल देता हूँ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्योंकि जबान न फंस जाए यहाँ पर, QMD कह देते हैं, इन्होंने मुल्क भर में तेज हवाओं और समंदर में ऊंची लहरों के हवाले से वार्निंग जारी रखी है। ख्याल करना है, रिपोर्ट के मुताबिक इनशोर इलाकों में रात के वक्त मौसम नर्म रहेगा, थोड़ा आराम रहेगा, लेकिन बाज़ मकामात पर वक्तन फवक्तन तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कि हमने देखा कल ऐसे ही हुआ था, एकदम से हवाएं जोर पकड़ लेती हैं। हवाएं ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्ली जो सिमत है उससे चल रही हैं या चलने के इम्कान है या चलती आ रही हैं, जिनकी रफ्तार 8 से 18 knots तक है, जबकि ये गर्ट होके या कहना चाहिए गर्स्ट होके 25 knots तक पहुंच सकती है। भाई बहुत तेज है, 25 knots का मतलब बहुत तेज है। मुझ जैसा हल्का फुल्का आदमी जो है हवा में उड़ सकता है, तो उसका बहुत ख्याल रखना है। ऑफशोर इलाकों में अगर बात करें तो हवाएं मजीद तेज होने वाली हैं या होंगी, 15 से 25 knots तक बताई जा रही हैं, और जो गस्ट होकर 35 knots तक रिकॉर्ड हो सकती हैं, और जिसके बाद समंदर में शदीद लहरों के इम्कान हैं। तो भाई समंदर की लहरें इनशोर में 3 से 5 feet तक रहने के इम्कान है, जबकि ऑफशोर में 4 से 8 feet तक जा सकती हैं, और बाज़ औकात ये 12 feet तक भी बढ़ सकती हैं। तो भैया जितने भी भाई हजरात हैं और फैमिली वाले हैं और सब लोग, बच्चे बुजुर्गों ख्वातीन और हजरात, सभी इस बात का ख्याल रखें कि भाई लहरें अगर तेज हो रही हैं या आप वाटर एक्टिविटीज में मुब्तला होते हैं वीकेंड पे वीकडेज में, तो बस एहतियात जरूर रखें, बच्चों को ज़रा पानी वगैरह से दूर रखें, और अगर वो हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। वहीं विजिबिलिटी भी मुतासर हो सकती है, जहां इंशोर एरियाज में 4 से 8 kilometers और ऑफशोर में 5 से 9 kilometers तक रहने का इम्कान है। तो भैया हमारी नज़र में भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जब हवाएं तेज़ होंगी तो वो गर्द गुबार भी उड़ा सकती हैं, और गर्द गुबार होगा तो फिर देखने में कमी आएगी, तो हाईवे वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। तो भाई ये था कुछ मौसम का हाल अहवाल, और आइए अब बढ़ते हैं आगे। और भाई पहले

मैं थोड़ा सा मैसेजेस शेयर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कहां से करें शुरुआत, यहां से करते हैं। क्या कहते हैं, मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, हाय हाय हाय, मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, फकत ये कहकर अब हम आपके कुछ नहीं लगते। हाय हाय हाय हाय, खादिम भाई के दिल लोगे के जान लोगे, आगे नहीं पढ़ सकता शेर। मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सर्वर भाई, ढेर सारी दुआओं के साथ सर्वर भाई ये बताइए कि आने वाले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान है, हैं? देखिए भाई, मोहब्बत की बारिश तो मैं हर वक्त आपके ऊपर बरसा सकता हूँ खादिम भाई, बट अल्लाह ताला पानी वाली बारिश तो अल्लाह को पता है, और यहाँ पर वेदर के हाल अहवाल से अभी तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, और इस वक्त अगर बारिश हो जाए तो फिर वारे न्यारे ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ FM 107। शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। शेखो, वेयर आर यू? गावा भाई ने यहाँ पर फोटो भेजा है, ओ जो मैंगो आजकल चर्चा में है उसका फोटो भेजा है, उसके प्राइस का फोटो भेजा है, ये तो 800 निकले जा रहा है भाई, अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरोवर भाई कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। दिल से देसी यूसुफ भाई हमारे साथ, कहते हैं हैप्पी संडे मॉर्निंग सभी को, विश करते हैं, कहते हैं कैसा रहा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड अच्छा रहा यूसुफ भाई, उम्मीद है आपका भी अच्छा रहा होगा। कहते हैं मुझे दोनों पसंद नहीं है, आए नीदर बाइक नॉर कार। क्यों भैया? मुझे ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में चलाता हूँ, बाइक चलाना नहीं आती है मुझे। जब भी इंडिया जाता हूँ कजिन या फिर नेफ्यू के साथ फिरता रहता हूँ। कार ड्राइविंग भी मैंने यहाँ आके सीखी, वो भी मजबूरी में, यानी यहाँ तो ज़रूरी भी है, यहाँ भी कहीं दूर जाना होता है तो कजिन ब्रदर या नेफ्यू ही ड्राइविंग करते हैं, मैं बाजू बैठकर रिलैक्स करता हूँ। यार ये तो आपने मुझे जला दिया इस वक्त, अजब, हम तो चलानी ही चलानी पड़ती है भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अमिता, आपको डेढ़ से ढाई मिलने वाली है। मोहम्मद जहीर हैं हमारे साथ और उन्होंने जवाब दिया भाई, 3 के दम का एक जवाब दिया है उन्होंने। चलिए साहब जहीर भाई, देखेंगे अगर आप आते हैं। वैसे जवाब सही है आपका। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, उम्मीद है कि वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। सरवर भाई अभी तक कोई अपडेट नहीं है वाउचर की। अच्छा, इनाम आपका रह गया है अभी, हमारे साथ कौन है? प्लीज़ भाई मेरा मैसेज लास्ट में चला जाता है। नहीं नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा, देखिए हमज़ा है हमारे साथ। हमज़ा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको, ऐसा तो नहीं आपसे मिस हो गया हो कोई नंबर या कॉल, आपका किसी से रिप्लाई आया तो उस पे आप रिप्लाई करें और देखें, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं भी पूछने की कोशिश करता हूँ। अराफात हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, दोस्त अहबाब हमारे कलीग्स वगैरह कुछ छुट्टी पे भी गए हुए हैं और कुछ अपनी बेहतरी के लिए भी हमारे साथ अब नहीं हैं, तो आप लोग की मोहब्बतें नवाजिशें हर वक्त हमारे ऊपर बरसाते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेशन के बारे में आपने जो भी मालूमात हासिल करनी है आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, और वहीं आप हमारे वेब एड्रेस पे भी जा कर मजीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। और फिलहाल अब तो भैया एक गाना बनता है, वो भी स्वैग के साथ। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इधर कीजिए ये ट्रैक विशाल डाडलानी और नेहा भासिन की आवाज में। आईवा, I'm ready. क्या आप लोग रेडी हैं? 12:11 FM 107 सुन रहे हैं आप, सन एंड साउंड पे सर्वर मेरे साथ आपके साथ, दिल से पूरा देसी।

आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देश.

0: सोनू निगम की बेहतरीन आवाज में गाना एंजॉय किया आपने अदा, बिल्कुल, और फिल्म थी गरम मसाला।
1: साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: ऑलराइट देन, तो यहाँ पर आप लोगों का एंटरटेनमेंट जारी और सारी है बिल्कुल भाई। यहाँ पर आप लोगों के मैसेजेस भी हैं और तीन का दम भी हम खेल रहे हैं, और आज गरम गरम मुद्दा भी हमने जो सुलटाया और उठाया कि भाई आपको बाइक की राइड ज्यादा पसंद है या कार की ड्राइव। तो लोगों ने अपने अपने जितने भी मसले थे वो भी हमारे साथ शेयर करे और अपनी पसंद के बारे में भी हमें बताया। ज्यादातर भाई हजरात के साथ तो बाइक की ही यादें जुड़ी हुई होती हैं। वैसे जरूरी नहीं है, लाइक यूसुफ भाई ने अभी कहा कि मुझे तो भाई दोनों ही पसंद नहीं है, खाली बैठ के एकदम सेठ की तरह कोई भी घुमाने ले जाए वही ज्यादा पसंद है। तो आइए जानते हैं और भी क्या कहती है पब्लिक। अरे कौन है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा भाई किस
1: पहचान लिया होंगे।
0: नहीं, बिल्ली की आवाज आपने निकाली तो नहीं पहचाना, मगर अब बात कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ।
1: बोलो
0: है कोई और आवाज निकाल।
1: अच्छा, आपसे कौन बात करती है जब भी मैं आपको फोन करूं?
0: पहले तो अपना नाम बताइए।
1: अबरार।
0: अबरार भाई, अच्छा, ओ हो, माय बैड। हानिया है हमारे साथ। हानिया प्यारी हानिया आवाजें निकाल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि अबरार भाई आवाजें निकाल रहे हैं।
1: ये तब से आपको बोल रही है मैं हूँ, आप पहचान रहे हैं।
0: ओह, वेरी सॉरी प्यारी हानिया, कैसी हैं आज? कैसी तबीयत है आपकी?
1: कैसे आप बोलो
2: ये कैसा?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। ये सबसे सीनियर लिसनर हैं सन एंड साउंड की। ठीक, मैं भी ठीक हूँ।
1: अच्छा, ये सरोवर भाई
0: जी, अबरार भाई,
1: इसका किस्सा क्या हुआ था? ये जब 4 महीने की थी मैं खतर लेके आया था।
0: हाँ हाँ।
1: जब हमारे पड़ोसी थे पाकिस्तानी, उनके साथ 10 साल हो गए मैं उनके साथ रह रहा हूँ। उनकी फैमिली के साथ ये रह गई ना, अभी मेरे को समझ में नहीं आता ये मेरे को क्या बता रही है। पाकिस्तानी भी सीख गई है, हमारी भी सीख गई है।
0: माशाल्लाह, यही देखिए, ये बड़ी प्यारी बात है और ये हमारे कतर की खूबसूरती भी है कि जिस तरीके से हम मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ होते हैं तो मोहब्बतें एक दूसरे के साथ कायम रहती हैं। और माशाल्लाह, हाँ हानिया और माशाल्लाह से वही माहौल, अगर हम बात करें हमारे 90s का 80s का, जो माशाल्लाह हमारे अपने ममालिक में हुआ करता था, जब परेशानी नहीं थी बिजली के बिल की और लाइट की और दूसरी चीज़ों की, जब एक दूसरे के साथ हम सब घुल मिल के रहते थे, वक्त गुजरता था। आज हमारे कतर में भी वही मोहब्बतें, इसी तरीके से ज़िंदगियाँ जो हैं गुजारी जा रही हैं। तो देखिए, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है माशाल्लाह। हानिया जो हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहतमंद रखे। और अबरार भाई, ये आपके ऊपर भी क्रेडिट जाता है कि किस तरीके से आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, घुलते हैं, तो ये आपके ऊपर भी क्रेडिट जाता है कि आप किस तरीके से तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चे की, एक्चुअली, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट सारा आपको जाता है। अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे और तबीयत अच्छी रखे।
1: सरवर भाई, छोटी स्टोरी थी, 2 मिनट की ले सकता हूँ आपका मिनट?
0: प्लीज गो अहेड भाई, बिल्कुल।
1: 10 साल से है ना, ये 10 साल से हमारी और ये पाकिस्तानी की भाईचारे की दोस्ती है 10 साल से।
0: माशाल्लाह,
1: वो और हमारे वैसे ना कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो हम उनको छोड़ के गए या वो हमारे को बाहर छोड़ के गए।
0: क्या बात है,
1: जाना है तो मिलते ही। इतना ये हो गया, हम लोग दोनों है ना 6 बार उमरा गए भाई रोड।
0: माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
1: बॉर्डर, जब सऊदी का बॉर्डर क्रॉस होके हम लोग रियाद में रुक रहे थे तो उधर चेक पॉइंट मिला। जैसे चेक पॉइंट मिला, वो जो पुलिस था उसने बताया, शोर था, पासपोर्ट दो। जब हम दोनों अलग अलग पासपोर्ट दिए, मेरा पास इंडियन, उसके पास पाकिस्तान, वो पाकिस्तान दे, वो देखते ही पासपोर्ट, हाउ हबीब, दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ इंडियन पाकिस्तान सवा सवा उमरा हाउ।
0: माशाल्लाह, वो एक्चुअली होता क्या है अबरार भाई, मैं बताऊं कि हम लोग की मोहब्बतें जो आपस में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी के पास अपनी कहानी और किस्सा जरूर होगा इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का, मगर होता क्या है कि जो दूसरे ममालिक हैं, खासतौर पर जो हमारे अरब ममालिक हैं, वो जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, उसी से ही हम लोगों को नापते हैं एक्चुअली कि भैया यही वो लोग हैं जो कल एक साथ बैठ के अलग अलग मैच देख रहे थे और आज एक साथ घूम रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत सामने और आड़े आती है, तो वो उसी तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से भापते भी हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: वो जो मंजर था जब उन्होंने पासपोर्ट लेके उसकी आंखें जो खुली थी,
0: मैं समझ सकता हूँ। और ये बड़ी ही प्यारी बात यार, आपने बड़ी अच्छी बात शेयर करी और हमारे FM 107 के प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी बात शेयर करी आपने, मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसको मद्देनजर मैं ये रखते हुए कहूंगा कि भाई इंसानियत सबसे पहले है, प्यार मोहब्बत सबसे पहले, बाकी मसले मसाइल तो दुनिया डालती ही रहती है, कभी किसी की सुनिए मत। एक दूसरे से प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, और अबरार भाई इसका एक जीता जागता नमूना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारी बात, और हानियां जब आपके साथ होती हैं तो और मजा आता है बात करने में। तो क्या बोलते हैं अबरार भाई, तीन, हाँ जी जी, कुछ कह रही है, कुछ कह रही है,
1: कहाँ ये इसको है ना, ये टाइम पे स्कूल से लेके आने के लिए निकलता हूँ ऑफिस से।
0: माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत याब रखे।
1: एक दो बार आपसे बात करते हुए देख ली, तो उस टाइम पे जैसे गाड़ी में बैठेगी FM डालेगी, बाबा फोन करो, अभी फोन करो।
0: क्या बात है भाई,
1: आपकी छोटी सी फैन है।
0: हाँ नहीं बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला खुश रखे, मैंने बताया ना ये सबसे छोटी लिसनर है सन एंड साउंड की, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार भाई गेम वगैरह खेलना पसंद करेंगे या मशगूल हैं अभी, ड्राइव कर रहे हैं?
1: नहीं, इशू नहीं, खेलेंगे ना।
0: अच्छा खेलेंगे, वेरी गुड, हो गया ये तो, मैं तो इसके लिए तैयारी रहता हूँ। गिफ्ट मेरी मोहब्बतें हैं, मेरी दुआएं हैं, अभी के लिए तो यही है। ओके हाँ शुरू करते हैं। ओके वैसे सभी को बता दूं आज वर्ल्ड पेस्ट डे भी है, दुनिया भर में मनाया जाता है, तो इसके हवाले से भी आज एक सवाल मैंने लेके आया था, तो चलो अबरार भाई से ही पूछ लेते हैं। तो चलिए भाई अबरार भाई शुरू करते हैं, यहाँ पर आपके साथ तीन का दम। ओके देन, तो अबरार भाई ये बताइए, सूरज जो है वो किस तरीके का रंग होता है उसका?
1: जी वो आग के कलर का।
0: आग का कलर कैसा होता है ये तो बताइए। आप बता दिए, सही सही बता दिए, ये तो पहले ही सवाल है, इसमें नहीं बताऊंगा आपको मैं।
1: लाइट रेड
0: शाम के वक्त होता है, चलिए मान लेते हैं। केला पीला होता है या नीला?
1: डिपेंड करता है, पका हो तो पीला, हाँ। नहीं पका हो तो नीला।
0: कब होता है यार, कम ऑन अबरार भाई।
1: तो पका होगा तो मतलब नीला मतलब हरा।
0: हाँ चलिए ठीक है। ओके एक एक बिच्छू ने चार अंडे दिए और एक टूट गया, बताइए कितने बचे?
1: चार ही बचे, टूटा भी उधर ही है ना, हानिया बोल रही है।
2: तीन।
0: तीन बिल्कुल गलत जवाब है हानिया का। तीन हुए ना भाई, हानिया कह रही, चलो हानिया कह रही तो मान लेता हूँ, वरना अब्बा कहते तो नहीं मानता हानिया के। आपने अच्छा ट्राई किया, वैसे जवाब ये नहीं है, और जवाब मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई ना कोई हमारे लिसनर ही दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम कि आप कॉल करते हैं और अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारते भी हैं और हमारे साथ वक्त निकाल के बात भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।
1: शुक्रिया
0: एनी टाइम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हानिया अल्लाह हाफिज, बाय। अहलन वसहलन सर, थैंक यू सो मच। तो भैया ये थी प्यारी प्यारी हानिया हमारे साथ, और इधर इनके अब्बा, और किस तरीके से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी दिया या हम लोगों को बताया भी कि भैया जब मोहब्बतें होती हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं होता, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, इम्पॉर्टेंट यही है कि मोहब्बत से ही हम सारे रिश्ते ताल्लुकात निभाएं और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते चले जाएं। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस, उसके बाद कॉल का सिलसिला भी जारी रखेंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, कैसे हैं आप? आपने बताया नहीं है, क्या सवाल था आपका? कौन है ये? अहमद यासिर भाई हमारे साथ, क्या नहीं बताया मैंने यार, कुछ छुपाया क्या मैंने? मैं समझा नहीं आपकी बात भाईजान, आप मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला ओके हमजा भाई, यहाँ पर अपने प्राइस की फिक्र करते हुए जरूर इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे आपको। हमजा भाई बेफिक्र रहिए आप, और यहाँ पर हमारे साथ
3: कोई एक
0: आईवा चैंपियन।

0: सलाम। अरे उधर भी मैं ही बोल रहा हूँ,
1: मैं ही बोल रहा हूँ।
2: हाँ इधर भी। अच्छा सर एक मिनट।
0: अभी हाँ अभी अभी ठीक है। आप बताइए क्या हालचाल है रमेश बाबू?
2: बढ़िया भैया।
0: कैसा गुजरा वीकेंड? आवाज हल्की आ रही है, लंच करके लेटे हुए थे लग रहा है। आराम फरमा रहे हैं। वीकेंड कैसा रहा सर?
2: बढ़िया बढ़िया
0: बढ़िया रहा। कुछ खास हुआ?
2: बस क्या गर्मी में क्या खास सर, बस बनाना खाना सुना आराम से। और
0: क्या बात है भाई, क्या कहने। चलिए ये भी अच्छा है। तो भाई स्वाद अनुसार हजबे जायका, और कहना चाहिए कि महफिल जारी है। आइए तीन कदम हो जाए।
2: बिल्कुल
0: क्या कहने। चलिए साहब आज पेस्ट वर्ल्ड पेस्ट डे भी है, तो उसके हवाले से भी एक सवाल है आपके लिए, तो वो भी आपने बताना है। ठीक है चलिए, तो रेडी हैं?
2: जी
0: ओके। देन यहाँ पर हमारे साथ रमेश भाई मौजूद। मोबाइल से कॉल करते हैं या रोटी बनाते हैं?
2: कॉल करते हैं।
0: समंदर का पानी मीठा होता है या खारा?
2: खारा होता है।
0: एक बिच्छू ने चार अंडे दिए, एक उसमें टूट गया, कितने बचे?
2: एक बिच्छू ने
0: चार अंडे दिए, एक टूट गया, कितने बचे?
2: एक बिच्छू एक अंडा देगा ना।
0: आप अपना जवाब बताइए, मुझसे सवाल मत करिए वापस।
2: एक अंडा टूट गया तो बचे, एक बिच्छू अंडा कहां से देगा?
0: तो जवाब
2: कहां से अंडा देगा भाई?
0: आपका जवाब क्या है?
2: बिच्छू अंडा देगा ही नहीं।
0: फिर
2: जी
0: फिर क्या है? अरे बताइए, करीब है आप, बहुत करीब है। जितने शाहरुख खान और माधुरी करीब नहीं थे दिल तो चाहता मैं, आप उससे ज्यादा करीब है सवाल के। अरे बताइए यार रमेश भाई, सही जवाब देते देते रुक गए आप।
2: बिच्छू अंडा देता ही नहीं है भाई।
0: हाँ दिस इज राइट आंसर एक्चुअली रमेश भाई।
2: जी।
0: लोगों को नहीं पता है, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिच्छू अंडा नहीं देता, बिच्छू बच्चे ही देता है।
2: जी।
0: क्या बात है यार, तो बिच्छू से काफी ताल्लुकात लग रहे हैं रमेश भाई।
2: अरे सर बिच्छू एक बार मार दिया था, खेत में मार दिया था।
0: ओ माय गॉड। अच्छा तो ठीक रहे। नहीं मैंने कहा बिच्छू के बारे में काफी मालूम है, तो काफी गहरे ताल्लुकात लग रहे हैं बिच्छू से आपके।
2: अरे सरवर भाई एकदम जान लीजिए, तीन दिन एकदम मेरी हालत खराब।
0: ओ माय गॉड। अच्छा डर के मारे हैं? ओए होए होए होए।
2: नहीं नहीं डंक मारा था ना पैर में।
0: अच्छा आपको काट लिया था? ओ माय गॉड।
2: हाँ पैर में, पैर में मार दिया था।
0: हो हो हो।
2: अभी काला वाला बिच्छू खेत में।
0: ओ माय गॉड। फिर यार
2: तीन दिन
0: ओ हो
2: एकदम परेशान था मैं, पैर ही नहीं उठता था हमारा।
0: अच्छा नहीं तो मतलब माजरत के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कहने का मकसद ये है कि क्या महसूस होता है उस, कैसा कुछ बता सकते हैं? मतलब
2: झनझनाहट महसूस होता है, बस झनझनाहट होती है।
0: अच्छा
2: और पैर जो है जहाँ पे काटा रहता है ना
0: हाँ।
2: वो बहुत भारी लगेगा पैर।
0: ओहो।
2: और वहाँ पे हिट होगा, गर्म होगा, हिट हो जाएगा। तो ये जो एक यहाँ से लेके गया था मैं अबू फहद, जो वो
0: जी जी अरे भाई हाँ खैर बिल्कुल आपने बताई, बड़ी अच्छी बात है। हम भी बचपने से हमारी अम्मा तो मच्छर के कांटे पे लगा देती नहीं है, वो हर वक्त मतलब लगाती थी वही चीज।
2: जब ये लगाया जाता था
0: हाँ
2: तो
0: आराम होता था। ओ तो चलिए भाई यहाँ प्रमोशन नहीं है, बट ये एक जान के हवाले से बात हो रही है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जब इस तरीके का कोई जानवर या कीड़ा आपको काट ले या परेशान करे, तो ये एक कारगर दवाई भी यहाँ मौजूद है।
2: इससे सर कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस यही है कि बस थोड़ा सा उसका जो बीक होता है ना, जो चढ़ता है जब
0: जी,
2: वो
0: जी, जी,
2: तो
0: जी।
2: पैर में झनझनाहट होता है और वो सोने नहीं देता है आदमी को, यही बात है। तो जब तक उतरेगा नहीं अपने आप करता है वो।
0: चलिए साहब मजाक करते करते इस चीज तक भी पहुंचे और अच्छी मालूमात हासिल करी रमेश भाई से, और रमेश भाई ने आज जीत लिया भैया, तीन का दम सही जवाब दे गए तीनों के तीनों। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहलन वसहलन। तो भाई थे रमेश भाई, जहाँ काफी चीजें देखी, मालूमात में इजाफा भी हुआ, और तीन का दम हम आपके साथ खेली रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा, इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपको बताइए 443 443 7744

3377 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मजीद आप अपने मैसेजेस वगैरह भी 666-22-107 पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल दिल चुरा लिया है यहाँ पर बेनी दयाल और अनमोल मलिक का गोरिया चली। आई वाह गोरिया ने। FM 107 पे सर्वम रजा आपके साथ दिल।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: बिल्कुल भाई, वेलकम बैक, अहलन व सहलन। और चलिए साहब, गाना मैंने कहा कि बाद में सुनेंगे, फिलहाल एक चैंपियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ तीन का दम निकालेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम।
3: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
4: मेरा नाम है शुएब अख्तर।
3: शुएब अख्तर
4: जी जी।
3: अरे भाई, 156 की बॉल फेंकने वाले?
4: जी जी भाई, बिल्कुल।
3: क्या बात है भाई, शुएब अख्तर साहब, क्रिकेट का शौक है आपको?
4: क्रिकेट का भी शौक है,
3: फुटबॉल का भी शौक है, और शुएब अख्तर के फैन भी हैं।
4: जी जी बिल्कुल, इसी वजह से तो मेरा नाम रखा गया था।
3: होए होए होए यार, मैं इस पे आने वाला था शुएब भाई, कि क्या आप उनमें से ही हैं कि वालिदैन ने किसी वजह से आपका नाम रखा है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जिनका नाम जो है वालिदैन ने क्रिकेट के प्लेयर्स या अपने जो भी पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनके ऊपर रखा है। तो लीजिए साहब, शुएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, और तालियां भाई, क्या बात है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन खुद हूँ शुएब अख्तर साहब का, बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन, मतलब बहुत ही बड़ा वाला पंखा हूँ, 5 पे घूमता हूँ स्पीड के साथ जब उनका नाम आता है, तो इसलिए आपका इस्तकबाल है। तो आपकी और मेरी बात भी मेरे ख्याल में पहली बार हो रही है, पहली बार तशरीफ ला रहे हैं आप?
4: जी जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम।
3: तो इतना जुल्म क्यों कर रखा हम पे? अरे यार, कभी खाली सुनिए मत, अपनी सुनाइए भी शुएब भाई, ऐसी क्या बात है। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाए, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और खींच लाए ही मेरी मोहब्बत आपको यहाँ तक है, ऐसे ही है। तो अब दावत वगैरह बनती है फिर तो? चलिए भाई, शुएब भाई खिंचे चले आए इस वक्त 3 के दम में, तो आइए अब देखते हैं कि कितना है दम। तो रेडी शुएब भाई?
4: जी जी इंशाल्लाह।
3: ठीक है साहब, रोटी तवे पर बनती है या फ्रिज में?
4: तवे पर बनती है।
3: इंसान के कितने हाथ होते हैं?
4: इंसान के 2 हाथ होते हैं।
3: वेरी गुड, वेरी नाइस। वो क्या है जो मन में है, दिल में है, पर धड़कन में नहीं है?
4: सोच?
3: नहीं, दिल से आदमी सोचता है, मैं इस वक्त दिल से सोच रहा हूँ, शुएब भाई कितने प्यारे,
4: मन में है, दिल में है। ओके, दोबारा बताएं।
3: भाई वो क्या है जो मन में है, दिल में है, मगर धड़कन में नहीं है?
4: समझ नहीं आ रहा है।
3: इसका मतलब अच्छा जवाब मिलेगा इसका कहीं ना कहीं से, और मेरा सवाल अच्छा है, पास हो गया। शुएब अख्तर साहब 156 पे गेंद फेंक रहे हैं, मगर जवाब को नहीं पकड़ पाए या बीट नहीं कर पाए। बहरहाल शुएब भाई, आप पहली बार तशरीफ लाए, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, फिर एक काम करता हूँ, ठीक है? आसान, और ये वैसे बहुत आसान था, इट्स डैम आसान भाई, इससे आसान जवाब नहीं हो सकता। बहरहाल, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान करता रहता हूँ, तो मैंने पूछा उसको इसी हिसाब से। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी लाती है, मगर अपनी जगह से हिलती नहीं है? ऊपर जाती है, नीचे ले जाती है, और अपनी जगह भी रहती है, और अपनी जगह भी रहती है। नहीं नहीं, ये तो ऊपर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये तो जब भी तो आप ऊपर जाके बाहर निकलते हैं, कोई साथ में है आपके शोएब भाई इस वक्त?
4: नहीं कोई भी नहीं।
3: अच्छा अच्छा
4: जी,
3: और सोचिए करीब हैं आप बिल्कुल, मैंने बताया ना आप भी वैसे ही हैं जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया था कि जितना माधुरी शाहरुख खान करीब नहीं थे आप इतना इस जवाब के करीब हैं, अब बताइए।
4: बिल्कुल ये मैंने कुछ दिन पहले सुना था लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है।
3: अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए साहब, खैर बहरहाल भाई मोहब्बत है आपकी कि आप तशरीफ लाए, और ऐसा नहीं है मैं आपको जवाब देना नहीं चाहता, मगर मैं दूसरों को भी थोड़ा सा आजमाना चाहता हूँ इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए, बनते रहिए और जरूर तशरीफ लाइए, ऐसा मत करिएगा कि आप ना जवाब नहीं दे पाए, अगली बार अगले सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? अब बने रहना, अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल एफएम 107 को, ठीक है? ओके शुभ भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थे हमारे शुएब अख्तर साहब, और जिनका नाम वाकई ही शुएब अख्तर, दी शुएब अख्तर पे रखा इनके वालदेन ने। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन आ गया भैया इतने सुबह सुबह?
5: भाई कैसे?
3: भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए राशिद भाई कैसे तबीयत वगैरह?
5: मेरे जना रूम का जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम है सरोवर भाई राशिद।
3: अच्छा
5: सुन ले, 6 तारीख
3: और कह रहे यार ये मेरे मेरी बात करते फिर रहे, इनको कैसे बता? तो भाई हमारे साथ जमील साहब तशरीफ फरमा है इस वक्त, और तीन का दम निकल
5: अपने नाम लेके जो ना एजाज दे दिया
3: है, वाकई तबगा कीर्तिमान स्थापित कर दिया
5: अपने अंधेरे में मारा ना बिल्कुल इंसान। और बताइए सर भाई कैसा चल रहा है?
3: अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा रहा वीकेंड आपका?
5: अल्हम्दुलिल्लाह बस वीकेंड जाते हुए आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें लेकर गए थे, उसी पे अमल कर लिया
3: अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये तो मोहब्बत है सर आपकी, हमेशा सीखने के लिए तो मुझे मिल रहा है आप लोगों से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहतियाब रखे, यही दुआ भी है और यही अमल भी इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं जमील भाई, रेडी?
5: रेडी रेडी।
3: ऑलराइट देन, बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
5: स्कूल।
3: शर्ट पहनते हैं या खाते हैं?
5: पहनते हैं।
3: ऑलराइट देन, तो अभी अभी आपने सुना होगा ताजा ताजा एक सवाल, वो क्या है जो मन में है दिल में है मगर धड़कन में नहीं है?
5: मन में है दिल में है धड़कन में नहीं है। मन में है, मन में और दिल में तो एक ही चीज हो गई ना, वो ख्यालात है ना, एहसास।
3: तो धड़कन में भी तो होते हैं यार, आदमी की धड़कन तेज होती है जब एहसास बढ़ते हैं, और वहीं हल्की भी होती है या टेंशन में तेज भी होती है, तो ये एहसास ही तो है।
5: जी भी हाई हो जाता है, सही कह रहे हैं।
3: और सोचिए और सोचिए,
5: कभी कभार तो महीने में होता है, आए भाई कब भेजोगे?
3: थोड़ा सा
5: ब्लड का प्रेशर,
3: उसके लिए तो दवाई खानी पड़ेगी। जवाब भी आ रहे हैं खूब सारे। ओके फिर
5: मन में है,
3: हाँ
5: दिल में है,
3: हाँ
5: धड़कन में नहीं
3: नहीं है। चलिए यार एक्चुअली इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा और सोचिए जमील भाई, शायद याद आ जाए। वो क्या है जो मन में है दिल में है और धड़कन में नहीं है?
5: मन में है दिल में है धड़कन। आमिर खान।
3: यार मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप ये जवाब देंगे, इसलिए मैं इतनी देर से घुमा रहा था इसको।
5: मन में है दिल में है धड़कन में,
3: इतना जोर दे दे के कह रहा हूं मैं, मगर सवाल कैसा था ये बताइए। तो भैया सुनने वालों को जो इस वक्त जवाब दे रहे थे मुझे बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, उन सभी को बताते हैं भैया मन में भी आमिर खान है, दिल में भी आमिर खान है, धड़कन में अक्षय और सुनील शेट्टी है। इतना आसान जवाब था यार।
5: बहुत अच्छा है। तो मैं नाम भी जो है ना धड़कन को देखकर इंस्पायर होकर सुनील शेट्टी से निकले थे कि चलो तीन साल में हम भी जो है वो जाके शिल्पा का हाथ वाथ मांगेंगे। फिर पता चला वो तो बॉलीवुड ही है
3: भाई। नहीं और वो मसला भी तो गया था, मैं फिर गिरा, मैं फिर उठा और उससे मैंने 50 लाख बना लिए। भैया मैं उठ गिर जाता हूँ 15 बार यार, मैं भी बना लूंगा चाहे किसी तरह, मगर बन नहीं पाए, चोटी और लगी, फायदा कुछ नहीं हुआ।
5: हमारी चप्पल, उसकी चप्पल में एक छेद था, हमारी चप्पल में 8 छेद हो गए। लेकिन
3: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आता है हर बार आप जब भी जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो आपके मन में और दिल में आमिर खान तो थे, मगर धड़कन में निकले अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। आइए भाई एक और चैंपियन को जोड़ लेते हैं अपने साथ। हेलो, सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम सलाम, कैसे हैं सरवर भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
6: गुफरान अहमद। मुमताज अहमद।
3: आहा, क्या मुमताज हैं भाई, माशाल्लाह। खैरियत से हैं मुमताज भाई?
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: ओके, तो गेम खेलने के लिए रेडी हैं?
6: जी,
3: पहले खेल चुके हैं या आज पहली बार खेल रहे हैं?
6: नहीं नहीं, फर्स्ट बार है, सुनता हूँ डेली, लेकिन आज फर्स्ट बार है।
3: अच्छा, चलिए तो आप तशरीफ लाए यार, यही अपने आप में एक चैंपियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इसमें शिरकत करते हैं और तशरीफ लाते हैं। चलिए तो अब आपसे सवाल जवाब कर लूं क्या?
6: जी।
3: ओके देन, चीनी मीठी होती है या कड़वी? जी
6: मीठी।
3: मीठी। पंखा हवा देता है या पानी?
6: हवा।
3: वो कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है?
6: खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है। फसा दिया ना लास्ट में।
3: मतलब जब आता है, जब आप लोगों के जवाब आते हैं यहाँ पर, और बड़े ही प्यारे प्यारे जवाब आते हैं व्हाट्सएप पे भी। फिलहाल भाई बताएंगे कि कौन सी चीज है,
6: खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं।
3: जी इतनी गलत बात है, खाने का वेस्टेज देखिए कितना दुनिया में है। रोज समझा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, पर फिर भी खरीद रहे हैं और खा भी नहीं रहे, उसको वेस्ट कर रहे हैं।
6: सही मालूम है सरवर भाई।
3: इसका जवाब अब कल बताऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला, आज बताऊंगा ही नहीं ताकि सब सोचते रहे, मगर कोई भी इंटरनेट चेक नहीं करेगा, एआई की मदद कोई नहीं। हाँ यही तो यार गड़बड़ है यार, वरना तीन के दम में कैसे मजा आएगा? आजकल तो हर चीज का जवाब एआई के पास है। मैं इतनी मुश्किलों से यार सवाल बना बना के लेके आ रहा हूँ। तो कोई भी, मेरी दरखास्त है, खास गुजारिश है कि भैया कोई भी इंटरनेट चेक ना करे जो मेरे सवाल होते हैं, खुद जवाब दीजिए और लोग देते हैं। देखिए जमील भाई ने कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। एनी हाउ, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर तशरीफ लाइएगा तो आपके साथ भी तीन कदम खेलेंगे। ऑलराइट देन, यहाँ पर कॉल आ रही है बराबर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इजाजत ले लेनी चाहिए। चलिए एक चैंपियन से और जुड़ जाते हैं, कुछ मैसेज थे असल में वो शामिल करना चाह रहा था मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
3: देखिए सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। एक बॉलीवुड का तीन का दम बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी, उसमें फिर आपसे सवाल करूंगा यूसुफ भाई।
7: जी,
3: अच्छा यूसुफ भाई बिल्कुल आखिर, मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल आखिरी कहना चाहिए धड़कनों पे कदम रखते
7: हैं।
3: अहलन मोहब्बत है आपकी, खैरियत से हैं?
7: जी जी, नहीं नहीं, वो दो छोड़ के तीसरा पूछिए, दो का मैं उल्टा जवाब दे दूंगा, दो बहुत मुश्किल है, लास्ट का थोड़ा आसान है।
3: अच्छा चलिए, नहीं मैं आपसे तो यार आसान ही पूछता हूँ हर बार जब भी पूछता
7: हूँ। नहीं नहीं, वो जो दो पहले के जो पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, पहला फर्स्ट और सेकंड बहुत मुश्किल है।
3: यकीन जानिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए साहब तो आपसे खेल लेते हैं तीन का दम। दूध सफेद होता है या काला? आंखों से देखते हैं या सुनते हैं?
7: देखते हैं।
3: ओके, एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है?
7: क्या?
3: एक आदमी 8 दिन तक बिना नींद के रहा,

0: दिन
1: रह सकता है।
0: हाँ 8 दिन बिना नींद के रहा।
1: हाँ 8 दिन रह सकते हैं, रात में तो सोना है ना।
0: हाँ यही है, यही है, यही था। थैंक यू सो मच, बिल्कुल एकदम, कितना आसान है। पब्लिक कहती है नहीं भाई मुश्किल पूछ रहे हो।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं आप मेरे क्वेश्चन में आप मेरी बात नहीं समझे, मैं बोले कि आपके पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड हो रहा है सबके लिए, वो दो छोड़ के तीसरा पूछिए जो आसान वाला है।
0: मैंने वही फर्ज अदा किया मेरे भाई। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो खातिनो हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब इसी के साथ वक्त हुआ कि आपसे इजाजत ले लूं। मुख्तलिफ मैसेजेस यहाँ पर, सरताज भाई हमारे साथ, उमैद भाई, मुमताज भाई, मुमताज अहमद साहब हमारे साथ जुड़े और काफ़ी कुछ प्यारी प्यारी शायरी भी थी यहाँ पर। गुलजार भट्ट साहब हमारे साथ हैं एंड और भी तौफीक भाई हमारे साथ हैं एंड नाम जल्दी जल्दी सैयद जमील हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। कुछ बड़ी प्यारी शायरी भी थी मज़र भाई की, गालबन MMK पठान हमारे साथ थे। एनी हाउ, इंशाल्लाह ताला, मज़र भाई माजरत, अब हो गया वक्त, आपसे आज के लिए मैं ले लूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, समर स्पोर्ट्स में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी पर 1:01। ये नया प्रोग्राम है और पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था और इसी प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें बताएंगे और कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। और दोस्तों, वर्ल्ड कप एकदम हमारे नज़दीक है, वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं 666-2107 पर। मैं इतवार, मंगल और जुमेरात, ये तीनों दिन होता हूँ, लेकिन जुमेरात को ये प्रोग्राम नहीं होता। जुमेरात को स्पोर्ट्स राउंड अप है और ये दोनों दिन यानी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1:00 मैं इस प्रोग्राम में हाजिर होता हूँ, जिसका नाम है समर स्पोर्ट्स। समर में स्पोर्ट्स, हाँ, कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि समर में स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है बिकॉज बाहर गर्मी है। लेकिन तो क्या हो गया, घर में भी आप लोग खेल सकते हैं, किसी इंडोर कोर्ट में भी जाकर खेल सकते हैं। बैडमिंटन भी, यू नो, बैडमिंटन है, टेनिस है, आजकल बहुत सारी चीज़ें, पैडल स्पोर्ट्स हैं, और इनफैक्ट छोटे छोटे कोर्ट्स हैं जहाँ पर आप फुटबॉल के सिर्फ एंड सिर्फ आप उसमें थोड़ा सा जो कहते हैं ड्रिल्स, जो हम कहते हैं ड्रिल्स करते हैं, पासिंग खेल सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, ये प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है ऑन स्पोर्ट्स एंड इंड्यूरिंग समर FM 107 पर, और ये स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए। आज आप एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, क्वेश्चन से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2022 वर्ल्ड कप हुआ था, आप लोगों को याद होगा 4 साल पहले नवंबर में हुआ था, उस वक्त पहली मरतबा वर्ल्ड कप जो है नवंबर के साइकिल में किया गया था, एंड दैट वाज इन कतर। सो 2022 के इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक खिलाड़ी ने हैट्रिक किया था, आपको बताना है उनका नाम, और उनका नाम बताने के साथ आपका नाम भी बताइएगा एंड 666-2107 पर भेजिएगा मुझे यानी मोहम्मद अमीन को। मैं बता दूंगा आप लोगों का सही जवाब क्या है और साथ साथ आप लोगों का नाम भी शेयर कर दूंगा। दोबारा नोट कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है FM 107 का व्हाट्सअप नंबर, आप लोगों को पता है। और इससे पहले सर्वर का शो हुआ था, मैं मैसेजेस देख सकता हूँ कि काफ़ी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं सर्वर के शो के लिए। तो एनीवे, ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, आप लोग स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं 666-2107 पर। दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ये सवाल ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी ने हैट्रिक स्कोर किया था, आपको सिर्फ उनका नाम बताना है। और अगर डिटेल्स में बताना चाहें आप बता सकते हैं और आप लोगों का नाम मैं शाउट आउट कर दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेजर हाइलाइट्स, और मेजर हाइलाइट्स ये है कि कल कतर का मैच हुआ था अगेंस्ट एल सल्वाडोर के साथ एक फ्रेंडली मैच खेला गया, और कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल एक ट्रेनिंग मैच था, ये फ्रेंडली मैच कह सकते हैं, और इस मैच जो है गोलेस ड्रॉ, एंड दैट शोज कतर टीम इज राइटली प्रिपेयर्ड एंड राइट ऑन द ट्रैक। कतर की गोल्डेस ड्रॉ होना अगेंस्ट एल सल्वाडोर ये साबित करता है कि कतर की जो तैयारी है वो एकदम सही रास्ते पे, सही दिशा पे है, सही हदफ पर है। सो कतर इज गोइंग टू दिस वर्ल्ड कप विथ दिस गोल्डेस ड्रॉ, एक आउट से कि एक एनकरेजिंग रिजल्ट है, जीता नहीं ठीक है लेकिन एक एनकरेजिंग रिजल्ट है, बिकॉज एल सल्वाडोर के अगेंस्ट में गोल्डेस ड्रॉ रखना बहुत बड़ी बात हो गई है। और लॉस एंजलिस में ये मैच हुआ था BMO स्टेडियम में, और ये मैच हेड कोच खुलेन लोपतगी के लिए वर्ल्ड कप के आगाज से पहले अपनी स्क्वाड का आखिरी जायजा लेने का मौका था, एंड मुझे लगता है कि वो खुश हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस पे, और खुश ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे थे अपने लड़कों में यानी खिलाड़ियों में वो उनको दिख गया, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम मैजिक फॉर कतर इन द फोर्थ कमिंग मैचेस इन द वर्ल्ड कप। और 13 जून को याद रखिएगा ये डेट, 13 जून यानी पिछले एक हफ्ता से कम रह गया है, 13 जून यानी हफ्ते के रोज, नेक्स्ट वीक 13 जून को कतर विल प्ले स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड काफ़ी टफ टीम है, मान के चलता हूँ कि टफ टीम है, लेकिन फुटबॉल में अनगिनत इस तरह के वाकयात हुए हैं जहाँ पे मैचेस जो हैं छोटे टीम यानी वीकर टीम समझा जाने वाले छोटे टीम जो होते हैं, जिनका रैंकिंग्स कम होते हैं ना, तो वो टीम जो है बड़े टीम को हरा देती है। सऊदी अरब और अर्जेंटीना का मैच याद है आप लोगों को 2022 वर्ल्ड कप में, सो भूलिएगा मत। तो कतर भी रेडिली, नो दे आर ऑन द सेम ट्रैक, एंड इस बार कुछ करना चाहिए कतर को। तो दोस्तों, ये टूर्नामेंट जो है कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में है, और ये तीनों ममालिक में पहली मरतबा एक साथ फीफा ने एक टूर्नामेंट को होस्ट करवा रहा है, आई मीन फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करवा रहा है। अच्छा ये बात, ये इंपॉर्टेंट ये होने जा रहा है कि वाई तीन डिफरेंट कंट्रीज, थ्री डिफरेंट कंट्रीज का, आई मीन कंट्रीज के पीछे क्या रीज़न रहा होगा। तो फीफा का ये कहना है कि फुटबॉल को थोड़ा और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए, फुटबॉल को और ज़्यादा कंट्रीज में हम स्प्रेड करें, तो दैट इज़ व्हाट। और इसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं सिवाय 2034 जो कि सऊदी अरब में होने जा रहा है, इसके जस्ट फौरन बाद 2026-2030 का जो वर्ल्ड कप है वो भी दो कंट्रीज से तो ज़्यादा कंट्रीज उसमें होस्ट कंट्री होस्ट हैं। नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग कभी और आप लोगों से ये पूछूंगा, आप लोग बता सकते हैं उसमें। तो दोस्तों एशियन चैंपियंस कतर टीम है और इस वक्त कैलिफोर्निया के सांता बारबारा में मौजूद हैं, जहां वो वर्ल्ड कप से पहले अपने फाइनल ट्रेनिंग कैंप की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। चलते चलते यही भी एक क्वेश्चन दोबारा सवाल जो है मेरा रहा है पूछ लूँ कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था, उस वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ने हैट्रिक किया था, बहुत बड़ी बात थी, और वो हैट्रिक किस खिलाड़ी ने स्कोर किए थे। आपको सिर्फ उनका नाम बताना है, साथ में आपका नाम भी बताइएगा। अच्छा दोस्तों, कतर की जो कौमी फुटबॉल टीम है और इस नेशनल टीम को पिछले ही हफ्ते यू नो स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया था, 26 मेंबर स्क्वाड है, दैट इज़ द ऑफिशियल यू नो काउंटिंग है, ऑफिशियल जो यू नो जिसको कहते हैं कि इतने ही आप प्लेयर्स रख सकते हैं। तो इस 26 मेंबर स्क्वाड में इंडिया का एक खिलाड़ी है, इंडिया का आई मीन एक खिलाड़ी इन द सेंस कि इंडिया का खिलाड़ी तो नहीं, मतलब इंडियन बॉर्न है, जो कतर में पैदा हुआ था, इंडियन बॉर्न नॉट इंडिया बॉर्न, बल्कि उनकी फैमिली यहाँ पे आ गई थी और वो लड़का जो है यहाँ पे पैदा हुआ था, उसका नाम है तहसीन मोहम्मद जमशेद। और ये लड़का जो है आगे जाके उनका हुनर जो है देखने के बाद लोकल कोचेस ने काफ़ी मुतासिर हुए थे एंड उनको इस टीम में शामिल कर दिया। ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं हुआ था ये, क्योंकि वो जूनियर टीम जूनियर प्रोग्राम्स में एस्पायर अकेडमी में होते होते होते होते होते फाइनली इन्होंने जो सब जूनियर टीम्स है, जो जूनियर नेशनल टीम है कतर की नेशनल टीम, उसमें भी खेला। उसके बाद कोचेस वेरियस कोचेस जो है ये समझा गया कि मतलब इसमें कुछ तो हुनर है, कुछ टैलेंट है, तो इस लड़के को हमारे टीम में शामिल कर लेते हैं। बिकॉज बाय बर्थ अगर आप कोई भी यहाँ पे पैदा होते हैं कतर में, यू कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट कतर नेशनल टीम, प्रोवाइडेड आपके पास टैलेंट हो। ये टैलेंट की बदौलत आज तहसीन मोहम्मद जो हैं आज कतर के इस 26 मेंबर स्क्वाड में शामिल हैं, और इसी बहुत बड़ी बात है। और देखिए ना, एक्सपैट्स के बच्चे जो होते हैं यहाँ पर अगर कतर में मौजूद है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सा अपनाइए, अपने बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स में धकेलिए। और ये जो बड़ी मोबाइल और ये सोशल मीडिया पे बैठे रहना, टीवी के सामने बैठे रहना, वीडियो गेम्स के सामने बैठे रहना, ये एक मतलब मैं कहूँगा इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ दिस करियर, उनका करियर के भी एक ख़राब है। और दूसरी बात यह कि मेंटल अगर हेल्थ की बात करूं, तो मेंटल वेलफेयर की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये स्पोर्ट्स जो है फिजिकल स्पोर्ट्स में ज़रूर एंड ज़रूर उसमें एंट्री लेनी चाहिए। और तहसीन मोहम्मद जमशेद जो है एक रोल मॉडल है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे ह्यूज है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, श्रीलंकन नेपाली बांग्लादेशी कम्युनिटी, आप अपने बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स में डालिए, देखिए कि किस जगह पे कहाँ पे क्या खेल रहा है, वो आप डाल दीजिए, उसके बाद की बात देखी जाएगी। तो दोस्तों कतर इज़ रेडी फॉर द जो वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट जो मैच है कतर, नेक्स्ट मैच मीन्स कतर फर्स्ट गेम इज़ ऑन द 13th of June अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो मजीद और भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके मेजबान मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था इस शो के बारे में, और इस शो में एक जो टॉपिक हमने यूज़ किया था आज, वो है कि वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से एक सवाल मैंने पूछा था कि 2022 वर्ल्ड कप जब हुआ था यहाँ पे कतर में, तो एक खिलाड़ी ने उस खिलाड़ी ने हैट्रिक किया था, एक वन ऑफ अ काइंड, यू नो, हैट्रिक होना फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत कम देखने को मिलता है हमें। तो दैट वर्ल्ड कप वॉज अ मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना, डेफिनेटली दे वन दैट वर्ल्ड कप। सो उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है कि जिन्होंने हैट्रिक किया था। कई ऐसे जवाब आ चुके हैं एंड आई फील दैट आप लोगों को बहुत बहुत नॉलेज है, मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी इन दिनों क्या, आज जो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच जारी है, और ये मैच जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है, एंड ये इकलौता टेस्ट है। इसमें इंडिया ने काफ़ी अपनी पोजीशन को वजह काफ़ी मजबूत कर लिया है, एंड इसमें ये बता दूं कि 564 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स डिक्लेयर करने के बाद आज मैच का दूसरा दिन है, और ये वन ऑफ टेस्ट है, जैसे मैंने बताया इकलौता टेस्ट है, और इसमें अफगानिस्तान को एक चुनौती दी है इंडियन टीम ने। और अब देख लेते हैं कि स्कोर क्या है अफगानिस्तान का। स्कोर अभी अफगानिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और अभी भी 495 रन पीछे हैं। पीछे है इसलिए है कि क्योंकि इंडियन बॉलिंग अटैक इज क्वाइट शार्प, और अभी जो बैट कर रहे हैं उनको बता देता हूँ कौन बैट कर रहे हैं। बैट कर रहे हैं रहमत शाह 22 रन बनाकर, और हशमतुल्ला शाहिदी जो कप्तान है 1 रन बनाकर बैट कर रहे हैं। आउट हो चुके हैं अब्दुल मलिक, सदीकुल्ला अटल और रहमतुल्ला गुरबाज। ये तीनों बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, इनकी शुरुआत जो है काफ़ी अच्छी नहीं, 16, 17, 12 ये तीनों बैट्समैन ने इतना ज़्यादा रन नहीं बनाए, इसीलिए अफगानिस्तान थोड़ा सा प्रेशर में है। 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन, 24.1 ओवर जारी है, अभी मैच जारी है इन चंडीगढ़, इन पंजाब, इन इंडियंस पंजाब चंडीगढ़ सिटी में। तो दोस्तों ये मैच के बाद, इस मैच के बाद जो मैचेस होने हैं, ये अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, इसके बाद जो है ODI होने हैं, और ये 3 मैचों की ODI जो है नेक्स्ट सैटरडे यानी 13 जून से

विकेट लिया एंड दैट इक्वल्स दैट रिकॉर्ड इक्वल्स वासिम अकरम और वकार यूनुस का रिकॉर्ड जो था कि कप्तान मतलब बतौर कप्तान किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के कप्तान ने अगर फर्स्ट मैच के फर्स्ट गेंद पर विकेट लिया हो तो इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी से पहले वासिम अकरम और वकार यूनुस ने लिया था, दैट्स अ रिकॉर्ड। अच्छा दोस्तों, ये वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, देखिए इस टॉपिक में अभी जितने भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होने हैं ना उसमें मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप को ज़्यादा रखूँगा बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट वाइडली गेम राइट नाउ। और इस जून में इस समर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी बात होगी क्योंकि कतर मौजूद है और कतर के साथ साथ 7 अरब ममालिक भी मौजूद हैं और इस मौजूदगी का मतलब यह था कि अरब फुटबॉल का जो प्रमोशन, अगर फुटबॉल को अगर देखें अरब फुटबॉल के जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो आज अगर वर्ल्ड कप में 8 टीमें मौजूद हैं तो उसका मतलब है काफ़ी कुछ हो रहा है। अच्छा मूविंग ऑन टू कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन से एक स्टेटमेंट है कि जून के दौरान एस्पायर जोन में खवातीन के लिए इंडोर ट्रैक रेस सीरीज के नए एडिशन का ऐलान हो गया है और इसका मकसद जो है खवातीन यानी वुमेन्स के खेलों और समाजी सरगर्मियों में शिरकत को फरोग देना है। तो वुमेन्स आर नॉट बिहाइंड और कतर में जितने भी वुमेन एस्पिरेंट्स है जिनको खेलना है, जिनको खेल के साथ कोई लगाव है, तो वो यू नो एस्पायर जोन में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन ने इस महीने में एक जो इंडोर ट्रैक रेस सीरीज़ है उसका एक नया एडिशन लॉन्च किया है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नो मोर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम अस। और लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनल मेसी आपको पता है कि थोड़ा बहुत इंजरी लेके वर्ल्ड कप पहुँचे हुए हैं और उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया लेकिन वो थोड़ा सा टीम से हटकर अलग से उन्होंने ट्रेनिंग की। अभी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से वो गुजर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं, टीम के जो मैनेजर स्केलोनी अभी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे कि क्या पहले मैच में मेसी साहब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वहीं कतर की न्यूज़ है फातिमा अल क्वारी को कतरी जो बिडिंग है 2036 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की जो बिडिंग है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मुकर्रर कर दिया गया है और उनकी तकरीरी कतर की 2036 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी की कोशिशों में एक अहम कदम समझा जा रहा है। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कतर स्पोर्ट। देखिए पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम्स 2036 के जो कतर की जो बिडिंग है ओलंपिक गेम्स का, बहुत बड़ी बात है। 236 अगर ओलंपिक कतर के पास आ जाए तो समझ रहे हैं आप क्या होना है। आई मीन वर्ल्ड कप अगर फुटबॉल को कतर ने होस्ट किया 2022 में, उससे भी थोड़ा सा मैं कहूँगा टू स्टेप अहेड बिकॉज फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक चंद टीमें होती हैं, मतलब पहले तो 32 टीमें उसके बाद बढ़ाकर 48 टीमें होगी। अब जो है ओलंपिक अगर कतर के पास आ जाए तो कतर के ओलंपिक का होना, ओलंपिक स्पोर्ट्स का होना, ओलंपिक गेम्स का होना क्या बड़ी बात है। भीड़ एंड कंट्रीज़, देखिए नॉट जस्ट 48 कंट्रीज़ होंगे, दुनिया के तमाम कंट्रीज इस ओलंपिक में शिरकत करेंगे, साथ साथ पैरा ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी, दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द कतर ओलंपिक कमेटी। आज फ्रेंच ओपन जारी है, फ्रेंच ओपन फाइनल मेन्स फाइनल होने जा रहा है और इस फाइनल में इटली के फ्लैबियो कोबोली का मुकाबला आंद्रे ज़ेवरेव से होगा। दोस्तों फ्लैबियो कोबोली जो है इटली के हैं, सोचिए क्या आयरनी है, यहाँ पे इटालियन टेनिस प्लेयर्स उभर रहे हैं और इटालियन फुटबॉल जो है फिसल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप से वो तीसरी मर्तबा नाकाम रहे हैं कि क्वालिफाई करने में। सो एनीवे बेस्ट ऑफ लक टू द फ्लैबियो कोबोली एंड आंद्रे ज़ेवरेव ऑफ द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्ले इन द मेंस फ्रेंच ओपन टुडे। और कल यानी सैटरडे को एक फाइनल यानी वुमेन्स फाइनल हुआ था फ्रेंच ओपन सिंगल्स फाइनल में। वुमेन्स सिंगल्स फाइनल में रशिया की टेनिस सेंसेशन मीरा आंद्रीवा ने पोलिश क्वालिफायर माया चोलिंस्का को सीधे सेट से हराकर पहली मर्तबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। उम्र बता दूं आपको इस लड़की का, 19 ईयर ओल्ड एक टेनिस प्लेयर जिन्होंने ग्रैंड स्लैम। और हम अपने कल ही किसी से बात हो रही थी कि हम हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, हमारे जो ममालिक हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज, हम वहाँ पर बात करते हैं कि बेटा पढ़ लो, आप पढ़ाई करो, यानी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। स्पोर्ट्स के लिए जो है, स्पोर्ट्स के प्रति जो हमारे जो एक वो है हिचकिचाहट है, एक एलर्जी है कि अरे स्पोर्ट्स करके, स्पोर्ट्स खेल के क्या होगा। लेकिन मैं हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करते आया हूँ और स्पोर्ट्स के लिए, हक के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, चाहे वो शतरंज क्यों ना हो, कहाँ से कैसे वो बच्चा
या बच्ची कहाँ तक पहुँचेगा ये हमें नहीं पता, जस्ट

involve her, him with any kind of sports. And dekhe, Mira Andreeva, just 19 year old. Can you beat this Grand Slam, French Open tennis? It's such a big, big thing. तो दोस्तों मेरा हमेशा ये रहा है, हमेशा शो में मैं ये बताते आता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ आप लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए. पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो व्हाई नॉट टेक इट अ स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड. अच्छा दोस्तों, एक एशियन मेंस क्लब लीग वॉलीबॉल हेल्ड चैंपियनशिप जो है वो कल कुवैत में शुरू हुआ है, और इसमें क्लब चैंपियनशिप है और ये 17 जून तक जारी रहेगी, और इसमें कतर की दो क्लबें हैं जिनका नाम है अल दोहेल अल अरबी. इसके अलावा कुवैत से दो क्लबें हैं, कुवैत एससी और बुरगान. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शारजा, बहरीन का अल नजमा और सऊदी अरब का अल खलीज. तो ये थी आज के जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज़ और अपडेट्स, ये आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ. अब बढ़ता हूँ जो जवाब जिसके लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था. जी काफ़ी लोगों ने दिया है एंड नाम आप लोगों को बता देता हूँ. शोएब अख्तर, शोएब अख्तर आपने भेजा है मुझे. तो शोएब अख्तर से क्रिकेट की याद है. एम्बापे स्कोर हैट्रिक इन फाइनल 2022. बहुत सही जवाब. एम्बापे हैट्रिक इन 2022 वर्ल्ड कप. अम्मार बहुत सही, लेकिन नाम अच्छा ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया. मुमताज़ अहमद, हमेशा की तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से जीता था वो. अच्छा अच्छा, ये कुछ आई डोंट नो कौन से मैच के बारे में कहा था. एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बता दिया इन्फॉर्मेशन. किलियन एम्बापे ने ये स्कोर किया था एंड अगेंस्ट अर्जेंटीना इन द फाइनल हैट्रिक, और मैं बताऊंगा कि ये रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड था. और ए फॉर अस्सलाम वालेकुम, किलियन एम्बापे कौन है? आई थिंक 2022 फीफा वर्ल्ड कप हैट्रिक. जी बहुत बहुत सही जवाब दिया मकसूद साहब आपने, बहुत बहुत सही जवाब दिया है. अच्छा ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा एनेक्डोट बता दूं कि ये जो हैट्रिक हुआ था फाइनल में, ये दूसरी मरतबा था. इससे पहले 1966 के वर्ल्ड कप फाइनल में एट द वेम्बली स्टेडियम इंग्लैंड के जो फर्स्ट ने हैट्रिक करके जर्मनी को हरा दिया था, एंड दैट वाज द ओनली टाइटल, वाहिद टाइटल है इंग्लैंड फुटबॉल टीम के लिए. और आज भी इंग्लैंड फुटबॉल टीम जो है 66 से लेके 2026 कितने साल हो गए, 60 साल में अभी भी वो चिराग लेके ढूंढ रहे हैं कि आज भी उनको कोई वर्ल्ड कप टाइटल दिलाएंगे कैसे. आपके पास मटेरियल होनी चाहिए, आपके पास जज्बा होनी चाहिए, और इंग्लैंड टीम के पास मैं ये नहीं कहूँ कि जज्बा नहीं है, बट दे आर मिसिंग आउट ऑन सम गुड क्वालिटी, सम यू नो वो जो फाइनर पॉइंट्स है, टेक्निकलिटीज़, जिसकी वजह से बाकी टीमें जो हैं वो अव्वल नंबर पर पहुंच जाते हैं. तो एनी वे दिस इज वॉट आई कैन शेयर इज दैट जो फर्स्ट वॉज द फर्स्ट प्लेयर फुटबॉलर जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक स्कोर किया था, और वो मुकाबला काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, द फाइनल अगेंस्ट वेस्ट जर्मनी. उस टाइम वेस्ट जर्मनी, अभी जर्मनी एक कंट्री है, पहले वेस्ट जर्मनी इस जर्मनी हुआ करते थे. तो वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट में वो गोल जो फर्स्ट ने जो किया था आज भी कॉन्ट्रोवर्शियल है. आज भी लोग कहते हैं कि वो गोल नहीं था, कोई कहते हैं गोल था, क्योंकि कोई कहते हैं कि वो जो है जो गेंद जो है टप्पा खाकर जो गोल लाइन पर है वो बाउंस किया था. किसी का कहना है कि वो क्रॉस कर गया था, जर्मन प्लेयर का कहना था कि वो क्रॉस नहीं किया था. तो आज भी दैट्स क्वाइट अ हिस्टोरिक गोल, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे. जो फर्स्ट वॉज द मैन ऑफ द मैच ड्यूरिंग दैट फाइनल, और यहाँ पर 2022 फाइनल में किलियन एम्बापे ने हैट्रिक किया. लेकिन देखिए हैट्रिक करने के बाद भी फ्रांस को बचा नहीं पाए, टाई ब्रेकर में ऑस्ट्रेलिया माफ कीजिएगा अर्जेंटीना ने बाजी मार दी. एंड ये जो फाइनल था, ये फाइनल वाज क्लासिक फाइनल बिकॉज टाई ब्रेकर में डिसाइड हुआ था, एंड टाई ब्रेकर में यू नो अर्जेंटीना के जो गोलकीपर एंड डीबू ने कमाल ही कर दिया था. डीबू ने शॉर्ट स्टॉपर, अगर देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टॉपर्स हैं, यानी टाई ब्रेकर में जो गोल बचा लेते हैं जो गोलकीपर, तो वो उनका जो यू नो रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट फ्रांस इन द फाइनल वाज आल्सो इक्वली मेमोरेबल. सो दैट हेल्प्ड अर्जेंटीना विन देयर थर्ड वर्ल्ड कप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 78, 86 एंड 2022 के वर्ल्ड कप, तीन वर्ल्ड कप्स लेकर अर्जेंटीना इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइटल को डिफेंड करें. तो इसी के साथ जो समर स्पोर्ट्स में आप लोग जो अपने जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया. अगले जुमेरात अब माफ कीजिएगा अगले मंगल को फिर हाजिर होंगे दुनिया भर और कतर की दिलचस्प स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ, खास तौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज के साथ जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में मुनाकिद हो रहा है. तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और खेलों की दुनिया से जुड़े रहिए. टिल देन कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी.

दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। FM 107 सुन रहे हैं आप। इस वक्त मैं कहूंगी कि हमारे कतर का जो टेम्परेचर है वो 40 पार हो चुका है और अभी स्टूडियो में बज चुके हैं दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखें।

हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी फरमीता। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का इस नए हफ्ते में। भाई ब्रांड न्यू हफ्ता शुरू हो चुका है, तो आज कुछ नई नई कमाल की सिचुएशन है और पूरे हफ्ते ऐसी कमाल की सिचुएशन है जहाँ से आपको एस्केप करना है। सो व्हाट यू थिंक गाइस, कि आज कहाँ से एस्केप करने वाले हैं? चलो मैं आपको दो तीन ऑप्शन देती हूँ, जो ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप इन्हीं जगहों से निकल पाते हैं, ठीक है। या तो आप किसी मनी हाइस्ट में फंसने वाले हैं, ठीक है, मनी हाइस्ट में फंसने वाले हैं, सॉरी। दूसरे, आप हो सकता है किसी समंदर के किनारे। तीसरे, किसी केव के अंदर या किसी गुफा के अंदर, मैं कह सकती हूँ, या फिर किसी म्यूजियम के अंदर, या फिर किसी एंशियंट टाउन में। नाउ थिंक अबाउट इट, आप आज कहाँ कैद होने वाले हैं? एंड यू थिंक कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि हर एक क्लू आप सॉल्व करें और वहाँ से निकल पाएं? इफ यू थिंक दैट येस यू कैन डू इट, देन दिस शो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। तो 666-22-107 हमारा नंबर है, 666-22-107। इस पर आप हमें मैसेज करेंगे, yes, लगातार हमारा जो राबता है वो इस नंबर के थ्रू होता रहेगा, और आपको हर एक, आपको बेसिकली जो सिचुएशन मैं दूंगी उससे निकलने के लिए हर एक क्लू सॉल्व करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि आज के सारे क्लूज आप सॉल्व कर पाते होगे नहीं। पहले तो ये बता दो कि आज कौन सी सिचुएशन आपको लगता है कि हो सकती है जहाँ से आपको एस्केप करना है। सो मैसेज मी ऑन 666-22-107, 666-22-107, एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग सही गैस कर पाते हैं। वैसे साथ में ये भी बता सकते हो कि वीकेंड कैसा गया। ये तो बड़ा ही नेचुरल सा सवाल है, बिना इसका जवाब दिए आपको जाने नहीं दूंगी मैं कहीं। तो जरूर मैसेज करें 666-22-107 पर। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा यू नो लूजन अप हो जाए, और उसके बाद सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। कौन आ गया ये? स्वरा वर्मा एंड मिता। चले एंजॉय करें सॉन्ग। स्टेडियम टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।

0: मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107। दिल से दी।
3: Yes, my desi audience, welcome. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं आपको क्या लगता है आज एस्केप रूम में आप कहाँ कैद होने वाले हैं। तो हमें ज़्यादातर जवाब जो मिले हैं वो है कि हम किसी म्यूज़ियम में कैद होने वाले हैं। वैसे मैं कहूँगी कि जिन्होंने म्यूज़ियम कहा है ना, बहुत हद तक सही ही कहा है लेकिन ये अलग तरह का म्यूज़ियम है। यस, तो देखते हैं कि आज आपका जो नसीब है वो आपका कितना साथ देता है। इस वक्त आप ऑफिशियली कैद हो चुके हैं एस्केप रूम में और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज रेगिस्तान की ये खौफनाक जो हवाएं हैं, हाँ, रेगिस्तान की खौफनाक हवाएं महसूस कीजिए। आपको वैली ऑफ द किंग्स यानी कि शहंशाह राजा, इनकी एक घाटी उसमें ले जाने वाली है, इन गहराइयों में खींच रही है। और ये कोई नॉर्मल सा म्यूज़ियम नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा मकबरा है या टोम्ब जिसको कह सकते हैं, जहाँ पर आप गए हैं और आप वहाँ खड़े हैं। आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, आप खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहे हैं और तभी इस हज़ारों सालों से जो ये जगह बंद थी आप वहाँ पर गए, तो यू फेल्ट कि अब ये जगह शायद खुली रहने वाली है, आप थोड़ा घूम फिर सकते हैं। लेकिन अचानक से आपने कुछ महसूस किया, ये जो हवा चल रही थी ज़ोरों से ये धीरे धीरे धीरे कम हो रही है। और वो पुराना पत्थर का दरवाज़ा जिसके ज़रिए आप अंदर गए थे वो बंद हो गया है। उफ, अब आपके पास सिर्फ एक घंटा है। यस, या तो इन दीवारों पर लिखी पुरानी पहेलियों को आप सुलझा लें और हमेशा के लिए इस कर्स्ड किंग या यू कहें शापित राजा, शापित बादशाह की दुनिया का हिस्सा बन जाएं। आपको करना क्या है, या तो सुलझाएं या तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहेलियों को सुलझाना है। तो नंबर ध्यान से सुने, 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर। इस पर आपको अपने नाम के साथ जवाब देना है। अब सुनिए, ये वक्त जो है ना, यहाँ पर रेत जो है वो मुट्ठी से फिसल रही है। आप एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ चारों तरफ बेशकीमती सोना बिखरा हुआ है, पर ध्यान रहे लालच बुरी बला है। अगर आपने कुछ भी यहाँ टच किया, उठाने की कोशिश की, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, ये चीज़ आपकी दुश्मन है, ठीक है। तो चलिए, पहली चाबी ढूंढने के लिए सामने वाली दीवार को गौर से देखिए। पहली पहेली आपके लिए, मेरे पास आंखें हैं पर मैं देख नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, मेरे पास आंखें हैं पर मैं देख नहीं सकता, मेरे पास जुबान है पर मैं बोल नहीं सकता, हजारों पट्टियों या यूं कहें बैंडेजेस ने मुझे जकड़ा हुआ है पर मैं कोई कैदी नहीं हूं, मैं मौत की नींद सो रहा हूं मगर फिर भी जिंदा होने का दिखावा करता हूं, बताओ मैं क्या हूं? कम ऑन, यू कैन टेल इट। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इस क्लू को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि मेरे पास आंखें हैं पर मैं देख नहीं सकता, मेरे पास जुबान है पर मैं बोल नहीं सकता, मैं हजारों पट्टियों यूं कहें बैंडेजेस से जकड़ा हुआ हूं पर मैं कोई कैदी नहीं हूं, मैं मौत की नींद सो रहा हूं मगर फिर भी जिंदा होने का दिखावा कर रहा हूं। एंड आई कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि मुझे झटपट मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। यस, अगर आपको जवाब पता है देन 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107। इस नंबर को नोट करें, अपने नाम के साथ जवाब दें एंड लेट्स सी कि आप पहली चाबी ढूंढने में कामयाब होते हैं कि नहीं और कितने लोग हमें सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, आपकी तरफ सवाल तो आ गया है, अब थोड़ा सा लूजन अप होने का टाइम आ चुका है और ब्रेन को रिचार्ज करने का टाइम। सो म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। लेट्स एंजॉय यमी यमी। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखें।
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। कुछ हमारे लिसनर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हम एस्केप रूम में कहाँ फंसे हैं? हाँ जी, तो हम किसी नॉर्मल म्यूजियम के अंदर नहीं है, हम एक ऐसे मकबरे या टोम में खड़े थे जहाँ पर, जो कि हज़ारों साल पुराना था। एंड आई शुड से कि हवा का जो एकदम उसकी सरसराहट धीरे धीरे कम हुई एंड देन एक पत्थर का भारी दरवाज़ा हमारे मुंह पे बंद हो गया। अब हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि ये जो जगह है, ये जो टोम है, एक शापित राजा, यूं कहें कर्स्ड किंग का है। अब हमें यहाँ से निकलने के लिए पहले क्लू को सॉल्व करना था, ठीक है? तो मेरे पास आंखें हैं पर मैं देख नहीं सकता, मेरे पास जुबान है पर मैं बोल नहीं सकता, हज़ारों पट्टियों या यूँ कहे बैंडेजेस ने मुझे जकड़ा हुआ है पर मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं मौत की नींद सो रहा हूँ मगर फिर भी जिंदा होने का दिखावा कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पूछा, हमारे जो लिसनर्स हैं नॉन स्टॉप उन्होंने मैसेजेस करना शुरू किए और सबसे पहले जिनके जवाब हम तक पहुँचे हैं वो हैं अनवर, वो है जहीद, ओके, और जाहिर, एंड देन अनम एंड रूहान भी हैं, वेरी गुड। एंड यहाँ पर ये साहब हैं सैयद आरिफ, और उसके बाद हुसैन साहब, मोहम्मद यूसुफ खान हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर एक और शख्सियत है, इनका नाम है यूसुफ, ओके, और एक और हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, दैट्स मोहम्मद, ओके। लेट मी टेल यू जिन्होंने भी जवाब दिए हैं, जवाब है मम्मी, एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां आप सभी के लिए जिन्होंने मम्मी लिखकर हमें भेजा। अभी भी हमें जवाब मिलते जा रहे हैं। वैसे हमारे बाकी लिसनर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट वो कुछ और ही लिख रहे हैं, सही जवाब दे नहीं पा रहे थे। किसी ने हमें फर्स्ट एड बॉक्स भी लिख के दे दिया। कोई बात नहीं, होता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। जब भी मैं आपको कोई क्लू दूं, आपको ध्यान से सुनना है और आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एस्केप रूम हमारा ऐसा खासम का शो है जहां पर अगर आपने थोड़ा सा ही ध्यान दिया ना, बस, तो आप हर एक पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहली पहेली आपने सुलझा ली, अब हमें, क्योंकि हमारे हाथ में मतलब चाबी जो आई है, अब क्या करना है उसके लिए, ठीक है? पहली चाबी हमें मिली जैसी हमने मम्मी कहा, पर ये चाबी कहाँ लगेगी? देखिए आगे पीछे देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, आपको एक शाही ताबूत दिखाई देगा। दिखा? हाँ। अब जाइए, इसे इस चाबी से खोलिए। जब इस चाबी से खोलती हैं तो वहाँ पर एक चमकता हुआ हरा पत्थर आपको मिलेगा, मगर अभी भी मंजिल दूर है, भूलिएगा नहीं। अगला रास्ता पार करने के लिए हमें इस पत्थर पर लिखे एक पहेली को सॉल्व करना है। आइए ज़रा ध्यान से देखें कि क्या है हमारे लिए। तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए मौत की नदी। जब हम बात करते हैं इस तरह की, तो वो नदी कौन सी है? मैं दुनिया की सबसे लंबी जीवन रेखा हूँ, लाइफ लाइन हूँ, ठीक है? मेरा सफ़र 11 मुल्कों यानी कि 11 कंट्रीज से होकर गुजरता है, और मैं इथोपिया से लेकर सूडान तक की प्यास बुझाती हूँ। अगर मैं ना होती तो मिस्र की ये जो सभ्यता है, ये जो पूरा कल्चर है, ये जो लोग बाग हैं, ये कभी पैदा नहीं होते। पहचानो मैं कौन हूँ। सोच सकते हो कौन सी नदी है जो इथोपिया से लेकर सूडान तक जाती है, ठीक है? मिस्र यानी कि इजिप्ट की प्यास बुझाती है, वहाँ की सभ्यता उसने बनाई है। इमेजिन कौन सी वो मौत की नदी है? वो एक ऐसी नदी जो बहुत बड़ी है, बेहद खूबसूरत और बिल्कुल नीली। बताएं उस नदी का नाम, बताएं, कम ऑन, टाइम टिक टिक टिक टिक कर रहा है। काफ़ी सारे हमें जवाब सही आ रहे हैं। ओके, मुझे लगता है एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टोम की। इमेजिन कीजिए, हम इतना कुछ आपसे कह रहे हैं, गौर फरमाइए। मम्मी का पहला आपने क्लू का जवाब दिया, पहले क्लू का जवाब मम्मी आया, तो फिर उससे ही रिलेटेड कुछ होगा कि नहीं होगा? थिंक अबाउट इट। मौत की नदी किसे कहते हैं? मैं दुनिया की सबसे लंबी जीवन रेखा हूँ, लाइफ लाइन हूँ, कम ऑन. मेरा सफ़र 11 मुल्कों से होकर गुजरता है. थोड़ा सा हम ज्योग्राफी की तरफ ध्यान देंगे और मैं इथोपिया से लेकर सूडान तक की प्यास बुझाती हूँ. और अगर मैं नहीं होती तो इजिप्ट की जो ये सभ्यता है, ये जो लाइफ है, ये कभी पैदा नहीं होती. बताओ मैं कौन सी हूँ, ये कौन सी रिवर हूँ? थिंक अबाउट इट. सही जवाब दीजिए 6622107 पर, 6622107, एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग अब इस सेकेंड क्लू को सॉल्व कर पाते हैं और फाइनल क्लू तक पहुंच कर इस शापित राजा के टोम से, यू कहें शापित बादशाह की इस जगह से निकल पाते हैं. जब आप निकलेंगे तो कुछ ऐसा ही म्यूजिक होगा, बट अभी के लिए थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर. 6622107 पर स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: यस जनाब, एस्केप रूम हमारे इस खासम खास शो का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक बता रही है दोपहर के 2:02। मेक अ विश, और मेरी यही दुआ है कि आपकी हर एक विश पूरी हो जाए। क्या बात है,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
2: हाँ तो मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? एस्केप रूम में क्या दो वैसे आप, तभी मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा हम इस जगह से बाहर निकलते हैं, फिर सेलिब्रेशन अच्छे से करने वाले हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, गुनगुनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन अभी हम एक टोम के अंदर, एक बड़े पत्थर के दरवाजे के अंदर बंद हो चुके हैं। ये एक शापित किंग, यस कर्स्ड किंग की जगह है। यहाँ से निकलने के लिए आपको 3 क्लूज मिलेंगे, 3 पहेलियाँ सुलझानी है। पहली पहेली आपने सुलझाई और जवाब था मम्मी। दूसरी पहेली के लिए मैंने आपको क्लू दिया कि मैं दुनिया की सबसे लंबी जीवन रेखा या यूं कहें लाइफ लाइन हूँ। मेरा सफ़र 11 मुल्कों से होकर गुजरता है और मैं इथोपिया से लेकर सूडान तक की प्यास बुझाती हूँ। अगर मैं ना हूँ तो इजिप्ट के ये सभ्यता जो है ये पैदा ही नहीं होती। ठीक है, तो बचानो मैं कौन हूँ। हमें काफ़ी सारे जवाब आ चुके हैं, आइए देखते हैं किन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। ठीक है, सही जवाब बहुत मैटर करता है, तो सही जवाब किन्होंने दिए हमें। अनवर ने सही जवाब दिया है, अकबर ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है, जहीर ने सही जवाब दिया, हुसैन साहब ने सही जवाब दिया है, इनका नाम है आतिफ, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, अगेन मोहम्मद जहीर हमारे साथ, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और ये शख्सियत कौन है, आइए ज़रा नाम ज़रूर लिखा करें। मकसूद साहब, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, एंड निदा ने भी सही जवाब दिया है। फैंटास्टिक, तो हमारे लिसनर्स जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आइए उनका जवाब हम आपको बता दें। सो दैट इज़ रिवर नाइल, यानी नील नदी। आइए ज़ोरदार तालियां आप सबके लिए, हैट्स ऑफ। दूसरा क्लू भी आपने सॉल्व किया, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। जैसे ही दूसरा क्लू आपने सॉल्व किया, एक बड़े से पत्थर के खिसकने की आवाज आपको आई और हल्के हल्के पानी के बहने की गूंज भी आपको सुनाई दी। अब यू थिंकिंग कि ओके, अब हमें बाहर निकलना है, ये आखिरी रास्ता है, किसी तरह बस निकलना है बाहर, अब हम फंस नहीं सकते, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, आइए देखिए। जमीन में एक हिडन रास्ता खुला है, आप एक एकदम तंग टनल से रेंगते हुए निकल रहे हैं। ठंड बढ़ रही है, ऑब्वियसली आप एक टोम के अंदर कैद थे, अब एक एकदम से तंग जो टनल है, एकदम छोटा सा टनल, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है, उसकी स्पेस भी नहीं है, और अब वहां से रेंगते हुए निकल रहे हैं। दूर कहीं हल्की सी रोशनी आपको दिख रही है, मगर एक अजीमो शान साया रास्ता रोके खड़ा है। ये आखिरी इम्तिहान है हमारा, बाहर की दुनिया और आपके बीच सिर्फ ये एक आखिरी सवाल। उफ, आइए जरा इस सवाल का जवाब दें, क्या है? मैं गीजा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूं, ठीक है, गौर फरमाइएगा। मैं गीजा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ, बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ, आधा जानवर आधा इंसान हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है? कम ऑन, ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। एक सिंपल क्लू, आप देखेंगे अगर इजिप्ट के पिरामिड्स, तो उनके बाहर किसका स्टैचू होता है, देखो ये सबसे बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, नाम बताना है आपको, ठीक है? मैं गीजा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ, बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ, मैं आधा जानवर आधा इंसान हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है? हमारे लिसनर्स कह रहे हैं, हम गूगल कर लेंगे। आई वोंट माइंड, कम ऑन, थिंक अबाउट इट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढें, क्योंकि हमें यहाँ लॉक नहीं होना है, हमें एस्केप करना है, इस टोम से बाहर निकलना ही है। कम ऑन लिसनर्स, यू कैन डू इट। एक बार फिर से दोहराती हूँ, मैं गीजा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ, बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ, आधा जानवर आधा इंसान हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है? थिंक अबाउट इट। 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107। अपने नाम के साथ जवाब दीजिए, क्योंकि हम इस शापित राजा के कैद से हमें बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है? तब जवाब ढूंढिए, जवाब दीजिए, और तब तक के लिए गुरु रंधावा तनिष्क बागची का ये ग्रेट कॉम्बिनेशन, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. ये जनाब एस्केप रूम का बिल्कुल वो कहते हैं ना थर्ड पहेली आपको सॉल्व करनी है, थर्ड क्लू सॉल्व करना है और आखिरी मुकाम पर आप पहुंच रहे हैं. लेकिन ये आखिरी मुकाम इतना आसान नहीं है. ठीक है, आप एक कर्स्ड किंग के टोम के अंदर फंस गए थे और आपने तीन क्लूज को सॉल्व करना था. पहले क्लू का जवाब मम्मी था, दूसरे क्लू का जवाब नाइल रिवर या नील नदी कह सकते हैं. और जैसे आपने ये जवाब दिए तो आपके सामने एक छुपा हुआ रास्ता खुला और एक छोटा सा टनल जिसके अंदर आप रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. दूर कहीं हल्की सी रोशनी भी दिख रही है मगर

रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ मैं आधा जानवर हूँ आधा इंसान हूँ बताओ मेरा नाम क्या है थिंक अबाउट इट गाइज यू कैन आंसर कुछ लोगों ने सही जवाब दिए हैं कुछ मुझे फाल्कन भी लिख रहे हैं नहीं नहीं कम ऑन सोचें इमेजिन करें आई एम श्योर कि आपने इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं यू नो इजिप्ट के पिरामिड्स के पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे वहाँ पर पिरामिड्स के बाहर क्या होता है कम ऑन नाउ थिंक मैं गीजा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ आधा जानवर आधा इंसान थिंक अबाउट इट जवाब आपके पास है बस सोचिए और जल्दी से दीजिए 666-22-107 666-22-107 ये आखिरी स्टेप है जो आपको लेना है ताकि आप इस कर्स्ड किंग के टोम से बाहर निकल सके एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर और म्यूजिक तो चलता रहेगा बॉस क्योंकि एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए है कि नहीं लेट्स एंजॉय बादशाह डिवाइन एंड निकिता गांधी का ग्रेट कॉम्बिनेशन डोंट गो एनीवेयर बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी

हाँ जनाब, तो भाई इशारे विशारे समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्लूज सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये आखिरी मौका है एस्केप करने का।

0: एग्जैक्टली जब सही क्लूज मिल जाते हैं तो बाहर निकलना आसान हो जाता है. एस्केप रूम शो सुन रहे हैं आप. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का.
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
0: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुँच गया हमारा शो और आज हम एक कर्स्ट किंग के टोम के अंदर कैद थे. ठीक है, और हमें 3 क्लूज सॉल्व करने थे. पहले क्लू का जवाब मम्मी आया, दूसरे क्लू का जवाब नाइल रिवर था, और जब हमने ये जवाब ढूंढे तो हमें एक हिडन रास्ता मिला. बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन बाहर एक साया जो है वो हमें निकलने नहीं दे रहा. अब क्या करेंगे? मैंने आपको एक क्लू दिया कि मैं गिज़ा के रेगिस्तान का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ. मैं ना सोता हूँ ना खाता हूँ, बस पत्थर की मूरत बनकर पिरामिड के बाहर बैठा रहता हूँ. और मैं आधा जानवर हूँ आधा इंसान हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है. हमें काफ़ी सारे जवाब आए. कुछ लोगों ने फैल्कन कहा, पर जो कि गलत है. कुछ ने कहा फीनिक्स, कुछ ने कहा स्फिंक्स. चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों ही माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं. ठीक है, जो स्फिंक्स है वो एंशंट इजिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है, और इसकी जो बॉडी है वो लायन की तरह है, और हेड मतलब जो सर है वो एक इंसान की तरह है. और फीनिक्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है इन ग्रीक, हालांकि उसका इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी जिक्र है, और ये एक इमॉर्टल बर्ड है. ओके, अब समझ गए अब सही जवाब क्या है. सही जवाब है स्फिंक्स. और जिन्होंने भी सही जवाब दिया, बहुत सारी मुबारकबाद आप सभी को, क्योंकि ये जवाब बहुत कम लोगों ने दिया है. ऐसे मैं बताना चाहूंगी कि अनवर जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने सही जवाब दिया. मोहम्मद यूसुफ खान, यहाँ पर आतिफ ने भी सही जवाब दिया है. इनका नाम क्या है, आइए ज़रा नाम ज़रूर लिखा करें, बड़े आसानी हो जाती है. खान साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. हुसैन साहब ने लिखा है पिरामिड कॉम्प्लेक्स. नहीं नहीं भाई, ये तो गलत जवाब.

और कौन है और अकबर साहब इन्होंने भी सही जवाब दिया लेकिन विनर कोई एक ही होगा आइए अब विनर का नाम भी जल्दी से घोषित कर दिया जाए और सही जवाब आप सबने दिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन लकी विनर है मिस्टर अनवर मुबारका मुबारका मुबारका कमाल कर दिया आपने और जैसे ही ये कमाल हुआ आप सीधा बाहर निकल गए उस खतरनाक से टोम के तब वो कैसा लग रहा है बाहर निकलकर सांस अच्छी गहरी आ रही है पल रोशनी में आने के बाद दिल तो खुश हो ही जाता है लेकिन जनाब ऐसा ना सोचें कि आज अगर आप इस कर्स्ड टोम के अंदर मौजूद थे आप यहाँ कैद थे तो अगला कुछ इजी मिलने वाला है बिल्कुल नहीं आज हम रेगिस्तान की थोड़ी गर्मी फील कर रहे थे हो सकता है कल समुंदर की गहराइयों में उतरेंगे तो क्या करना है बिल्कुल अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके तैयार रहना है वेल आज का एस्केप रूम शो यही खत्म होता है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे एक घंटे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वैसे आप एफएम 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं अपनी आर जमीता को भी वहाँ ढूंढ सकते हैं एंड एस्केप रूम आपको कैसा लगता है आप शेयर कर सकते हैं अभी वक्त है मेरे जाने का कल आपसे दोपहर 1:30 बजे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होने वाली है तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे और जाते जाते मैं कहूँगी हम हराई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी

वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इन्फॉर्मेटिव और फन सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शावर टाइम कम करना। देखिए, सुबह का टाइम है, जरा सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, आप शावर में एंटर करते हैं, ठंडे या गर्म पानी का मजा आप ले रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि बस पांच मिनट और क्या मस्त मजा आ रहा है नहाने में। फिर कभी कभी आप ये होता है कि भाई आप गाने गाना शुरू कर देते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन सी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, बाकायदा बाथरूम में खड़े होकर नहाते हुए आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं पता नहीं किस किस चीज की। और शावर टाइम 5 मिनट से कभी 15 तो कभी 20 मिनट तक पहुंच जाता है। और फिर भाई बाहर से कोई आवाज देता है, अगर आपके घर में कोई हो, खासतौर पर अम्मा हो, तो वो तो ये बोलती है बेटा खैर है पानी खत्म करके बाहर आना है, खुदा का खौफ करो जल्दी बाहर निकलो। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, स्पेशली बिजी मॉर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा, या अक्सर ऐसा होता है ना, वो जुमे की नमाज पढ़ने जाना होता है, घर में चाहे कितने भी बाथरूम हो कम पड़ जाते हैं और सबको ये होती है कि बस जल्दी निकलो। अब थोड़ा रियलिटी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी बहुत है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन असल में फ्रेश वाटर जो हम

0: डेली यूज करते हैं ना, वो लिमिटेड सप्लाई में होता है। जब हम शावर लेते हैं ना, तो सिर्फ पानी वेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि उस पानी को हीट करने के लिए भी एनर्जी जा रही होती है। यानी एक सिंपल शावर का इम्पैक्ट डबल होता है, यानी वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी या गैस भी। अच्छा, अगर इको स्विच के बारे में बात की जाए सिचुएशन में, तो सिंपल सा आइडिया है भाई। देखिए, शावर टाइम को कॉन्शियस और शॉर्ट रखना, मतलब क्लीन रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही घूमते फिरे बगैर नहाए धोए, ना ना ना ना ना। लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट और ओवर यूज तो अवॉइड करें ना। आइडियल शावर टाइम आपको पता है क्या होता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 से 7 मिनट काफी होते हैं। 5 से 7 मिनट के आसपास आइडियल होता है, जो हाइजीन के लिए सफिशिएंट होता है और रिसोर्स सेविंग के लिए भी बेस्ट होता है। अच्छा, अब बात अगर करें तो अब बात करते हैं कि शावर टाइम कम करने से क्या फायदा होता है। देखिए, शावर टाइम कम करने से होता है, सबसे पहला तो फायदा होता है वाटर कंजर्वेशन। हर मिनट जो आप शावर में गुजार रहे होते हैं ना, मजे से गाने गाते हुए, उससे तकरीबन लीटर्स ऑफ वाटर सेव हो जाता है। दूसरा फायदा है, एनर्जी सेव होती है। गर्म पानी यूज करने के लिए हीटर या बॉयलर जो यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस कंज्यूम होती है, वो कम होती है। तीसरा फायदा है बिल रिडक्शन। भाई, बिल रिडक्शन, पैसा आपकी जेब से कम जाएगा। वाटर एनर्जी दोनों कम यूज होते हैं ना, तो इससे मंथली बिल्स भी आपके नोटिसेबली डिफरेंस आता है, कम हो जाते हैं। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम एनर्जी यूज का मतलब है कम इमिशंस और कम एनवायरमेंटल लोड। अच्छा, जरा सोचिए, आप सुबह लेट हो रहे हैं, ठीक है, शावर में एंटर करते हैं आप सोचते हैं कि भाई बस जल्दी से शावर ले लेता हूं, लेकिन फिर आपका फोन बज पड़ता है या आपके दिमाग में कुछ अलग काम चल रहे होते हैं, आपकी सोचें होती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आपका टाइम डबल हो जाता है। और फिर रिजल्ट ये होता है कि आप लेट भी हो जाते हैं और पानी भी ज्यादा यूज हो जाता है। अगर वही शावर प्लान्ड हो कि भाई नहीं, मैं 5 मिनट का टाइमर मोबाइल में है ना, मैं बस टाइमर मोबाइल में टाइमर सेट करो भाई, 5 से 7 मिनट का टाइमर सेट करो, और आप एफिशिएंटली रेडी भी हो जाते हैं और वेस्ट भी नहीं होता आपका पानी, एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं होता। देखिए, दोहा जैसे शहर में जहाँ क्लाइमेट होता ही वार्म है और कभी कभी वेरी हॉट भी हो जाता है, शावर रूटीन डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ वाटर यूजेज और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। अगर हर हाउस होल्ड थोड़ा सा भी शावर टाइम रिड्यूस करे ना, तो सिटी लेवल पर सिग्निफिकेंटली वाटर सेविंग हो सकती है। अच्छा, अगर टिप्स के बारे में बात करें तो भाई, टाइमर यूज करें शावर स्टार्ट करते वक्त, 5 से 7 मिनट का टाइमर लगा लें, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी बात, सब पहले रेडी रखें, सब कुछ, शैम्पू, सोप, टॉवल वगैरह अरेंजमेंट जो होता है। तीसरी बात, वाटर ऑफ टेक्निक यूज करें, मतलब ये कि सोप लगाते वक्त पानी बंद कर दें ना, शैम्पू यूज करें तो पानी बंद करें। ये क्या कि पानी चल रहा है, शैम्पू लगा रहे हैं सर के ऊपर और पानी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। चौथी ट्रिक है माइंडफुल शावर हैबिट। शावर को रिलैक्सेशन जोन बनाएं, लेकिन एक्सटेंडेड थिंकिंग जोन मत बनाएं। वो जो आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ना शावर में खड़े होकर, वो ना करें। देखिए, अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ना आपको, एवरेज शावर में जो वाटर यूज होता है ना, वो डिपेंड करता है टाइम और फ्लो पे, लेकिन लॉन्ग शावर्स में अननेसेसरी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ईयरली वेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउस होल्ड। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती है बातें, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई, आज का चैलेंज ये साथियों कि आज से अगले 3 दिन के लिए आप अपना शावर टाइम नोटिस करें और कोशिश करें कि उसे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रखें। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट शावर्स लेते हैं ना, तो किसी और को आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो, उसको कह सकते हैं भाई ये वाला काम करके देखो, बिल भी कम आएगा। तो देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं, आपकी एफर्ट्स कहां तक पहुंचते हैं। तो साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपना शावर टाइम कंट्रोल करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलते, बल्कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ स्टेप लेते हैं। तो भाई, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वालिदैन का एहतराम। वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। उनकी मोहब्बत बगैर किसी शर्त के होती है और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। इस्लाम में वालिदैन की इज्जत और खिदमत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। यहाँ तक के कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अक्सर हम बिजी रूटीन में उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके साथ नरम लहजे में बात करना, उनकी खुशी का ख्याल करना और उनकी मदद करना, यही असल नेक अमल है। आज का अमल यह है कि अपने वालिदैन को कॉल करें, उनसे प्यार से बात करें, या अगर उनके पास हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें। उनका दिल खुश करना जन्नत का रास्ता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
4: आज दोस्तों हम बात करेंगे उस इम्पोर्टेंट फ्रेज को लेकर जिसको आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, शायद रेडियोज पे भी सुना है, टेलीविजन पे भी। वो फ्रेज या वो लाइन है कि वाई सस्टेनेबिलिटी इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने को ये सवाल बड़ा पावरफुल है और हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये एक भरपूर जिम्मेदारी है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, उससे कल कोई नुकसान ना हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। कतर का नेशनल विजन 2030 जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जोर देता है। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी और बिजली को बचाना, वेस्ट कम करना, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना, कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जी हाँ, सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है। अगर आज रिसोर्सेज जाया किए जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मुश्किलात पैदा होगी। विजन इसीलिए बैलेंस ग्रोथ पर जोर देता है और वन स्टेप टू 2030 हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी एक कलेक्टिव कमिटमेंट है जो कतर के फ्यूचर को महफूज बनाती है। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है। सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता, बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी.

0: आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी दिल से देसी
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: अरे हम तो गरीब आदमी हैं, बॉलीवुड का झोला उठा के निकल पड़ेंगे जी। और ये बॉलीवुड के झोले में होंगे सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे टाइम फॉर द टाइम चेक। एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:02।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ कहाँ हो, अगर बहुत दूर हो तो भी, मतलब आने का ये है कि आप यहीं करीब में आ जाए, है ना। आप अपना दिल जो है वो जोड़ लें हमारे रेडियो सेट से। आपको जहाँ से आवाज़ आ रही है बस सारा फोकस वहाँ होना चाहिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं नहीं, तब तो आपको

0: फोकस रोड पे रखना है, कान का फोकस आप इधर रख सकते हैं, लेकिन अगर यही एड्रेस ढूंढ रहे हैं आप, तो हमने कुछ दिन पहले बात भी करी थी, पता नहीं ये इंसानों में क्या बीमारी है कि जब भी एड्रेस ढूंढना होता है, कहीं पर रुकना होता है, कहीं किसी घर को ढूंढना होता है, किसी रेस्टोरेंट को ढूंढना होता है, तो जो म्यूजिक चल रहा होता है उसको धीमा करना पड़ता है। देखना का काम आंखों का है, लेकिन कान पूरे साथ दे रहे होते हैं। कान का ये है कि भैया आंख से बात कर रहा, और आंख का ये है कि भैया कान से आप जो है एक बार परमिशन ले ले, उसके बाद ही काम करूंगा मैं। और ये बड़ा यूनिक है यार, ये इंसानों के अंदर एक अलग चीजें हैं कुछ ऐसी, जो आपस में ऐसी कनेक्ट हैं कि समझ नहीं आता कि ये कनेक्ट कैसे हैं। तो दोस्तों इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे फजील के साथ, जहां पर हम आपके अपने मर्जी के गाने प्ले करते हैं। मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल, ए मोबाइल, यार मोबाइल पे ही आता है। एक बीमारी लगी थी हमारे मोबाइल को, हमारा मोबाइल आपको तो पता है, वैसे कई लोगों को पता है, मैं बता भी जाऊंगा, दादा के जमाने का है, मतलब दादा के भी परदादा के जमाने का है, तो हमारे भी परदादा नहीं, दादा के परदादा के जमाने का है, तो कभी कभार आंख खोलने से मना कर देता है। तो आपने वो बुजुर्ग आदमी देखे जिनकी आंख खुलने में भी टाइम लगता है, तो चश्मा लगाने के बाद भी उनको थोड़ा सा हो जाता है मसला कि बेटा ये क्या लिखा है बताना जरा, वो खुद ही पूछते हैं। हमारा मोबाइल वही वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि बताना क्या है, कई कई बार तो हैंग कर जाता है, मतलब ऐसे कोहनी जो है वो घुटनों की कोहनी पे आ गई है, हैं दाएं तरफ की जो उंगलियां हैं वो पीठ की तरफ पहुंच गई हैं, कुछ बता नहीं पा रहा, हैंग हो गया है, उसको फिर थपकी लगानी पड़ती है। और छोटे बच्चे जैसा भी है, थपकी दिलाओ तो डकार आएगी, तब वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं एक एक म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, उतनी देर में जहां पर भी है मैं स्टूडियो में दौड़ भाग के ढूंढ लेता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: पहुंच गया, बहुत दूर रखा हुआ था भाई, दौड़ के भाग के लेकर आना पड़ता है, इतनी देर में पूरी जो है जान निकल जाती है। एक बार फिर से इस्तकबाल आप सभी का, 4:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और 5 बजे तक आपके साथ रहेंगे, आपकी अपनी मर्जी के गाने यहाँ पर प्ले होंगे। तो आज का थीम क्या है, ये भी तो एक मुद्दा है ना। तो एक थीम होती है हर बार, और उस थीम के बेसिस पर हम यहाँ पर आपके अपने मर्जी के गाने प्ले करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप कई बार थोड़े से भावुक हो जाते हैं, आपको अपने मर्जी के गाने सुनने होते हैं लेकिन थीम से अलग होकर, तो वो जो गाना सुनने का दिल है उसको बचा के रखो, आप किसी और दिन प्ले करेंगे अगर थीम उसकी यानी कि अलग है, अगर आज की थीम जो है वो आपके गाने से मैच नहीं होती है तो उसको बचा के रखो भाई। हम आपसे जो सवाल पूछेंगे, या सवाल ही कहें, वो सवाल तो है ही नहीं इसमें, जो आपसे थीम पूछेंगे उस थीम के गाने आपको हमसे रिक्वेस्ट करनी है, और वो गाने आपके लिए प्ले किए जाएंगे। फिलहाल आज है 7 तारीख, और 7 तारीख की जो थीम है उसके लिए तैयार हो जाइए, और आपको मैसेज करना है 666-22107 पे। बॉलीवुड के कई ऐसी मूवीज रही हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा हिट रही हैं, और कई ऐसी मूवीज हैं जो बॉलीवुड की मूवी हिट होने के बाद उनके सॉन्ग भी बहुत ज्यादा हिट रहे हैं। तो आज आप हिट मूवीज के सॉन्ग मुझसे प्ले करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है कि 2005 के बाद के गाने होने चाहिए। हिट मूवी के जितने भी गाने आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 2005 के बाद के होने चाहिए। मिसाल के तौर पे कबीर सिंह, सितारे जमीन पर, बजरंगी भाईजान बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, रेस 3, सलमान की रेडी मूवी, संजू है ना, संजू के बहुत अच्छे गाने हैं, रेडी में एक दो गाने हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे, कबीर सिंह के तो मतलब ऐसे कई गाने हैं, और फिर सितारे जमीन पर वो मूवी हिट हुई थी, उसका एक या दो गाना तो मतलब आज भी आप प्ले कर दें वो चल जाते हैं, लेकिन वो रोने वाले नहीं होने चाहिए। ये भी एक चीज़ है, और उसके अलावा बजरंगी भाईजान के बेहतरीन गाने रहे हैं, और रेस 3 के ट्रैक के बारे में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भी कोई ट्रैक था जो ज़्यादा हिट ना हुआ हो। तो रेस 3 के ऐसे कई हिट ट्रैक बिल्कुल है, और वो आपको बताने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 पे, 666-22107। फज्जू भाई को सलाम, ये मैसेज है, और 100 किलो प्यार, आए हाय किलो में नाप दिया प्यार को, क्या बात है। ये इकलौते ऐसे भाई हैं जिन्होंने मोहब्बत को जो है किलो में बांट दिया है। और कितना अच्छा भी है ना कि ये किलो में जो आपने बांट दिया ठीक है, लेकिन अगर सच में मोहब्बत किलो में आ रही होती या आप किसी को जता रहे होते तो जिसको सही में 100 ग्राम करते होंगे वो कितना गुस्सा आता होगा नहीं, और

कई बार तो हमारे खुद के बच्चे होते हैं, एक को 100 ग्राम कर रहे हैं, एक को 2 किलो प्यार कर रहे हैं। ले भाई जिसको 100 ग्राम प्यार किया है उसने 100 किलो नफरत रखी अपने अब्बा के लिए। नहीं, ऐसा होता है भाई। मेरी बहन खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो अपनी बड़ी बेटी को ज़्यादा प्यार करती है, और अगर ये प्यार मोहब्बत किलो में आ रहा होता तो बड़ी वाली बेटी को 100 किलो प्यार और छोटी वाली को 100 ग्राम। और असल में मिसाल अगर हम दें तो ये चीज़ उल्टी हो भी जाती है कि आप जो है ऑटोमेटिक, जैसे मैं अपनी बहन के जो बच्चे हैं उनकी जो दूसरे नंबर वाली बच्ची उनको मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फिर अगर बड़ी वाली को पता चल जाए तो भाई वो घमंडी टाइप की है बड़ी वाली। वो मुझे डर है अगर ये सच में होता 100 किलो और 100 ग्राम वाला, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहता, वो किसी दिन आके छुरी मार देती मुझे कि मामू 100 किलो जो है नफरत थी वो छुरी में उतार दी आपके सीने में, सलाम अलैकुम तो ये जो है गड़बड़ हो जाती नहीं। वैसे 100 किलो क्या, 200 किलो आपको भी प्यार मेरा भाई। क्या नाम है आपका? ये नाम अशफाक मोहम्मद। सलाम आपको भी मेरा भाई। यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? एकदम बोरिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, खादिम साहब का मैसेज है, और अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरा भाई, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। 9 साल पहले ये सोशल मीडिया पे कहीं पर अपलोड हुआ है, वो वाला गाना इन्होंने भेजा है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी मूवी है, नए जमाने के अच्छे वाले बताइए तो मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम। खादिर साहब कहते हैं, नाइस प्रोग्राम, कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग युवराज, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी दोस्त है। अगेन, युवराज वॉज नॉट अ वेरी फेमस मूवी और नॉर अ हिट, बॉलीवुड हिट, लेकिन गाना अच्छा है। बट अगेन हम थीम पर रहेंगे, क्योंकि अगर हम थीम पर नहीं रहे तो देखो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे देखो हम थीम से दाएं बाएं अगर हुए तो हमारा दाएं बाएं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम थीम पर रहेंगे, मज़ा भी आएगा, है ना। फिर उसके बाद होता क्या है ना कि ये मिक्स मैच होने लगता है माजरत के साथ, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। एक और गाना है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार अगर मेरे पास ये होता, हमारे डेटाबेस में होता, कभी कभार मैं बहुत बड़ा रिस्क ले लेता हूँ, मैं सही में ये प्ले कर देता हुसैन साहब। फिर देखी जाती कि महीने के आखिर में आ रही है नहीं आ रही सैलरी कभी कभार वो वाला नहीं होता है आपके मन में आ जाता, मैं देखी जाएगी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, कि मतलब आपने रेड लाइट पार कर दी है, या आपको पता है कि वो ब्लिंक हो रही है ग्रीन वाली, आपको जल्दी है कहीं पर, मैं हटाओ देखी जाएगी, आपको पता है 6,000 बड़ा वाला चालान है, देखी जाएगी, है ना। कभी और ऐसा होता, लेकिन ऐसा करना नहीं है। FM 107 और मैं कहीं से भी आपको प्रोत्साहन नहीं देते हैं इसका, इस तरह का काम करने के लिए, पीछे हटो भाई, ब्रेक मारो तुरंत। फिर उसके बाद कहते हैं, मोटा हाथी प्ले कर दो। मैं इस पर ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन नहीं, अगर बोलूँगा तो जिसको बोलूँगा वो मेरी गर्दन ना उसके पूरे एक हाथ में आ जाती है। अगर स्मार्ट हैं आगे बाहर सुनने वाले, उनको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं एक मोटा हाथी लगा दो कैसे कैसे लोग हैं यार, अब भी लगा कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज ये सॉन्ग लगा दो, ये गाना है अकिया से गुली मार, ये नए जमाने का गाना, मैं ये प्ले कर सकता हूँ। लेकिन इसकी मूवी जो है वो हिट हुई है क्या? अखियों से गुली मारे, किस मूवी की है? 2002 में गाए थी मूवी जिसका नाम है आंखियों से गोली मारे। फिर पति पत्नी और वो, ओके दैट इज, हाँ पति पत्नी और वो, नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी वाली मूवी, लेकिन काम भर की हिट हुई थी और ये गाना हम लगा सकते हैं। तो पति पत्नी और वो मूवी का ट्रैक आ रहा सबसे पहला, और दोस्तों आप भी अपने मर्जी के गाने हमसे प्ले करवा सकते हैं, नंबर है 666-22107। तो मुमताज अहमद की पहली रिक्वेस्ट सही रिक्वेस्ट, मूवी भी बिल्कुल सही है, अखियों से गोली मारे ये गाना प्ले कर रहा हूँ। हिट मूवी पति पत्नी और वो से 2019 में ये आई थी मूवी, और वो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ मुमताज अहमद के लिए, और इसकी आड़ में बाकी गाने भी प्ले होंगे। तो दोस्तों आज जो गाने प्ले हो रहे हैं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो बता दें, आज जो गाने प्ले हो रहे हैं वो बॉलीवुड हिट मूवी के ही गाने प्ले हो रहे हैं। सो जितनी भी आपके दिल में या आपके जहन में आपके दिमाग में मूवी बैठी है जो कि बॉलीवुड की हिट मूवी रही है,
उनके गाने आप मुझसे प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेडी है, संजू है, कबीर सिंह है, सितारे जमीन पर, बजरंगी भाईजान, रेस 3 जैसी जो मूवी है उनके गाने आज आप हम

हाय लग गई। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या है हाल चाल। 4:16 आपकी स्टूडियो की घड़ी में। और वैसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली अपने अपने मर्जी के गाने, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं अभी भी जो हमारे आज के थीम से अलाइन नहीं कर रहे हैं। हर शो में एक नई थीम होगी और उस नई थीम के बेसिस पे यहाँ गाने चलेंगे, ठीक है। तो आज अभी अब्दुल्ला भाई ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने कहा है वजीर भाई क्या हाल है, बहुत अच्छा वजीर। मैं वो वाला वजीर, वजीर वजीर में जी हुजूर मैं ही बोलता हूँ ना। क्या भाई, अपना नाम फजील है, मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है एफ में डब्ल्यू में थोड़ा हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क ना सही आ रहा हो, आपको लगो ये वजीर आदमी है। तो भी चलेगा, मैं समझ गया हूँ आपके दिल में क्या है। तो वजीर भाई ने, सॉरी फजील भाई से ये कह रहे हैं कि गाना प्ले कर दें बजरंगी भाईजान का कोई भी। तो मैं के का गाना प्ले कर देता हूँ, जो है तू जो मिला लाजवाब, ये गाना है, ट्रैक अच्छा है। और ये सिर्फ मर्द हजरात में ही नहीं बाकी लोगों में भी बहुत ज़्यादा फेमस गाना है। फिर ये थोड़ा सा दिल को छू लेने वाला गाना, तो मैं ये गाना प्ले कर रहा हूँ। उसके अलावा सुन

तो ये गाना सबसे पहले प्ले कर रहे हैं, विच इज फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान, और के का ये ट्रैक है तू जो मिला। और फिर ये जो दूसरा ट्रैक है, पहला ट्रैक अब्दुल्ला, दूसरा ट्रैक किसका भूल गया ना मैं, बताया तो ना आपको क्या नाम, जाहिद नाम था सॉरी ओके। बाकी मैसेज भी मैं देख रहा हूँ एक एक करके, मैं छाट लूँ भाई, मेरे को भी ज़रा टाइम लगता है, क्या है कि मेरी उंगलियाँ जो है इतनी तेज़ है नहीं रोबोट की तरह, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आपको सारे गाने हम सुनाएंगे जितने भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है तो उनको बता दें आज की थीम है बॉलीवुड की हिट मूवीज़, जितनी रही हैं उनके हिट गाने मैं आज प्ले कर रहा हूँ, तो जितने भी हिट मूवी आपको जहन में आ रही हो उनके गाने आप मुझसे कहिए, मैं प्ले करूँगा FM 107 पे। फिलहाल एक दो गाने बैक टू बैक।

0: सोनू निगम की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुना आपने FM 107 पे आदा। और अब वक्त आ गया है कि आप लोगों के बाकी के ट्रैक भी प्ले कर दूं FM 107 पे। ये खास शो आपके लिए वन एंड ओनली द रिक्वेस्ट शो।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हाय क्या बात है। 4:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और दो और रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले मैं वो प्ले कर दूं और ये दो रिक्वेस्ट में से एक है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट, दे ताली भूल भुलैया 2 मूवी का ट्रैक है। और दूसरी रिक्वेस्ट है इन्हीं की, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये जो दूसरा सॉन्ग है ये क्यों किया है, क्या आप उस दिन विनर बने थे इसलिए किया है यूसुफ भाई, इसलिए है तो बताएं, है ना, फिर वो बात करनी पड़ेगी उस पर तो क्योंकि मैंने कहा था अगर आपने

जो हमारा गेम चलता है पहचान कौन, अगर उसमें आपने या तो तीनों सॉन्ग या फिर एक सॉन्ग और एक सिंगर को उसी सॉन्ग में सिंगर को पहचान लिया आपने सॉन्ग के साथ, तो आपके मर्जी के अगले दिन या अगले शो में दो गाने आपके प्ले करेंगे हम। हमने ये बात करी थी और अगर ऐसा है तो हमें बताइएगा। ये सुबह बाकी एक और ये मैसेज है, कहा है अजमल साहब ने सैयारा गाना प्ले कर दें, और सैयारा तू तो बदला नहीं है, थोड़ा लंबा है ये ट्रैक, मैं कोशिश करूंगा कि इसका लंबा वाला ट्रैक पूरा ना प्ले करूं, बीच में मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोगों के रिक्वेस्ट भी है अजमल साहब। तो ये गाना आपका बिल्कुल मैं प्ले कर रहा हूं, सैयारा मूवी का ट्रैक है, 2025 में ये हिट मूवी रही थी और ये गाना भी फहीम अब्दुल्ला का बड़ा लाजवाब है, 6 मिनट का तकरीबन गाना है। उसके अलावा लिखा है मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपसे मिला हूँ मॉल में कतर के। ओके, बहुत ही उम्दा ये बात लिख दी आपने, थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना घमंड, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आया करिए जब भी इस तरह का मौका अगर मिले, जहाँ पर हमें आपसे मिलने का मौका मिले, तो आप प्लीज़ आया करिए। या अगर हमें पता होगा कि हम आपसे मिल सकते हैं और आप हमें सुनते हैं या यू नो आपको अच्छा लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी की बात हो जाती है हमारे लिए। आपके लिए तो है ही है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे लिए भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें तो ये पता है कि हमें लोग सुन रहे हैं, हमें मिलने का मौका नहीं मिलता है, तो बड़ा दिल भी करता है क्योंकि चार दीवारी में बात करने में अच्छा तो लगता है, ये अपनी जगह है, लेकिन मिलने में भी खुशी होती है। बाकी एक और ये मैसेज है, फजल भाई प्लीज प्ले रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक। ओके, ये दो गाने हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं, पहला है दे ताली यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे, और फिर दूसरा है सैयारा जो अमजद भाई ने रिक्वेस्ट किया है, और ये दो गाने हम प्ले करेंगे, अजमल ने रिक्वेस्ट किया है। सो ये दो गाने आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपके अपने मर्जी के कोई सॉन्ग ऐसे ज़रूर होंगे जो आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107। नए ज़माने के 2005 के बाद जो हिट मूवी रही हैं उनकी जितने गाने हैं, उन मूवी के जितने गाने हैं वो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपन प्ले करेंगे। बाकी गर्मी वर्मी तो यार बहुत हो रही है, कैसे गर्मी को कैसे टैकल कर रहे हैं आप लोग, कोई तरीका है, कोई अलग सा तरीका है? मेरा एक तरीका यह है मैं घर पे बैठूं, लेकिन मेरे घर में जो एक और है जो बैठता है वो उसको सुकून नहीं है। अरे मेरी बात हुई थी घर पे, मतलब बात बिगड़ गई थी, वो सुबह सुबह बहस इस बात पे हो गई, 11:30 बज रही थी कि अरे फला सामान लेकर चले आओ, मेरा दिमाग खराब, मैं कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सरकार ने मना किया है। उनने कहा कौन सी सरकार जिसने मना किया तुमको बाहर जाने से सामान लाने के लिए? मैंने कहा नहीं सरकार ने मना किया। कि कौन सी सरकार ने? मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मना किया है, सुबह 11:30 के बाद से लेकर 4 बजे तक मत निकलो। तो कहे ये कब हुआ? मैंने कहा हाँ हुआ है, लेबरों के लिए हुआ है जो बाहर काम कर रहे हैं, जो धूप में काम कर रहे हैं उनके लिए हुआ है, जो बाहर जिनका स्पेसिफिक काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उन लोगों के लिए। क्या तुम्हारा कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम है? मैंने कहा बाहर जाना लेबर हुआ, मैंने मैं भी नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि ऐसी गर्मी भयानक वाली हो रही है, ऐसे में अगर चला गया, अगर मैं सूख गया तो तुम्हारा सारा काम रुक जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तब जाके मानिए भाई, घरों में अलग माहौल है यार, हम इन लोग को बता ही नहीं पाते हैं कि हमारा दिल नहीं है, हम काहिल आदमी हैं, हम कैसे बताएं, मुंह से निकलता भी नहीं है, कभी कभार डर भी लगता है। अच्छा नई शादी में ज़्यादा डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए अम्मी किस काहिल से शादी करा दी मैं बस काहिल ही दिखाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ कि मैं काहिल हूँ, थोड़े समय बाद बोल दूंगा फिलहाल 4:31, और आप लोग भी बाहर ना निकलें और कोशिश करें 10 से 5 या 11 से जो 4, 4:30, 5 का टाइम है उसमें बाहर ना निकलें। और वैसे भी इन टाइम के अलावा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बारे में, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बारे में बात करें, तो उन्होंने जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनको मना किया है, उनको कहा है कि शेल्टर में रहें, पानी का इस्तेमाल करते रहें, पानी पीते रहें, क्योंकि ऐसे में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और गर्मी आपको चढ़ सकती है, गर्मी लग सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आती है। सो ऐसे में अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या बाहर काम करने वाले हैं या फिर आपके काम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं बाहर तो जाना ही जाना है, तो पहले तो शेल्टर में है, दूसरा ये है कि आप इस टाइम पे बाहर ना जाएं। जो राइडर्स हैं उनके कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर मुकीम हैं, हमारे कतर में हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए इन्होंने कि भाई दोपहर के वक्त कोई भी काम नहीं होगा, अगर काम हो रहा है तो वो कार से हो रहा है,
ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कुछ ऐसी कंपनीज है जो इस तरह का इनिशिएटिव लेती हैं वो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों बाकी आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं गाने की, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये ब्रेक है गानों का ही ऑब्वियसली। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे

0: ये तो बाकी मैसेज पे भी हम ध्यान देंगे और कौन कौन से गाने हैं जो हम प्ले कर सकते हैं उस पर भी नजर डालेंगे। हिट गाने का थीम है आज, जो बॉलीवुड के हिट मूवीज रहे हैं उनके गाने आप हमसे प्ले करवा सकते हैं। 6662 2107 पर लिखकर बताइए।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो FOMO एवर अगेन. सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: ये सही है, एक ही गाना पसंद आ गया है किसी को और वो बार बार वही गाने कहते कि ये वाला गाना प्ले कर दो, ये वाला गाना प्ले कर दो और फिर 10 दिन बाद फिर ये वाला गाना प्ले कर दो. अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या है हाल चाल. 4:43 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये मैसेज है फज्जू भाई एपिडिलो विथ योहानी सिंह. है कोई इस बात का लॉजिक है? नहीं, इसका मतलब बात सुनी नहीं रहे. इनको पता कि रिक्वेस्ट का टाइम है, मैसेज कर दो बस, अपनी मर्जी वाला गाना प्ले करवा लो. अरे बाबा, ये जो है थीम बेस्ड शो है जहाँ पर हर रोज़ एक नया थीम होता है, क्योंकि गाने हम कहीं पर भी रैंडमली चला देंगे अच्छा नहीं लगेगा. सोचो एकदम से गाना प्ले हो रहा है मज़े वाला, एकदम है मटर गश्ती खुली सड़क पे है, और एकदम से कोई कहे चिट्ठी न कोई संदेश जाने, अब ये प्ले कर देंगे भाई. मुझे यकीन नहीं है कि लोग क्या क्या कर सकते हैं. बाहर जाके पता चला मेरी हड्डी भी नहीं मिल रही फिर कि फजील होया करते थे भाई साहब हैं. लोग पूछेंगे कि फजील नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए. ही वॉज नॉट ही वॉज वॉज ही इज नो मोर. तो भाई इसलिए हमने थीम रखा है कि जो थीम होगी ना उसके बेसिस पे जब भी आप गाने हमें बताएंगे या हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो उस तरह के गाने प्ले होंगे और फिर सारे लोग अपने एक जोन में रहेंगे, है ना. बड़ा ज़रूरी भी है ये. सो प्लीज ऐसे गाने हमसे कहिए जो अपन प्ले कर सकते हैं जो थीम पर बेस्ड हो. और आज की थीम एक बार फिर से बता देता हूँ, आज की थीम ये है कि, और वैसे भी अब तो शो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, 4:45 हो गया, अब तो वक्त आ गया है कि हम आपसे पहचान कौन गेम खेल लें. लेकिन आज की थीम ये है, एक आखिरी गाने की तो बची है, इतना तो टाइम बचा ही है, और थीम ये है कि जो भी नए ज़माने के हिट मूवीज़ रही हैं उनके गाने आपको प्ले करवाने थे. ये है अली साहब, कहते हैं सलाम फजील भाई. फजील भाई मेरा भाई, अपन को तुझ में रब दिखता है यारा गाना सुनने का भाई. अकबर अली, तुझ में रब दिखता, अच्छा है ये गाना मैं प्ले कर सकता हूँ, उसका रीज़न है. इन्होंने मूवी तो नहीं बताई लेकिन ये गाना रब ने बना दी जोड़ी का है ना शायद, है ना. तो ये गाना देखिए क्या है कि प्ले कर सकते हैं लेकिन लिस्ट में

नहीं है, तो जब लिस्ट में नहीं है तो फिर माजरत मेरा भाई, माजरत। मैंने एक चीज सीख लिया भाई, लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करो कि आपका माजरत भारी लगने पड़े, आपको आपको ऐसा लगे कि अरे भाई अगले आदमी ने यार हाथ जोड़ दिया यार, और जबकि हाथ जोड़ा भी नहीं है, क्योंकि लफ्ज इतना भारी ना, उर्दू लफ्ज माजरत बड़ा भारी है। आप किसी में इंडिया से जाके कह दें, या फिर ऐसे लोग जो इंडियन हैं, हमारी तरफ तो यही है, पाकिस्तान में तो चले उर्दू बड़ा आम हो जाती है, अरे इंडिया में कह दे किसी से कि माजरत मेरा भाई ये काम नहीं हो पाया, अरे भाई हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, अरे हाथ नहीं जोड़ा था भाई यार ऐसे क्यों वो क्या कह रहे, नहीं नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं आप आए हमारे साथ बैठे भाई, दिल छोटा ना करें। तो अली साहब माजरत मेरा भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप और कोई गाना अगर कहेंगे तो हम प्ले करेंगे। फिलहाल अभी वक्त है पहचान कौन गेम खेलने का, और अभी सबसे जो पहला मैं गाना प्ले कर रहा हूँ वो पहला गाना आपको सुनना है, या म्यूजिक, क्योंकि आज मैं सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेकर आया हूँ, इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनिए और मुझे बताइए कि इस गाने का नाम क्या है। सबसे पहला जो गाना है वो प्ले कर रहा हूँ आज के लिए।

हाँ मैंने टफ तो कर रखा है। देखो अब आप लोग अगर हैं इतने क्वालिटी वाले हैं कि बता पाएंगे कि ये गाने का असल में नाम क्या है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, इसमें तुलसी कुमार हैं, अरिजीत सिंह हैं, अमाल मलिक हैं। ये मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, ठीक है। के सिंगर तो बता ही दिया लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे सिंगर समझ में आ रहा है।

बस इस गाने का आपको नाम बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 666-22-107 पे बताइए इस गाने का नाम और फिर मैं जानूं आप लोगों की क्वालिटी गाने को समझने की गाने को प्यार करने की। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मैसेज किसने किया है, आई गेस मकसूद भाई है ये। पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वन आवर इट्स नॉट इनफ एट लीस्ट। अरे वाह भाई वाह, एट लीस्ट 10 hours पर डे। भाईजान गला ही दबाना है तो डायरेक्ट दबा दो ना, ये क्या बात है। मैंने अम्मी से तो सुना था कि अरे मीठी छुरी होती है बेटा दुनिया। आज पता चला है कि मीठी अंगूठे भी, मतलब अंगूठे से तो टाइप किया होगा ना, तो मीठे अंगूठे भी होते हैं। जबान से यार गला रेतने वाला काम किया 10 hours, और कुछ तो नहीं हो गया भाई, और भी कुछ होगा देख लो। अगर दिल में है तो वो भी निकाल ही दो कि फजील भाई कहीं मिल जाओ। मैं एक काम करता हूँ, आपके गाड़ी के सामने आता हूँ और जिस रोड की रफ्तार 120 प्लस है, खींच दो भाई, खत्म करो यार, इतना मामला क्यों लंबा करना है। मकसूद भाई हो जाए। आपकी गाड़ी और आपका ट्रैक 120 वाला। ये 10 hours एट लीस्ट। अच्छा ये भी नहीं कि 10 hours कर लो भाई, ये नहीं कह रहे हैं 10 hours का शो कर लो, एट लीस्ट कम से कम 10 hours का तो होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ये आदमी उससे 24 hours करवा देगा। मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मकसूद भाई हमारे बॉस नहीं। ओके वेल, बहुत से ऐसे समझदार और गाने के काबिल लोग हैं जिन्होंने ये गाना पहचान लिया। कैसर भाई ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये है गाना तैनू इतना मैं याद करा। ये कौन सा गाना है, तैनू इतना मैं याद करा, ये गाना है, मतलब ये लाइन तो नहीं है लेकिन मैंने जिस टोन में गाया वो बिल्कुल सही है। ओके हिशाम साहब ने भी बिल्कुल सही कहा है। फिर उसके बाद इमरान खान ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, जय तेनू धूप लगे नहीं। नादान, अच्छा ये तो अलग इन्होंने कहा है। उसके अलावा यूसुफ भाई ने कहा है, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है सोच ना सकूं। देन सही जवाब है सोच ना सकूं। तुलसी कुमार अरिजीत ने गाया है इस गाने को, जिसमें अमाल मलिक भी हैं, और ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तो है तो अच्छा।

सकते। तो पहला ये तो हो गया, अब दूसरे सॉन्ग पर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा सॉन्ग आज हम व्हाट्सएप ही ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा सॉन्ग या कहें दूसरा म्यूजिक वो ये रहा, और मुझे लगता है कि 90% लोग इस गाने को पहचान लेंगे।

मोहित चौहान का बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक और नए जमाने का भी। उसके अलावा काकी ने मुझे याद है इस पर एक बार हिंट दिया था और वो आज तक याद है ना, कोई चीज ऐसी होती जो भुलाई नहीं भूलती भाई। काकी ने कहा था कि जो मटर होती है ना वो अगर गश्त पे निकले वही है ये गाना, उसी पर बेस्ड है ये गाना। क्या बात है। एक और चीज तो कहते हैं अंग्रेजी में, पी कहते हैं, क्या कहते हैं अरे जो भी है भाई, लेकिन काकी का वो वाला जो हिंट है ना कि मटर अगर गश्त पे निकले तो गाने का नाम मटर गश्ती ये बिल्कुल सही लोगों ने जवाब दिया है। मैं पहले तो ये गाना पूरा प्ले कर लूं कि ये गाना कहां से है और आपको सुना देता हूं, और गाना है

अरे मटर गश्ती बोल लो यार मोहित भाई, इतनी देर से मैं कर रहा हूँ मटर गश्ती। नहीं बोल रहे मटर गश्ती, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, फिर मटर गश्ती आ जाओ, मटर गश्ती। नहीं बोल रहे मोहित भाई, अभी टाइम लेंगे लेकिन बिल्कुल सही लोगों ने गेस किया है, कौन कौन है इसमें मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला नाम है कैस, कैस यानी कि कैसर साहब ने बिल्कुल सही जज किया है। और हाई फजील, द सॉन्ग इज मटर गश्ती सैयद हेयर, ओके बिल्कुल सही जवाब है। पता है भाई वो सॉन्ग मटर गश्ती मोहित चौहान का है। अच्छा भाई, तो फिर एयरलिफ्ट का सोच ना सके प्ले कर दो भाई प्लीज़। ठीक है, मैं सोच ना सके प्ले कर देता हूँ। हुसैन साहब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं सॉरी मैं हुसैन साहब यार कल प्ले कर दूंगा, क्योंकि मैंने रंग दे बसंती ऑलरेडी निकाल के रखा है और एक भाई ने बहुत पहले इसके रिक्वेस्ट कर ली थी। इमरान खान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। फिर शाम ने भी सही जवाब दिया है, मटर गश्ती मकसूद साहब ने सही जवाब दिया है, राशिद साहब का वॉइस कुछ देर में पढ़ेंगे अभी, और फिर मोहम्मद यूसुफ ने भी सही जवाब दिया। एंड नाउ अबाउट द लास्ट सॉन्ग, ये आखिरी गाना तो 100% को पता होगा, ये भी रहा म्यूज़िक।

मैंने थोड़ा सा जानबूझ के टफ वाला पार्ट निकाला है, लेकिन ये गाना असल में बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। मैं इसका बाकी का पार्ट भी अभी प्ले करूंगा, लेकिन बताएं इस गाने का नाम क्या है। म्यूजिकल हाय हाय। जानबूझ के टफ निकाला है, वैसे अगर 100% लोगों ने इसको ना सुना हो मैं नाम बदल दूं, सबने सुना होगा क्योंकि ये गाना बहुत बार हमारे एफएम 107 पे प्ले हुआ है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल ये जो मैंने प्ले किया ये थोड़ा सा टफ है। वेल हिशाम ने सही, ओ क्या बात है यार, सच्चे जो फैन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं भाई। हिशाम ने, कैसर ने, एक और इमरान भाई हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया, क्या बात है। फिर फरहान अख्तर हवन करेंगे, नहीं मेरा भाई ये नहीं है। हसन हुसैन लिखते हैं, अरे भाई बसंती नहीं ना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है, एसी में ना चाहिए, बसंती चुपचाप होकर ना चाहिए भाई बिल्कुल। और बसंती वो वाला नहीं है, बसंती नाच वाला, रंग दे बसंती है। फिर उसके बाद और कौन है जिन्होंने जवाब दिया है, यूसुफ भाई सलमान खान का है, इसी कहा है, और पहली लाइन याद नहीं आ रही है, सलमान खान का नहीं है। प्लीज़ ये गाना प्ले करो भाई, मेरा माजरत थोड़ा सा लेट हो गया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है, आपका नाम क्या है। शेक्सपियर, शेख पी, अरे भाई क्रिएटिव, अरे भाई यार शेख साहब है, मैं शेख ही मानता हूँ, ये शेख साहब ने लिखा है ये गाना। ओह सॉरी, ये गाना यानी कि जो अभी हमने प्ले किया, बिल्कुल सही जवाब है, और म्यूजिक था ये

लेकिन इसकी आगे की जो लाइन है वो है रोज सवेरे डीम अंधेरे घर से भागी मैं भागी घर से तेरे वास्ते। अब इसके बाद की लाइन तो आपको पता ही है, घणी बावरी। ये गाना है ज्योति नुरान की आवाज में, और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका, और जिनका नाम मैंने लिया उन्होंने सही जवाब दिया। यूसुफ भाई से एक बार फिर से गलती हो गई, जो सॉन्ग के बादशाह माने जाते थे वो आजकल गलत हो रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ उस यूसुफ भाई, कई बार लोड ज़्यादा होता है, लग रहा है गर्मी में घर वाली आपको बाहर भेज रही है कि ये सामान लेकर चले आओ। आप उनको बता दिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मना किया है मैं तो नहीं जाता, यही कह देता हूँ मैं, और फिर मैं नहीं जाता। फिलहाल बेहतरीन सा गाना मैं आपको इसके साथ छोड़े जा रहा हूँ, लाजवाब ये ट्रैक। मैं बस वो नाम ढूंढ रहा हूँ जिसने ये कहा था, लेकिन अगर भाई आप सुन रहे हैं पहले आपके लिए अगर नहीं प्ले कर पाया तो अब ये रहा आपके लिए गाना। दलेर मेहंदी चित्रा की आवाज में बसंती मूवी के ट्रैक दिल से देसी। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, मुलाकात।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, जिस जिस गाड़ी में FM 107 नहीं है साइड में लगवाओ गाड़ी, है सारी की सारी। हाँ जी, काली गाड़ी साइड में लगवाओ इनकी गाड़ी। सबके शीशे चेक होंगे भाई साहब, जिसमें गाड़ी में FM 107 नहीं है। हाँ भाई साहब, नहीं चला सकते, सॉरी, साइड में लगाओ। आपकी गाड़ी में है ना? फिर ठीक है, बच गए आप। जाने दो, जाने दो, इनको जाने दो।

0: आपके क्या हाल है? बढ़िया आके ढंग से भाई, बढ़िया चल रहा है। वीकेंड कैसा गया और संडे की तैयारी कैसे चल रही है? जिनके काम निपट चुके हैं बहुत बढ़िया, जिनकी इवनिंग वाली शिफ्टें हैं वेलकम, मैं आपके साथ हूँ। एक दो मैसेजेस मेरे पास, एक दो नहीं इनफैक्ट काफी आ चुके हैं। तो मैं कह रहा था भाई, जिस गाड़ी में नहीं लगाया FM 107 साइड में लगाई जाएगी गाड़ी। भाई मैं आजकल जब भी ड्राइविंग करता जाता हूँ, हमेशा ही दिखता हूँ कि कौन सी गाड़ी में क्या चल रहा है। आई एम लाइक द आंटी इन द मोहल्लाज, यू नो। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107। बढ़िया मौज करा देंगे भाई, एकदम शो को जमा जहज बना देंगे। और एक क्या कहना ना, तुम्हें याद करने दो, कहानी मिस्ट्री लेके आया हूँ आज मैं, मिस्ट्री बढ़िया वाली, क्योंकि अगर मैं हॉरर सुनूंगा बोलेंगे इसका तो एंड नहीं हुआ। तो आज मिस्ट्री है, अच्छी कहानी है, यू विल डेफिनेटली लव इट। बहुत मॉरल, बहुत मौज आएगी आपको, फिक्र ना करें आप, सब संभाल लेंगे हम। तो सुबह से वेट कर रहा था मैं, सुबह से आज मैं कोई भी शो नहीं सुन पाया, कुछ भी नहीं सुन पाया। मेरा प्लान था कि मैं ज़रूर सुनता हुआ जाऊँगा, बट एनीवे, आप जितने भी अभी ट्यून कर चुके हैं, आप सबको भर भर के मोहब्बत, भर भर के प्यार, थैंक यू सो मच कि आप इस शो में आते हैं, इतने दिल से आते हैं। ये इमोशनल टॉक्स करने का मन नहीं था, लेकिन भाई आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा तो चलेगा कैसा? बहुत प्यार आपको भर भर के। और आप लिसनर विसनर नहीं है शो के, फैमिली वाला मामला है भाई। यूं समझ लो इस शो में जो है, घर पे गई हुई है बत्ती और हम मोहल्ले में बैठे हैं, चार भाई बिछा के और बातचीत चल रही है। दैट्स हाउ द शो शुड बी। बाकी मिलेंगे अभी शाम की दुआ के बाद, अधिकार और फिर आप सो की मुलाकात 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद सीधा आपसे मुलाकात हो रही है। जाना नहीं है, आपको तो पता ही है, सबसे बढ़िया जगह पर हो आप, सारी टेंशन मिट जाएगी, टेंशन नहीं है। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: भाई साहब वीकेंड पे
1: मैं दो दिनों में ना भाई दो मूवी देगा, अच्छी अच्छी अच्छी मूवी देगा।
0: दो अच्छी मूवी, कौन सी मूवी देख डाली?
1: मेरे को सबसे अच्छी मूवी लगी ना भाई वो लगी तड़का लगी भाई मेरे को।
0: अच्छा बढ़िया थी,
1: बहुत जबरदस्त, मैं उसको 10 में से 10 नंबर दूंगा भाई मैं उसको।
0: अरे ऐसा क्या लग गया, ऐसे क्या नर्वस में, क्या बात हो गई भाई?
1: वो मेरा दर्द है भाई।
0: अच्छा दर्द में दी गया? अरे मेरा भाई मरहम ढूंढते ढूंढते पिक्चर देख डाली, क्या बात है
1: भाई। वो तुम वो मूवी देखे, तुमको तुम देखे कि नहीं देखे भाई?
0: भाई मैंने नहीं देखी भाई, देखनी पड़ेगी। मैं तो भाई
1: देखो भाई,
0: मैं खुद को सिर्फ डराता हूँ भाई, मैं सिर्फ हॉरर आजकल देखता हूँ, साइकोलॉजिकल।
1: अरे भाई तुम्हारा डराना मैं देख के खुद डर चुके भाई, पब्लिक डर के मारे बहुत कम हो गई
0: है। नहीं नहीं भाई
1: पब्लिक बोल रही है, पब्लिक बोल रही है भाई, पब्लिक इतनी डर गई कि पब्लिक अभी तो तुमको सुबह में याद कर रही है मॉर्निंग में
0: भाई। वो ये जो है ना बहुत डेंजर दो है सुबह बुलाने वाली। पर क्या सीन है आपका फिर भाई साहब, ये कौन सी पिक्चर का नाम क्या बताया पिक्चर का?
1: तड़का।
0: तड़का, अच्छा ये सीरीज है पिक्चर क्या है
1: भाई? मूवी है, मूवी है,
0: मूवी है। अच्छा ठीक है, चलो ये देखते हैं, रिकमेंडेशन
1: करते हैं। गोवा वाली जो लड़की होती है ना आरजे मधुरा, उसके ऊपर है।
0: अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, ये भी देख डालेंगे। 2022 में भी पिक्चर रही है
1: जी भाई, बहुत जबरदस्त मूवी है। नाना पाटेकर का क्या इसके अंदर रोल प्ले हुआ है, जो उसमें रोल प्ले हुआ ना भाई बहुत जबरदस्त।
0: ठीक है भाई देखते हैं, आप ये भी देख के बताएंगे, तुमको रिपोर्ट जरूर देंगे, जरूर दी जाएगी रिपोर्ट।
1: तो आप तो बोलोगे कि भाई आसिफ भाई ने 10 में 10 दिया, मैं भी 10 से 10 दूंगा।
0: ऐसा कुछ नहीं है, आसिफ भाई ने 10 में 10 दिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
1: मतलब जबरदस्त मूवी है, मैं बता रहा हूँ, मैं मान भाई मामा मान जाओ भाई, देख
0: मान जा भाई, डट जा, कोई बात नहीं, सुना देंगे भाई, देख के बताता हूँ इंशाल्लाह वीडियो सुबह ऐसे भाई, जरूर ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखो अपना, ठीक है डट के रहो
1: भाई,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आसिफ भाई के बाद दो तीन और मैसेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी नहीं सुधरू, मस्त सुधरो भाई, बहुत बढ़िया बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हीरो मैंने मैसेज किया, हीरो भाई थैंक यू सो मच। क्या अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने देखा होगा इंटरनेट आजकल जो है आपके एल्गोरिथम को इस कदर फॉलो कर लेता है कि आपके मुंह पर सब कुछ दे देता है ना, आपको कुछ चाहिए तो वहाँ पहुँच जाइए। मैं अभी दोहा एग्जीबिशन जो शॉपिंग वाला सीन चल रहा है अभी DECC, वहाँ पर गया था भाई, आपका भाई एकदम बैटमैन वाली घड़ी लेके आया, मौज करा दी भाई। तो वहाँ पर अगर DECC में नहीं गए, बहुत बढ़िया डिस्काउंट सेट पे चला है, जो हो गया ना। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है भाई के, और क्या नाम है भाई का?
2: भाई का नाम खलील तराचा।
0: खलील भाई क्या चल रहा है भाई?
2: कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: भाई। कितनी गर्मी करवा रखी है, थोड़ी दुआ हुआ मांगो, कम कराओ भाई,
2: गर्मी तो बहुत है,
0: गर्मी तो बहुत है भाई ना। कहाँ निकले हो, कैसा रहा वीकेंड?
2: वीकेंड बस घर पे ही था।
0: घर पे ही थे तो अभी कहाँ निकले हो?
2: बस इधर शॉपिंग पे, छोटी मोटी शॉपिंग पे निकला था, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी भाई से बात करूँ, बहुत दिन हो गए।
0: अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। काम वाम हो गया, अभी ड्यूटी से जा रहे हो, क्या क्या सीन क्या है?
2: बस वो थोड़ी सी ग्रोसरी लेने के लिए रुक गया था, अब घर जा रहा हूँ।
0: अच्छा पहुँचो पहुँचो, घर पहुँचो भाई, टाइम मिले तो कहानी सुनना, कुछ देर में शुरू करूंगा 5:30 बजे, ठीक है?
2: हाँ नहीं, कहानी बड़ी बेहतरीन आप सुनाते हैं, बेहतरीन,
0: थैंक यू सो मच खलील भाई, बहुत प्यार खलील भाई को। खलील भाई कहाँ से हैं वैसे आप?
2: मैं पाकिस्तान से, कराची से।
0: अच्छा कराची से आप, बहुत बढ़िया खलील भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने वक्त निकाले कॉल किया, ग्रोसरी शॉपिंग करो दबा के। और
2: अच्छा, कुछ मैंने मूवी का बता रहा था, दुरिंदर देखे, दुरिंदर भी बहुत अच्छी मूवी है।
0: हाँ भाई बढ़िया, जिसको जो पसंद आया भाई देखो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है।
2: लियारी पे बनाई गई है, लियारी एक जमाने में कराची जो है ना गढ़ था, उस पे बनाई गई है।
0: नहीं पता है मुझे लियारी का, पता है भाई मेरे भी रिश्तेदार उधर रहे हैं भाई, लियारी का पता है मुझे अच्छे से, पता है लियारी का। तो खलील भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मूवी डिस्कस करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी कहानी की तरफ बढ़ाऊं तो कहानी सुन लेना अगर घर जाते हुए टाइम मिले, ठीक है?
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
0: ठीक है खलील भाई, ओके डन,
2: ओके
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो भाई खलील भाई कुछ बढ़िया चबाते हुए जा रहे हैं, एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। करीम भाई क्या चल रहा है भाई, कैसी ठंड हो रही है, कब कभी तो नहीं लग रही?
3: गर्मी भी है बहुत बढ़िया, रात को क्या मजा आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रहा है। मैं तो यार पिछले दिन कबीर भाई अपने साथ वो कार्बेट वार्बेट वो चीजें उठा के सीधा जाके वो बलकतर के साथ जो है ना वो छोटे छोटे वो जो मेट्रो स्टेशन के साथ वो छोटे छोटे वो बने हुए हैं ना, कैंटन है क्या बोलते हैं
0: जो भी बना हुआ, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अच्छी बात है क्या किया वहाँ पे आपने

0: हाँ
1: वहां पे गया भाई, अपना वो बिछा दिया, अपना वो बिछा दिया, आराम से सराना उठा के भाई खाना साथ दे के खाया और आराम से सो गया मेरे भाई।
0: क्या बात है भाई जी, रे पहाड़ों वाली जिंदगी कदर में रह गए, क्या बात है मेरा भाई।
1: तो फिर मेरे भाई मैंने वहाँ पर सुबह दूध निकला उठा,
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा लगा, वो दुबई वाली फीलिंग आई थी ना, मैं वहाँ पे ज्यादा जाया करता था ना कॉर्नेश पे कहीं।
0: अरे करीम भाई पूरे कदर में आप ही तो जी रहे हैं ढंग से, बाकी सब तो बस एग्जिस्ट करते हैं भाई, आप ही जी रहे हैं बस, बढ़िया लाइफ की मौज आ रहे हैं आपको।
1: बिल्कुल पिछले दिन बहुत अच्छा लगा, रात बस रात बाहर गुजारी। मैंने कहा अभी तो हफ्ते में एक रात बाहर सोना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बाहर सो जाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ घर से बाहर निकलते के साथ ही फुटपाथ पे बिछा लो बढ़िया सा टेंट वेंट लगा के सो जाओ उसमें।
1: बिल्कुल भैया बड़ा रिलैक्स होता है बंदा, वहाँ पे लोग आते हैं ना काफी, हाँ। फैमिली बच्चे वगैरह, वो ऐसा एक साथ नया जगह खुला है ना, आप वो लगुना मॉल से पहले जो है ना इस साइड पे आपने आओ, पलकतर एंट्री
0: अच्छा,
1: होने से पहले राइट
0: अच्छा,
1: साइड में जो केबिन पड़े हुए हैं ना, बस उसी के ऑपोजिट साइड में समंदर के पास एक जगह नया बना हुआ है, बड़ा बढ़िया जगह है।
0: मजे करो करीम भाई, मजे करो अभी जी रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ।
1: ठीक है
0: भाई शुरू करता हूँ, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो मैं तो सवाल पूछने वाला था लेकिन सवाल तो अभी तो कॉल्स में चला गया, मैं पता बात कर रहा था और मुझे अंदाजा हुआ कि आजकल लोगों को पता नहीं है कि एक जमाने में फ्री में सब्जी के साथ धनिया भी मिलता था जिन लोगों को, आई डोंट नो यहाँ पे रहते रहते कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है फ्री में मिलता था धनिया, माय गॉड। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: और नदीम भाई क्या है भाई के?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रुका हुआ था यार कि सवाल आएगा।
0: अरे पूरी कॉल में निकल गई बात भाई नहीं पता मैं ये सोच रहा था, सवाल भी ऐसे कुछ था ना कि आजकल मैंने देखा दो तीन जानने पहचानने वाले भाई, उनको आइडिया नहीं है जो यहाँ पे रहे कि फ्री में धनिया भी मिलता था, उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं कहा यार तो बड़ी हैरानी वाली बात है भाई,
2: धनिया फ्री में भी मिलता था और भर के भी देते थे भाई,
0: भर के भी देते थे,
2: नहीं मिलता अच्छा खासा देते थे धनिया।
0: और ये फरद भाई भी कह रहे हैं वो हरी मिर्ची साथ मिलती थी भाई, आजकल तो जमाना ही बदल गया है,
2: धनिया पुदीना तो आराम से दे देते थे, यहाँ पे तो 2 रियाल का इतना धनिया मिलता है।
0: वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये चीजें फ्री में मिल जाया करती थी, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो किसी को आइडिया भी है और बहुत सारे सुनने वालों को पता भी नहीं है कि फ्री में धनिया मिलता
2: है। कबीर भाई पहले तो ऐसा था सब्जी लेने मैं तो जाता ही था मार्केट, तो अपने यहाँ तो ऐसा भी था कि आप अगर मतलब कुछ ले रहे हो भिंडी वंडी या कुछ भी ले रहे हो 15-20 रुपए की,
0: हाँ।
2: तो वो लोग एक्स्ट्रा खुद से डाल के दे देते थे,
0: और तराजू हमेशा ज्यादा ही रखते थे वो, भाई तुम ज्यादा ही ले लो यार कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो मेजरमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन कभी यहाँ पे ऐसा हुआ फायदा, ऐसा आपने देखा होगा रंदीम भाई, लोग जो है दुकानों में जाते हैं, ये जरा टेस्ट कराओ, ये जरा टेस्ट कराओ, 3-4 चीजें खाई पी निकल ली वहां से।
2: बहुत करते बहुत दुकानों मैं अभी पता, मैं अभी इतना साल हो गया अपने कतर में, अभी इंडिया जाते हैं अपन कभी मिठाई लेने के लिए जाओ ना, तो वो लोग काट काट के मिठाई रख देते है कि ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, मतलब भाई
0: मैं खुद कह रहा हूँ सूक वाकिफ में स्पेशली जब लोग जाते हैं निकलते, जैसे आपने कहा ना मिठाई वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे लोग पेट भर लेते हैं भाई, इतना चुग लेते हैं वैसे निकाल निकाल के,
2: चॉकलेट और सब वो वहाँ पे देते हैं टेस्ट करने,
0: हाँ ये टेस्ट कर लो ये टेस्ट कराओ, पूरा खा लिया पेट भर गया डकार मारी दुकान से बाहर। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला था क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि अभी पता नहीं है फ्री का धनिया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से अगर कोई सुन रहा है वही बताए,
2: धनिया वही वही मिलेगा यहाँ से, मत ले लेना
0: यहाँ पे, ट्राई
2: पकड़ लेंगे गेट पे पकड़ लेंगे
0: ये 2 पत्ते धनिया के नजर आ रहे हैं नहीं ये है मतलब यहाँ पे आई डोंट नो कि कभी किसी जमाने मिला करता था कि नहीं, बट भाई हमने तो जिया है ये टाइम, तो उसी बारे में बात करने वाला था पर टाइम ही चला गया नदीम भाई। और बताए नदीम भाई कैसा रहा वीकेंड?
2: वीकेंड अपना गया घर पे ही गेमिंग में, और क्या।
0: अरे क्या क्या बात है, क्या खेल रहे थे इस बारी?
2: मैं आजकल वंस ह्यूमन बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ वही गेम खेल रहा हूँ
0: समझ गया कौन सा खेल रहा
2: हूँ, पीसी गेम मतलब पूरा
0: पीसी वालों का अलग वो है भाई, पीसी वालों का अलग वो है टोरा है। आप
2: मैं पीएस भी खेला है वैसे तो आज ये टाइम तो पीएस भी खेल रहा था, बट ज्यादातर अपना क्या है पीसी में, इस वजह से कि सारे दोस्त एक साथ एक ही गेम में खेल सकते
0: हैं, मल्टीप्लेयर खेलते हैं
2: 10-12 लोग, हाँ 10-12 लोग एक ही जगह है।
0: Okay.
2: और वो है भी ऐसा कि मतलब सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में बंद,
0: एक ही आदमी 2-3 आदमी जी रहे हैं भाई कतर में से, नदीम भाई, नदीम भाई थैंक यू सो मच भाई, क्या आपने
2: आप भी जी रहे हो कबीर भाई स्टेटस हम भी देखते हैं
0: अच्छा पकड़ा गया ओफ ओ ठीक है भाई, पर बहुत बहुत शुक्रिया
2: नितिन भाई, पूरे पूरे वीडियो हम तो वीडियो नहीं डाल पाते, आपके तो वीडियो भी देखे हैं। चलो
0: मैं इस बार नहीं डाले थे, मैं डालूंगा लेकिन इंशाल्लाह आज का सुनना भाई, एकदम सुनना, एकदम अच्छी कहानी है इंशाल्लाह।
2: अरे उस दिन मैं सुना आपने वो अज्ञात पिक्चर की एंडिंग कर दी, खुलासा ही नहीं हुआ।
0: कौन सी? अरे हाँ वो कह रहे हॉरर पूरी स्टोरी सुनने, इसमें एंड में क्या हुआ? मैंने कहा यार दो यार कोई वो थोड़ी है, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज का एंड होगा इसमें।
2: इस बारे में अपन कभी बैठ के बात करेंगे, अज्ञात मैं देख रहे गया था, स्टोरी सुनाऊंगा आपको किसी दिन।
0: ठीक है भाई, डन हो गया, ठीक है डन हो गया, थैंक यू सो मच नदीम भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नदीम भाई के बाद एक मैसेज आया भाई के, लिखते हैं भाई पाकिस्तान में भी अभी भी मिलता है बट नॉट इन ऑल शॉप्स। हाँ वो जो रेडी वाले होता है ना वो लोग दे देते हैं। फरहत भाई कह रहे हैं एंड क्या हो, अब वही तो भाई कह रहे हैं ओमानी हलवा टेस्ट करा के आपने कबीर भाई, गरम गरम भाई, मैंने सुना बहुत है अभी तक टेस्ट नहीं किया, या करा भी हो किसी ने करा दियो धोखे में तो पता नहीं। हमारे सरोवर भैया अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो। एक मैसेज है एहतशाम भाई, लेते हैं सलाम अलैकुम भाई, पाकिस्तान में भी धनिया पुदीना फ्री मिलता था, इवन मिर्ची वगैरह भी, यहाँ पे नहीं मिलती ना, यहाँ पे कभी मिला नहीं। यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड देखा ना वो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, यही देखा है मैंने। स्पेशली जो लोग अभी अपने अपने मुल्कों में जा रहे होते हैं, सूक वाकिफ में जाते हैं उन मार्केट्स में, ये ज़रा टेस्ट कराओ, ये ज़रा टेस्ट कराओ, ये ज़रा टेस्ट कराओ, पाँच छः आइटम खाए, बढ़िया पेट भरा, लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं अभी देखते हैं, आता हूँ कुछ देर में। आपने दोपहर का खाना डन किया, बढ़िया खाया और घर। ये यहाँ पे एक लौती चीज़ जो मैंने देखी। वैसे भाई वैसे लास्ट वीक की स्टोरी क्या थी? लास्ट वीक की स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा थी ना, कौन से दिन की पूछ रहे हैं आप आजा भाई, मुझे ये बताएं, बिल्कुल मुझे बताएं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह। मुझे पता है, मुझे एक मैसेज आया सोशल मीडिया पे, बड़ी खुशी भी हुई उस टाइम पे, मुझे बड़ा बुरा भी लगा क्योंकि उन्होंने भी वहाँ से ताना मारा। उन्होंने मैसेज किया, वो स्पेन में रहते हैं और आई थिंक कोई बॉयज़ हॉस्टल है और वहाँ पे वो लड़के जो हैं वो मिक्स्ड है, मतलब उसमें पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं। उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता आप क्या काम करते हैं, पर आप कहानी सुनाया करते थे पहले और अब आपने पोस्ट करना बंद कर दिए, तो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिए। तो मुझे बहुत, मैं कहा भाई अब तो करना पड़ेगा, बाहर की जनता कह रही है, अब भी शर्म ना आए कबीर साहब तो दिक्कत है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह, क्या हाल है आपके? ओके, तो आज की कहानी में सुनाने से पहले थोड़ा सा बहुत बताता हूँ आपको। ये कहानी एक मिस्ट्री के अराउंड है एंड बहुत कमाल की स्टोरी है, सो आई बिलीव कि आपको उसको सुनने के लिए थोड़ा सा सुकून में कहीं या तो पार्क वार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, मतलब बेसिकली सुकून में तो आना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे लाइव सुनने वाले हैं इस कहानी को सुनाते हुए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मुझे भी रहेगा कि हाँ ऑडियंस सामने बैठी है, वो वाली फील बड़ी ज़रूरी है स्पेशली मिस्ट्री या हॉरर सुनाते हुए। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107। डू लेट मी नो इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव राइट नाउ। गाड़ी में नहीं मैसेज कर सकते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कर सकें तो भाई कर देना। एक आर्टिस्ट को कुछ ना चाहिए, यही चाहिए। मिल रहे हैं कुछ देर में, एक काम करता हूँ, दो या ढाई प्रोमो चला देता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। ऑलराइट, जानेगा नाय।
3: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देश।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव जुड़ गए, बहुत ही मोहब्बत से लोगों ने मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच। और एक भाई लिखते हैं, भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैठा भाई, थैंक यू भाई इमरान भाई। ओके सो मैं ज़रा आज का किस्सा शुरू करता हूँ, जिसमें मैंने कहा कि ये जो है एक मिस्ट्री के अराउंड एक स्टोरी है। सो आई होप आपको अच्छी लगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया थर्सडे को, सो आई एम गोना मेक यू लिसन टू दिस वन, क्योंकि काफ़ी अलग किस्म की। सो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से भी ऑन कर देता हूँ। ओके सो इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड वेरी वियर्ड वन। सो तैयार हो जाइए, कमर पेटी बांध लीजिए, लेट्स बिगिन। सो जो आज का किस्सा है, इसे सुनाने के लिए मैं आपको कुछ साल, इनफैक्ट कई भी कह सकते हैं, कुछ साल भी कह सकते हैं, टाइमलाइन इधर से उधर करने में मुझे बड़ा मजा आता है। सो आज के किस्से के लिए जरा चलते हैं 1984 में। ओके सो मार्च का महीना, 30 तारीख सुबह का वक्त था एंड 1984। इस वक्त एक 43 साल का 43 years old एक डेयरी फार्मर जिसका नाम था ग्रैहम बैकहाउस। ग्रैहम जो था, ग्रैहम वो खड़ा हुआ था अपने बड़े से फेंस्ड फील्ड में, और ये जो फेंस्ड फील्ड थी एक बड़े सी जमीन पे थी, पूरे खेत में, और ये खेत था हॉटन इंग्लैंड में। इसके हाथों में, ग्रैहम के हाथों में इस वक्त गाय बैल का और बाकी जानवरों का चारा था, और ये उन्हें खिलाने के लिए बढ़ रहा था बार्न की तरफ। ग्रैहम जो था वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, एकदम परेशान भी था और फिजिकली मेंटली दोनों ही तरह से एग्जॉस्टेड था, क्योंकि रोज रोज इतने बड़े खेत की रखवाली का जिम्मा, एक एक जानवर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और जिम्मेदारी आई कैसे? दरअसल 5 साल पहले ग्रैहम के जो फादर थे वो चल बसे, और फिर अपने वसीयतनामा में उसे ये बड़ा सा खेत पूरा का पूरा देकर चले गए। और इस खेत पे काम करना बिल्कुल आसान नहीं था, वो कहते हैं ना बैक ब्रेकिंग काम, हर जानवर का ख्याल रखना, खेती बाड़ी का ध्यान रखना, एंड इट वाज फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। बट ग्रैहम सारे काम करता था, सारे के सारे। पर एक और फैक्ट था, ग्रैहम भले ही सारे के सारे काम करता था, लेकिन वो कतई बेकार किस्म का फार्मर था। मतलब किसान अगर उसको रेट करेंगे आउट ऑफ 10, तो आप उसे एक नंबर भी ना दें, बहुत ही बेकार किसान था। पांच सालों पहले जब उसने इनहेरिट किया, जब उसे ये वसीयत में ये पूरा का पूरा खेत मिला, तब से लेकर अब तक वो सिर्फ बर्बाद ही करता आया है इसे। उसे ऐसा लगता था जैसे वो फंस गया है यहां पे। खेत तो कहने को बहुत बड़ा था, बड़ी सी जमीन थी, ये किस्म के सोने की हथकड़ी थी उसके हाथ में। था तो इतनी बड़ी जमीन, था तो इतना बड़ा खेत, लेकिन उसके बस का नहीं था। प्रॉफिट जो था वो लगातार गिरता चला जा रहा था, एंड वो एक किस्म की साइकिल में फंस गया था। कोई इस फार्म को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था, एंड उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ग्रैहम जो था वो बनना चाहता था एक किसान नहीं, क्योंकि वो तो वो देख चुका था अपने बाप को कि दिन भर लेबर, दिन भर ख्याल रखना। एंड उसके फादर ग्रैहम के बहुत बहुत जबरदस्त फार्मर थे, बहुत बढ़िया किसान थे, एक एक चीज का ख्याल रखते थे विद पैशन। मगर ग्रैहम को ये सब नहीं करना था, वो तो पोइट्री करना चाहता था, जर्नलिंग करना चाहता था, एंड ही वांटेड टू राइट समथिंग ऑन हिज ओन। लेकिन बस कंडीशंस अलग हो गई लाइफ की, और जब एकदम से उसके उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसके जिम्मे ये सब कुछ आ गया। जैसे मैंने कहा, वो सोने की हथकड़ी, एक लेगेसी फॉलो करना, पूरे खेत को संभालना, वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा, पर उसे हो नहीं रहा था। और उसके ऊपर से एक और परेशानी थी उसके सर पे, सिर्फ खेत की जिम्मेदारी नहीं, उसका जो पड़ोसी था वो भी उससे लड़ता ही रहता था। दोनों की बहस होती रहती थी प्रॉपर्टी लाइंस को लेके, कि या नहीं, ये मेरी जमीन का हिस्सा, ये मेरी जमीन का हिस्सा, और दोनों की बहस ऑलमोस्ट हर दिन होती थी। इस वक्त 30 मार्च 1984 को वो फील्ड में था, जैसे मैंने बताया सुबह का वक्त था, और उसके दिमाग में कई सारी चीजें दौड़ रही थी, अभी दिन में ये भी करना है, अभी जानवर को खिलाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, और यही सब सोचता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कुछ दूरी पर बहुत सारी मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हैं। अब ये खेत है, कोई बड़ी बात तो नहीं, इट यूजुअली हैपेंस, लेकिन वो बड़ा
अजीब सा लगा उसे कि एक ही हिस्से में इतनी सारी मक्खियां क्यों भिनभिना रही हैं, ऐसा क्या हो गया। तो वो जो था उस तरफ बढ़ा, उसने चारा जो है पास में रखा और फिर उस तरफ जाने लगा। जब वो उस जगह पे पहुंच गया तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, बहुत ज्यादा। ये सीन उसके लिए इट वॉज लाइक स्ट्रेट फ्रॉम अ हॉरर मूवी। जब वहां पे वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक लैम्ब उसका सर रखा हुआ था वहां पे। एक जानवर का सर अलग से किसी ने कैसे रख दिया समझ में नहीं आया, और ग्राहम इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये कहां से आया। और फिर वो इधर उधर डर के मारे देखने लगा कि एक तो सुबह का वक्त है, ये दिन दहाड़े कैसे हो रहा है, एंड ही वाज रियली सरप्राइज्ड कि ये मेरी नजर से कैसे बच गया। और फिर उसने मुड़ के जब देखा तो फेंस पे एक कागज चिपका हुआ था, और उस कागज पे लिखा हुआ था यू आर नेक्स्ट। अब ये ऑब्वियसली एक डायरेक्ट थ्रेट है, एक डायरेक्ट धमकी है, और ग्राहम बहुत ज्यादा डर गया था। मगर अभी उसको डर की आदत भी हो गई थी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ये लगातार उसे खत मिल रहे थे। उसके घर पे लेटर्स आते थे धमकी भरे, यू आर नेक्स्ट, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अभी उसके सामने ये एस्केलेट हो गई थी सिचुएशन, क्योंकि अब तो जानवर का सर रख के बाकायदा एक धमकी दी गई थी। एंड दिस वाज समथिंग एल्स। अभी तक वो चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर इस चीज ने उसके डर को एक अलग लेवल पे एलिवेट कर दिया था। एंड इसी वजह से वो पुलिस पे पहुंचा, पुलिस के पास गया, पुलिस से मदद मांगी। पुलिस वालों ने सीधा सवाल किया कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारा कोई दुश्मन है। ग्राहम ने कहा, देखिए सर, मुझे नहीं पता, मेरे पास वक्त ही नहीं होता है कि मैं किसी से दुश्मनी भी कर पाऊं। मुझे नहीं पता, कुछ लोग मुझसे चढ़ते होंगे, जलते होंगे, एकदम से इतनी बड़ी जमीन का मैं मालिक बन गया तो हो सकता है कि लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो, बट आई डोंट नो। पुलिस ने स्टेटमेंट ली और कहा कि ठीक है, हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन फिर इस केस को दर्ज करने के बाद बस दर्ज कर लिया गया, और फाइल जो थी बहुत सारी फाइलों के बीच में रख दी गई, और इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई। दस दिन के बाद अप्रैल की 9 तारीख आई 1984। ग्राहम जो था इस वक्त अपने बांड में था और दूध निकाल रहा था। वहां पे बहुत सारी गाय थी और इन सबका दूध निकालते, उसने सोचा कि आज थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है, एक काम करता हूँ, रेडियो पे म्यूजिक ऑन कर लेता हूँ। रेडियो पे बहुत बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, उसने म्यूजिक को ऑन किया, इनफैक्ट वॉल्यूम को अच्छा खासा बढ़ा दिया फुल ब्लास्ट पे, और ग्राहम जो था वो बढ़िया दूध निकाल रहा था। इन्वेस्टिगेशन सब कुछ भुला के, वो टेंस तो था लेकिन इस वक्त चीजें थोड़ी बढ़िया सी चल रही थी, तो उसने कहा मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। और जो जानवर थे वो भी काफी हेल्दी नजर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि दिस इज अ पॉजिटिव डे, क्यों ना मैं आगे थोड़ा सा पॉजिटिव ही सोचूं। इस वक्त ग्राहम की जो बीवी थी उसको जाना था टाउन की तरफ, एंड शी वॉज गेटिंग रेडी, वो निकल भी गई। ग्राहम को कुछ पता नहीं लगा बिकॉज वो अपने बांड में बिजी था, दूध निकाल रहा था। मगर म्यूजिक तेज, जानवर भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। इस बीच उसे म्यूजिक को चीरती हुई चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। उसने ध्यान से इधर उधर देखा तो उसे दो लोकल, जो गांव के लोकल लोग थे, वो आते हुए नजर आए। उसने उन्होंने देखा तो वो दोनों के दोनों हाथ ऊपर करके उसे ऐसे आवाज दे रहे थे, ग्राहम ग्राहम चिल्ला रहे थे। और उसने फौरन बढ़ के कूदा, रेडियो की वॉल्यूम बंद करी और फिर उनकी तरफ बढ़ा, बोला क्या हो गया, क्या हो गया, What happened? और वो दोनों उसके पास आए, बोला आपकी वाइफ जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। ग्राहम ने बोला व्हाट, अब वो तो टाउन की तरफ गई थी ना, क्या कह रहे हो तुम लोग। तो बोले आइए हमारे साथ आइए। ये दोनों के दोनों उसको लेके गए, एंड दोनों के दोनों जब ग्राहम को लेके गए तो उसने अपने दूसरे बांड की तरफ देखा, जहां पे उसकी गाड़ियां वाड़ियां खड़ी रहती थी, एंड उसकी बीवी यहीं पे इसी गाड़ी से निकल के जाने वाली थी। उसने देखा कॉर्नर में धुआं उठ रहा है ऊपर की तरफ, और वो उसी तरफ गया। जब गाड़ी के कॉर्नर की तरफ गया, दूसरी तरफ पहुंचा, तो उसने देखा जमीन पर उसकी वाइफ पड़ी थी, एंड कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत बुरी तरह फटा था, कुछ किसी किस्म का ब्लास्ट हुआ था कि उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी। ये सीन देखकर ग्राहम वाज लिटरली इन शॉक, इतना कि एकदम पैरालाइज हो गया था, नो इमोशंस, एंड बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करी, और वो जो दो लोग खड़े थे लोकल उस वक्त मौजूद थे, उनसे बोला आप
आप दोनों प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए। और उसके बाद वो बाकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निकला, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। 20 मिनट बाद ग्राहम जब वेट कर रहा था, उसके सामने पैरामेडिक्स पहुंचे, वहां पे पुलिस आई, एंड अमेजिंगली समथिंग रियली अमेजिंग हैपेंड कि ग्राहम की जो वाइफ थी, ऑल दो शी वॉज बैडली इंजर्ड, बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी, शी वॉज स्टिल अलाइव। अब ग्राहम को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा था बिकॉज स्टेटमेंट लेनी थी। अब पता चला था कि कोई चीज़ ऐसी हुई है जो फटी है, मे बी अ पाइप उसका ब्लास्ट हुआ है, इस वजह से जाने नहीं दे सकते। तो उसे कहा गया कि तुम अब यहीं रुको, तुम्हें स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। एंड ग्राहम जो ऑलरेडी वॉज इन शॉक, इतनी सारी चीज़ें देख रहा था, ही वॉज ऑल्सो फ्यूरियस, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पुलिस वालों से यही बोला कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देयर इज अ थ्रेट, आप मेरी सुनते क्यों नहीं है, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहां पे बैठ के आपको बयान दूं। मगर पुलिस वाले भी मजबूर थे, दे हैड ड्यूटी, इन्होंने पूछताछ करनी थी। तो इस वक्त ग्राहम जो था अपने घर के बाहर वाली सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, पुलिस का घेरा था और पुलिस वाले उससे बयान ले रहे थे। उसने बताया, देखिए जिस गाड़ी में मैं आपको क्यों आपसे गुस्सा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो गाड़ी वहाँ पे जिसमें कुछ फटा है, वो गाड़ी मेरी थी, वो मेरे लिए प्लान किया गया था। मेरी वाइफ अपनी गाड़ी छोड़ के ये वाली गाड़ी ले जा रही थी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी। आप समझ रहे हैं ऑफिसर, ये मेरे लिए था सब कुछ प्लान, लेकिन उस बेचारे के साथ हुआ। जब ये सब बातें चल रही थी, पुलिस वाले बात कर रहे थे और सीढ़ी पे बैठ के ग्राहम उन्हें बयान दे रहा था, इतने में वो जो मेलमैन जो डाकिया आते थे, आपको याद होगा, खत लेके, उसकी वैन आई और वो सीधा चलाता हुआ ड्राइववे की तरफ आया था। अभी ड्राइववे एक क्राइम सीन बन चुका था, जो इस मेलमैन को बिल्कुल ही पता नहीं था। एंड वो फुल जोश में उसने गाड़ी लगाई, एंड वो उतरा, पुलिस वालों ने रोका, रुको, पीछे पीछे पीछे। मेलमैन बड़ा कंफ्यूज था, अरे हुआ क्या है? पुलिस वाले ने बोला, हाँ क्या बात है? मेलमैन ने बोला, सर यार ये ये ये ये लेटर थे। पुलिस वाले ने उससे लेटर्स लिए और उसे कहा, चलो जाओ जाओ फौरन जाओ, और वो वहाँ से चला गया। और फिर लेटर्स पुलिस वाले लिखे आए, बोले ये आपके लिए लेटर्स आए। और ग्राहम ने जैसी लेटर्स को देखा, वो समझ गया हैंड राइटिंग को। वो बोला, सर ये देख रहे हैं लेटर्स, ये देख रहे हैं वो लेटर्स, ये वही हैंड लेटर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महीने से मेरे पास आ रहे हैं। ये सारे के सारे लेटर्स धमकी वाले हैं। ऑफिसर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और ये देखिए। और ऑफिसर ने बोला, ठीक है एक काम करो, इन लेटर्स को तुम ओपन नहीं करोगे, अब ये हमारे लिए एविडेंस है। 15 दिन बीत गए, पूरे 15 दिन चले गए। 24 अप्रैल की तारीख आई 1984, और ग्राहम जो था वो घर से निकला। घर से निकल के वॉक करके वो सड़क की तरफ जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मगर अभी फ्रेश एयर उसको लेने की बहुत ज़रूरत थी। ही वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी एंग्शियस। उसकी बीवी अस्पताल में थी, उसकी सर्जरी चल रही थी, बहुत सारे शार्पनल्स उसके टांग में आ चुके थे, एंड वो खर्चा और था, और ऊपर से बच्चे जो थे वो काफ़ी अपसेट थे, डरे हुए थे कब क्या हो जाए इस घर में। तो उसने उनको भी भेज दिया क्योंकि उनको खतरे में नहीं रख सकता था। ही वॉज रियली ट्राइंग हार्ड कि इस सिचुएशन को संभाल सके, कोई नाम मिल सके, कुछ हो सके, बट ही वॉज स्टक एंड ही हेटेड इट। एक एक्टिव धमकी, एक एक्टिव थ्रेट इस फार्म पे है, और नहीं पता कि कहां से क्या हो रहा है। जिंदगी सबसे बुरे हालात में थी और पुलिस को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मगर पुलिस ने एक काम किया, पुलिस ने फिजिकल प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ऑफिसर्स को इस फार्म पे लगा दिया। जब कुछ दिन कुछ भी नहीं मिला तो वहां पुलिस वाले उस जगह को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने ग्राहम को एक पैनिक बटन दिया, बोला कि अगर तुम्हें कुछ नजर आए, कुछ दिखे, इस बटन को दबाना, ये इंस्टॉल्ड है और हमें सिग्नल मिल जाएगा। और ये कह के ये लोग भी चले गए। ग्राहम अभी इतने बड़े फार्म पे, इतने बड़े खेत में, ही वॉज ऑल अलोन, एकदम उदास, एकदम स्ट्रेस्ड। उसका मेंटल पीस पूरी तरह से छिन चुका था और वो सोच रहा था कि कौन हो सकता है यार, कौन करेगा मेरे साथ ऐसा। और एक ही नाम उसके जहन में आ रहा था, और वो नाम था उसके पड़ोसी का, जिससे वो पता नहीं कब से लड़ता हुआ आ रहा था। इस पड़ोसी का नाम था कॉलिंस, और इन दोनों की लड़ाई के बारे में पूरे टाउन को पता था। ये दोनों कितनी बहस करते हैं, कितना लड़ते हैं। हाँ कभी हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन दोनों की बहस ऐसी होती थी कि अगर मौका मिलेगा तो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। पर ग्राहम ने सोचा कि अगर मैं जाके सीधा उससे पूछूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो गलत हो जाएगा।

तो ग्राहम का प्लान ये था कि वो जाएगा पड़ोसी के पास और उससे सिर्फ बात करेगा, उसके रिएक्शन को समझने की कोशिश करेगा कि वो कैसा रिएक्ट करता है। तो चुपचाप गया अपने पड़ोसी के पास उसे देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्शन देगा। ना जब वो पहुंचा ड्राइववे में कॉलिंस के, तो कॉलिंस अपने ड्राइववे में था, उसने चिढ़ के देखा उसे पूरी तरह से, क्योंकि ये दोनों बात तो नहीं करने वाले थे कि कैसा मौसम है और भाई क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था इन दोनों के बीच में। तो कॉलिंस तो कोई बात करने नहीं वाला था, ग्राहम खुद चल के उसके पास गया, बात करने की कोशिश करी, एंड ये बात बहुत ही वियर्ड थी, लाइक वियर्ड कॉन्वर्सेशन, रैंडम बातचीत, और उसके बाद गुड बाय हुए और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, एकदम न्यूट्रल बात जिसे कहते हैं। और फिर धीरे धीरे ग्राहम सोच रहा था कि कितनी अजीब कॉन्वर्सेशन थी ये। कॉलिन ने एक मर्तबा भी, जबकि उसे पता है कि क्या क्या हो चुका है, एक मर्तबा भी उसके बारे में नहीं पूछा, उसकी वाइफ के बारे में नहीं पूछा, बच्चों के बारे में नहीं पूछा, ही डिडंट केयर एट ऑल, एकदम न्यूट्रल बातें। और इस वजह से शक कॉलिन पे और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था। कुछ दिन बाद 30 अप्रैल की तारीख आई, 30 अप्रैल रात का वक्त था, परेशान एकदम टूटा हुआ ग्राहम अपने ऑफिस में था, उसका ऑफिस उसी के फार्म में एक बार्न के ऊपर था, एक लालटेन रखी हुई थी और उसके साइड में एक नोटपैड रखा हुआ था जिसे वो लगातार घूर रहा था। उसने सोचा कि अपना स्ट्रेस निकालने के लिए क्यों ना कुछ मैं लिखने बैठ जाऊं, दिमाग हटाऊं अपना थोड़ा सा, पर दिमाग उसका चल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्रिएटिविटी दिमाग से जा चुकी है। और ऊपर से वो टेंशन में था कि कॉलिंस से भी पुलिस ने पूछताछ करी लेकिन उससे भी कुछ नहीं निकला। जब वो ये सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, इतने में उसके दरवाजे पर बहुत जोरों से दस्तक हुई, बहुत ज्यादा किसी ने नॉक करने की कोशिश करी, जोरों से ऐसे बिल्कुल हाथ पैर मार मार के, कोई नॉक करता है कि दरवाजा तोड़ ही देगा, वैसी वाली आवाजें आना शुरू हुई। वो इमीडिएटली भागा और भागते हुए दरवाजे की तरफ गया, बहुत डर रहा था कि सामने पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो रात का वक्त है। बहुत कांपते हुए उसने डोर नॉब की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजा लगातार कोई पीट रहा था, उसने डोर नॉब खोली और उसके सामने जो उसने देखा, उसके बाद वो सीधा भागा पैनिक बटन दबाने के लिए, बिकॉज हिज पल्स वॉज रेसिंग, हार्ट उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। चंद मिनटों के बाद मौका वारदात पर, इस फार्म पर, ग्राहम के घर पर पहुंचे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट टॉम एवंस। टॉम जो थे वो पुलिस के साथ काम करते थे, लोकल पुलिस के साथ डिटेक्टिव के तौर पे जुड़े हुए थे, और उनके पास ये केस था ग्राहम का, ग्राहम फार्म का। टॉम क्योंकि लीड कर रहे थे केस को, तो उन्हें पता लगा जब पैनिक बटन दबने का, तो वो पूरी टीम के साथ ग्राहम के घर पहुंचे, और जब पहुंचे तो कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। उन्होंने दरवाजे पहले दस्तक दी और फिर बोले, मिस्टर ग्राहम, दिस इज टॉम, पुलिस, पर कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने हल्के से दरवाजे को नॉब पकड़ के घुमाया, अंदर की तरफ खोला, तो दरवाजा खुल गया। वो आगे बढ़े, उनके पीछे दो लोग थे, उन्होंने गन्स निकाली एंड तान के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े हॉलवे में टॉम को कुछ नजर आया, उन्हें एक बॉडी नजर आई, और ये बॉडी किसी 60 साल के बंदे की थी। ये बॉडी ग्राहम की नहीं थी, ये बॉडी ग्राहम के पड़ोसी कॉलिंस की थी। उसके गन शॉट वुंड थे, गोली लगी थी उसे, और उसके राइट हैंड पे, उसके सीधे हाथ में चाकू रखा हुआ था। टॉम ने जब ये देखा तो टॉम और आगे बढ़े, क्योंकि खून के जो पूरे निशान थे वो किचन की तरफ जा रहे थे। ही कैप्ट ऑन वॉकिंग और टॉम वाज देयर, ग्राहम आर यू देयर, ग्राहम दिस इज टॉम, दिस इज टॉम, और वो कहते कहते आगे बढ़ रहे थे। एंड देन ही टुक अ राइट टर्न और वो किचन की तरफ बढ़े। अंदर जो उन्होंने देखा, इट वॉज ऑल मेस, चेयर टेबल जमीन हर जगह, इट वॉज जस्ट ब्लड। एंड नीचे जमीन पर बैठा हुआ एक बंदा जो कांप रहा था, वो था ग्राहम, और ग्राहम के हाथ में एक शॉट गन थी। ग्राहम की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत पेन में था, उसकी कई चोटें आई थी। एंड टॉम ने उसे उठाया, पूछा, ग्राहम यू ओके, और उसे तुरंत वहां से बाहर निकाला और पूछा, तुम बता पाओगे मुझे क्या हुआ है।

पर ग्राम ने बताया, ग्राम ने उसे ये बताया कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, इतने मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई एंड मैं डर गया, मैं भाग के गया और सामने कॉलिन खड़ा हुआ था। कॉलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने सब कुछ एडमिट किया कि उसने सब कुछ प्लान किया था। और फिर मैं अंदर भागा, मैंने जब पैनिक बटन दबाया उतने में देर हो चुकी थी, मैंने सेल्फ डिफेंस में शॉट गन निकाली एंड आई शॉट हिम। उस वक्त पैरामेडिक्स आए, ग्राहम को चेक किया, उसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा सीरियस थी मगर ही सर्वाइव्ड। कॉलिन्स को पुलिस वाले नहीं बचा पाए, पैरामेडिक्स नहीं बचा पाए। पुलिस वालों ने इस केस को फिर इन्वेस्टिगेट किया और भी डीपली, पिक्चर्स, ब्लड स्प्लैटर, एक एक चीज। कॉलिन्स के प्रॉपर्टी पे गए, कॉलिन्स की प्रॉपर्टी पे उन्हें एक पाइप मिला जो एग्जैक्ट पाइप था जो फटा था, एंड एवरीथिंग वाज सॉल्वड। मगर फिर एक वियर्ड चीज सामने आई फोरेंसिक रिपोर्ट में, और जब वो चीज सामने आई तो बहुत ही तगड़ा सबूत मिला। ये सबूत बहुत ही मंडेन, बहुत रोजमर्रा की चीज थी, एंड टॉम इवेंस जो डिटेक्टिव थे उनको अंदाजा हो गया कि उनके 30 साल के करियर में इतना वियर्ड केस तो वो कभी ना उन्होंने देखा है ना आने वाले 30 सालों में कभी देखेंगे, एंड ही वाज रियली रियली शॉक्ड। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हुआ क्या। ग्राहम बैकहाउस, उसे लिखने का बहुत शौक था और उसके मत्थे मार दिया गया था, ये इतना बड़ा फार्म जो डूब रहा था, प्रॉफिट में जरा भी नहीं था। और वो इस फार्म को बचा नहीं पा रहा था। वो क्या करता, उसने कहानी लिखना शुरू करी। ये कहानी जो फिक्शनल चल रही थी उसने इसे रियल लाइफ में पिरोना शुरू कर दिया। वो जानवर का सर, पाइप का फटना, ये सब कुछ ग्राहम एक कॉपी में लिख रहा था, एक स्पाइरल नोटबुक में। उसे पता था कि इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना सही काम है, तो उसने अपनी पत्नी पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल ली थी, मगर हुआ कुछ उल्टा और वो बच गई। अब कहानी में ट्विस्ट लिखने की बहुत जरूरत थी और उसने और लिखना शुरू किया। बहुत सारे खत ग्राहम ने अपने आप को ही लिख के भिजवाए पोस्ट ऑफिस से, लगातार खुद को भेजता था पुलिस को कोई और रास्ता दिखाने के लिए। मगर उससे एक बहुत बहुत माइन्यूट गलती हुई जो उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल ग्राहम जितना बुरा फार्मर था, जितना बकवास किसान था, उससे ही उससे ज्यादा बकवास वो राइटर भी था। आप ही समझिएगा, क्योंकि यह समझने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जब हम कागजों पे लिखते हैं, मान लीजिए एक कॉपी को खोल के आप लिख रहे हैं, और अगर आप उस पर लगातार पेन घुमाते रहें, तो होगा ये कि आप जब एक ही जगह पेन चलाते रहेंगे तो उसकी जो छाप है उस पेन की, वो अगले वाले पन्ने पे भी आएगी। राइट, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, आप गाड़ गाड़ के लिख रहे हैं तो अगले वाले पेपर पे भी बहुत कुछ छप जाता है। राइट, तो ये जब नोटपैड पर लिख रहा होगा तो इसने बहुत ज्यादा स्क्रिबल किया, एक जगह पेन घुमाता रहा सोचते, और उसकी जो छाप थी वो नीचे वाले पन्नों पे छप गई। वही पेपर फाड़ के इसने खुद को लेटर लिखी, तो जब वो लेटर आए और पुलिस वालों ने देखा तो उसके ऊपर एक और पेपर का निशान था। वो निशान ग्राहम के नोटबुक से बिल्कुल मैच हो रहा था, और ये दिमाग कोई ना लगाता अगर टॉम वहां पे नहीं होते। टॉम इवेंस ने देखा कि इसने जो स्क्रिबल किया लगातार, जहां एक जगह पेन चलाया वो अगले पन्ने पे छपा, और वही पन्ना इस अकलमंद ने फाड़ के खत लिखा खुद को ही, और खुद को ही भेजा, खुद को ही धमकियां देता रहा। और फिर ब्लड स्पैटर की रिपोर्ट, जहां पर ब्लड फैलता है एक डायरेक्शन में, उसे सब कुछ तय हो जाता है। एंड ये सब कुछ, तमाम सबूतों को इकट्ठा करके, इस केस ने एक बहुत वियर्ड टर्न लिया और ग्राहम बैकहाउस को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कोई भी सुनवाई वनवाई कुछ नहीं, दो लाइफ सेंटेंसेस सुनाई गए ग्राहम को, और फिर 1994 में 10 साल बाद ही हार्ट अटैक से वो दुनिया से चल बसा। ये थी कहानी ग्राहम बैकहाउस की, जिसने बहुत ही कुछ अलग करने की कोशिश करी। हालांकि उसकी वाइफ जो है वापस आई, शी कुड नॉट वॉक थ्रू आउट हर लाइफ, लेकिन शी सर्वाइव्ड। एंड वो जो पूरा खेत खलियान था जो इससे नहीं संभल रहा था, वो उसकी वाइफ ने इनहेरिट किया।

उसकी वाइफ की दूसरी शादी हुई एंड दैट फार्म रियली रियली ब्लूम्ड. उसके बाद फार्म प्रॉफिट में चला एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. आज इस फार्म के ऊपर लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं, अलग अलग हॉरर मिस्ट्रीज यहाँ पे शूट हो चुकी हैं, बहुत सारी मेजर मेजर थ्रिलर्स यहाँ पे शूट हुई हैं. एक मूवी आई थी 1922 हॉलीवुड की, वो भी यहाँ पर ही शूट हुई है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फार्म. लेकिन वही है कि ग्राहम बेक हाउस अगर चीज़ें संभाल पाता, इनहेरिटेंस को देख पाता, तो शायद सिचुएशन अलग होती. बहरहाल ये था किस्सा आपके हवाले और अब आपकी बारी. 666-22107 नंबर है, 666-22107. मैं आपके मैसेजेस के इंतजार में दोहा वाला कबीर. प्लीज़ बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है. कई मरतबा चीज़ें लोग इनहेरिट तो कर लेते हैं, वसीयत में मिल जाती हैं, वसीयतनामे में नाम लिखा होता है, लेकिन चीज़ें संभालने के लायक नहीं होते हैं लोग. और दिस इज़ वन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द सेम सिचुएशन. बहरहाल आपके हवाले है, 666-22107, 666-22107. प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: आज ही टाइम तो हो लिया 6:02 होने वाले हैं, मतलब चंद सेकंड्स में। बाकी कहानी आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा, बिकॉज टू पुट इट टुगेदर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानियां नहीं होती हैं। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं तो इनको एक नैरेटिव फॉर्म में पिरोना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड थैंक यू सो मच जब आप इस कहानी को दिल लगा के सुन लेते हैं तो उतने में ही ऐसा लगता है कुछ जीत हुई है। सो थैंक यू सो मच इफ यू लिसन टू इट लाइव, और कोशिश जारी रहेगी आपको ऐसी ही बहुत सारी कहानियां सुनाने की। बट आज वाली कैसी लगी, इफ यू हैव हर्ड इट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा। ये प्लीज़ बनता है भाई, ये तो मैं मांग ही सकता हूँ हक से।
3: तेरी हसरत
2: बागे।

0: प्रो मोहित चौहान, ये मूवी मैंने बहुत क्रिटिसाइज भी करी है, उतनी मुझे पसंद भी थी, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। कहानी मैंने सुना दी, जब कहानियों में सस्पेंस होता है बिल्कुल आखिर में जब रिवील होता है, उन कहानियों को एक साथ पुट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे पहले ही रिवीलर मिल जाता है, फिर कहानी को बैक ट्रैक करना पड़ता है, उल्टा लिखना पड़ता है। तो वो भाई ऐसी कहानियाँ मुझसे बहुत एक्सरसाइज कराती हैं, बट मज़ा भाई इसी में मज़ा है। तो आपके जो मैसेजेस हैं वो जरा पढ़ देता हूँ। हाँ जी, तो एक मैसेज आया है खोकर भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बहुत एंजॉय किया आपकी स्टोरी, ऑर्डर डिले हो गया आपकी स्टोरी सुनते सुनते। अरे मेरा भाई, भाई बहुत प्यार भाई, आई नो आपकी मोहब्बत है जो आप टाइम निकाल लेते हैं, सुन लेते हैं आपके बिजी शेड्यूल से, थैंक यू सो मच। जायद अजीज भाई लिखते हैं भेजना भाई, बिल्कुल भेजूंगा। जकी भाई लिखते हैं लुक्स इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मिलेगी आपको, वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई लिखते हैं कबीर भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई को क्या। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज भाई, कहानी का सुन के क्या आपका फिदा, क्या भाजी शेख इरफान भाई क्या कह गया। एक मैसेज है इन्होंने डिटेल में लिखा है, अरबाज खान साहब लिखते हैं, कह रहे हैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अपनी बीवी को बनाने की कोशिश कैसे करते हैं, हम लोग एक दिन में हैं, हम तो अगर एक दिन अपने आप को एक पराए आदमी के साथ भी रहे तो फिर उसके साथ ऐसा बिल्कुल हो जाते हैं जैसे जाने का दिल नहीं करता, लेकिन ये लोग कैसे ऐसी कोशिश कर सकते हैं। आगे लिखते हैं सर, कहानी बहुत अच्छी थी, दिल टूटने वाली कहानी थी, लास्ट वाला सीन बहुत ख़तरनाक था सर, जवाब नहीं कहा कि उसने सब कुछ, जब आपने कहा कि सब कुछ खुद कर रहा था, पुलिस की जगह सर मैं अगर होता तो इसी को नहीं छोड़ता। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। निशान साहब जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है भाई भाई साहब दिमाग चकरा के रह गया। थैंक यू सो मच फक भाई, मैं यही चाह रहा था। नदीम भाई लिखते हैं कि बड़ा ही खतरनाक बंदा था भाई, इमेजिनेशन में ही जी रहा था। हाँ भाई अपनी दुनिया में। फरद भाई कह रहे हैं टॉमी वेंस को सलूट। और आगे लिखता है ग्राम बैकहाउस लायक नहीं था इसलिए सब कुछ खराब कर दिया। हाँ देखो, कहने को पूरी खेती बाड़ी मिली थी भाई को, क्या नहीं कर सकता था, लेकिन ना जी वही समय था। आप लिखते हैं बहुत आला, बहुत बहुत आला, थैंक यू सो मच। एंड हमारे फैसल भाई लिखते हैं भाई आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा भाई, माशाल्लाह आपकी आवाज़ वैसी की वैसी है, कुर्बानी की गोश्त का असर नहीं हुआ है। अरे आपका भाई ऐसी है भाई, सॉलिड एकदम सॉलिड बिल्ड मेरा भाई। रोमी भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। ग्राम बैकहाउस स्टोरी शेयर कीजिएगा, जरूर करेंगे। एक कॉल आ रही है पहले उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई के, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल?
0: भाई बढ़िया चल रहा है भाई, तो एकदम शानदार, एकदम शानदार। बताए मेरी जान।
1: भाई सब शानदार तो होगा भाई, दूसरों को हार्ट अटैक दिलवा रहा हूँ, खत्म करवा रहा हूँ।
0: कैसी लगी कहानी?
1: Absolutely stunning, bye.
0: मजा आया। चलो भाई इसी बात के पैसे भाई, यही तो मुश्किल हो जाती है, ये वाली कहानी सबसे मुश्किल यही होती है, जबकि कहने को सुनाने में आसान है लेकिन इनको एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पजल जैसा।
1: भाई इतना हाँ। भी आसान नहीं है, सुनाना भी इतना आसान नहीं है जिस तरीके से तुम पेश करते हो।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नहीं कोशिश करेंगे और भी ऐसी कहानी लेके आए।

0: आप
1: अरे
0: उस
1: जब
0: लाइन
1: तक आप हैं तो आती रहेंगी ऐसी कहानियां तो भाई।
0: अभी हम जिंदा हैं
1: ना
0: तो
1: मगर सोशल मीडिया से बिल्कुल लापता है।
0: अरे रे रे मैं ऐसी
1: बताने
0: ताने
1: मारता
0: को
1: रहूंगा, टेंशन मत लो।
0: धनिया बोल दूंगा जब तक पोस्ट नहीं आएगा, मैं समझ रहा
1: हाँ
0: हूँ।
1: मैं ताने मारता रहूंगा भाई, मैं
0: घर पे
1: देता
0: भी,
1: रहूंगा तानों का ताने।
0: घर पे भी ताने, इधर भी ताने, या खुदा क्या चल रहा है। वैसे
1: नहीं
0: वीकेंड
1: भाई
0: कैसा रहा भाई का?
1: नहीं, बात करवा दे फिर भाभी जी से, मैं बता दूंगा फिर मैं कैसे आग लगवा दूंगा। तो और से भी काम नहीं करेंगे जिस तरीके से मैं
0: अरे
1: काम करूंगा।
0: नहीं भाई, उधर भी फुल फुल एकदम पायलट बने हुए हैं घर वाले भी इसी बात को लेके। क्या
1: अरे यार भाई छोड़ दो प्लीज यार,
0: क्या
1: छोड़
0: क्या
1: दो आलस
0: छोड़ दो हाल, नहीं छोड़ दो, मैं छोड़ दो
1: आलस।
0: छोड़
1: अरे यार आपसे कोई, हम जो है ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखे की बात नहीं कर रहे क्या भाई? उस चीज के तो पता है कि हैबिट है ही नहीं आपको,
0: दो।
1: एक
0: ये
1: जो है बस
0: वाली, ये
1: आलस की
0: वाली
1: बात
0: करवाना
1: कर
0: है,
1: रहा
0: बस
1: है।
0: ये वाला चलवाना है।
1: हाँ ना, हाँ जी
0: करेंगे करेंगे। और बताओ वीकेंड
1: बस यार
0: नहीं
1: बिल्कुल
0: मानोगे, नहीं मानोगे है ना, नहीं मानोगे। ठीक है, वैसे
1: नहीं मानेंगे भाई साहब।
0: वैसे क्या, कैसे जा रहा है आज का दिन, कैसे जा रहा है, क्या रहा?
1: मैं अलहमदुल्ला सुकून रहा भाई साहब, आराम रहा। गर्मी में निकलने का मन नहीं करता आराम से, इसलिए रूम में रहे। अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ मामला तो बाहर को निकले। हाँ
0: अभी तो आज मामला थोड़ा सा है, लिटिल लिटिल है, तो लिटिल लिटिल ओके है
1: अरे फिर भी खड़े होने में भी जरा सा 1 मिनट
0: भाई।
1: के लिए
0: नहीं
1: बाहर निकल रहा
0: बाहर,
1: हूँ, ऐसा लग
0: बाहर
1: रहा है
0: तो
1: भाई जैसे कोई जो है ना वो लेके ना ट्रक लेके बाहर खड़ा हो फायर
0: अभी
1: ब्रिगेड को।
0: अभी वो वाला, अभी
1: हाँ
0: वाला सीन है ना कि एक रोड से एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाने के लिए भी लोग कैब करें, ये ऐसा वाला सीन हो चुका है, नहीं हो रही क्रॉस भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत
0: भाई ख्याल
1: बहुत हार्ड
0: रखो
1: वाली
0: गाड़ी का
1: कहानी
0: भी और अपना भी, यहाँ पे तो दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है भाई, तो दोनों का ख्याल
1: है
0: रखिए
1: ना।
0: बस।
1: गाड़ियों की तो है, गाड़ी तो सेफ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैंगी, सब टेंशन नहीं है। मगर अपनी टेंशन सबसे ज्यादा रही भाई, काले पीले ना हो जाए,
0: अरे का ब्यूटी
1: जब घूमने
0: कॉन्टेस्ट
1: वाली
0: में
1: आग
0: जाओगे,
1: भाई
0: ब्यूटी
1: साहब
0: कॉन्टेस्ट में जाने वाला हो भाई, के बात हो
1: ना
0: गई।
1: भाई। नहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं आएंगे, बीवी के लिए सबसे ज्यादा ब्यूटी
0: आए
1: छोड़ना
0: आए
1: हमने।
0: सजना है मुझे
1: नहीं
0: नहीं सही है भाई, मैं आपके साथ हूँ जस भाई, बिल्कुल डटे रहो,
1: बिल्कुल
0: सनस्क्रीन लगाओ,
1: बिल्कुल
0: सनस्क्रीन में भर भर के। ठीक है भाई,
1: ना ना रूम में पड़े रहो भाई साहब,
0: और भी
1: सनस्क्रीन की
0: बढ़िया,
1: जो है ना जरूरत ना पड़ेगी, रूम
0: और
1: में
0: भी
1: पड़े रहो,
0: बढ़िया,
1: रंग
0: और भी बढ़िया भाई,
1: निखर
0: डटे रहो
1: जाएगा नेचुरल वाला।
0: और भी बढ़िया, डटे रहो भाई, कमरे में टिके रहो।
1: बिल्कुल
0: ठीक है जस भाई, घर पे हमारा सलाम दीजिएगा, बहुत सारा प्यार भाई को। क्या
1: बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: थैंक यू
1: जरूर
0: मेरा
1: भाई।
0: भाई, ख्याल
1: ओके
0: रखिए
1: दुआ
0: भाई,
1: में याद रखिए भाई,
0: आप
1: अल्लाह
0: भी मेरे भाई,
1: हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जस भाई के बाद दो तीन और मैसेजेस हैं मुझे, नसद भाई ने मैसेज क्या लिखते हैं, हाउ कुड अ पर्सन बी सो वेयर्ड, वन थिंग इज रनिंग इन माई माइंड, हाउ डिड कॉलिंस गेट इन टू ग्राम्स हाउस और ग्राम्स किल्ड हिम समवेयर एल्स, मे बी समवेयर एल्स मार दिया होगा, वॉज इन एन एडिक्ट आई डोंट नो, पर बहुत वेयर्ड था भाई, था ये वेयर्ड मामला ही। इनमें से कबीर भाई आज तो फिर से हद कर दी, ज़बरदस्त कहानी है फलक भाई, डेली हद करेंगे भाई इंशाल्लाह। यूसुफ भाई कह रहे हैं अच्छी थी, सस्पेंस भी था, ये लोग सभी क्राइम पैसों के लिए, मोस्ट ऑफ द क्राइम मोटिव इज पैसा, अपनी लाइफ अपने हाथों से ख़राब की, कोई और भी ऑप्शन हो सकते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कबीर मैं जब सुन रहा था तो कल्प्रिट वही लग रहा था, लेकिन जब नेबर का ट्विस्ट आया तो अलग लगा, लेकिन एंड में वही हुआ जो मैंने सोचा था, वही मैं भटका रहा था लोगों को इस कहानी में, इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर उधर जाओ। इनमें से गुड इवनिंग कबीर भाई, कैसा रहा आपका वीकेंड भाई? बढ़िया एकदम, बैटमैन वाली घड़ी लेके आया भाई आपका। एक मैसेज है, डोंट डिले द ऑर्डर, हेड ऑफिस इज ऑल्सो लिसनिंग। अरे नहीं नहीं सगी भाई क्यों डरा रहे हो यार। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, पूरा नहीं सुना हीरो भाई, गलती करी आपने। एक मैसेज भाई, आज फातिमा ने लाइव सुनी स्टोरी, अच्छी लगी, कह रही है अच्छी लगी, सस्पेंस थी। चलो फातिमा को बड़ी लगनी चाहिए, फातिमा थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार हमेशा की तरह। एक और मैसेज है, कबीर भाई जब आप कहानी सुनाते हैं तो आंख बंद करके सुनाते हैं कि देख के पढ़ के सुनाते हैं? यू आर अ गुड क्वेश्चन अनीस भाई। तो जब मैं कहानी सुनाता हूँ आधे से ज़्यादा 95% मुझे याद हो चुकी होती है कहानी, सो 95% स्टोरी मुझे क्योंकि याद होती है तो मुझे सुनाने में आसानी होती है, डोंट आई डोंट हैव टू लुक एट द पेपर्स, मुझे किसी किस्म के कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बूढ़ा हो जाऊँगा तो पड़ेगी। बाकी आंखें बंद करके नहीं सुनाता, मगर मेरे दिमाग में इमेजिनेटिव होती है, जैसे मैंने आपको ग्रहम की कहानी सुनाई तो शायद मैंने आपको नहीं बताया कि ग्रहम ने क्या पहना हुआ था, पर मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि हाँ ग्रहम का खेत ऐसा होगा और उसने ये सब पहन रखा होगा, सो इट मेक्स माई जॉब अ लिटिल ईजियर। तो भाई ऐसे सुनाता हूँ मैं कहानी, देख के सुनाऊंगा ना, मैं आपको बताऊं अगर मैंने कहीं पढ़ के देख के सुनाना शुरू कर दी तो आप फौरन पकड़ लेंगे, देख के सुना रहा कहीं से पढ़ के, समझ रहे हैं आप, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, वो पढ़ी हुई कहानी समझ में आ जाती है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू हेयर अ स्टोरी एनी वेयर एल्स, आपको पता रहेगा कि सामने वाला देख के पढ़ रहा है, याद करके सुना रहा है। मुझे सिर्फ दो तीन चीजें याद करनी पड़ती हैं, वो हैं डेट्स, बंदों के नाम एंड जगह, बस दैट्स इट, बाकी तो बाकी ईजी हो जाता है।

अल्हम्दुलिल्लाह का करम। 666-2107 नंबर है। और जितने भी लोग बाहर निकले हैं इस गर्मी में जॉब जूब पे भाई, स्पेशली मार्केटिंग और सेल्स वाले, ये कहूँगा भाई डट के रहो, लगे रहो। और आपके मोटिवेशन के लिए भाई बढ़िया सा गाना भी चल रहा है, गाने का भी यही नाम है, लगा रहा है एक में से भाई सेम इमेजिनेशन होती है जब इतनी गौर से सुनी जाए कहानी। यही मैं चाहता हूँ मेरे भाई, ये खोकर भाई ने मैसेज किया, मैं यही चाहता हूँ कि यू शुड ऑल्सो इमेजिन द सेम वे, तभी मजा है। कभी जानी मिस, अरे तो मत बट साहब कोई नहीं, आप ये सुनो लगा रहे जानी।

0: Let him know हमें एक रूह दो जिस्म में. Let him know के कोई मर के भी मरे ना. Let him know यहाँ मौत की भी किस्में.
1: Yeah, 6:17 on the clock. ऐसा लग रहा है कि आज men's day मना रहा हूँ मैं ये गाना चला के. तो लड़के लगा रहे. बाकी तो भाई अस्सलाम वालेकुम. एक दो और मैसेज में पढ़ दूँ उसके बाद जरा खबरें बताता हूँ. एक भाई ने लिखा है, नजर भाई लिखते हैं, नाउ डेज पीपल कमिट अ क्राइम फॉर मनी एंड फेम, बट इन दिस केस ग्राम्स हैव एवरीथिंग. दिस स्टोरी विल स्टे इन माय माइंड. आई फील लाइक आई कुड स्लैप हिम हार्शली. कह रहे मुफ मैफी ग्राहिम. आगे लिखते हैं, एनी वे योर स्टोरी टेलिंग एबिलिटी इज नेक्स्ट लेवल एज ऑलवेज. आई वॉज विजुअलाइजिंग इट फील्स लाइक आई वॉज देयर. ग्रेट जॉब मैन, कीप इट अप. थैंक यू सो मच मैन, जजाकल्ला. बहुत बहुत शुक्रिया. ना भी मेरा भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई लिखते हैं, वेलकम बैक शाम को. बाय बस तू लगा रहे भाई, आप मेरे साथ भाई लगा रहे. बहुत बहुत प्यारे प्यारे बंदे जहाँ मिले उनमें से एक नावी भाई है. नावी भाई ने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच भाई. और कहानी मिल जाएगी, निश्चिंत रहें. जिन लोगों को कहानी की तलाश है आपको कहानी मिलेगी. ऐसी बात थोड़ी बीच में छोड़ दूंगा आपको. तो फिर कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो बताना. उनमें से एक बात यह है, कतर न्यूज़ एजेंसी यानी QNA, उन्होंने आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रेनिंग सेंटर जो कि लॉन्च हुआ था. उन्होंने इस लॉन्च पे, स्पेशल लॉन्च में, एक स्पेशलाइज 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम

एंड इसके अलावा एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है. ये डॉक्टर नजत अल याफी जो कि मैनेजर हैं ओरल हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के एट प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन, उन्होंने कन्फर्म किया है दैट एहलन ओरल हेल्थ 2026 कैंपेन वो लॉन्च हुआ था 31 मई को और ये कंटिन्यूड किया गया है, तो ये 18 जून तक रहने वाला है. इस कैंपेन का मकसद है कि ओरल हेल्थ का ध्यान दिया जाए ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी. कतर में और सपोर्ट किया जाए उनकी फैमिलीज को एंड काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएँ. तो जो एक मेजर चीज़ से आपको याद होगा, एक डॉक्टर साहिब थे जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, शी वॉज अ डेंटिस्ट एंड उन्होंने बताया कि जो लोग सुबह सुबह ब्रश करके निकलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन मेजरली जो फ़ायदा है ब्रश करने का वो रात में खाने के बाद, समझ रहे हैं, वो रात में ज़्यादा फ़ायदा है. एंड इसके अलावा एक और ख़बर है मेडिकल स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई. तो मेडिकल स्टूडेंट्स एट विलकोनल मेडिसिन कतर फिजिशिप शुरू हुई है स्किल एंड इसके बारे में बात की, इंटरेक्शन कराया गया है बड़े बड़े डॉक्टर्स से एंड कॉर्डन की जो स्टार्स प्रोग्राम है उसके जरिए ये इवेंट लॉन्च किया गया हर साल की तरह और इस साल भी दे आर गोइंग स्ट्रांगली अहेड. बाकी टेम्परेचर का हाल मैं बता दूँ आपको, कहाँ गया जी टेम्परेचर, हाँ तो इस बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा गया बोले ओ ड्रास्टिक चेंज ऐसा कुछ नहीं है. 37 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ, 31 वाज द मिनिमम एंड मैक्सिमम 43. आज हालांकि जिस टाइम पे 47 टच कर रहा था अभी थोड़ा सा ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओ गर्मी तो चली गई अचानक से इस बार तो जल्दी से नहीं, नथिंग लाइक दैट, अभी भी है और कुछ टाइम और रहने वाली. सो 666-22-107 नंबर. मीनवाइल आपके मैसेज पढ़ दूँ. एक भाई लिखते हैं, हाउ कुड आई मिस योर स्टोरी, यू आर द वन वूम आई लिसन टू एवरी डे, आई मीन संडे टू थर्सडे यू बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई ट्रूली अप्रिशिएट एफर्ट्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, दिस रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी, ये मैसेज मेरे साथ घर पर जाएगा, थैंक यू सो मच. एंड जैस भाई कह रहे हैं, जी भाई जिस भाई ने पूछा कि आंखें बंद करके सुनाते हो, उनको ये बोलना था कि नहीं आंखों को वॉक पर भेजते हैं पार्क में. पर पता है जेन्युइन सवाल था ये, मैंने भी बाद में इस सवाल को जब मैंने पढ़ा उसके बाद पूछा ना, आई वाज स्केयर्ड, मगर हाँ बात तो सही है क्योंकि लगता होगा ना कि मैं कैसे कहानी सुना रहा हूँ, लोग ये भी इमेजिन करते हैं भाई कि कैसे सुना रहा होगा, आँखें बंद होंगी कि क्या होंगी, कैसे सुना रहा होगा ये. तो आई थिंक उस क्यूरियोसिटी में उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो लेजिट सवाल है, कोई गाल नहीं वीर जी. बाकी 666-22-107 नंबर है, आप चाहें तो मुझे मैसेज अभी भी कर सकते हैं. मुलाकात कुछ देर में होगी आपसे क्योंकि अभी अजान के लिए हम लोग जाएंगे. एक और मैसेज आ रहा है मेरे पास, सेंड मी द स्टोरी प्लीज़. मैं भेजूंगा भाई जी, मैं भेजूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, इतनी जल्दी जो है हिम्मत नहीं तोड़ती है, आप तक पहुंच जाएगा मामला. फिलहाल जो है किधर गए, हाँ जी शुभ आ रहे हैं, शुभ आपके लिए ये ले, शुभ

0: FM 107।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले।

हाँ जी, गाने के इस पार मिलेंगे, मतलब उस पार मिलेंगे, इस पार नहीं। एम सी स्क्वायर लाडो, मैं कहा जी क्या हाल है, मैसेज मुसेज करते रहा करो, रास्ते में जाते जाते 666-221-07।

अच्छा मैं दोहा वाला कभी एफएम 107 पे आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वो तो आप डिसाइड करेंगे, मगर देयर आर डेज जो डिफाइंड की गए हैं आज मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। जी मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आज की तारीख 7 जून 2026 और 7 जून को कुछ दिन है जैसे कि आज है वर्ल्ड केयरिंग डे, ख्याल रखी हर किसी का ख्याल रखी। इसके बाद है आज VCR डे, जेंजीज को कंफ्यूज कीजिए क्योंकि VCR अपेरेंटली बहुतों को नहीं पता है, VCR के बारे में थोड़ा बताएं। और जिसके पास पुराना VCR हो मुझे संपर्क करें। एक मैसेज है कैंसर सर्वाइवर्स डे की, आज बिल्कुल ये दिन है, अच्छा है दिलाया आपने, आज कैंसर सर्वाइवर्स डे भी है, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एंड इसके बाद है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फिर उसके बाद है रोज फेस्टिवल, अब ये पता नहीं कैसे मनाते, आई डोंट नो। अच्छा कुछ मैसेज है, वाओ दैट वाज सुपर्ब नरेशन कबीर, द वे यू डिलीवर द डायलॉग ऑफ द कैरेक्टर, हेड्स ऑफ टू यू, योर वॉइस मॉड्यूलेशंस लाइक शिफ्टिंग द पिच पेस एंड टोन केप्ट द स्टोरी सो एंगेजिंग, रेयर एंड स्पेशल स्किल इंडीड, सिंपली लव्ड इट किटी, थैंक यू सो मच, दैट रियली रियली रियली रियली मींस अ लॉट टू मी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर स्टोरीज जो ऐसा कुछ कर पाए, एक मैजिक क्रिएट कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, हाय लिखा है रुबेल हुसैन साहब, रुबेल भाई क्या हाल है भाई के। अच्छा जो कुछ रिकमेंडेशन है मैं मूवीज़ को लेकर सीरीज़ को लेकर एक रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा, कल ही मुझे किसी ने बताया था, हमारे यहाँ रूबी हैं, तो रूबी ने बड़ा अच्छी रिकमेंडेशन दी जो मैंने देखी भी, उसका नाम है इफ विशेज कुड किल, OTT प्लेटफॉर्म पर है, मैं नाम नहीं ले सकता, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, इफ विशेज कुड किल, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसमें यह कि मोबाइल में एक ऐप होती है, उस पर लोग विशेज मांगते हैं और वो जो विशेज होती हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके साथ साथ एक टाइमर ऑन हो जाता है और उस टाइमर के एंड होते होते कुछ होता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और ये कोरियन मूवी है मगर उसके जो ऑडियो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, वो अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, जिस मर्जी में आप देखना चाहें आराम से देखिएगा, वंडरफुल सीरीज, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और कुछ एक एक एक सीरीज की तरह मुझे भी मैसेज किया है ऑब्सेशन भाई, आपके कहने पे देख के आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई एम रियली रियली ग्लैड कि आपको मेरा दिया हुआ सजेशन आपके काम आया, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। ऑब्सेशन जैसी मूवीज बहुत कम आती हैं और जब आती हैं तो भाई कुछ करके दिखा जाती हैं, सो उनमें से एक मूवी है। एक भाई ने बोला है कि एक माइंड बेंडिंग मूवी बताइए, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी, पर मैं आपको बता देता हूं, एक मूवी आई थी बहुत सालों पहले, मिल जाए तो देख लेना, आई थिंक वो मिल भी जाएगी आपको, मूवी का नाम है प्रीडेस्टिनेशन। अगर आपको लिटरली ऐसा देखने के बाद आपका रिएक्शन पता कैसा होगा, हैं ये क्या हुआ, ये आपका रिएक्शन अगर आप चाहते हैं कि निकले, तो बहुत सारी मूवीज हैं लिस्ट में मगर क्योंकि आपने शायद बहुत सारी नहीं देखी है तो मैं एक आपको बहुत ही आइकॉनिक मूवी बता रहा हूं, इसका नाम है प्री डेस्टिनेशन। आप ये देखिए, गारंटी दे रहा हूं जब आप इसको देख के उठेंगे तो हफ्ते भर तो नहीं भुला पाएंगे इस मूवी को, आई एम प्रिटी श्योर कि आपके दिमाग में ये मूवी रह जाएगी बिकॉज ये है ऐसी। सिमिलरली एक और मूवी है जिसका नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। देखिए आप, ये मूवी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी मगर जब इसका एंड आएगा भाई साहब, यू विल बी लाइक अरे इसका सेकंड पार्ट किधर है, बनाओ जल्दी से सेकंड पार्ट बनाओ उसका, एंड बना भी है बट सैडली वो चीज कर नहीं पाया जो पहली मूवी ने कर दी। सो बटरफ्लाई इफेक्ट, प्रीडेस्टिनेशन, ये तो आपको देखनी ही देखनी चाहिए। एंड एक मूवी जो बहुत ईजिली मिल जाएगी, अवेलेबल है, ये अगर आपने नहीं देखी है तो आप मूवी एक होता है ना पूरे एक क्या कहते हैं उसको, कैसे समझाऊं मैं आपको, लेटर समझ लीजिए, सीडी के सबसे ऊपर कौन सी मूवी होगी जो बिल्कुल आपको दीवाना सा कर दे, जो आप देख के बोले भाई ये क्या देख लिया मैंने, वो मूवी है ओल्ड बॉय। बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों ने, सुनने वालों ने भी देखी होगी, पर जिसने अभी तक ये मूवी नहीं देखी बिकॉज इट इज अवेलेबल ईजिली, ओल्ड बॉय जरूर देखना। शुरुआत में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, मैं क्या देख रहा हूँ, हो क्या रहा है, फिर धीरे धीरे मूवी आपको अपनी तरफ खींचेगी, फिर आपको मूवी दिखाएगी कि बेटा ये हो रहा है, फिर आप मूवी को समझने की कोशिश में किसी और चीज़ को सोचेंगे और एंड होते होते जो आपने सोचा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा और वो जो अलग होगा वो आपके साथ रह जाएगा। ये तीन रिकमेंडेशन आज मेरी हैं क्योंकि आज मैं थोड़ी सी पुरानी मूवीज ही बता रहा हूँ जो आपको पसंद आए, एंड माइंड यू दीज मूवीज आर नॉट हॉरर, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ हॉरर ही बताते तो नहीं, ये हॉरर मूवीज नहीं है, तीनों की तीनों साइकोलॉजिकल मूवीज हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैं एंड आर अमेजिंग,
अमेजिंग। एक और मूवी है बहुत ही अंडररेटेड रही है, बहुत सालों बाद उसको काफी इज्जत मिली, तो इसको भी रिकमेंड करना चाहूंगा। मूवी का नाम है जेकब्स लेडर। जेकब्स लेडर ये मूवी भी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ये भी इसी कैटेगरी में आती है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की कैटेगरी में। एंड भैया जी क्या मूवी है ये, क्या मूवी है ये भी। इन चारों मूवीज के साथ ये कि एंड जब इनका होगा, दीज विल स्टे विद यू। ऐसी मूवीज का कंपटीशन आप ढूंढते रह जाएंगे कि भाई ऐसी कोई पिक्चर बताओ। तो प्रीडेस्टिनेशन, द बटरफ्लाई इफेक्ट, जो भी मैंने एक बताई सीरीज जो हमारी रूबी हैं उन्होंने बताई थी, इफ विशेस कुड किल, एंड चौथी कौन सी बताई मैंने, हाँ जेकब्स लेडर। जेकब्स लेडर ये रिकमेंडेशन है मेरी। ऐसी कोई पुराने हिडन जेम्स अगर आपके पास है तो मुझे बताइएगा 666-22107 पर, बिकॉज ये कुछ मूवीज़ हैं जो बहुत ज़बरदस्त रही हैं। हिंदी में आई थिंक एक बॉलीवुड ने मूवी बनाई थी बहुत टाइम पहले, उसमें वो है माधवन है, अपार्टमेंट 18 बी नाम है उसका। बहुत बहुत अंडररेटेड मूवी है वो। बॉलीवुड ने अटेम्प्ट कैसे कर ली मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, बट अमेजिंगली डन। और वो भी एक ओरिजिनल आइडिया जो बॉलीवुड आज की तारीख में भूल गया है, एक ओरिजिनल आइडिया था वो, अपार्टमेंट 18 बी। यूसुफ भाई थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, नंबर भूल गया था मैं, 13 बी। इफ यू हैवंट सीन इट आप देखिए, वो ओरिजिनल आइडिया है बॉलीवुड का, पर हमारी ऑडियंस शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो, पीपल मस्ट हैव रिजेक्टेड इट एट दैट पॉइंट, क्योंकि लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हो, मुझे सम दिखाई नहीं देते। बट वो एक रिकमेंडेशन है जो मैं देना चाहूँगा, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, इट शुड बी ऑन योर लिस्ट। पर जो मैंने आपको बताई ना प्रीडेस्टिनेशन, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। आपको आप एंड में उठेंगे, आप बोलेंगे अबे बाबा ये क्या था, That you will like। फरहत भाई कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है भाई, If Wishes Could Kill है ना, If Wishes Could Kill बहुत अच्छी, मैंने देखने की कोशिश करी एंड मैं कोशिश क्या मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैं शायद थर्ड एपिसोड तक पहुँच चुका हूँ। यूसुफ भाई कह रहे हैं अच्छा है, टी वी में जो दिखाई देता है वो असल जिंदगी में होता है। यस बहुत अच्छी मूवी है, आई डेंट हेयर द स्टोरी, अमान भाई मैं आपको जरूर भेजूंगा, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। एक और रिकमेंडेशन है मेरी, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे, मैं अभी सोच के आया था एक रिकमेंडेशन आपको बताने के लिए, अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट, किधर गई यार, मुझे भी याद आएगा मैं आपको बताता हूँ। बट मीनवाइल आपके पास कुछ हो तो रिकमेंडेशन तो जरूर जरूर दीजिएगा, बिकॉज आई वुड लव टू सी। हाँ, मर्डर माइंडफुली, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है ये सीरीज, आपको कॉमेडी भी चाहिए और आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर भी चाहिए, इन दोनों को साथ में मिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। अमूमन ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं नजर आती हैं। हमने हॉरर कॉमेडीज देखी हैं, हमारे यहाँ भी बनती हैं स्त्री 1-2 है ना, बट कॉमेडी के साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जोड़ देना गजब है भाई। कहने को एक जर्मन सीरीज है ये, बट ये अंग्रेजी में अवेलेबल है, आई थिंक हिंदी का ऑडियो भी अवेलेबल है, सो आप देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज सीरीज जो आपको बहुत पसंद आएगी, आपको हंसी भी आएगी और आपको वो जो चाहिए होता है ना, ट्विस्ट चाहिए, मुझे ट्विस्ट चाहिए, वो ट्विस्ट भी इस मूवी इस सीरीज में मिलेगा। मर्डर माइंडफुली, डू वॉच इट, हाईली रिकमेंडेड। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी क्या है मुझे बता दीजिएगा, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। 666-22107 नंबर है, 666-22107। दीप कालसी के संगीत पे बेला, मैं जी दोहा वाला कबीर, क्या हाल है भाई की और बहनों।

इजाजत लेने का वक्त आ गया, लेकिन इजाजत लेने से पहले देखो अभी मेरे आई नो आपको मुझ पे कोई 2 रुपए का भरोसा नहीं है, पर फिर भी लेट मी ट्राई, लेट मी प्लीज आप सोशल मीडिया के जरिए जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी कहानियां वहां पर मैं जो पोस्ट करूंगा वो कहानियां आपने FM 107 पर भी नहीं सुनी होंगी। सो दिस इज एन ओपन इनविटेशन, प्लीज आइए FM 107 कतर और साथ में मुझसे जुड़ जाइएगा, दोहा वाला कबीर .FM 107 इस नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं मिल जाऊंगा आपको, जुड़िए क्योंकि वहां पर कुछ आपके लिए आने वाला। दिस टाइम अराउंड नो आलस, सिर्फ काम, ओके। सो वहां पर आपको बढ़िया गाने मिलेंगे और मैं कोशिश ये करूंगा कि हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 गाने वहाँ पे ऐसी अपलोड की जाएं जो आपने इससे पहले ना सुनी हो, एक्सक्लूसिविटी हो और वो कहानियाँ अलग हो बिल्कुल। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। भाई आपका लग गया काम पे, टेंशन मत लो बिल्कुल। बाकी सब आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शामी 5 बजे। सोशल मीडिया हैंडल्स का मैंने पता बता दिया आपको, प्लीज जुड़ जाइएगा। एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलामा।

We are so back. Assalamualaikum. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. ये वो शो है जिसका इंतजार मुझे बहुत बहुत बेसब्री से था. बड़ा ही इंतजार किया मैंने इसका. Because I absolutely love this show. मुझे भी सीखने को मिल जाता है और आपको भी. So welcome to Tech Innovation after a very very long time. तो शुरू करेंगे. अपना format वही सिंपल है. पहले आएंगे एप्स, फिर आएंगे गैजेट्स और फिर बहुत ही जरूरी खबरें. उन खबरों में ऑफ कोर्स मेरी दुनिया, गेमिंग की दुनिया भी है और साथ में इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको अपडेटेड रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया भाग रही है भाई. अभी कुछ है, अगले सेकंड कुछ है और अगले मिनट कुछ और है. तो शुरू करेंगे सबसे पहले एप्स दिस वीक से. ट्रेंडिंग एप्स. तो आज की ऐप नंबर वन, बिकॉज ये कोई रैंकिंग नहीं है. ऐप नंबर वन एज इन की पहली ऐप ऑन द लिस्ट इज स्विफ्ट स्लेट. मैं स्पेल आउट कर देता हूं. SWIFT स्पेस देखिए SLATE स्विफ्ट स्लेट. अब वक्त आ गया कि आपका जो कीबोर्ड है उसे थोड़ा AI का अमली जामा पहना दिया जाए. देखिए AI की कोई कमी नहीं है. आप अगर टाइप करने कुछ बैठते हैं तो आपको मेटा दे देता है, ये टाइप करना है वो टाइप करना है तो मुझे यूज करो, जेमिनी मिल जाता है आपको. बहुत तरह के AI ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड हैं आपके आपके कीबोर्ड से, आपकी टाइपिंग से, मगर ये थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हटके एंड इट्स क्वाइट यूजफुल इन अ वे. तो जब स्विफ्ट स्लेट आप डाउनलोड करेंगे, एक तो ये टंग ट्विस्टर है मेरे लिए. तो ये AI को यूज करता है बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन योर कीबोर्ड, उसके साथ अटैच्ड है. तो आपके लिए एक दोस्त की तरह है कि आप कुछ भी टाइप करें, आप फौरन with a click with following few options आप उसे बता सकते हैं. For example, आपने कुछ टाइप करना है, you want to make it friendly, you want to make it formal, या आपको लगता है कि casually reply कर दो यार, तो वो reply भी कर देगा, आपको बता भी देगा कैसे reply करना है. And it uses AI in a very human way, you know. मैं कैसे समझाऊँ? Let me give you an example. जब आप यूज करते हैं AI तो होता ये कि अक्सर जवाब जो होते हैं उससे आप मुतमईन नहीं हो पाते, बिकॉज वो जवाब थोड़े से मैकेनिकल साउंड करते हैं. इसके जो जवाब हैं जब वो कैजुअल होते हैं तो बहुत बढ़िया साउंड करते हैं. यू फील लाइक हाँ यार ऐसा मैं लिखता हूँ. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप यूज करते रहेंगे तो ये आपके लिखने के तौर तरीकों को, आपकी स्पेलिंग्स को अच्छे से समझ पाता है. Which is, yeah, it sounds dangerous in head, लेकिन बहुत बहुत काम की चीज है. तो Android users, this is for you. iOS वालों थोड़ा सा क्या करूं, ज्यादा apps इनके लिए निकलती हैं. तो यही बता दी मैंने. Now moving on to another amazing app. App number two, ये बहुत लोगों के काम आ सकती है. App का नाम है Deep Denoiser. Denoiser, इस पे फोकस कीजिएगा. Deep DEEP स्पेस देखिए Denoiser DENOISER. अब बहुत सारी AIs आ चुके हैं जो आपके ऑडियो को साफ कर देते हैं, है ना. देसी भाषा में कहते हैं ना, ऑडियो जी साफ कर दिया, जितनी बैकग्राउंड नॉइज है वो गई और आपको एक ऑडियो, क्लियर ऑडियो मिल जाता है, राइट. समटाइम्स उसमें थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज कुछ ज्यादा ही वो नॉइज कैंसिलेशन हो जाए तो आपकी आवाज थोड़ी सी हॉलो साउंड करने लगती है, बट इट वर्क्स. यू कैन फिगर योर वे आउट. अब आप फोन्स का भी देख लीजिए तो फोन्स में भी ये अडेप्टेबिलिटी आ चुकी है, जहां पर आप कैमरा ऑन करते हैं, आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, यू यूज योर नॉइज कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग जस्ट गोज अवे और आपकी आवाज रह जाती है, पर उसमें भी थोड़ा सा हॉलोनेस रह जाता है. ये जो है ना डीप Denoiser, ये सारे बैकग्राउंड के आवाज को हटा देता है. वो ऑडियो चाहे वो वीडियो का हिस्सा हो, चाहे वो एक सिंगुलर ऑडियो क्यों ना हो. एंड द बेस्ट पार्ट, ये वाली ऐप इट्स कंप्लीटली ओपन सोर्स, फ्री टू यूज. मैं बता रहा हूँ एंड्रॉइड यूजर्स, अगर आप, आई नो यू हैव सैमसंग और प्रॉब्ली सम अदर फोन जो आप एंड्रॉइड रन कर रहे हैं तो आपको लगता होगा अरे मुझे इसकी क्या जरूरत है, बट ट्राई दिस वन. आवाज को क्लियर करना, साफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी आवाज रट जाए, क्योंकि वो नेचुरल जो टेक्सचर होता है आवाज का वो कहीं ना कहीं कट जाता है, लोज चले जाते हैं आवाज के. मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट आई एम, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड इफ आई एम रॉन्ग. क्योंकि जब आप आवाज को नॉइज कैंसिलेशन की तरफ ले जाते हैं, व्हेन यू पुट अ ट्रैक और कहते हैं आप क्लीन कर दो ये ऑडियो मेरे लिए, तो समटाइम्स आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. बट दिस वन, इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस, ना सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो के लिए भी एक नंबर ऐप है. ऊपर से फ्री है.

0: क्या जा रहा है, यूज कर सकते हैं आप आराम से. सो ट्राई दिस वन, डीप डी नॉइजर, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर ऐप. तीसरे नंबर पे जो ऐप है जिसके बारे में बात करूंगा वो है फोटो, PHOTW. उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी ये नाम सोचने में. सो PHOTW. अब ये एक बहुत सिंपल येट इफेक्टिव ऐप है. मैं आपको एक सिचुएशन की तरफ ले जाता हूं बिकॉज यू नो द सिचुएशन और मुझे कहानी बताने में बड़ा मजा आता है. सो आपके फोन में आपने हजारों हजारों स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे जो आपने शायद देखे भी नहीं होंगे या देख के इस्तेमाल कर लिया होगा, बट यू फॉरगॉट टू डिलीट देम. बहुत सारे फोटोज ऐसे होंगे जिनके आपने डुप्लीकेट बना के रखे हुए, या आप किसी की फोटो खींच रहे थे और आपको सुनने को मिला इतने में तो फोटो खींचना भी नहीं आता, यू रिमेम्बर, आपको याद हो. तो होता क्या है, यू क्लिक मल्टीपल फोटोग्राफ्स बट आप डिलीट नहीं करते हैं, आपका फोन भर जाता है एंड देन यू आर लाइक आई एम टू लेजी टू डिलीट. आप डिलीट नहीं करते हैं और फिर बिल्कुल आखिरी में जब तक फोन की बिल्कुल हलक तक नहीं आ जाती है स्टोरेज, तब तक आप कोई मेजर नहीं लेते. बट इफ आई मेक दैट इजियर तो आपको सच में मजा आएगा ये ऐप यूज करते हुए. ऐप का नाम है PHOTW. ये ऐप करती क्या है, डिलीट करती है आपके फोन को, क्लीन करती है और एक UI बना देती है आपकी नजरों के सामने जहां पर आपको लेफ्ट और राइट करना है. सो लेफ्ट का मतलब हुआ कि आपको जो है डिलीट करनी है, फोटो नहीं चाहिए. राइट का मतलब हुआ कि आपको सेव करनी है. इट इज दैट सिंपल. तो एक एक फोटो पे जाके आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी ही करनी पड़ेगी दिमाग की. डिलीट करना मैन्युअली इज अ लिटिल डिफिकल्ट. आई नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल फोटोज एट अ टाइम, बट देन ये वाला मेथड मुझे काफी काफी ईजी लगा. एंड एंड्रॉयड यूजर्स आई थिंक यू शुड यूज इट, PHOTW. एंड ये डिलीट करेगा आपके फोन में जो आपने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हो या गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और हाँ वो सबूत जो आपने इकट्ठा किया वो भी डिलीट कर देना, किसी काम का नहीं है. तो ये आपके फोन को साफ रखेगा, स्टोरेज आप मेंटेन कर पाएंगे इजीली, एंड लेफ्ट राइट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. इट बिकम्स ईजियर क्योंकि आपको उसमें वापस जा जा के सेलेक्ट ऑल करके डीसेलेक्ट नहीं करना पड़ता है. तो इट मेक्स योर वर्क क्वाइट ईजियर और टीडियस काम नहीं लगता स्टोरेज को क्लीन करना. ओके, तो ये थे कुछ ऐप्स ऑन द लिस्ट. अब मूव करेंगे कुछ गैजेट्स की तरफ बिकॉज आई हैव अमेजिंग अमेजिंग गैजेट्स इन गैजेट्स दिस वीक.
1: कूल गैजेट्स.
0: तो सबसे पहला जो गैजेट है, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, काम का भी है, ज्यादा ओवर द टॉप टेक्नोलॉजी के बिना ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज किया है. इसका नाम है लाइसन सेल फोन स्टैंड, LISEN स्पेस देके सेल फोन स्पेस देके स्टैंड. सिंपल है, बेटर है, रोटेट होता है और रिवॉल्व होता है और आपके फोन को बिल्कुल चिपका के रखता है अपने सीने से, तो आपका फोन भी नहीं गिरता. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एडजस्टेबल एंगल्स इसमें मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम बिल्ट है तो टूटने की भी दिक्कत नहीं है, एंटी स्लिप है तो फोन सवाल ही पता नहीं होता कि स्लिप होके कहीं गिर जाए, बहुत टाइटली होल्ड करता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं. इट इज पोर्टेबल इनफ कि आप इसको पूरा फोल्ड करके जेब में रख के ले जा सकते हैं. भाई साहब ये इतनी इफेक्टिव चीज है. मैं कहता हूँ ना गैजेट्स का मतलब ये नहीं कि भारी भरकम ही हो, उसमें बहुत सारे बटन हो तभी वो एक बहुत बड़ा गैजेट है, मगर दिस वन वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टैंड जो सब कुछ कर सकता है और क्या चाहिए आपको. क्योंकि ये काफी अंडररेटेड गैजेट्स में आता है, बट आई वांटेड टू टेल यू ये कंपनी स्पेशली इसमें बहुत काम कर रही है और आने वाले वक्त में दे आर अबाउट टू मेक अ चार्जर एज वेल. तो आपका फोन लगा रहे हो चार्ज हो जाए, दैट इज अनदर टॉपिक फॉर द डे. मगर ये लाइसेंस सेल फोन स्टैंड कहीं पर मिले, स्पेशली इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न. इफ यू वांट टू लुक अप आप जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला गैजेट ऑन द लिस्ट, इसके बारे में मैंने बात करी थी, आई रिमेम्बर, बिकॉज ये जो गैजेट है इसका पहला वाला वर्जन मैंने आई थिंक एक साल हो गया उसको उस बात को किए हुए, और अब इसका एक दूसरा वर्जन आया है. मुझे लगा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अक्सर जब पार्ट टू आता है तो हमें आदत हो चुकी है, अरे पहला ही अच्छा था, मगर ये बहुत अच्छा है. इसका नाम है डिवूम डिटो रेट्रो पिक्सल आर्ट गेम. रिपीट कर देता हूं, आई नो बहुत ज्यादा हो गया ये, पर DIVOOM डिवूम डिटो DITOO रेट्रो पिक्सल आर्ट गेम. ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, 16x16 का LED ऐप इसके साथ आपको मिल जाएगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो ऐप है वो बहुत बहुत फन है. ये बेस्ट गिफ्ट है फॉर you know, giving out to somebody on a birthday. Ek fun gadget jo aapke desk mein, aapke ghar mein, aapki car mein, aap rakh sakte hain. And definitely worth the price. I think ye ek aisa gadget hai jo kafi fun hai aur log aapse baar baar puchhenge ye kahan se liya hai. To aisa gadget agar aapko chahiye, this one is for you. Divoom Ditto Retro Pixel, DIVOOM, DITOO Ditto Retro Pixel. Aap dekhiye, itna bhi type karenge to wo aa jayega. Okay, now another one. Agra jo gadget again on the list, very simple and amazingly useful. Iska naam hai Andre Car Phone Holder. Gaadi mein aksar kya hota hai, होल्डर की जरूरत पड़ जाती है कि फोन को रखना आसान काम नहीं है, आसान काम बिल्कुल नहीं है. ऑफ कोर्स अगर आपके पास वो वायरलेस चार्जिंग वाला जो पोर्ट है गाड़ियों में आप आने लगा है तो उस पर रख देते तो ठीक है, बट देन अगेन जब फोन को चलाते चलाते उस पर लगाना पड़ जाए तो एक टास्क हो जाता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो ये जो कार होल्डर है काफी स्ट्रांग है, मेगा सेफ चार्जर के साथ है और ये कहीं पर भी गाड़ी पर लगा सकते हैं. लिटरली Anywhere you can imagine, आप गाड़ी में से रख सकते हैं. So, Andre Car Phone Holder, definitely, highly recommended. और ये कतर में भी available है. वैसे तो आप Amazon पे जाके देख सकते हैं. If you want to buy it, मेरा suggestion ये कि especially अगर आपको Indian दोस्तों से बोलिएगा, India में जाके ये और भी सस्ता मिल सकता है. And it is definitely worth the price. काफी budget friendly products हैं ये, and आपके बड़े काम आने वाले. Okay, now खबर की तरफ बढ़ेंगे. In tech news this week. Latest tech news. Tech news. सबसे पहली खबर है गेमिंग की दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया से मेरा हर रोज सामना होता है तो क्यों ना इसके बारे में बात करूं. जेम्स बॉन्ड के जो फैंस हैं गेम की दुनिया में हलचल हो चुकी है. बिकॉज 007 फर्स्ट लाइट, ये बॉन्ड गेम रिलीज हुआ, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी, कसम से बता रहा हूं मैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर व्हाट अ बैंगर ऑफ अ गेम दिस इज. इट्स अमेजिंग. ये गेम है कि किस तरीके से जेम्स बॉन्ड बना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम जब वो टीनेजर था, कैसे कैसे वो आगे बढ़ के जेम्स बॉन्ड बना, उस पर पूरी जर्नी पे गेम बनाया है. अमेजिंग लुकिंग गेम, मैकेनिक्स आर एब्सोल्युटली क्रेजी. मुझे सिर्फ गेम से एक शिकायत है, जो कार वाले सिक्वेंसेस हैं वो और थोड़े बेहतर हो सकते थे, मगर मैकेनिक्स आर फन टू यूज. एंड आई थिंक 18 घंटे के आसपास का गेम है. इफ यू प्ले इट तो आपको वही 15 से 18 के बीच में लगेगा टाइम फिनिश करने में. एंड ईजी टू प्लेटिनम, आप प्लेटिनम ट्रॉफी के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज हार्ड डिफिकल्टी में आपको ज्यादा मजा आएगा. उसमें आपको एनिमीज थोड़े से चार्ज अप लगेंगे. इजी मोड पे मत खेलना अगर खेलने में जाओ तो, वरना एनिमीज आपको लगेंगे ये क्या है और आपका मजा आधा हो सकता है. सो ईदर प्ले ऑन द नॉर्मल मोड और द हार्ड मोड ऑफ द गेम. एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर दिस वीक, बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, एनवीडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा लगातार बातें हो रही थी कि कब जाके पीसी में और ज्यादा चेंजेस आएंगे. आजकल लोग पीसी बिल्ड कराने जब मार्केट में निकलते हैं बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, अलग अलग आपको प्राइस रेंजेस नजर आते हैं, लोग आपको पिच करते रहते हैं, इतना दे दो, ये वाली रैम लगा लो, वो वाला ये लगा लो. पर एनवीडिया के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा है आने वाले वक्त में आपको पीसी बहुत पावरफुल मिलने वाले हैं. लोगों के अलग अलग डिमांड्स हैं, नॉट जस्ट द गेमिंग पार्ट बट ऑफकोर्स जो एडिटिंग करते हैं, आजकल सबको इन्फ्लुएंसर बनना ही है, तो एडिटिंग टूल से लेकर चाहे वो वीडियो ऑडियो हो या gaming ho, Nvidia is collaborating and really really soon aapko chips mein processor mein difference pata lagne wala hai because they will be running on a different power altogether. So I am really really hopeful on this and I'm pretty sure it will be really helpful for everybody else, but main dua karta hu ki price range bas zyada na ho. Baaki social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar, is naam se har jagah maujood hain. Doha wala kabira mujhe bhi dhoond sakte hain. Agar aapke dimag mein koi suggestion ho, koi app ho jo aap use kar rahe hain, koi gadget ho jo aapke paas hai, and you want to suggest, why not, bataiyega zarur, because aap jab batate hain to mere liye bhi aasani rehti hai. And aane wale waqt mein hum AI se jude hue jitne bhi subjects hain, apps hain, un sabko cover karenge, because I know AI ke bina abhi baat hona namumkin hai. So we will try ki hum AI ki apps agle hafte laye. If you are using something jo bahut bahut zyada crazy hai, so do let me know, because AI ki duniya se bahut sari khabrein aa rahi hain, jinme ek last khabar aapko deta chalunga ye hai ki Claude AI jo hai, it is working on a different module similarly to Grok. So all the best. Na jaane kab kya niklega, wo aane wale waqt mein pata lag jayega. But for now, this is Doha Wala Kabir signing off from Tech Innovation. Apna khayal rakhiyega, kyunki aap behad zaruri hain. Ma salama.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इन्फॉर्मेटिव और फन सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शावर टाइम कम करना। देखिए, सुबह का टाइम है, जरा सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, आप शावर में एंटर करते हैं, ठंडे या गर्म पानी का मजा आप ले रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि बस पांच मिनट और क्या मस्त मजा आ रहा है नहाने में। फिर कभी कभी आप ये होता है कि भाई आप गाने गाना शुरू कर देते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन सी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, बाकायदा बाथरूम में खड़े होकर नहाते हुए आप प्लानिंगें शुरू कर देते हैं पता नहीं किस किस चीज की। और शावर टाइम 5 मिनट से कभी 15 तो कभी 20 मिनट तक पहुंच जाता है। और फिर भाई बाहर से कोई आवाज देता है, अगर आपके घर में कोई हो, खासतौर पर अम्मा हो, तो वो तो ये बोलती है बेटा खैर है, पानी खत्म करके बाहर आना है, खुदा का खौफ करो, जल्दी बाहर निकलो। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, स्पेशली बिजी मॉर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा, या अक्सर ऐसा होता है ना, वो जुमे की नमाज पढ़ने जाना होता है, घर में चाहे कितने भी बाथरूम हो कम पड़ जाते हैं और सबको ये होती है कि बस जल्दी निकलो। अब थोड़ा रियलिटी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी बहुत है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन असल में फ्रेश वाटर जो हम डेली यूज करते हैं ना, वो लिमिटेड सप्लाई में होता है। जब हम शावर लेते हैं ना, तो सिर्फ पानी वेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि उस पानी को हीट करने के लिए भी एनर्जी जा रही होती है। यानी एक सिंपल शावर का इम्पैक्ट डबल होता है, यानी वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी या गैस भी। अच्छा, अगर इको स्विच के बारे में बात की जाए सिचुएशन में, तो सिंपल सा आइडिया है भाई। देखिए, शावर टाइम को कॉन्शियस और शॉर्ट रखना, मतलब क्लीन रहना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही घूमते फिरे बगैर नहाए धोए, ना ना ना ना ना, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट और ओवर यूज तो अवॉइड करें ना। आइडियल शावर टाइम आपको पता है क्या होता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 से 7 मिनट काफी होते हैं। 5 से 7 मिनट के आसपास आइडियल होता है, जो हाइजीन के लिए सफिशिएंट होता है और रिसोर्स सेविंग के लिए भी बेस्ट होता है। अच्छा, अब बात अगर करें तो अब बात करते हैं कि शावर टाइम कम करने से क्या फायदा होता है। देखिए, शावर टाइम कम करने से होता है, सबसे पहला तो फायदा होता है वाटर कंजर्वेशन। हर मिनट जो आप शावर में गुजार रहे होते हैं ना मजे से गाने गाते हुए, उससे तकरीबन लीटर्स ऑफ वाटर सेव हो जाता है। दूसरा फायदा है एनर्जी सेव होती है। गर्म पानी यूज करने के लिए हीटर या बॉयलर जो यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस कंज्यूम होती है, वो कम होती है। तीसरा फायदा है बिल रिडक्शन। भाई बिल रिडक्शन, पैसा आपकी जेब से कम जाएगा, वाटर एनर्जी दोनों कम यूज होते हैं ना, तो इससे मंथली बिल्स भी आपके नोटिसेबली डिफरेंस आता है, कम हो जाते हैं। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम एनर्जी यूज का मतलब है कम इमिशंस और कम एनवायरमेंटल लोड। अच्छा, जरा सोचिए, आप सुबह लेट हो रहे हैं, ठीक है, शावर में एंटर करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई बस जल्दी से शावर ले लेता हूं, लेकिन फिर आपका फोन बज पड़ता है या आपके दिमाग में कुछ अलग काम चल रहे होते हैं, आपकी सोचें होती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आपका टाइम डबल हो जाता है। और फिर रिजल्ट ये होता है कि आप लेट भी हो जाते हैं और पानी भी ज्यादा यूज हो जाता है। अगर वही शावर प्लान हो कि भाई नहीं, मैं 5 मिनट का टाइमर मोबाइल में है ना, मैं बस टाइमर मोबाइल में टाइमर सेट करो भाई, 5 से 7 मिनट का टाइमर सेट करो, और आप एफिशिएंटली रेडी भी हो जाते हैं और वेस्ट भी नहीं होता आपका पानी, एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं होता। देखिए, दोहा जैसे शहर में जहाँ क्लाइमेट होता ही वार्म है और कभी कभी वेरी हॉट भी हो जाता है, शावर रूटीन डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ वाटर यूजेज और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। अगर हर हाउस होल्ड थोड़ा सा भी शावर टाइम रिड्यूस करे ना, तो सिटी लेवल पर सिग्निफिकेंटली वाटर सेविंग हो सकती है। अच्छा, अगर टिप्स के बारे में बात करें तो भाई टाइमर यूज करें, शावर स्टार्ट करते वक्त 5 से 7 मिनट का टाइमर लगा लें, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी बात, सब पहले रेडी रखें, सब कुछ, शैम्पू, सोप, टॉवल वगैरह अरेंजमेंट जो होता है। तीसरी बात, वाटर ऑफ टेक्निक यूज करें, मतलब ये कि सोप लगाते वक्त पानी बंद कर दें ना, शैम्पू यूज करें तो पानी बंद करें, ये क्या कि पानी चल रहा है, शैम्पू लगा रहे हैं सर के ऊपर और पानी चलता चला जा रहा है। चौथी ट्रिक है माइंडफुल शावर हैबिट। शावर को रिलैक्सेशन जोन बनाए, लेकिन एक्सटेंडेड थिंकिंग जोन मत बनाए, वो जो आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ना शावर में खड़े होकर, वो ना करें। देखिए, अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ना आपको, एवरेज शावर में जो वाटर यूज होता है ना, वो डिपेंड करता है टाइम और फ्लो पे, लेकिन लॉन्ग शावर्स में अननेसेसरी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ईयरली वेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउसहोल्ड। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती है बातें,
लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई आज का चैलेंज ये साथियों कि आज से अगले 3 दिन के लिए आप अपना शावर टाइम नोटिस करें और कोशिश करें कि उसे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रखें। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट शावर्स लेते हैं ना, तो किसी और को आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो, उसको कह सकते हैं कि भाई ये वाला काम करके देखो, बिल भी कम आएगा। तो देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं, आपकी एफर्ट्स कहां तक पहुंचते हैं। तो साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपना शावर टाइम कंट्रोल करते हैं तो हम सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलते बल्कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ स्टेप लेते हैं। तो भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
3: बस बहुत हो गया रूटीन नीड एन एस्केप एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन यहाँ ट्रैफिक नहीं

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मैशाल बाशिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैशाल बाशिम नाम से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुमताज़ बाशिम का छोटा भाई, और मुमताज़ बाशिम जैसे नो हाई जम्प में वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड टाइटल ओलंपिक टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं, वहीं मैशाल बाशिम भी कतरी फुटबॉल के साथ कई ऐसे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और गोलकीपिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स कतर हैज एवर प्रोड्यूस इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, और बेहतरीन गोलकीपिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो मैशाल ईसा बाशिम है, और वो कतर नेशनल फुटबॉल टीम के एक अहम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इसी महीने, और इसी महीने में कतर का अगर मैं नंबर वन गोलकीपर के तौर पे देखूं तो मैशाल का ही नाम आता है। मैशाल ने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत और लगन से प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र तय किया था। मैशाल ने कतर स्टार्स लीग में असद क्लब की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। गोलकीपिंग के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस, कॉन्फिडेंस और प्रेशर में बेहतरीन सेव्स करने की सलाहियत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, यानी दूसरे गोलकीपर से अलग बनाती है। दूसरे गोलकीपर्स की बात करूँ यहाँ पे, उनसे कई मुख्तलिफ इनके परफॉर्मेंसेस हैं, और लोग, एक्सपर्ट्स, फैंस और उनके चाहने वाले भी कहते हैं कि डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कतरी फुटबॉल। उन्होंने AFC एशियन कप और कई इंटरनेशनल मैचेस में कतर की नुमाइंदगी की और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ये 2024 में जो एशिया कप हुआ था कतर में, उसमें मैशाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है। मैशाल को डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मिसाल माना जाता है। फुटबॉल फील्ड में उनका काम, एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटीज टीम को मजबूत बनाती है। वो नौजवान फुटबॉलर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कतर में फुटबॉल को करियर बनाना चाहते हैं। आज मैशाल बाशिम कतर फुटबॉल का एक रोशन नाम है, और उनकी परफॉर्मेंसेस मुल्क के फुटबॉल फ्यूचर के लिए उम्मीद की नई किरण समझी जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: One step to 2030.
1: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
0: One Step to 2030.
1: आज दोस्तों हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट फ्रेज को लेकर जिसको आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, शायद रेडियोज पे भी सुना है, टेलीविजन पे भी. वो फ्रेज या वो लाइन है कि वाई सस्टेनेबिलिटी इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहने को ये सवाल बड़ा पावरफुल है और हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये एक भरपूर जिम्मेदारी है. देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, उससे कल कोई नुकसान ना हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो. कतर का नेशनल विजन 2030 जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जोर देता है. गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है. जैसे मिसाल के तौर पे पानी और बिजली को बचाना, वेस्ट कम करना, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना, कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है. जी हाँ, सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है. अगर आज रिसोर्सेज जाया किए जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मुश्किलात पैदा होगी. विजन इसीलिए बैलेंस ग्रोथ पर जोर देता है और वन स्टेप टू 2030 हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी एक कलेक्टिव कमिटमेंट है जो कतर के फ्यूचर को महफूज बनाती है. देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030 वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है. जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है. शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है. हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है. सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता, बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप सभी का इस्तकबाल है दोस्तों। ये एक नया प्रोग्राम है और इस नए प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को हम बताएंगे कि दुनिया भर में जितने भी खेल हैं और खेल के इवेंट्स हैं उसमें क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए हैं या हो रहा है या हो चुका है। दोस्तों ये एक स्पेशल प्रोग्राम है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज को एनहांस करना है जिनको स्पोर्ट्स पसंद है उनके लिए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और हर बार की तरह स्पोर्ट्स के बारे में ही हम बात करेंगे। ये तो आज जो रिकॉर्ड ऑफ द वीक है, इस रिकॉर्ड ऑफ द वीक में आज हम बात करेंगे मुथैया मुरलीधरन के बारे में। या दोस्तों मुथैया मुरलीधरन आपको पता होना चाहिए या आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग देसी लोग हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो मुथैया मुरलीधरन इज़ वन ऑफ द लीडिंग बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। या दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला अगर कोई गेंदबाज है तो वह मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका के हैं और ऑफ स्पिन बॉल करते थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब उनका करियर के शुरुआत में कई कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा उन्हें, इवन अम्पायर्स उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये बॉलर जो है उनके बॉलिंग एक्शन जो है ये बेसिकली चक्कर है, यानी बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को फेंकते नहीं है थ्रो करते हैं। तो इस मामले में कई ऐसे टेक्निकल कमिटीज़ के सामने ICC के ऐसे कई कमिटीज़ जो है, जो कि करेक्शन कमिटीज़ मैं कह सकता हूँ, उनके सामने उनको खड़ा कर दिया गया है कि भाई अपना बॉलिंग आर्म जो है वो दिखाओ, आप बॉल को चक कर रहे हो। तो दोस्तों उसके बाद मुथैया मुरलीधरन बिकेम मोर देन स्टार, ही बिकेम अ लेजेंड। और यही बॉलर सुनिए कि पूरे दुनिया में टेस्ट क्रिकेट तो हर कोने कोने में तो खेला नहीं जाता है, लेकिन हाँ जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो मुख्तलिफ नेशंस में मुथैया मुरलीधरन वॉज रियली डेंजरस। स्पिन बॉलर हैं, कोई तेज़ गेंदबाज नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते होंगे ना कि तेज़ गेंदबाज जो होते हैं वो हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं। हाँ एक ज़माना पहले था हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे वो कभी डेनिस रिली था तो कभी कपिल देव बने, कभी रिचर्ड हैडली बने, लेकिन एक स्पिन बॉलर एंड दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग फॉर मुथैया मुरलीधरन और श्रीलंका के लिए। स्पेशली श्रीलंका 1982 में टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस मिलने के बाद एक यंग टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए और अच्छी बात क्या हो सकती। सो यहाँ पे मुथैया मुरलीधरन टुडे हम बात करते हैं, उन्होंने रिटायर ले चुके हैं बहुत पहले ही। तो आज जब हम मुथैया मुरलीधरन के बारे में बात करते हैं तो एशिया के बारे में हम थोड़ा सा, क्रिकेट के लिए जब हम जिस बारे में हम बात करते हैं तो एक फ़ख्र सा महसूस होता है, बी एन एशियन वी रियली फील प्राउड कि मुथैया मुरलीधरन इज़ वन ऑफ द नॉट इज वन ऑफ द बट के हाइस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। दुनिया भर के बैट्समैन उनकी बॉलिंग से खौफ खाते थे क्योंकि उनकी जो दूसरा जो एक तरह का बॉलिंग मैजिक है या कह लीजिए एक तरह का टेक्निकल टर्म है, ऑफ स्पिन और वेरिएशन को समझना बहुत मुश्किल होता था। मुरलीधरन ने अपने करियर में ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी क्रिकेट की दुनिया में मिसाल समझे जाते हैं। उनके सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड टेस्ट विकेट जिसके बारे में बताया कि 800 विकेट लेना है, दैट इज क्वाइट अमेजिंग, 800 विकेट आज तक किसी बॉलर ने नहीं लिए। और उनके पीछे जस्ट पीछे शेन वॉन के बारे में कभी और बात करूंगा मैं, पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री वो है मुथैया मुरलीधरन के नाम, जो आज तक किसी भी बॉलर ने नहीं तोड़ा है। मुरलीधरन की पैदाइश श्रीलंका के शहर कैंडी में हुआ था और छोटी से उम्र से ही उनको क्रिकेट का शौक था और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉलिंग को

इतना मजबूत बनाया कि वो श्रीलंका की नेशनल टीम का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो शुरू में लोगों को उनका बॉलिंग एक्शन बहुत ही अजीब लगा। आप देखेंगे अभी भी है इस मॉडर्न टेस्ट बॉलर, मॉडर्न क्रिकेटर हैं, कोई पुरानी बात नहीं है। 1930-40 के तो है नहीं, आज भी फुटेजेस मौजूद हैं और जिस तरह से वो बॉल को, इस गेंद को वो बॉलिंग आर्म जैसे वो घुमाते थे, वो लगता ही था कि ये चक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका बॉलिंग आर्म भी थोड़ा सा पैदाइशी कुछ इस तरह था, लोगों को लगा कि ये जो है बंदा जो है ये चक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में पता चला सारे टेस्ट क्रिकेटर्स ने ये भी समझा कि नो, ही इज़ जेन्युइनली नेचुरल ऑफ स्पिन बॉलर। अच्छा, उनका ये जो 800 विकेट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे बड़ा, अगर बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट बॉलिंग अचीवमेंट माना जाता है टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। और उन्होंने ये माइलस्टोन 2010 में इंडिया के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच में हासिल किया। पूरी क्रिकेट दुनिया की नज़रें उस मैच पर थी क्योंकि सब देखना चाहते थे क्या मुरली अपने करियर के लास्ट मैच में 800 विकेट्स का जादुई नंबर जो है हासिल कर पाएंगे या नहीं। और फिर जब उन्होंने प्रज्ञान ओझा का विकेट लिया तो स्टेडियम जश्न से गूंज उठा और ये लम्हा क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक बन गया। दोस्तों आगे जाके अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो उनके टेस्ट करियर की खास बात सिर्फ विकेट्स की तादाद नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी भी थी, ठीक है ना। मुरली ने 133 टेस्ट मैचेस में 800 विकेट्स हासिल किए और उनका बॉलिंग एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त था और वो हर कंडीशंस में विकेट्स लेते थे, चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। और आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट पिचर्स जो है थोड़ा बहुत अगर देखा जाए स्पिन बॉलर्स या स्लो बॉलर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं और मुरली इसी फायदे को, इसी कंडीशंस को बाखूबी इसको एक्सप्लॉयट किया, यूज़ किया। और ओवरसीज कंडीशन में अगर जहाँ पे हमने देखा है कि स्पिन बॉलर्स काफ़ी स्ट्रगल करते थे ओवरसीज, यानी इंग्लैंड के पिचेस पे, न्यूजीलैंड के पिचेस पे या ऑस्ट्रेलिया के, इवन वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे ट्रैक आर रियली फास्ट एडेड फॉर द फास्ट बॉलर्स, वहाँ पर मुरलीधरन ये बंदा जो ही वॉज जस्ट टू मच, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उसी फास्ट ट्रैक से टर्न को। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक में बैट्समैन को बहुत ज़्यादा परेशान किया और एक्सपर्ट्स को मुतासर किया कि देखिए मैं वो क्रिकेटर हूँ, मैं वो टेस्ट क्रिकेटर हूँ या स्पिन बॉलर हूँ जो कि नेचुरल हूँ और आई कैन रियली बॉल वेल इन दीज कंडीशन एज वेल। मुरलीधरन का एक और वर्ल्ड टेस्ट इनिंग्स में 67 मरतबा 5 विकेट्स लेना है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने 67 इनिंग्स में अकेले ही ऑपोजिशन बैटिंग लाइनअप को तबाह कर दिया था। इस रिकॉर्ड को देखकर अंदाज़ा होता है कि वो कितने डेंजरस बॉलर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 22 मरतबा यानी टोटल कुल 22 टाइम्स एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज़्यादा विकेट्स भी लिए और ये रिकॉर्ड भी दुनिया में किसी और बॉलर के पास नहीं। तो ही हैज़ अ बैग फुल ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, बैग फुल ऑफ रिकॉर्ड। मुथैया मुरलीधरन बहुत ही आला दर्जे के स्पिन बॉलर थे और बहुत ही कमाल का वेरिएशंस उनके 6 मुख्तलिफ गेंदों में हमें दिखने को मिलता था। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में तो वो सक्सेसफुल रही, ऑब्वियसली 800 विकेट्स तो कमाल की बात है। 800 विकेट्स इज़ अ प्लेटफॉर्म, ये वो एक टारगेट है। आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम में कोई इस तरह का जो मैजिकल फिगर है, इस मैजिकल फिगर को कोई टच कर पाए। अंडर एनालिस द बॉलर हैज़ टू बी फिट, द बॉलर को, उस बॉलर को मुसलसल टेस्ट मैचेस में जगह भी मिलनी चाहिए, साथ साथ कंसिस्टेंसी। जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के बॉलर, ऑलमोस्ट केम क्लोज एज अ फास्ट बॉलर, ही इज़ द टॉप विकेट टेकर, 700 सुपर विकेट ले चुके हैं एंड फाइनली 2 साल पहले ही सेड टाटा बाय बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट, 40 के ऊपर हो गए थे। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ 800 विकेट वाले जो फिगर है, इसको अगर आपको टच करना है तो यू नीड टू बी क्वाइट फिट और वो डिमांड भी करें कि हाँ भाई आपको टेस्ट टीम में जगह मिले और वो डिमांड मार्केट या टीम या सिलेक्शन में बरकरार रखनी चाहिए कि सीरीज़, हर सीरीज़ में।

0: that particular bowler has to be there in the team. Aur Muralidharan ke sath ye tha ki consistency. And Muralidharan was one of the bowlers jahan pe Sri Lankan team kabhi tasavvur kar sakta tha ki ki Murali ko bahar baitha de, nahi ho sakta tha, because Murali was a match winner. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. मुरली वगैरह देयर वर अदर स्पिनर्स थे उस टाइम में. आई मीन ये नहीं थे कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम में कोई स्पिन बॉलर्स नहीं थे. देवर पार्ट टाइम बॉलर जैसे सनत जयसूर्या बैट्समैन थे, लेकिन पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते थे. अरविंद डी सिल्वा भी पार्ट टाइम बॉलर थे, बैट्समैन थे. अशोक डी सिल्वा, तो ये सारे बॉलर्स जो थे ये तो थे, लेकिन मुरलीधरन वॉज यू नो नॉट अबव एवरीवन. अच्छा ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ओडीआई क्रिकेट में भी देखता हूँ कि यू नो मुरली ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है. ओडीआई में 534 विकेट्स हासिल किए, 534 विकेट, जो बहुत अरसे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा. तो अब गिनती कर लीजिए थोड़ा, 800 प्लस 534, 1334 विकेट्स, मजाक नहीं है दोस्तों. 1334 विकेट्स, वो भी उस स्टैंडर्ड और उस हाई लेवल के क्रिकेट में. आहा, आई मीन आज के डेट में आई डोंट थिंक कि इस तरह के यू नो बॉलिंग एक्शन, इस तरह के बॉलिंग परफॉर्मेंस, आई रियली डोंट नो. और वो भी एक स्पिन बॉलर के जानिब, आई डोंट नो. अब मुझे नहीं लगता कि कोई इनके इर्द गिर्द भी है कि वो रिकॉर्ड को तोड़ सके. और इकोनॉमी रेट की बात करूँ, उनकी इकोनॉमी रेट और प्रेशर क्रिएट करने की सलाहियत बहुत ज़बरदस्त थी. बैट्समैन उनको अटैक करने से घबराते थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत होती थी. यही मैंने आपसे अभी कहा, वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त, 6 गेंद 6 मुख्तलिफ डिफरेंट एक्शंस, मुख्तलिफ यू नो वेरिएशन, जिसको पढ़ना रीड करना मुश्किल होता था. वो सिर्फ विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे दोस्तों, बल्कि टीम के लिए मैच विनर भी थे. इसलिए अर्जुन रणतुंगा जो उस टाइम के श्रीलंकन टीम के कप्तान थे, या बाद में जयसूर्या बने, एंड यू नो वो सभी इनको पसंद करते थे, बिकॉज ये आपको मैच जिता रहा है, ये बंदा आपको मैच जिता रहा है. एंड दैट इज़ वॉट एवरीबडी नीड्स, एवरी कप्तान दे वॉन्ट, एवरी कप्तान एवरी कैप्टन लीडर वुड वॉक आई मीन वुड लव टू हैव बॉलर लाइक मुरलीधरन इन योर टीम. अच्छा आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, ये दूसरा एक तरह का एक वेरिएशन है, एक स्टाइल है, एंड इसी से मुरलीधरन जो है कई बैट्समैनों को चकमा दिया था. सबसे डेंजरस वेपन था ये, ऐसी डिलीवरी थी जो ऑफ स्पिनर की नॉर्मल बॉल के ऑपोजिट टर्न करती थी, समझ रहे हैं आप. बहुत से टॉप बैट्समैन को समझ ही नहीं आता था कि गेंद किधर टर्न करेगी, और इसी वजह से दुनिया के बहुत से लेजेंडरी बल्लेबाज भी मुरली के सामने स्ट्रगल करते नजर आए. नेचुरल बॉलर है ना, उनकी रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी और फिंगर स्ट्रेंथ उनको दूसरे बॉलर से मुख्तलिफ बनाती थी. स्पिन बॉलर्स के जो देखिए, दो तरह के स्पिनर्स होते हैं, एक तो होता है स्पिन यानी आप फिंगर स्पिनर, जो है फिंगर यानी उंगलियों के दरमियान आप गेंद को रखते हैं, आप उसको टर्न कराते हैं. एक होता है रिस्ट स्पिनर. तो मुरली अगर देखा जाए तो मुरली दोनों तरफ की, आई मीन दोनों ही कमाल से वो करते थे कि आप रिस्ट भी टर्न कर रहे हैं, रिस्ट को भी मचोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ फिंगर कब यानी उंगलियों कब इस्तेमाल करते थे टू टर्न द बॉल टू जितना मैक्सिमम हो सके इस पिच से या इस विकेट से स्पिन को बॉल को टर्न करने के लिए ही डिड इज मैक्सिमम. तो आपका आई मीन एक स्पिन बॉलर, लोग कहते हैं कि अरे स्पिन तो बड़ा आसान चीज़ है, स्लो बॉलर है. नहीं वो दोस्तों ऐसा नहीं है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर्स ही बॉल करते हैं, गेंद तेज आते हैं और यू नो डिलीवरी करते हैं. ऐसा नहीं है कि स्पिन बॉलर्स में कुछ खासियत नहीं है, स्पिन बॉलर्स में भी खासियत है. तो वो खासियत जो है मुरलीधरन हमें करके दिखाया, 800 विकेट प्लस 534 ओडीआई विकेट लेकर दिखाया कि देर वॉज रियली हार्ड वर्क, देर वॉज रियली सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, देर वॉज रियली सम काइंड ऑफ स्टडी एजुकेशन यू नो इज इन्वॉल्व. तो इसीलिए ही बिकेम द वर्ल्ड वन ऑफ द लीडिंग स्पिन बॉलर्स और हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री. अच्छा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मुरलीधरन सिर्फ विकेट्स लेने वाले बॉलर नहीं थे, बल्कि एक कंप्लीट मैच विनर थे. ये हमने सबको ही देखा है. श्रीलंका के बहुत से हिस्टोरिक विक्ट्रीज में उनका सेंट्रल रोल था. जब भी टीम मुश्किल में होती, कप्तान मुरलीधरन को बॉल देते और वो ब्रेक थ्रू ला देते. इसीलिए श्रीलंका के फैंस उनको नेशनल हीरो मानते हैं आज भी. तो 1998 से 2007 तक का दौर मुरलीधरन का गोल्डन एरा माना जाता है. इसी दौरान उन्होंने लगातार विकेट्स लिए और दुनिया के हर बड़े बल्लेबाज को आउट किया। उनका नाम शेन वॉन के साथ कंपेयर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन में हमेशा अपने प्रोग्राम से बताया कि कंपैरिजन इज एन यूजलेस अप्रोच। शेन वॉन वाज अ लेग स्पिनर, ये ऑफ स्पिनर। क्रिकेट फैंस में हमेशा डिबेट होती है कि शेन वॉन और मुरलीधरन में से ग्रेटेस्ट स्पिनर कौन है। भाई जैसे रोनाल्डो और मेसी, ग्रेटेस्ट कौन है? ये सब ग्रेटेस्ट वेटेस्ट अपने लेवल पर है। कंपैरिजन करना इस यू नो बेवकूफ़ी है। लेकिन नंबर्स देखे जाए तो मुरली विकेट्स के मामले में सबसे आगे नज़र आते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम मुरलीधरन के करियर के बारे में एनालाइज करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हमने रिकॉर्ड्स को लेकर हमें बात करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उनका करियर सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं बल्कि स्ट्रगल, पैशन और डेमिनेशन की भी मिसाल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर इंसान मेहनत और कॉन्फिडेंस रखे, साथ ले चले, तो हर क्रिटिसिज्म का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दे सकता है। इसीलिए उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। और आज लोग एक एग्जांपल सेट करते हैं, बी लाइक मुरली या फॉर एग्जाम्पल बी लाइक शेन वॉन। अगर स्पिन बॉलर, अगर आपको स्पिन बॉलिंग करनी, ऑफ स्पिनर बनना है, तो आप मुरलीधरन को देखिए, उनके अप्रोच को देखिए, किस तरह से अंपायर्स ने, ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स ने 1995 की उस सीरीज़ में वो मैच में देखता रहा और देख के ये सोचता था कि क्या यू नो आप एशियन बॉलर हैं इसीलिए आपको सताया गया, परेशान किया गया बाय द ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मुरलीधरन को खेल ही नहीं पा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियन अंपायर, वन ऑफ द अंपायर्स डेरिल हार्पर, जो अभी भी नाम भी याद है, तो उन्होंने बार बार नो बॉल का इशारा कर रहे थे। उस टाइम फॉर एवरी मुरलीधरन डिलीवरी वो नो बॉल दे रहे थे, बिकॉज उनको लगता था या लग रहा था उस वक्त कि मुरलीधरन के बॉलिंग आर्म एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है और वो बॉल को नेचुरल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बॉल को थ्रो कर रहे हैं। तो उनको चकर करके कहा कि वह चकिंग द बॉल। बाद में ये क्लियर हो गया कि मुरलीधरन वॉज डेफिनेटली नेचुरल। सो देखिए ये सब चीज़ें, ये सब परेशानियाँ, ये सब क्रिटिसिज्म को इन्होंने, आई मीन मुरलीधरन ने इसको ओवरकम किया, एब्जॉर्ब किया। और सोचिए उस मेंटल स्टेटस को, जो उस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई अंपायर आपको इंटरनेशनल यानी बैनुल अक्वामी के जो जो जो बोर्ड्स हैं, जो कमिटीज़ हैं, जहाँ पर आपके करेक्शन किया जाता है आपके बोलिंग एक्शन, वहाँ पे आपने उनको ला खड़ा कर दिया, हाउ विल यू फील, हाउ विल यू फील? मैंने आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वहाँ से लेकर मुरलीधरन जब अपना फाइनल टेस्ट खेला और प्रज्ञान ओझा को आउट करके 800 विकेट ली, दैट मुकम्मल करने के बाद फाइनली लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, यानी मुरली ने कुछ किया। तो दोस्तों आज जब भी दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स का जिक्र होता है, मुरलीधरन का नाम फखर से लिया जाता है। उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उनकी मैजिकल स्पिन बॉलिंग और उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने उनको इमॉर्टल बना दिया है। क्रिकेट फैंस के लिए मुरली सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक एरा का नाम है। सो दोस्तों ये हमारा जो रिकॉर्ड ऑफ द वीक था, ये वॉज डेडिकेटेड टू वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मोथैया मुरलीधरन। अच्छा अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे अराउंड द स्पोर्टिंग प्लैनेट। और यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड्स हुए हैं, उसके बारे में जिक्र। लेकिन लेता हूँ एक यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे हम जुड़ते हैं। कीप लिसनिंग टू एफएम 107।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू दिस न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और दोस्तों आज हमने फर्स्ट सेगमेंट में ये कवर किया था कि रिकॉर्ड ऑफ द वीक सेक्शन में कि मुथैया मुरलीधरन का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट, 800 विकेट लेने वाला ओनली बॉलर, स्टिल नाउ आज भी कोई उनका रिकॉर्ड। तो अभी हम जिस बारे में बात करेंगे कि अब मुख्तलिफ जितने भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है उसमें किन किन साहब ने क्या क्या रिकॉर्ड किया है तो ये हम थोड़ा सा आज उस पर थोड़ा सा यू नो चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट इन ब्रीफ, फुटबॉल में

अमेजिंग टैलेंट और अपना सिक्स वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू नो बेस्ट ऑफ लक टू CR7. अब हम टेनिस पे चलते हैं. टेनिस में एक बंदा हमेशा आज भी हम उनको देखते हैं, यू नो मॉडर्न जनरेशन, ही डजंट बिलोंग टू द मॉडर्न जनरेशन, थोड़ा सा पीछे है, मतलब 10-15 साल पीछे, लेकिन आज भी ये नौजवान खिलाड़ियों के साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं. नोवाक जोकोविच, नाम तो सुना होगा. नोवाक जोकोविच टेनिस की तारीख के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक है. उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और अगर बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बताऊं यहां पे तो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का है. अब ग्रैंड स्लैम क्या है मैं आपको बता दूं, 4 टॉप टेनिस इवेंट्स इन अ ईयर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन. इस चारों इवेंट्स को हम कहते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम इवेंट्स हैं. और जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतकर मेंस टेनिस में नया रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई. और आज की बात करूं तो आज भी वो उतना ही फिट हैं, उतना ही वो मोटिवेटेड हैं, एंड ही इज कम्पीटिंग इन द फ्रेंच ओपन एंड लुकिंग फॉर हिज 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल. तो दोस्तों ये आम बात नहीं है, दिस छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है टेनिस जैसे स्पोर्ट में. या भले ही टेनिस क्यों, किसी भी स्पोर्ट में अगर आपके अचीवमेंट कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो समझना चाहिए उसमें लेजेंडरी मटेरियल है. स्टार के बाद बंदा लेजेंड हो जाता है. एंड तो डेफिनेटली ही हैज दैट ऑरा एंड यू नो ही फाइनली हैज शोन टू द वर्ल्ड दैट कुछ बात तो है. बास्केटबॉल में अगर बात करूं तो लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल की तारीख के सबसे अजीम खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड NBA हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने का है. लेब्रॉन ने करीम अब्दुल जब्बार का कई सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़कर NBA के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बनने का जो अचीवमेंट है उसको हासिल किया. और आज हम बात करते हैं जब NBA के बारे में तो वी टॉक अबाउट लेब्रॉन जेम्स. लेब्रॉन जेम्स इज रियली अ मॉडर्न स्टार, अ मॉडर्न लेजेंड. अब चलते हैं मोटर स्पोर्ट में, सबके दिलों धड़कन मोटर स्पोर्ट्स, F1, फार्मूला 1, रेसिंग और ये सब चीज़ें. आजकल की यूथ जो है वो दीवाने हैं फार्मूला 1 के, और ल्यू हैमिल्टन को कौन नहीं जानता है. ल्यू हैमिल्टन मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे कामयाब ड्राइवरों में से एक हैं. उनका एक टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो फार्मूला 1 में है. सबसे ज़्यादा रेस जीतने का वो एक यू नो एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड बिलोंग्स टू दिस बर्तानिया के इस फार्मूला 1 रेस ड्राइवर के पास. हैमिल्टन ने टोटल अपने करियर में 100 से ज़्यादा फार्मूला 1 ग्रां प्री जीतकर मोटर स्पोर्ट हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड कायम किया है. आजकल थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेजेंड इज़ अ लेजेंड. स्ट्रगल एक टाइम तो वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज भी उतना ही वो रेलेवेंस है इन फार्मूला 1 रेसिंग जितना कि वो आज से 15 साल पहले थे. अच्छा, वेट लिफ्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं. अब वेट लिफ्टिंग में लाशा तालाखाजे वेट लिफ्टिंग की दुनिया के सबसे ताकतवर एथलीट्स में से एक. उनका एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड है सुपर हैवी वेट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टोटल वेट उठाने का. लाशा ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 492 यानी 492 किलोग्राम टोटल लिफ्ट करके दुनिया को हैरान कर दिया था. और इसी सेगमेंट में आखिरी टॉपिक जो है वो है कैमल रेसिंग. कैमल रेसिंग हमारे शाहनिया में हमने देखा है, शाहनिया अब जब जाते हैं उस तरफ कैमल रेसिंग एक सीज़न है कतर में कैमल रेसिंग का, वो भी हम लोगों ने देखा है एंड वेरी पॉपुलर इन दिस अरब खत्ते में. तो कैमल रेसिंग वर्ल्ड कप कैमल रेसिंग की दुनिया का एक मशहूर और अहम मुकाबला माना जाता है. और कैमल रेसिंग में सबसे दिलचस्प रिकॉर्ड में से एक सबसे तेज़ रफ्तार कैमल का रिकॉर्ड है. जी हाँ दोस्तों, मशहूर रेसिंग कैमल्स कुछ रेसेस में 65 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा स्पीड तक पहुंच चुके हैं, जो इस रिवायती स्पोर्ट के लिए बहुत हैरतअंगेज बात है. हमने घोड़ों के रेस तो सुना है एंड वी हैव सीन द मोटर रेसेस, लेकिन अगर यू नो घोड़ों की रेस तो आम बात है. कैमल रेसेस आई मीन इंडिया पाकिस्तान में मैंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन कतर में आने के बाद आई हैव सीन द कैमल रेसिंग. माई गॉड, आई मीन आप बिलीव नहीं करेंगे, आई मीन ऊँट भी इतनी तेज़ी से रेस में, स्पेशली रेस में, हमने तो देखा है मूवीज़ में या रेगिस्तान में ऊँट को चल

0: होते हुए हमने देखा है, लेकिन जिस तरह से उनकी स्पीड है, बिलीव कीजिएगा कि मैं हैरान रह गया। मूविंग ऑन टू थर्ड सेगमेंट ऑन कतर एंगल। कतर एंगल में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स हुए हैं। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के इनॉग्रेशन के बारे में बता दूं, 1979 में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम वॉज इनॉग्रेटेड, एंड तब से लेके आज तक खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम हैज ग्रोन फ्रॉम बिगर टू द लार्जर एक्सटेंट में देखा जाए। नाउ अब तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए हैं जिनमें से 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी कर चुका है। अब हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के कई मैचेस भी यहाँ पे होस्ट किया गया था, एंड सालों साल यहाँ पे अमेरिका फाइनल भी होस्ट किया जाता है, बिकॉज इट्स अ बिग स्टेडियम और एक लेगेसी है, एक कतर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। एशियन गेम्स वॉज होस्टेड हियर, 2006 जो एशियन गेम्स था यहाँ पे होस्ट किया गया। तो ओवरऑल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम एक लैंडमार्क स्टेडियम है, एक लेगेसी स्टेडियम है। और यूथ इंस्पिरेशन की बात करूँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो कतर की कतर में स्पोर्ट्स का जुनून हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। बाय होस्टिंग, कतर इज होस्टिंग मेजर इवेंट्स। एक साल में ना जाने कितनी इवेंट्स हैं, वो एक दफ़ा कैलेंडर चेक करना चाहिए हमें कतर ओलंपिक कमेटी का। एंड कतर ओलंपिक कमेटी हर साल एक इवेंट लिस्ट जो है दे सेंड आउट टू एवरीवन। इसमें हमें पता चलता है कि कतर इज डूइंग ग्रेट मैसिव वर्क टूवर्ड्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। और दोहा के स्टेडियम दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स और फुटबॉल स्टार्स का मरकज बन चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम, आज का ये जो खास प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आज का पहला एपिसोड था। और आप लोगों से, मैंने जब भी हम स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं हमें अच्छा लगता है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई टॉपिक है, ऐसे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास भी है, तो शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 6662107 पर। और अगले हफ्ते हर बुध को इस प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों के दिलों में अगर कोई भी स्पोर्ट्स एनेक्डोट्स हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग शेयर करना चाहते हैं विद एफएम 107, तो एफएम 107 के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पर, आप ट्विटर पे भी जा सकते हैं, एंड आप वहाँ पर भी आप कुछ आप लोगों का राय दे सकते हैं ऑन एनी एनेक्डोट दैट यू वॉन्ट टू बी एयर्ड। और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास कुछ बताने के लिए है, अगर आप लोगों ने कोई ऐसा टूर्नामेंट या कोई ऐसे मैचेस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपको लगा कि यहाँ दिस मैच नीड्स टू बी डिस्कस्ड और दिस मैच में कुछ ऐसे खास बात हुई हो जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। लाइक स्टैटिस्टिक्स वाइज आप लोगों को लगा कि आप जितने भी लिसनर्स हैं उनमें से आप लोग भी काफ़ी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं और आप लोग फिंगर टिप्स पर स्टैटिस्टिक्स मौजूद रहते हैं, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ एफएम 107 एज वेल एज जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे स्टूडियो का, वो है 6662107 पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। अंटिल देन अगले हफ्ते मुलाकात होती है बुध को। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एतराज है, अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं। बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मैतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के हलके में आप सबका खैर मकदम है। आज के हलके में हम बहुत ही एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो है एहसास-ए-ज़िया। इंसानी ज़िंदगी के सबसे तकलीफ देह एहसासात में से है ये एहसास-ए-ज़िया, खो जाने का डर। बंदा हर वक्त इस परेशानी में रहता है कि पता नहीं जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी कदर हो या ना हो, खिदमत करे मगर कोई याद न रखे, कुर्बानी दे मगर उसका सिला नजर न आए, नेकी करे मगर दुनिया उसका एतराफ़ न करे। ये एहसास दिल को थका देता है और इसीलिए इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वक्त किसी न किसी नुकसान से बचने की कोशिश करता रहता है। ताजर अपने माल को महफूज बनाता है, तालिब इल्म रातों को जाग कर पढ़ता है, वालदेन अपनी औलाद के लिए मंसूबे बनाते हैं, मुलाजिम अपनी सलाहियतें बढ़ाता रहता है। हर इंसान कोई एक ऐसे खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारता है कि कहीं मेरी मेहनत ज़ाय न हो जाए। सामने किराम, कुरान मजीद की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ हमें यह हकीकत खुल कर नज़र आती है। कुरान मजीद एक ऐसी हकीकत बयान करता है जो मोमिन के दिल को इत्मीनान बख्श देती है। अल्लाह ताला फरमाता है وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब क़िबला बैतुल मक़दस से मस्जिदुल हराम की तरफ तब्दील हुआ। बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिल में सवाल पैदा हुआ, जो लोग इस तब्दीली से पहले वफात पा गए उनकी नमाजों का क्या होगा, क्या उनकी इबादत ज़ाय हो गई? तब अल्लाह ताला ने ये तसल्ली बख्श जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम। सामिन किराम, गौर कीजिए, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ये नहीं फरमाया कि हम शायद ज़ाय नहीं करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ज़ाय न हो, बल्कि फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम। अल्लाह की शान ही ऐसी नहीं कि वो अपने बंदों की मुखलिसाना कोशिशों को ज़ाय होने दे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सामिन किराम, इस दुनिया में बहुत कुछ ज़ाय हो सकता है, आपकी मेहनत को लोग भूल सकते हैं, आपकी खिदमात का जिक्र न हो, आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए।

0: अगर सारी दुनिया कहे कि इसमें कोई फायदा नहीं, तब भी एक मोमिन रोजा रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक फायदे से पहले अल्लाह की इताअत से है। यही ईमान का जौहर है, यही बंदगी की रूह है। सामने किराम, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग हर चीज़ को दुनियावी नफा नुकसान की तराजू में तोलते हैं। अब मोमिन की निगाह सिर्फ दुनियावी नताइज पर नहीं होती, वो जानता है कि मेरा काम कोशिश करना है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। मेरा काम बीज बोना है, फल उगाना अल्लाह का काम है। मेरा काम हक पर कायम रहना है, अंजाम अल्लाह के सुपुर्द है। इसीलिए जब नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी तो लोगों की तादाद नहीं देखी बल्कि अपने रब के हुक्म को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग के शोलों को नहीं देखा बल्कि अल्लाह की रजा को देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को नहीं देखा बल्कि अल्लाह के वादे पर यकीन रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सख्तियों को नहीं देखा बल्कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी को अपना मकसद बनाया। तो सामिन किराम, बसा अवकात इंसान नेकी करता है, नेकी की राह पर चलता है, मगर उसका नतीजा फौरन नज़र नहीं आता। वो अपने बच्चों की तरबियत करता है मगर तब्दीली देर से आती है। वो लोगों की इस्लाह की कोशिश करता है मगर माशरा फौरन नहीं बदलता। वो सच बोलता है मगर वक्ती नुकसान उठाता है। वो दयानतदारी इख्तियार करता है मगर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है। ऐसे मौके पर शैतान आकर कहता है, इस सब का क्या फायदा? लेकिन ईमान जवाब देता है, मैं फायदे के लिए नहीं अल्लाह के लिए अमल कर रहा हूँ। और यही वो मकाम है जहाँ बंदगी की हकीकत जाहिर होती है। सामने किराम, खजूर के दाने के हवाले से ये फसीले की जो हदीस है, ये हदीस हमें ये सबक देती है कि अगर दुनिया की आखिरी घड़ी भी आ जाए तब भी मोमिन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता। आशरे अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं तो नताइज कि आप जो बीज आज बो रहे हैं उसका फल आप न देख सकें, लेकिन अल्लाह उसे जरूर देख रहा है और अल्लाह के हाँ कोई नेकी जाया नहीं होती। चले, आज से हम ये अहद करते हैं कि हम हालात के नहीं अल्लाह के बंदे बनेंगे। हम नेकी इसलिए नहीं करेंगे कि दुनिया हमें दाद दे, बल्कि इसलिए करेंगे कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमें इखलास, इस्तकामत और अपने इताअत पर साबित कदम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इसी तरह मज़ीद इखलास के साथ नेकी करने, सब्र के साथ साबित कदम रहने, तक्वा की राह इख्तियार करने और अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मैशाल बाशिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैशाल बाशिम नाम से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुताज बाशिम का छोटा भाई। और मुताज बाशिम जैसे नो हाई जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड टाइटल ओलंपिक टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं, वहीं मैशाल बाशिम भी कतरी फुटबॉल के साथ कई ऐसे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और गोलकीपिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स कतर हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, और बेहतरीन गोलकीपिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो मैशाल ईसा बाशिम है और वो कतर नेशनल फुटबॉल टीम के एक अहम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इसी महीने, और इसी महीने में कतर का अगर मैं नंबर वन गोलकीपर के तौर पे देखूं तो मैशाल का ही नाम आता है। मैशाल ने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत और लगन से प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र तय किया था। मैशाल ने कतर स्टार्स लीग में असद क्लब की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। गोलकीपिंग के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस, कॉन्फिडेंस और प्रेशर में बेहतरीन सेव्स करने की सलाहियत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, यानी दूसरे गोलकीपर से अलग बनाती है। दूसरे गोलकीपर्स की बात करूँ यहाँ पे, उनसे कई मुख्तलिफ इनके परफॉर्मेंसेस हैं और लोग, एक्सपर्ट्स, फैंस और उनके चाहने वाले भी कहते हैं कि डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कतरी फुटबॉल। उन्होंने AFC एशियन कप और कई इंटरनेशनल मैचेस में कतर की नुमाइंदगी की और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ये 2024 में जो एशिया कप हुआ था कतर में, उसमें मैशाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है। मैशाल को डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मिसाल माना जाता है। फुटबॉल फील्ड में उनका काम, एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटीज टीम को मजबूत बनाती है। वो नौजवान फुटबॉलर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कतर में फुटबॉल को करियर बनाना चाहते हैं। आज मैशाल बाशिम कतर फुटबॉल का एक रोशन नाम है और उनकी परफॉर्मेंसेस मुल्क के फुटबॉल फ्यूचर के लिए उम्मीद की नई किरण समझी जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि जिस्मानी सेहत जितना ही अहम है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये है ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ सिर्फ ज़हनी बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी फलाह व बहबूद का एक अहम हिस्सा है। अच्छी ज़हनी सेहत हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने, बेहतर फैसले करने और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखने में मदद देती है। जिंदगी में किसी हद तक परेशानी या फिक्र महसूस करना मामूल की बात है, लेकिन जब फिक्र, खौफ या घबराहट मुसलसल रहने लगे और रोज़मर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने लगे तो उसे एंजाइटी या बेचैनी की कैफियत कहा जाता है। इसकी अलामत में दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बेसुकूनी महसूस करना, नींद में खलल और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, या कंसंट्रेट करने में दुश्वारी महसूस हो, और हर वक्त फिक्रमंद रहना शामिल है। डिप्रेशन महज उदासी का नाम नहीं है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान मुसलसल उदास, मायूस या फिर बेदिल महसूस

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इन्फॉर्मेटिव और फन सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शावर टाइम कम करना। देखिए, सुबह का टाइम है, जरा सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, आप शावर में एंटर करते हैं, ठंडे या गर्म पानी का मजा आप ले रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि बस पांच मिनट और क्या मस्त मजा आ रहा है नहाने में। फिर कभी कभी आप ये होता है कि भाई आप गाने गाना शुरू कर देते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन सी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, बाकायदा बाथरूम में खड़े होकर नहाते हुए आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं पता नहीं किस किस चीज की। और शावर टाइम 5 मिनट से कभी 15 तो कभी 20 मिनट तक पहुंच जाता है। और फिर भाई बाहर से कोई आवाज देता है, अगर आपके घर में कोई हो, खासतौर पर अम्मा हो, तो वो तो ये बोलती है बेटा खैर है, पानी खत्म करके बाहर आना है, खुदा का खौफ करो, जल्दी बाहर निकलो। ये सिचुएशंस बहुत कॉमन है, स्पेशली बिजी मॉर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा, या अक्सर ऐसा होता है ना, वो जुमे की नमाज पढ़ने जाना होता है, घर में चाहे कितने भी बाथरूम हो कम पड़ जाते हैं और सबको ये होती है कि बस जल्दी निकलो। अब थोड़ा रियलिटी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी बहुत है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन असल में फ्रेश वाटर जो हम डेली यूज करते हैं ना, वो लिमिटेड सप्लाई में होता है। जब हम शावर लेते हैं ना, तो सिर्फ पानी वेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि उस पानी को हीट करने के लिए भी एनर्जी जा रही होती है। यानी एक सिंपल शावर का इम्पैक्ट डबल होता है, यानी वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी या गैस भी। अच्छा, अगर इको स्विच के बारे में बात की जाए सिचुएशन में, तो सिंपल सा आइडिया है भाई। देखिए, शावर टाइम को कॉन्शियस और शॉर्ट रखना, मतलब क्लीन रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही घूमते फिरे बगैर नहाए धोए, ना ना ना ना ना, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट और ओवर यूज तो अवॉइड करें ना। आइडियल शावर टाइम आपको पता है क्या होता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 से 7 मिनट काफी होते हैं। 5 से 7 मिनट के आसपास आइडियल होता है, जो हाइजीन के लिए सफिशिएंट होता है और रिसोर्स सेविंग के लिए भी बेस्ट होता है। अच्छा, अब बात अगर करें तो अब बात करते हैं कि शावर टाइम कम करने से क्या फायदा होता है। देखिए, शावर टाइम कम करने से होता है, सबसे पहला तो फायदा होता है वाटर कंजर्वेशन। हर मिनट जो आप शावर में गुजार रहे होते हैं ना मजे से गाने गाते हुए, उससे तकरीबन लीटर्स ऑफ वाटर सेव हो जाता है। दूसरा फायदा है एनर्जी सेव होती है। गर्म पानी यूज करने के लिए हीटर या बॉयलर जो यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस कंज्यूम होती है, वो कम होती है। तीसरा फायदा है बिल रिडक्शन। भाई बिल रिडक्शन, पैसा आपकी जेब से कम जाएगा, वाटर एनर्जी दोनों कम यूज होते हैं ना, तो इससे मंथली बिल्स भी आपके नोटिसेबली डिफरेंस आता है, कम हो जाते हैं। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम एनर्जी यूज का मतलब है कम इमिशंस और कम एनवायरमेंटल लोड। अच्छा, जरा सोचिए, आप सुबह लेट हो रहे हैं, ठीक है, शावर में एंटर करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई बस जल्दी से शावर ले लेता हूं, लेकिन फिर आपका फोन बज पड़ता है या आपके दिमाग में कुछ अलग काम चल रहे होते हैं या आपकी सोचें होती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आपका टाइम डबल हो जाता है। और फिर रिजल्ट ये होता है कि आप लेट भी हो जाते हैं और पानी भी ज्यादा यूज हो जाता है। अगर वही शावर प्लान्ड हो कि भाई नहीं, मैं 5 मिनट का टाइमर मोबाइल में है ना, मैं बस टाइमर मोबाइल में टाइमर सेट करो भाई, 5 से 7 मिनट का टाइमर सेट करो, और आप एफिशिएंटली रेडी भी हो जाते हैं और वेस्ट भी नहीं होता आपका पानी।

0: एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। देखिए दोहा जैसे शहर में जहाँ क्लाइमेट होता ही वार्म है और कभी कभी वेरी हॉट भी हो जाता है, शावर रूटीन डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ वाटर यूजेज और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। अगर हर हाउस होल्ड थोड़ा सा भी शावर टाइम रिड्यूस करे ना, तो सिटी लेवल पर सिग्निफिकेंटली वाटर सेविंग हो सकती है। अच्छा, अगर टिप्स के बारे में बात करें तो भाई टाइमर यूज करें, शावर स्टार्ट करते वक्त 5 से 7 मिनट का टाइमर लगा लें, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी बात, सब पहले रेडी रखें, सब कुछ शैम्पू सोप टॉवल वगैरह अरेंजमेंट जो होता है। तीसरी बात, वाटर ऑफ टेक्निक यूज करें, मतलब ये कि सोप लगाते वक्त पानी बंद कर दें ना, शैम्पू यूज करें तो पानी बंद करें, ये क्या कि पानी चल रहा है शैम्पू लगा रहे हैं सर के ऊपर और पानी चलता चला जा रहा है चलता चला जा रहा है। चौथी ट्रिक है माइंडफुल शावर हैबिट, शावर को रिलैक्सेशन जोन बनाएं, लेकिन एक्सटेंडेड थिंकिंग जोन मत बनाएं, वो जो आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ना शावर में खड़े होके, वो ना करें। देखिए अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ना आपको, एवरेज शावर में जो वाटर यूज होता है ना वो डिपेंड करता है टाइम और फ्लो पे, लेकिन लॉन्ग शावर्स में अननेसेसरी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ईयरली वेस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउस होल्ड। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती है बातें, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई आज का चैलेंज ये साथियों कि आज से अगले 3 दिन के लिए आप अपना शावर टाइम नोटिस करें और कोशिश करें कि उसे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रखें। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट शावर्स लेते हैं ना, तो किसी और को आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो, उसको कह सकते हैं कि भाई ये वाला काम करके देखो, बिल भी कम आएगा। तो देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं, आपकी एफर्ट्स कहां तक पहुंचते हैं। तो साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपना शावर टाइम कंट्रोल करते हैं तो हम सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलते बल्कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ स्टेप लेते हैं। तो भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वालिदैन का एहतराम। वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होते हैं, उनकी मोहब्बत बगैर किसी शर्त के होती है और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। इस्लाम में वालिदैन की इज्जत और खिदमत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है, यहाँ तक के कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। अक्सर हम बिजी रूटीन में उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके साथ नरम लहजे में बात करना, उनकी खुशी का ख्याल करना और उनकी मदद करना, यही असल नेक अमल है। आज का अमल यह है कि अपने वालदैन को कॉल करें, उनसे प्यार से बात करें या अगर उनके पास हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें। उनका दिल खुश करना जन्नत का रास्ता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
4: आज दोस्तों हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट फ्रेज को लेकर जिसको आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, शायद रेडियोस पे भी सुना है, टेलीविजन पे भी। वो फ्रेज या वो लाइन है कि वाई सस्टेनेबिलिटी इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने को ये सवाल बड़ा पावरफुल है और हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये एक भरपूर जिम्मेदारी है। देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, उससे कल कोई नुकसान ना हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। कतर का नेशनल विजन 2030 जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जोर देता है। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी और बिजली को बचाना, वेस्ट कम करना, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट।

कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जी हाँ, सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है। अगर आज रिसोर्सेज जाया किए जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मुश्किलात पैदा होगी। विजन इसीलिए बैलेंस ग्रोथ पर जोर देता है और वन स्टेप टू 2030 हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी एक कलेक्टिव कमिटमेंट है जो कतर के फ्यूचर को महफूज बनाती है। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है। सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

यार कुछ पैसे मिल जाएंगे दोस्त, अगर ये इतने से पैसे मिल जाएं तो यार मेरी फॉरेन में जॉब लग जाएगी और फिर वहां पर कमाई से तुम्हारे सारे कर्ज उतार दूंगा। प्लीज कुछ पैसे की हेल्प कर दो ना। हो सकता है वीजा के लिए आप अपने दोस्त से या जॉब के लिए आप अपने दोस्त से इस तरह से इल्तिजा कर रहे हो कि कुछ पैसे दे दो और फिर मैं उसे वापस कर दूंगा, मेरी फॉरेन में जॉब लगने वाली है। लेकिन जरा रुकिए, जॉब वीजा फ्रॉड के बारे में बात कर लें, उसके बाद आप अपने दोस्त से बात कर लीजिएगा। स्कैम अलर्ट। वेल, वी ऑल नो कि आजकल किस तरह से एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ चुकी है और लोग आज की दुनिया में, आज के वक्त, आज की ग्लोबल इकोनॉमी में पार्ट लेना चाहते हैं और फॉरेन जाकर, बाहर मुल्क में जाकर ज्यादा कमाई करना चाहते हैं और अपने लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये एक ड्रीम वर्क है एक इंडिविजुअल के लिए, किसी शख्स के लिए फॉरेन कंट्री में काम करना, लेकिन ये एक नाइटमेयर में भी बदल सकता है। आप एक विक्टिम बन सकते हैं एक फ्रॉडलेंट स्कीम के, एक स्कैम के, और आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा स्कैम जो कि अगेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, करोड़ों का लोगों का नुकसान हो चुका है। जब कोई आपको जॉब ऑफर देता है तो वो आपको कई चीजें मिस प्रेजेंट करता है, वीजा एप्लीकेशन, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, इमिग्रेशन अथॉरिटीज के सच में दिए हुए लेटर्स, ये सारी चीजें आपको पेपर वर्क के थ्रू दिखाता है, एक सपना दिखाता है कि फॉरेन में तुम्हारी इतनी सैलरी होगी, इस जगह काम करोगे, बैठने का काम है, ज्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन यहीं पर एक कॉमन मैन ऐसी चाल की बातों में फंस जाता है और वो बेहतर जिंदगी की तलाश में सब कुछ गवा बैठता है। दोस्तों, जॉब वीजा फ्रॉड क्या है? जॉब वीजा फ्रॉड आम तौर पे जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड नहीं है, एक परफेक्ट जॉब ऑफर है। लेकिन ये स्कैमर्स बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। ये आपको प्रॉमिस करेंगे कि एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, एक हाई पेइंग पोजीशन है फॉरेन कंट्री में, बस वीजा प्रोसेसिंग करानी है, उसके लिए कुछ फीस लगेगी और आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन मोस्ट कॉमन रेड फ्लैग यही होना चाहिए कि आपसे कोई अपफ्रंट पेमेंट रिक्वेस्ट करें। एक्चुअल में एम्प्लॉयर्स कभी भी आपसे पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं करते टू सिक्योर अ जॉब फॉर यू और फॉर वर्क वीजा। जब भी आपसे कोई कहे कि वीजा के लिए लीगल फीस कुछ लगेगी, ट्रेवल कॉस्ट लगेगा, कुछ फला लगेगा, तो ये एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि कोई भी कंपनी वीजा, लीगल फीस, ट्रेवल कॉस्ट, ये खुद के ऊपर बेयर करके आपको जॉब देती है। और अगर कोई शख्स ऐसा आपसे कहे, कोई एजेंसी आपसे ऐसा कहे, तो आपको इमीडिएटली उस शख्स को शक की नजर से देखना चाहिए। जब भी इस तरह के जॉब के बारे में आप सुने या देखें तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि आप इस तरह के जॉब वीजा फ्रॉड में ना फंसें। अपनी रिसर्च पूरी रखें, कंपनी के बारे में डिटेल से जाने और समझें, एजेंसी के बारे में डिटेल से जाने और समझें, साथ ही जो वो जॉब आपको ऑफर की जा रही है वो किस कंपनी में है, उसकी किस जगह पे लोकेशन है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, उस कंपनी में अगर कोई और एम्प्लॉयर काम कर रहा है क्या उससे आप टच में होकर बात कर सकते हैं कि क्या सच में आपकी कंपनी में वैकेंसी है, क्योंकि आई गॉट दी ऑफर, मुझे ऑफर मिला है, इसलिए आप उससे ये बात कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, शर्म अगर आपने की तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका नुकसान हो जाए और फिर आप सोचे कि अगर शर्म ना करते, ये कुछ सवाल अगर एजेंसी से कर लेता या कंपनी से कर लेता तो आज मेरे लाखों रियाल बच जाते। तो ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, अपने रिसर्च करें, और यू शुड ऑल्सो लुक फॉर रिव्यूज और कंप्लेंट्स फ्रॉम अदर्स हु मे हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स या इस तरह का फ्रॉड झेलना पड़ा था। कभी भी सामने से आपको पैसे नहीं देने हैं किसी जॉब ऑफर के लिए या वीजा प्रोसेसिंग के लिए। लेजिटिमेट कंपनीज जो होती हैं वो आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगती। अगर आपको कोई प्रेशर करता है तो आपको

और ख्याल में रखना चाहिए कि ये एक रेड फ्लैग है। साथ ही ये हो सकता है जो ज्यादातर स्कैमर्स ये ट्रिक अपनाते हैं कि आपको बताते हैं कि ये आखिरी जॉब है आपके लिए, ये आखिरी जॉब है, इसके बाद कोई जॉब नहीं है, आखिरी स्पॉट खाली, आखिरी वैकेंसी खाली है। वो आपको जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए कहेंगे, आपको डराएंगे, लेकिन आपको अपना वक्त लेना है। जल्दबाजी में अगर आपने कुछ किया तो ये एक बड़ा नुकसान है, और यही वजह है कि इस शो को मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आया हूं, जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। अवेयर रहेंगे तो सुरक्षित, तो सिक्योर रहेंगे। इसीलिए सुनते रहिए एफएम 107। आएंगे वापस अगली बार जब हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में, एक नए ऐसे फ्रॉड के बारे में, एक नए ऐसे स्कीम के बारे में जहां पर लोग फंसे हैं और लोगों ने अपना लाखों रुपए गवाया है। तब तक सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आरजे माविश। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्रोग्राम। मैं आपको लिए चलूंगी एक ऐसे सफर पे जो हमें तारीख के और राग से लेकर रूहानी गहराइयों तक ले जाएगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया शो स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स, यानी अंबिया कराम की कहानियां। ये प्रोग्राम अंबिया कराम की जिंदगियों की कहानियां सुनाएगा, जिनसे हम सबक सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। इस प्रोग्राम का तसव्वुर बहुत सादा मगर गहरा है। हम हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, कामयाबियों और अल्लाह की तरफ से दिए गए सबक पर बात करेंगे। ये कहानियाँ ना सिर्फ इस्लामी तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि इनमें रूहानी और अखलाकी सबक पोशीदा हैं, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा ये शो तमाम लिसनर्स की दिलचस्पी के लिए हो, वो भी जो इस्लामी तारीख, रूहानी बातों और अखलाकी सबक में दिलचस्पी रखते हैं, और ये शो हर उम्र के अफराद के लिए मौजू साबित हो, बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई इससे फायदा उठा सके। और हमारी थीम यही है कि हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी का जायजा लिया जाएगा, उनकी जद्दोजहद, अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात में सबर और अल्लाह की इताअत को उजागर किया जाएगा। और ये कहानियां आज के जदीद चैलेंजेस से जोड़ी जाएंगी, ताकि सुनने वाले ये जो लाजवाब इकदार हैं उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें। आज का एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो पहले इंसान और पहले नबी जिनकी कहानी से इंसानी तारीख, इंसानी कहानी शुरू होती है। तो रहे हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने इंसान को कैसे तख्लीक किया, जन्नत में कैसे रिहाइश दी और फिर जमीन पर भेजा। ये कहानी हमें तौबा, रहम और जिम्मेदारी का सबक देगी।
0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
1: अब आइए बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के एक जायजे पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे अजीम तख्लीकात में से एक हैं। वो पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया। उनका किस्सा कुरान मजीद में बयान किया गया है, खास तौर पे सूरह अल बकरा, सूरह अल एराफ और दीगर सूरतों में। ये किस्सा हमें बताता है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और अल्लाह की इताअत की अहमियत क्या है। अब आइए जरूरी वाकयात को तरतीब से देखते हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पसे मंजर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला है। फरिश्ते हैरान हुए और पूछा, क्या ऐसा खलीफा जो जमीन पर फसाद करेगा? लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मुझे जो मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उन्हें शक्ल दी और अपनी रूह फूंक कर जिंदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से पूछा, क्या तुम जानते हो? लेकिन वो ना बता सके। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से पूछा तो वो ना बता सके, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। इससे अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदाए ताज़ीमी करें। सब ने किया सिवाय इब्लीस के, जो गुरूर में आकर इनकार कर बैठा और अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی جہاں وہ سب کچھ کھا پی سکتے تھے سوائے ایک درخت کے۔ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ اس درخت سے کھائیں تو امر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کھایا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ پچھتائے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بنے، اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے مگر اللہ کا رحم بہت وسیع ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: सबसे पहले जायजा लेते हैं तखलीक के मामले का। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से तखलीक किया, उन्हें शक्ल दी और अपनी रूह फूंक कर जिंदा किया। कुरान में है, और जब मैंने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये तखलीक हमें बताती है कि इंसान अल्लाह की सबसे आला मखलूक है, जो मिट्टी से बना मगर रूह इलाही से नवाजा गया। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ने मिट्टी को गूंदा, शक्ल दी और फिर रूह फूंकी। यह अमल हमें इंसानी अजमत की याद दिलाता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ये तखलीक ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी है, जो इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती है। हम आज की साइंस से मवाजना करें तो ये तखलीक का मौजजा है, जहां अल्लाह ने मिट्टी के अनासर से इंसान बनाया, जो आज की जेनेटिक्स और बायोलॉजी से मुताबकत रखता है मगर इलाही ताकत से। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया। फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, जो एहतराम का इजहार था। ये शर्फ हमें बताता है कि इंसान को इल्म दिया गया है, जो फरिश्तों से भी बढ़तर है। अल्लाह ने फरमाया, और हमने बनी आदम को इज्जत दी। ये इज्जत जिम्मेदारी भी लाती है कि इंसान जमीन पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चले। आज की दुनिया में ये हमें याद दिलाता है कि इल्म की ताकत इस्तेमाल करके हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा अलैहि सलाम को जन्नत में रखा गया, जहां सब कुछ हलाल था सिवाय एक दरख्त के। कुरान में है, ऐ आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास ना जाना। जन्नत की जिंदगी बगैर किसी तकलीफ के थी, मगर ये एक इम्तिहान भी था। शैतान ने उन्हें वरगलाया कि ये दरख्त तुम्हें अमर कर देगा। उन्होंने खाया, जो कि एक नाफरमानी थी। शैतान ने कहा, क्या तेरे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या अमर ना हो जाओ? ये फरेब इंसानी कमजोरी को जाहिर करता है। वो फौरन पछताए और तौबा की। अल्लाह ने कबूल की, मगर उस जगह भेज दिया जहां से उनका असल इम्तिहान शुरू होना था, यानी जमीन पर। ये तौबा का सबक है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने, औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई। उनकी उम्र 1000 साल बताई जाती है रिवायात में। वो इंसानियत के बाप हैं, उनकी कहानी तौबा, रहम और जिम्मेदारी की है।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: इस किस्से से हमने क्या सीखा? तो आए अपने सेगमेंट वर्ड्स ऑफ विजडम की तरफ, जहां हम देखेंगे अखलाकी इकदार, रूहानी पैगामात और आज की जिंदगी की मुताबिकत।

0: प्रेजेंट करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107. दिल से देसी.

अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। उनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं, तो उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो और उनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन हैं, तो उन्हें कुफार की तरफ वापस न करो, न वो कुफार के लिए हलाल है और न कुफार उनके लिए हलाल। उनके काफिर शौहरों ने जो मेहर उनको दिए थे वो उन्हें फेर दो और उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम उनके मेहर उनको अदा कर दो और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में न रोके रहो। जो मेहर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापस मांग लो और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे उन्हें वो वापस मांग ले। ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है और वो अलीम व हकीम है। और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के मेहरों में से कुछ तुम्हें कुफार से वापस न मिले और फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हैं उनको उतनी रकम अदा कर दो जो उनके दिए हुए मेहरों के बराबर हो और उस खुदा से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैयत करने के लिए आए और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई बोहतान घड़ कर न लाएंगी और किसी अमरे मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, तो उनसे बैयत ले लो और उनके हक में दुआए मगफिरत करो। यकीनन अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया है, जो आखिरत से उसी तरह मायूस है जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं।

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.